ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 5:30। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरंजनी, जिसमें आज आपने सुना राग बैरागी भैरव। कलाकार थी रमा सुंदर रंगनाथन। 6 बजने को है, ये सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के

बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मूज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:10 हो चुके हैं और ये समय है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना का। लीजिए सुनते हैं वंदना कार्यक्रम में पहली प्रस्तुति अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के स्वर में।

अभी आपने सुना हरिओम शरण को, और लीजिए सुनते हैं अब आज के इस वंदना कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति प्रोफेसर दर्शन सिंह के स्वर में।

भूल करना मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि मनुष्य अपना विवेक खो बैठता है। वह जाने अनजाने में ऐसी गलती कर बैठता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह अपने इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता है। अपनी भूल स्वीकार करने वाला व्यक्ति महान होता है और जो भूल का प्रायश्चित करता है वह निश्चय ही महामानव हो जाता है। शर्त यही है कि ये पश्चाताप किसी विवशता या दबाव में नहीं बल्कि मन से होना चाहिए। बात अगस्त 1947 की है। इधर देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तो उधर बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के हुए थे। सभी प्रयासों के बाद भी लोग शांत नहीं हो पा रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में गांधी जी वहां पहुंचे और कलकत्ता में एक मुस्लिम मित्र के घर ठहरे। उनके वहां पहुंचने पर कुछ देर के लिए तो सब शांत हो गया, लेकिन जल्द ही स्थिति फिर पहले जैसी हो गई। तब गांधी जी ने आमरण अनशन का निर्णय लिया और 31 अगस्त 1947 को अनशन पर बैठ गए। इसी दौरान एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मैं आपकी मृत्यु का पाप अपने सिर नहीं लेना चाहता। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तब गांधी जी ने उसे चुप कराने की कोशिश की तो वह जोर जोर से रोता हुआ बोला, मैंने ऐसा पाप किया है कि मैं सीधे नरक में जाऊंगा। मैंने 8 साल के एक मुस्लिम लड़के की जान ली है। गांधी जी ने पूछा, तुमने ऐसा पाप क्यों किया? आदमी आवेश में आ गया, बोला, क्योंकि उसने मेरे मासूम बच्चे की जान ली थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। गांधी जी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर आदमी से प्रश्न किया, तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? वह फपकते हुए बोला, मैं अपने पाप को भूल नहीं पा रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप ही बताइए मैं क्या करूं। गांधी जी बोले, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। तुम उसी उम्र का एक ऐसा लड़का खोजो जिसने दंगों में अपने माँ बाप खो दिए हों। उसे अपने बच्चे की तरह पालो, लेकिन शर्त है कि वह बच्चा किसी मुस्लिम का होना चाहिए। ऐसा करके ही तुम पाप से मुक्त हो सकोगे। यही तुम्हारा सच्चा प्रायश्चित होगा। गांधी जी की बात सुनकर वह आदमी पल भर के लिए सन्न रह गया। गांधी जी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। वास्तव में देखा जाए तो जो व्यक्ति अपनी भूल को सच्चे मन से स्वीकार कर लेता है तो उसका दोष आधा रह जाता है, और अगर वह भूल का सच्चे मन से प्रायश्चित कर उसे भविष्य में न दोहराने की शपथ लेता है तो उसकी भूल को क्षमा कर दिया जाना चाहिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं।

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंपकर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

0: अस्य मुख्यमुद्देश्यमस्ति। आकाशवाण्याः लोकप्रिये मन की बात इति मासिक प्रसंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः राष्ट्रस्य जनैः सह आत्मीयं विचार विनिमयं विधास्यति। अष्टत्रिंशदुत्तरशततम प्रसंगस्य कार्यक्रमस्यास्य समग्र देशे दूरदर्शन आकाशवाणी जालपुटेन सह डिजिटल माध्यमेषु साक्षात् प्रसारणाय सर्व प्रबंधः समनुष्ठितः। हिंदी वाचनानुपदमेव समस्त प्रादेशिक भाषाष्वपि अस्य रूपांतरणं आकाशवाणी केन्द्रैः प्रसारयिष्यते। उत्तर प्रदेश प्रशासनम् आयुष्मान योजना नियमानां उल्लंघनं कुर्वतां चिकित्सालयानां उद्देश्य कठोरं कार्याचरणं विधास्यति। एतदर्थं राज्य स्वास्थ्य एजेंसी इति संस्था चतुः सदस्यीयं निरीक्षण दलम् अरचयत्। अवधेयं यत् इदं दलं पंजीकृत चिकित्सालयानां परीक्षणं प्रारभत। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः संप्राह यत् संयुक्त राष्ट्र संस्थायाः परिष्काराय पाठाधारित वार्ता अतीव आवश्यकी वर्तते। न्यूयॉर्क इत्यत्र संयुक्त राष्ट्र महासभायां भाषमाणः विदेशमंत्री अवोचत् यत् पाठम् अन्तरेण क्रियमाणा वार्ता केवलं समययापनमेव अस्ति। परिष्कारविरोधिनः अस्याः संस्थायाः दुरुपयोगं कुर्वन्ति इत्यपि असौ स्पष्टम् उक्तवान्। जलसुरक्षा सर्वैः नागरिकैः प्रशासनेन उद्योगैः च सहभागितां विधाय एव साध्यते इति जलशक्ति मन्त्रिणा सी आर पाटिलेन सबलं प्रोक्तम्। ह्यः नवदिल्ल्यां नवम भारत अन्ताराष्ट्रिय जल सप्ताहस्य समापन सत्रे सम्भाषमाणेन मन्त्रिणा एतत् ख्यापितम् यत् जल संरक्षणाय जन सहभागिता अतीव आवश्यकी वर्तते। मन्त्रिणा सविशेषं प्रोदीरितं यत् वैश्विक सहयोगेन एव जल सम्बद्ध समस्यानां परिहारः सम्भविष्यति। जल संरक्षणं न हि केवलं एकस्य कर्तव्यं प्रत्युत प्रत्येकस्य उत्तरदायित्वम् इत्यपि असौ सबलं न्यगादीत्। उत्तर प्रदेशे प्रादुर्भूतया अतिवृष्ट्या जनजीवनं संजातम् अस्तव्यस्तम्। आसन्नां भीषण वृष्टिं विलोक्य प्रशासन पक्षतः बहुषु जनपदेषु पाठशालाः पिहिताः सन्ति। चक्रवात प्रभावेन राजधान्यां लखनऊ नगर्याम् अविरतं जलवृष्टिः प्रचलति। अत्रावधेयं यत् रविवासरं यावत् पूर्वी उत्तर प्रदेशे अतिभीषणा वृष्टिः विद्युत्पातः तीव्रसमीरश्च सम्भविष्यति इति सञ्चेतनाम् अयच्छत् ऋतुविज्ञानविभागः। नागोया एशियाई क्रीडासु भारतस्य पदकानां संख्या 23 सम्प्राप्ता। लक्ष्यभेदस्पर्धायां कमलजीतसुरुचियुग्मेन स्वर्णं गुलवीरसिंहेन च रजतपदकं प्रासाधि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रभृतयः सर्वेभ्यः विजेतृ क्रीडकेभ्यः वर्धापन सन्देशम् अयच्छन्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया टालने के समान होगी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर रैप्चर्स एंड रैम्पर्ट्स बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर मंत्री स्तरीय सत्र में ये बात कही। विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में

0: एंटीगा और बरबुडा की ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में श्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने नेपाल चीन सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर अभियान के आरंभ होने का स्वागत किया है। इस अभियान की घोषणा 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के नाविकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह अभियान समुद्री सहयोग को मजबूत करता है और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति क्वाड की साझा प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज वर्षा से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज वर्षा हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। राहत आयुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी श्रृंखला में हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरोद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of social service, social reform and positive change. He said Viksit Bharat can be realized only with the contribution and participation of everyone. Mr. Modi highlighted that Vadnagar gave him the values that shaped his life, while Kashi added countless colors of service to those values. He expressed happiness that young people are also enriching this journey with the many colors of service. During the interaction, these yatris shared their experiences with the Prime Minister. Mr. Modi asked the yatris to maintain a diary and record their experiences during the yatra. External Affairs Minister S. Jayashankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jayashankar was addressing the inaugural meeting of the Groups of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. The External Affairs Minister announced a new initiative by India and Liberia together to draw greater attention to the safety and security of ships and seafarers.
2: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier, MV Cape Dow, was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and marinas have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close ranks and deter such attacks. Colleagues,
1: External Affairs Minister S. Jayashankar is scheduled to deliver India's national statement during the afternoon session of the United Nations General Assembly General Debate at the UN headquarters in New York today. The External Affairs Minister is in New York leading the Indian delegation for the high-level week at the 81st session of UNGA. India has welcomed the commencement of the Quad at Sea Ship Observer Mission, announced at the 11th Quad Foreign Ministers Meeting in New Delhi on the 26th of May this year. External Affairs Ministry said in a social media post that India Coast Guard ship Shaunak has sailed from Chennai with sea riders from all four Quad countries. It said the mission strengthens maritime cooperation and interoperability, reflecting the Quad's shared commitment to a free and open Indo-Pacific. Meanwhile, Defence Ministry said in a statement that this marks an important step in advancing maritime cooperation and interoperability among Quad nations, India, Australia, Japan and the United States. Iran has offered to reopen the Strait of Hormuz and resume talks on its nuclear program in 7 days if the United States lifts its naval blockade of Iranian ports, waives sanctions on Iranian oil sales and observes a ceasefire that would include Lebanon. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi detailed the proposal to reporters outside the UN Security Council, saying it would also restart stalled talks with the US on Iran's nuclear power. The 7-day timeline will start as soon as the United States accepts this plan. Araghchi said initial steps would take about 4 to 5 days to complete and the strait would be open on the 6th day. Indian marathon runner Savan Barwal created history at the Asian Games 2026 by winning a silver medal in the men's marathon event, ending India's 44-year wait for a podium finish in the discipline. Barwal clocked 2 minutes 11.37 seconds to register a personal best and set a new national record in the men's marathon final. He finished behind Japan's Yamashita, who claimed the gold medal after pulling ahead. And that is the end of this news bulletin.
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम संगीतिका का। संगीतिका में आज आप सुनेंगे सुमंता मुखोपाध्याय के गाए भजन।

आप हैं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुति चैनल के साथ और ये समय है जी हाँ आपके अगले कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। पढ़ लीजिए, गीतों भरी गुड मॉर्निंग में हम कर रहे हैं आपको गुड मॉर्निंग। तो उठ जाइए, मुस्कुराइए, अपनी सुबह को थोड़ा और शानदार बनाइए, क्योंकि सुबह सिर्फ सूरज के निकलने का नाम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का नाम है। क्या हाल है आपका? चाय हो गई? अगर हो गई है तो बढ़िया, और अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, हमारी आवाज़ सुनते सुनते चाय भी तैयार हो जाएगी। आज का दिन कैसा रहेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए ये हमारे हाथ में ज़रूर है। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, कल की टेंशन को कल में ही रहने दीजिए और आज की सुबह को आज की तरह जिए, और खुद से कहिए आज कुछ अच्छा होने वाला है।

तो अब वक्त है उस गाने का जो आपकी सुबह में तो थोड़ा सा संगीत, थोड़ी सी मुस्कान और ढेर सारी एनर्जी भर देगा। तो आवाज बढ़ा दीजिए क्योंकि ये गाना है आपके नाम। लेकिन एक संदेश, सुबह का एक जो छोटा सा संदेश होता है ना, वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है कि हर दिन जिंदगी हमें एक खाली पन्ना देती है। अब उस पन्ने पर क्या लिखना है, ये फैसला हमारा है। तो आज अपने पन्ने पर शिकायत नहीं, उम्मीद लिखिए, डर नहीं, हिम्मत लिखिए, और सबसे जरूरी, अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर लिखिए।

तो चलिए अब आपसे बात करते हैं। हमें बताइए कि आपकी सुबह की सबसे पहली आदत क्या है? चाहे कॉफी, मॉर्निंग वॉक, न्यूज़ या फिर अलार्म बंद करके दोबारा सो जाना। अपना जवाब भेजिए हमें और हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com पर। जी हाँ, आप अपना संदेश भेज सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर अपनी दोस्त कुसुम के पास। और एक छोटी सी चुनौती मैं आपको देना चाहूंगी, छोटा सा चैलेंज, कि कम से कम एक व्यक्ति को दिल से धन्यवाद कहिए। शायद वो आपके घर का कोई सदस्य हो, आपका दोस्त हो, ऑफिस का कोई साथी हो, या वो इंसान जो रोज आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाते हैं। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा धन्यवाद किसी की पूरी सुबह बदल सकता है।

जी हाँ। और दोस्तों, सुबह की इस प्यारी सी मुलाकात का वक्त अब खत्म होने वाला है, लेकिन याद रखिए, सुबह कितनी खूबसूरत है ये मौसम तय नहीं करता, हमारा नजरिया तय करता है। मैं हूँ कुसुम लता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और आज के दिन को अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड डे और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स।

0: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और अब समय है हमारे देश विदेश की जानकारी। जी हाँ, हिंदी इंग्लिश और उर्दू में समाचार का। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौती

0: आएगी। चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं, इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वहीं सामाजिक सुरक्षा संहिता वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
2: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 4 धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जल भराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड

0: उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
2: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
3: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। 3 बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जल भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
4: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत

0: ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी, गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज गैप बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस इन इंडिया हैज नैरोड सिग्निफिकेंटली ओवर पास्ट 12 इयर्स। Heavy rain slashed several districts of Uttar Pradesh. Schools closed in many districts following alert for heavy downpour. Chhattisgarh government declares holiday today for all schools in the state due to continuous rain over past 2 days. India raises concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in Gulf, Red Sea and Black Sea. Savan Barwal wins silver medal in men's marathon event at Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. And D. Gukesh secures India's victory over Germany in 9th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 12 years, the gap between cities and villages in India has narrowed significantly. He highlighted the considerable improvement in rural infrastructure and noted that women across the country have also become increasingly self-reliant and economically empowered. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris traveling on the Yatra from Varanasi to Vadnagar under Seva Sankalp Abhiyan. He emphasized the importance of

उन्होंने समाजी खिदमत, समाजी इस्लाह और मुस्बत तब्दीली को उजागर किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत को हकीकी शक्ल उसी वक्त दी जा सकती है जब इसमें हर एक का ताउन और शिरकत हो। जनाब मोदी ने खासतौर पर कहा कि वडनगर ने उन्हें ऐसी अकदार अता की हैं जिनसे उनकी जिंदगी को एक शक्ल मिली, जबकि काशी ने नकदार को मुख्तलिफ किस्म के खिदमात के बेशुमार रंग अता किए। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि नौजवान

0: इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: यात्रियों ने बातचीत के दौरान वजीर आजम से अपने तजुर्बात का इजहार किया। जनाब मोदी ने यात्रियों से जोर देकर कहा कि वे एक डायरी रखें और इसमें यात्रा के अपने तजुर्बात लिखें। उत्तर प्रदेश में मुसलसल जारी शदीद बारिश के सबब कई अजला में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। शदीद बारिश के अलर्ट की वजह से कई अजला में 12वीं जमात तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। रियासत की राजधानी लखनऊ समेत कई अजला में तूफान की सूरत हाल के पेश नजर गुज़िश्ता 24 घंटे से शदीद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में रखना पड़ा है। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में कई हादसे भी पेश आए। रियासत के राहत रसानी के काम से मुतालिक कमिश्नर डॉ ऋषिकेश भास्कर यशवंत ने मौसमी सूरत हाल और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ अजला के जिला मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने अफसरान को फील्ड में सरगर्म रहने, मकामी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करने और किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत दी है। भारतीय महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक इसी तरह की मौसमी सूरत हाल आज और कल भी जारी रहेगी। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के लिए गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मगरबी उत्तर प्रदेश में भी 27 सितंबर तक गरज चमक के साथ शदीद बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ सरकार ने गुज़िश्ता 2 दिन से जारी बारिश की वजह से रियासत में आज सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। शदीद बारिश के सबब अंदरूनी अंद्रावती, महानदी और शिवनाथ समेत कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। कई शहरों और कस्बों के नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। वजीर आला विष्णु देवसाई ने सैलाब और पानी भरने की सूरत हाल के तनाजुर में बचाव और राहत रसानी की कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए जिला कलेक्टरों को चौकसी बरतने की हिदायत जारी की है। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि वो पानी की सतह में इजाफे या सैलाब के खतरे की सूरत हाल में लोगों को फौरी तौर पर खबरदार करें और जरूरत पड़ने पर उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। उत्तराखंड में आज और कल मुतअद्दिद मकामात पर शदीद से मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और सयाहों से इस दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की है। अलबत्ता चारधाम यात्रा फिलहाल जारी है। शदीद बारिश की सूरत हाल में यात्रियों को करीब तरीन महफूज मकाम पर रोका जा सकता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मौसमियात के महकमे के मुताबिक बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के कुछ मकामात पर आज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, टहरी, हरिद्वार और पौड़ी के कुछ इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश के तनाजुर में कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान मकामी लोगों और सयाहों से मौसम से मुतालिक एडवाइजरी पर अमल करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील की है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
1: उधर शिमाली छत्तीसगढ़ और मुलहका इलाकों में मौजूद हवा के कम दबाव का निजाम बदस्तूर उड़ीसा के मौसम को मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बेतरानी और जलाका दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं, जिससे नशेबी इलाकों में पानी भर गया है और शिमाली उड़ीसा में सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। मिट्टी के तोदे गिरने और पानी जमा होने के सबब सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। एहतियात के तौर पर भद्रक जिले के 7 ब्लॉकों में 399 स्कूलों समेत कटक, मलगानगिरी, नवरंगपुर और नौपाड़ा के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय रेलवेज ने गुजरात में भुज और बिहार में बरौनी के दरमियान एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस का आगाज किया है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। ये नई रेलगाड़ी गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के अहम मकामात को जोड़ते हुए 2532 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ये नई रेल सर्विस समाख्याली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, इज्जतनगर, पीलीभीत और दीगर अहम स्टेशनों समेत दीगर कमर्शियल अहमियत के हामिल स्टेशनों का अहाता करेगी। रेलवे की वजारत के मुताबिक भुज बरौनी सर्विस पीर, बुध और शनिचर को चलाई जाएगी, जबकि बरौनी भुज रेल खिदमात मंगल, जुमेरात और शनिचर को दस्तयाब होंगी। वजारत ने मजीद कहा है कि नई

0: रेल सर्विस मुल्क के मगरबी और मशरकी हिस्सों के दरमियान रेल के सफर का एक इजाफी मुतबादिल फराहम करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के दरमियान सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी फराहम करेगी। रेलवे की वजारत ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक तोसी दिए जाने की भी मंजूरी दी है। इस तोसी से झांसी, आगरा और मथुरा के दरमियान रेल के सफर में मजीद सहूलत फराहम होगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत आज पटना में मुतासरीन के हकूक से मुतालिक विक्टिम राइट्स मरकज का इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर कई दीगर सहूलियात का भी आगाज करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुल्क में अपनी तरह का पहला मुतासरीन के हकूक का मरकज कायम किया गया है, जो बिहार रियासती कानूनी खिदमात के महकमे के इहाते में कायम किया गया है। यह मरकज मुख्तलिफ जराइम के मुतासरीन को एक ही मकाम पर कानूनी हकूक और जरूरी मदद फराहम करेगा। यह मरकज पटना जिले में एक साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है, जो बाद में रियासत के सभी जिलों में कायम किया जाएगा। इस मौके पर मुखन्नस अफराद के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। पटना से सविता पारीख की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ रहा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने खलीज बहर अहमर और बहर असवद में तिजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार किए जाने वाले हमलों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमलों को अब मजीद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉ जयशंकर न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के दौरान जहाजरानी और जहाजियों की हिफाजत और सलामती पर दोस्तों के ग्रुप की पहली मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस सिलसिले में मजीद तवज्जो हासिल करने के लिए भारत और लाइबेरिया दोनों की तरफ से किए जाने वाले नए इकदाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत जहाजियों का एक बड़ा वसीला है और लाइबेरिया जहाजरानी की दुनिया की सबसे बड़ी रजिस्ट्री है। ये दोनों मुल्क समुद्र में हिफाजत और सलामती को मुस्तहकम बनाने के मकसद से यकजहत हुए हैं। इस कदम का मकसद समुद्र में मजीद हिफाजत के लिए एक मशावरती फ्रेमवर्क कायम करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि इस शोबे के तहत किए जाने वाले मुज़ाकरात में अहम फरीकीन की और ज्यादा अहमियत है। उन्होंने खलीज अमान में एंटीगुआ और बरबोदा के परचमबरदार एक बड़े जहाज MV केप दाओ पर हालिया हमले की तरफ इशारा किया, जिसमें एक भारतीय जहाजी की मौत हो गई थी। जनाब जयशंकर ने पनामा के परचमबरदार तेल टैंकर एल गया का भी जिक्र किया, जिस पर आबनाए हुरमुज में हमला किया गया था, जिसके नतीजे में भारतीय जहाज के अमले का एक रुकन लापता बताया गया था। वजीर खारजा ने MV ओमोरोफी और MV गोल्डर लियो समेत बहरे अस्वद में शहरी जहाजों पर किए गए हमलों की तरफ भी तवज्जो मबजूल कराई।
2: Just 2 days ago, an Antigua and Barbuda flagged bulk carrier MV Cape Dow was attacked in the Gulf of Oman. An Indian sailor lost his life. In the last few months, commercial shipping and marinas have been subjected to repeated attacks in the Gulf, the Red Sea and its vicinity. From the Black Sea to the Red Sea to the Gulf, attacks on civilian shipping have become a growing cause of concern. These actions that disrupt maritime commerce and cost innocent lives are simply indefensible. We are here to not just highlight this dangerous trend, but to urge the international community to close ranks and deter such attacks.
0: वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें आला सतह इजलास से खिताब करेंगे। यह इजलास एतमाद की बहाली, तब्दीली के अमल का मौसर इंतजाम, एक ऐसी अक़वामे मुत्तहिदा जो सबके लिए मौसर खिदमात अंजाम दे के मौजू के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। UN जनरल असेंबली अपने सभी 193 मेंबर ममालिक के सुदूर, वज़रा आज़म और आला नुमाइंदों को यकजा होने का मौका फराहम करता है, जो अहम बैनुल अक़वामी मामलात पर अपनी तरजीहात और मौक़िफ़ पेश करते हैं। भारतीय मैराथन रनर सावन बरवाल ने एशियन गेम 2026 में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने इस खेल में पोडियम फिनिश के भारत के 44 साल तवील इंतजार को खत्म किया। बरवाल ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का वक्त लेकर न सिर्फ जाती बेहतरीन स्कोर दर्ज किया, बल्कि मर्दों के मैराथन फाइनल में कौमी रिकॉर्ड भी बनाया। वो जापान के यामाशिता से पीछे रहे, जिन्होंने ये दौड़ जीतकर सोने का तमगा हासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आईची नागुआ में एशियाई खेलों में मर्दों के 10,000 मीटर दौड़ के मुकाबले में गुलवीर सिंह के चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि गुलवीर सिंह ने इससे कबल कांसे का तमगा जीतने के बाद एक बार फिर मुल्क को फख्र का एहसास दिलाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी ये कामयाबी पूरे भारत में लंबी दौड़ में हिस्सा लेने वाले नौजवान एथलीट्स के लिए बाईस से तरगीब होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने एशियाई खेलों 2026 में शॉटपुट में कांसे का तमगा जीतने पर मनप्रीत कौर को भी मुबारकबाद दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी असरंगेज कारकर्दगी की तारीफ की और मुस्तकबिल की कामयाबियों के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बेरानिका एलेंगोवन को अपने पहले एशियाई खेलों में ख्वातीन के पोल वॉल्ट में कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद पेश की। फीडे शतरंज ओलंपियाड में दिफाई आलमी क्लासिकल शतरंज चैंपियन डीगो केश ने फैसलाकुन जीत हासिल करते हुए भारत को मर्दों के ओपन जुमरे के नवे राउंड में गुज़िश्ता मुश्तरका सरफहरिस्त टीम जर्मनी के खिलाफ 2.5 और 1.5 से कामयाबी दिलाई। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शहजाद।
1: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने मेक इन इंडिया पहल के 12 साल मुकम्मल होने की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है। रोजनामा प्रताप ने इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी के इस बयान को खास तौर पर शाये किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पहल से मुल्क में पैदावार, सरमायाकारी और बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ है। रोजनामा प्रताप ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में मुनक़दा सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज की इख्तितामी तकरीब से वज़ीर तालीम प्रहलाद जोशी के खिताब को भी अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार सुर्खी है, जोशी ने अख्तरा को सेवा के जज्बे से जोड़कर हकीकी जिंदगी के मसाइल की शिनाख्त करने की अपील की। अखबारात ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के हाथों नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का इफ्तिताह किए जाने की खबर को भी नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने इस खबर की सुर्खी लगाई है, वजीर आजम की पॉलिसियों के सबब यूपी में सरमायाकारी का साजगार माहौल।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में शहरों और गांवों के दरमियान फर्क में पिछले 12 साल के दौरान खातिरख्वाह कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके सबब अलर्ट जारी किए जाने के बाद कई जिलों में स्कूल बंद रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले दो दिन से जारी बारिश की वजह से रियासत में आज सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। भारत ने खलीज, बहर अहमर और बहर अस्वद में तिजारती जहाजों और जहाजियों पर बार बार हमले किए जाने पर तशवीश जाहिर की है। सावन बरवाल ने जापान में एशियन गेम्स में मर्दों के मैराथन मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है। और डी गोकेश ने समरकंद में फीडे शतरंज ओलंपियाड के नवे राउंड में भारत को जर्मनी पर जीत दिलाई। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ और मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। समय है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो है स्वास्थ्य पत्रिका। लीजिए सुनते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के आज के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोतों, प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाने वाला एक वैश्विक अभियान है विश्व हृदय दिवस, जो दिल संबंधी स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। ये दिन जीवन शैली में बदलाव और सक्रिय स्वास्थ्य प्रबंधन के माध्यम से स्वस्थ दिल को बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। आइए सुनते हैं इस विषय पर एक विशेष भेंट वार्ता। डॉक्टर विजय गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड CTVS राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पूर्व प्रोफेसर एवं कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी डॉक्टर RML अस्पताल नई दिल्ली से बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। हम सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं वर्ल्ड हार्ट डे की और स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विजय गुप्ता। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
1: नमस्कार।
0: विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे, तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है।
1: देखिये, वर्ल्ड हार्ट डे या विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। इसका बेसिकली उद्देश्य तो यही है कि आम इंसान को या आम पब्लिक को जागरूक करना हृदय की बीमारी के बारे में, जिससे इसकी बीमारी से जो मृत्यु है उसका दर थोड़ा कम हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं, हृदय रोग एक इम्पॉर्टेंट कॉज है मोर्टेलिटी का, मृत्यु का। करीब 15 से 20 लाख लोग इस बीमारी से मरते हैं। करीब 50 करोड़ लोग पूरे विश्व में हृदय रोग से बीमार हैं, और आधी से ज्यादा जो इसकी मृत्यु का रेट है वो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। जो मेन कॉज है इसके अलग हैं। तो बेसिकली वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए बनाया जाता है कि आपको इससे जागरूक किया जाए।
0: तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 से 20 लाख लोग इससे जो है हर साल मरते हैं, और ये जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण आप समझते हैं?
1: देखिए, जो हार्ट डिजीज है वो बेसिकली कुछ कारणों से है, जैसे डायबिटीज है। डायबिटीज इटसेल्फ बहुत तेजी से हिंदुस्तान में फैल रहा है। हाइपरटेंशन है, करीब 30% पब्लिक पूरे इंडिया में हाइपरटेंशन से ग्रस्त है। इसके अलावा मोटापा, लोग बाग एक्सरसाइज नहीं करते, लोग बाग अपना वेट का ध्यान नहीं रखते, और स्मोकिंग, टेंशन, जंक फूड और पॉल्यूशन, ये सब कारण है जिसकी वजह से हृदय रोग बढ़ता जा रहा है और फैलता जा रहा है।
0: जी, ये और बताइए कि अपने हार्ट को अगर हेल्दी रखना है तो क्या रूटीन हमारा लिसनर फॉलो करे और क्या डाइट ले, ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना।
1: देखिए, हार्ट की बीमारियां जैसे मैंने कहा 50% प्रिवेंटेबल है। अगर आप अपना खाने पीने का ध्यान रखें, स्मोकिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको बंद करना बहुत जरूरी है, और मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग रनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। वेट लिफ्टिंग इतना फायदा नहीं करता, जबकि मॉर्निंग वॉक जो भी एरोबिक एक्सरसाइज है अगर आप उनको करेंगे तो आपका वेट भी कम रहेगा और हार्ट पे भी फायदा होगा। इसके अलावा अगर मोटापा है तो फैट बंद कर दीजिए, अगर डायबिटीज है तो उसको अपना शुगर का कंट्रोल बहुत जरूरी है, और जंक फूड बहुत अधिक कॉमन हो गया है तो उसको भी रोकना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका शुगर का लेवल कम रहे। इन्हीं सब चीजों से आप हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। योगा करना भी एक जरूरी है, दिमाग को शांत रखना, कंप्यूटर का, टीवी का देखना बहुत अधिक भी ठीक नहीं है। इन सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप हार्ट प्रॉब्लम कम होगी।
0: जी, और चेकअप कब कराना चाहिए?
1: देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो सिम्टम नहीं देती, जिसमें आपको मालूम नहीं चलता, बहुत आखिर में आगे मालूम चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर है। तो 40-45 साल में आपको डेफिनेटली आपको अपना ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, एक ECG करा के देख लेना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज है तो आपको जल्दी, हमने आजकल देखा है कि बहुत यंग एज में इंडिया में हार्ट डिजीज आ रही है। आदमी 30-35 साल के पेशेंट्स का हमको स्टेंट डालना पड़ जाता है या बाईपास करना पड़ जाता है। तो इसलिए अगर आपके फैमिली में कुछ हार्ट प्रॉब्लम है या आपको एंजाइना हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करिए, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। दूसरा, हमने देखा है कि लोग बाग इधर उधर से ओपिनियन लेते रहते, उससे अच्छा है आप डॉक्टर के पास जाइए। अपना ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो दवाई देता है। और दूसरी बात ये कि लोग बाग कुछ दिन दवाई खाते हैं फिर बंद कर देते, फिर अचानक ब्लड प्रेशर फिर शूट अप होता है, कोई आपको सिम्टम नहीं आता। दवाई अगर शुरू कर दी है तो BP देखना बहुत जरूरी है कि वो सेटल है या बढ़ गया है या कम हो गया है। हर साल तो आपको पूरा चेकअप करना चाहिए, मतलब हर महीने आपको BP दिखवाना चाहिए, और दवाई अचानक नहीं बंद करनी चाहिए। दवाई बंद करना ही सबसे खतरनाक होता है।
0: डॉक्टर साहब, क्या मैसेज रहेगा आकाशवाणी के माध्यम से उन सभी श्रोताओं को जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं?
1: देखिए, अगर आप अपना ध्यान रखें, एक मैं और राय देना चाहता हूं कि एक CPR चीज होती है कि आपको किसी को घर में या आस पड़ोस में किसी को अरेस्ट हो जाता है तो एक आम आदमी को भी मसाज करना आना चाहिए। हार्ट का मसाज कर ले तो हार्ट रिकवर हो जाता है। हार्ट एक बार रिकवर हो जाए और आप हॉस्पिटल पहुंच जाए तो बचने के पूरे चांस होते हैं। परंतु अगर आपको हार्ट अटैक हुआ घर में और आप हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए और आपके आस पड़ोस में किसी को कुछ आता ही नहीं कुछ बचाने के लिए, तो विदेशों में देखा गया है कि नॉर्मल पब्लिक को भी CPR करना आता है। तो हम लोगों को भी इस प्रक्रिया को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और किसी भी तरीके से हार्ट के पेशेंट को हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचाना चाहिए। और मेरी राय यही है कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए, अपना तो अपना, अपने हार्ट का ध्यान रखिए तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं।
0: ये आपने जो बाद में बताया CPR, तो इसको कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से इसकी प्रशिक्षण हमारा श्रोता ले?
1: ये ज्यादातर हॉस्पिटल्स में पब्लिक के लिए भी CPR ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम्स हैं। बाकी नेट पे आजकल इतना अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, किसी डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। और इसको सीखना मेरे ख्याल से काफी मोर्टेलिटी को, जो कई बार हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते मर जाते हैं, उनको बचाया जा सकता है। और आप जितना मर्जी वीक हार्ट आप हॉस्पिटल एक बार टाइम पे पहुंच जाए तो उसको बचाया जा सकता है।
0: वर्ल्ड हार्ट डे पर हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करी डॉक्टर विजय गुप्ता से, और बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू।
0: अभी आप विश्व हृदय दिवस पर विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। डॉक्टर विजय गुप्ता पूर्व प्रोफेसर एवं कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी डॉक्टर RML अस्पताल नई दिल्ली और प्रोफेसर एंड हेड सी

0: प्रीवियस राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से बात कर रही थी शालिनी मित्तल। श्रोताओं, हम आपको बता रहे हैं दिल के बारे में कुछ मजेदार तथ्य। औसत हृदय एक मुट्ठी के आकार का होता है। आपका दिल हर दिन लगभग 1,15,000 बार धड़कता है। आपका हृदय प्रतिदिन लगभग 2,000 गैलन रक्त पंप करता है। दिल शरीर से अलग हो जाने पर भी धड़कता रह सकता है। परी मक्खी, जो एक तरह की ततैया होती है, उसका दिल किसी भी जीवित प्राणी में सबसे छोटा माना जाता है। आपके दिल की धड़कन की आवाज दिल के वॉल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। टूटा हुआ दिल होना संभव है। इसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है और इसका लक्षण दिल के दौरे के समान हो सकता है। अंतर यह है कि दिल का दौरा हृदय रोग से होता है और टूटा हुआ हृदय सिंड्रोम भावात्मक या शारीरिक तनाव की घटना से तनाव हार्मोन की भीड़ के कारण होता है। यदि आप अपनी रक्त वाहिका प्रणाली को फैलाते हैं तो ये 60,000 मील से अधिक तक फैल जाएगी। हंसना आपके लिए अच्छा है। ये तनाव को कम करता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। आइए जानते हैं कैंसर के आयुर्वेदिक उपचार के विषय में। पिछले कई वर्षों से आयुर्वेद कैंसर अस्पताल के संचालक श्री अतुल सिंघल से।
1: पूरे विश्व में हार्ट अटैक के बाद सबसे ज्यादा मौतें आजकल कैंसर से हो रही हैं। ये सब देखते हुए हमने ये देखा आयुर्वेद से कैंसर का इलाज हो सकता है, इसमें कारगर इलाज है, इसलिए पंचगव्य और आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर के इलाज की तरफ हमने काम करना शुरू किया। आयुर्वेद में कैंसर का जो इलाज है वो न केवल सस्ता है बल्कि अच्छा भी है और बिल्कुल पीड़ा रहित है। देखिए, आयुर्वेद के अंदर कोई ऐसी जांच के विषय नहीं होते हैं। हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो जिनको आप वैद्य राज भी बोल सकते हैं, वैद्य हैं, वो नाड़ी देखकर या लक्षण देखकर बता देते हैं कि क्या बीमारी है। आजकल तो खासतौर से जब कोई मरीज आयुर्वेद में जाता है तो आमतौर पर टेस्ट करा कर जाता है, जिसके अंदर उसमें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी होती है, सीटी स्कैन भी होता है, अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, पेट स्कैन भी हो सकता है। और किसी के पास ये रिपोर्ट अगर नहीं है तो भी सिम्टम्स देख के पता चल जाता है कि भाई इस व्यक्ति को कर्क रोग है, अर्बुद रोग है, और उसका उस तरीके से उपचार शुरू किया जा सकता है। शरीर के अंदर कोई गांठ है, जिसे गीठा भी बोल सकते हैं, कोई रसोली है, कोई जख्म है जो ठीक नहीं हो पा रहा, या लगातार कहीं से खून निकल रहा है शरीर के किसी अंग से, रक्तस्राव जिसको बोलते हैं वो हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, लगातार वजन कम हो रहा है किसी का, या खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कैंसर का कारण हो सकते हैं। जब कोई मरीज आता है तो इन लक्षणों के आधार पर आयुर्वेदाचार्य उसका इलाज करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पंचगव्य और आयुर्वेद से हम लोग इलाज करते हैं, सबसे पहले ये जानना भी जरूरी है कि पंचगव्य क्या है। देशी गाय उसके उत्पाद से पंचगव्य तैयार होता है, जिसमें गाय का दूध, दही, घी, गोमय और गो अर्क, ये चीजों को एक अनुपात में मिलाया जाता है, पंचगव्य तैयार होता है। और पंचगव्य का जो महत्व है ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और हमारी जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसके अंदर भी इनका उल्लेख है। मैं यहाँ पर उल्लेख ये भी करना चाहूंगा, महाभारत काल का, श्री कृष्ण जी को जब स्तनपान कराया पूतना ने और उनके शरीर के अंदर विष फैल गया था पूतना का स्तनपान करने से, तो शास्त्रों में उल्लेख है कि श्री कृष्ण जी को माता यशोदा ने और गोपियों ने पंचगव्य से स्नान कराया और पंचगव्य का पान कराया और विष का प्रभाव जो है उनके शरीर में उससे खत्म हो गया। तो पंचगव्य के अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, क्योंकि जो कर्क रोग है, जो कैंसर है, ये भी एक तरीके से जहर का काम करता है, जहर जैसे शरीर के अंदर आ गया तो पंचगव्य से वो विष और वो जो उसके अंदर जहर आपके शरीर के अंदर है उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेदिक, जिसके अंदर योग प्राणायाम है, आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, जिसके अंदर आपका परहेज है, साथ में सत्संग है, हवन है, इन सब पद्धतियों का उपयोग समग्र चिकित्सा के अंदर किया जाता है। और आप फास्ट फूड आजकल खाते हैं, ये भी कैंसर का एक बड़ा कारण है। तो हम जीवन शैली जो बदलने पर जोर देते हैं कि कोई भी मरीज है वो अपनी जीवन शैली को बदले और जो भारतीय जीवन शैली है उसको अपनाए, सुबह जल्दी उठना, योग प्राणायाम करना, उसके बाद हवन करना, गाय के दूध का सेवन करना, तुलसा के पानी का सेवन करना और मौसमी सब्जियों का, मौसमी फलों का सेवन करना, तो ये सब चीजों को अगर आप अपनाएंगे तो कैंसर होगा ही नहीं, अगर है तो उसके उपचार में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को विश्व योग दिवस, जिसको पूरा विश्व अपनाने लगा है, ये तो हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। आप योग अगर करेंगे तो ये सब चीजें आवश्यक भी हैं और करनी चाहिए। इस बात के लिए हम लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि आपकी दिनचर्या है वो आपको बदलनी है। इसके अलावा आपको हम लेप करने के लिए कहते हैं, लेप होता है शरीर के अंदर, जो लेप होता है उसके अंदर आयुर्वेदिक दवाइयों का और गोमय को मिलाकर एक लेप तैयार किया जाता है जिसे

0: पर आपके कैंसर है उस पर अगर आप लेप करेंगे तो वो एक तरीके से रेडिएशन का काम करता है। श्यामा तुलसा का पानी उबालकर आप सादे पानी की बजाय अगर लगातार श्यामा तुलसी का पानी पियेंगे तो उसको आप एक कीमोथेरेपी से उसकी तुलना कर सकते हैं। जब हम हवन करते हैं तो हवन सामग्री ऐसी तैयार की जाती है जिसके अंदर जड़ी बूटियां डालते हैं जो कैंसर रोगियों के लिए फायदेमंद हैं, और ये जड़ी बूटियां जो कीटाणु हैं वातावरण के अंदर, जो विषाणु हैं जो नुकसानदायक हैं, उनको खत्म करती हैं इनके धुएं से, और जो अच्छे कीटाणु हैं, जो लाभप्रद जीवाणु हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। और जो हमने गाय के उत्पाद बताए, गाय को भी जो खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं उसके अंदर अश्वगंधा, तुलसा, हल्दी, ऐसी चीजें उसके अंदर दी जाती हैं जो कैंसर रोगियों के लिए फायदेमंद हैं। हम किसी को इस प्रकार की गारंटी नहीं देते हैं आयुर्वेद में कि आप 100% ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बात की हम गारंटी अवश्य देते हैं कि आपका जो जीवन है वो सुगम बन जाएगा और आपका जो समय है एक जिंदगी का वो बढ़ जाएगा। साथ में इसमें एक चीज और मैं जो जोड़ना चाहूंगा, हल्दी की जब हमने बात की, हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक तत्व होता है जो कैंसर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, कैंसर को रोकने के लिए भी और कैंसर रोगियों के लिए भी। उस हल्दी को आयुर्वेद ने एक रामबाण औषधि माना है, उसका इलाज करते हैं। अब जो ऑल इंडिया मेडिकल ने जो शोध किया है, एम्स ने जो शोध किया है, उसमें उन्होंने माना है कि हल्दी जो एक कारगर इलाज है, और पंचगव्य को भी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने इस बात को माना है कि पंचगव्य से भी इलाज में काफी कारगर है ये कैंसर के इलाज के अंदर। आयुर्वेद के जो सूत्र हैं वो यही हैं कि आप तन मन को स्वस्थ रखें, अपने आचार विचार को ठीक रखें, नियमित जीवन शैली को अपनाएं, चीजें जो हैं वो आपको किसी भी बीमारी से दूर रखने के लिए काफी कामयाब है। केवल कैंसर नहीं और तमाम तरीके की बीमारियां आयुर्वेद की इस पद्धति से, इन चीजों के सेवन से या जीवन शैली को अपनाने से ठीक हो सकती हैं। जितने भी शोध हुए हैं उसमें सामने है कि जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है किसी भी प्रकार से, वो बीड़ी, सिगरेट या गुटखे के शक्ल में हो सकता है, उसको कैंसर अवश्य होता है, और चाहे 10 साल लगे, 15 साल लगे, या यूं कहे कि जो तंबाकू है वो कैंसर का एक सबसे बड़े कारणों में से एक है। खासतौर से जो मुंह का कैंसर है, मुंह का, गले का जो, या फेफड़ों का कैंसर होता है, वो बीड़ी सिगरेट पीने वालों को होता है या गुटखा खाने वालों को होता है। जो हमने खान पान और जीवन शैली की बात की, अगर उसको बदल देंगे, इन सब चीजों को छोड़ देंगे, तो निश्चित तौर पर आप सर से बचे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आयुर्वेद से कैंसर का उपचार, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे श्री अतुल सिंघल से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस, जिसका उद्देश्य रेबीज उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जानवरों के काटने पर उपचार, आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। हमारे विशेषज्ञ हैं डायरेक्टर एवं प्रोफेसर सामुदायिक चिकित्सा विभाग सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर जुगल किशोर। आपसे बात कर रही हैं नीलू सूरी।
2: जब किसी इंसान को जानवर काटता है तो कहीं न कहीं शारीरिक घाव के साथ मानसिक घाव भी दे जाता है। शारीरिक घाव तो भर ही जाते हैं, लेकिन मानसिक घाव भरने में समय लग जाता है, और वो मानसिक घाव होते हैं डर और शंका के घाव। आज हम बात करेंगे कि भयानक बीमारी क्या हो सकती है अगर कोई जानवर इंसान को काट जाए। डॉक्टर साहब, पहले तो स्वागत करूंगी आपका।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, जानवरों की बात करें तो अगर सिटी में, जैसे दिल्ली जैसे शहर की बात करें, तो आपके अनुभव से कौन से ऐसे जानवर हैं जिनके काटने से हमें सचेत रहना चाहिए?
3: जो एनिमल बाइट है, या कहना चाहिए जानवरों के काटने में सबसे कॉमन जो बाइट है, वो हमारा डॉग बाइट है, या कुत्ते के काटने का बाइट सबसे ज्यादा है। कुत्ता और बिल्ली दोनों मिला लें तो 97% बाइट होते हैं। बाकी जो 2% होते हैं उसमें हमारे वाइल्ड एनिमल आते हैं, या फिर आप जंगल में गए तो वहां पर कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके संपर्क में आए और उन्होंने काटा। जो हमारे घरों के अंदर होते हैं उसमें जैसे कि चूहा है, या बर्ड्स हैं, या फिर हम स्क्वेरल्स होते हैं, इन पे भी काफी रहता है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश में बहुत तेजी से इसको नियंत्रण में करने के लिए जो गवर्नमेंट के और अदरवाइज बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे, और एक जो नेशनल प्रोग्राम है रेबीज का, वो चल रहा है, उसमें सभी को टीका लगता है, उसके हिसाब से हम कहेंगे कि काफी नियंत्रण में।
2: डॉक्टर, आपने अभी एक चीज का जिक्र किया कि रेबीज हो सकता है और उससे अक्सर देखा गया कि मौत भी हो जाती है, तो कैसे ये पहचाने कि ये जो है हमारे लिए एक भयानक स्थिति बन सकती है आने वाले समय में, और क्या हम सचेत हो जाए कि नहीं अब तो डॉक्टर के पास आना जरूरी है? पहले मैं अगर प्राथमिक उपचार की बात करूं, फर्स्ट एड की बात, खून निकल रहा है तो कैसे करें, और छोटी चोट के लिए क्या किया?
3: इसमें WHO ने बड़ा क्लियरली क्लासिफिकेशन किया हुआ है कि अगर कोई

0: ही जानवर जो वाइल्ड है उसके आप संपर्क में आते हैं तो वो एक तरह का खतरा बन जाता है आपका, उसने आपको लीक किया, या हमारे जो सड़कों पे कुत्ते होते हैं अगर उसने कोई लिकिंग या स्क्रैच किया या बाइट किया तो उनका कैटेगरी किया है। इंटैक्ट जो स्किन होती है, हमारी जो स्किन है उस पर रेबीज के वायरस अगर लगे तो वो अंदर नहीं घुसते, उसके लिए स्क्रैच होना चाहिए या बाइट होना चाहिए। तो अगर वो सिर्फ लीक करता है तो हम कैटेगरी वन कहते हैं, उस केस में भी हम उसका इलाज करेंगे। इलाज में ये आता है कि उसको अच्छे से धोना है ना, तो ये सबसे पहला काम है। और जो तीनों कैटेगरी है, तीन कैटेगरी इसमें डिवाइड की है, तो कैटेगरी वन के अंदर भी उसको पानी से और साबुन से उस जगह को बहुत अच्छे से धोना है, उसके बाद में कुछ नहीं करना है अगर आपकी स्किन बिल्कुल ठीक है। अगर स्किन के अंदर जैसे आपके मुंह के अंदर या आंख के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है अगर वहां पर उसका लीक हो जाता है तो डेफिनेटली वो कैटेगरी टू हो जाता है, या कोई स्क्रैच हुआ है, सिंपल स्क्रैच हुआ है तब भी वो कैटेगरी टू हो जाता है। कैटेगरी थ्री में वो आते हैं जिसमें खून निकलना शुरू हो जाए या फिर वो बहुत ज्यादा डीप काट ले, उसको हम कैटेगरी थ्री में डालते हैं। कैटेगरी थ्री में वो भी लोग आते हैं जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसे कि जिसको एड्स है या कोई बहुत दिनों से कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं चल रही है, तो कैटेगरी टू वाले लोग भी उसके कैटेगरी थ्री में बन जाते हैं क्योंकि उसमें खतरा हमेशा बना रहता है। तो कैटेगरी थ्री का जो इलाज है वो डिफरेंट है, कैटेगरी वन का अलग है और कैटेगरी टू का अलग है।
1: डॉक्टर साहब अगर इंजेक्शन की बात करें, आपने कहा इलाज सबके अलग है, अगर खरोंच लगी है तो क्या उसमें इंजेक्शन लगेंगे?
0: या ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें जो कैटेगरी टू है, कैटेगरी वन का बताया कि आपको सिंपल वॉश करना है, पानी और साबुन से वॉश करना है। कैटेगरी टू और थ्री के अंदर भी आपको सबसे पहला जो काम करना है, घर पे ही काम करना है कि सभी लोगों को जब भी इस तरह का कोई बाइट हो तो आपको पानी और साबुन से उसको 15 मिनट तक धोना है। उसके बाद में फिर उसके ऊपर हम बीटाडीन या अल्कोहल लगाते हैं, या आप वोकाडीन है या आयोडीन का कोई वह है, वो एंटीसेप्टिक होता है जो एंटीवायरल भी होता है, उससे वायरस मर जाते हैं। और ये भी है कि अगर वो वुंड काफी बड़ा है तो हम कभी भी उसको क्लोज नहीं करते, तो ये उस कंडीशन में आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है। कैटेगरी टू में और थ्री में कोशिश करते हैं कि कैटेगरी टू में हम रिच जो देते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में देते हैं, जितने भी हमारे वुंड्स होंगे उनमें हम रिक जरूर देंगे। उस रिक का मतलब है कि इम्यूनोग्लोबुलिन को हमें इनफिल्ट्रेट करना है, उसको वुंड के चारों तरफ डालना है, और अगर वो कम तादाद में हो और वुंड बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में उसको डाइल्यूट करके भी हम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब सीरम की बात आपने कही, तो डॉक्टर साहब सीरम कितने समय में लग जाना चाहिए? इसके साथ एक प्रश्न मेरे और दिमाग में चल रहा है, डॉक्टर साहब टीटी कई लोग नहीं भी लगवाते और कई बार लगवाते, तो कितना जरूरी है टीटी का लगवाना?
0: ये दो प्रश्न है, हम दोनों अलग अलग ले देते हैं। इसमें क्या है कि रिक को हम कितना पहले लगाएं, जितना जल्दी हो सके उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास में ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, फॉर्चुनेटली कई तरह की एंटीबॉडीज है, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी अब WHO ने अप्रूव कर दी है। जो गवर्नमेंट अप्रूव करता है वो हमारा ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन है या फिर इक्विन जो कि हमारा हॉर्स से बनता है। टेटनस का ऐसा है कि जब कभी भी कोई भी इंजरी होती है वहां पर हमारे चांसेस होते हैं कि टेटनस हो जाए, अगर वो वाइल्ड है या आपके वहां पर कोई रेत लग गया, मट्टी लग गई या कोई भी गंदी चीज लग गई तो आपको टेटनस के स्पोर वहां पर लग सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी टेटनस के इंजेक्शन हर 5 साल बाद लगते रहते हैं तो आपको ज्यादा चिंता की बात नहीं है, एक सिर्फ बूस्टर देने की जरूरत पड़ती है। और अगर पिछले आपके 3 साल के अंदर आपको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुका है तो आपको वॉश करने की जरूरत है, नेक्स्ट आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको स्क्रैच होता है, माइल्ड आपको इंजरी होती है, जब तक कि वो ज्यादा इंजरी ना हो जिसमें कि मसल्स निकल आती हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उस केस में आप बूस्टर लगा दें, और बूस्टर लगाने के बाद में फिर आप 5 साल के लिए फ्री हो जाते हैं, 5 साल के लिए आपको टेटनस टीटी नहीं देनी जरूरत
1: पड़ती। डॉक्टर साहब अगर पालतू जानवरों की बात करें और वो वैक्सीनेटेड है और अगर वो काट लेता है किसी को तो क्या एंटी रैबिस वैक्सीन या सीरम की जरूरत है?
0: मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि एनिमल बाइट में ये जो हमारा एक तो बर्ड का, स्क्वेरल का और रैट, इसमें अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया कि उससे रेबीज हुआ है, इसलिए रेबीज इस कंडीशन में आपको नहीं लगवाना है और आपको सिर्फ वॉश करना है और कुछ नहीं करना है, एंटीसेप्टिक कोई सोल्यूशन लगाइए बस खत्म, अगर जब तक कि रैट वाइल्ड ना हो।
1: डॉक्टर साहब कई बार ब्लीड बहुत ज्यादा कर जाता है, प्राथमिक उपचार क्या रहेगा
0: उस पे? ब्लीडिंग कहीं से भी होती है तो हम जैसे फर्स्ट एड होता है, हम उसको प्रेशर पॉइंट होते हैं, कम प्रेशर पॉइंट से उसको दबाने की कोशिश करते हैं, जब वो हॉस्पिटल जाएगा तो उसको वॉश करके और वो फिर कोशिश करेंगे कि ओपन सुचर बोलते हैं कि उसमें हम उसको बिल्कुल बंद नहीं करते बल्कि ब्लीडिंग्स को रोक के और फिर एक ओपन सुचर लगा देते हैं, क्योंकि रेबीज के अंदर हमें कभी भी मसल्स को या फिर स्किन को बिल्कुल टाइटली बाइंड नहीं करना चाहिए, इसलिए किसी भी तरह की बैंडेज, किसी भी तरह की पट्टियां उसमें अलाउड नहीं होती, उसको जितना ओपन रखा जाए उतना अच्छा है।
1: डॉक्टर साहब ये तो हुई पालतू जानवर। के बाद अक्सर देखा गया जो गली के कुत्ते अगर काट लेते हैं या कोई बिल्ली काट लेती है और उनके मुंह से भी पानी आ रहा होता है और कुछ इस तरह से उसकी हालत ऐसी होती है सीरियस, जैसे थोड़े दिन बाद वो मर भी जाता है, ऐसे केस में कितना सतर्क रहना चाहिए?
0: एक तो ये कि अगर कोई भी कुत्ता इस तरह से या कोई बिल्ली या कोई भी जानवर इस तरह से बिहेव करता है कि वो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, वो घबराया हुआ है, कोशिश करता अनप्रोवोक बाइट करने की कोशिश करता है, तो हमें मान लेना चाहिए कि ये डेंजर है और उससे तो डेफिनेटली अवॉइड करना है हमें। अगर वो काट लेता है तो हम मान के चलते हैं कि रेबीज होगा, तो इसलिए हमें पोस्ट रेबीज वैक्सीनेशन जैसे बताया कैटेगरी 1, 2, 3 लगाना ही लगाना है। लेकिन जो घर के कुत्ते काटते हैं उसमें अगर उसने वैक्सीन लगवाया हुआ है तो ये देखा गया कि वैक्सीन लगे हुए कुत्तों के अंदर भी जो हमारे पालतू होते हैं उसमें भी चांसेस होते हैं हमारे कि उसको रेबीज हो सकता है, इसलिए हमारे को वैक्सीन लगवाना होता है। ये जरूर करना चाहिए कि उस कुत्ते को हम ऑब्जर्व करते हैं, हमारे घर में है या आसपास में तो हमें पता है, तो हम देखते हैं कि जिसमें भी कभी सिम्टम शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि राल गिल रही है या फिर वो पागल सा घूम रहा है, तो ये देखा गया कि विद इन 8 डेज दिस टाइप ऑफ डॉग, इस तरह के कुत्ते या बिल्ली मर जाते हैं। तो अगर हम उन्हें 10 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, 10 दिन तक अगर वो जीवित रहता है तो हमारे को चिंता की जरूरत नहीं है। जो हम वैक्सीन शुरू किया है उसको हम प्री एक्सपोजर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें क्या है कि पोस्ट एक्सपोजर में हमारे को इंट्रामस्कुलर 5 इंजेक्शन देने होते हैं, एक 0 डोज जो कि जिस दिन भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो 0 हो जाती है, फिर 3rd दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 28वें दिन, ये इंट्रामस्कुलर है। लेकिन पूरे इंडिया में अब गवर्नमेंट इंट्राडर्मल दे रही है, इंट्राडर्मल में डोज कम लगती है और आपको सुरक्षा अच्छी मिलती है, तो उसी डोज में काफी लोगों को कवर कर सकते हैं। तो इसमें इंट्राडर्मल हम 1st डे देते हैं, 3rd डे देते हैं, 7th डे देते हैं।
1: डॉक्टर साहब, खाने के लिए अक्सर बोला गया है कि अगर जब ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो कुछ मांस जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए, अल्कोहल नहीं ले, इसमें कितनी सच्चाई और
0: बिल्कुल जरूरी है? आपने ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमें खाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिल्कुल संतुलित आहार लीजिए, कोई स्पेशल चीज नहीं लीजिए, लेकिन जो मना है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, अल्कोहल ना ले, बहुत किसी भी चीज का आपका ड्रग का सेवन कर रहे हैं वो ना ले। ये भी देखा गया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर ले रहे हैं तो उसको उस वक्त ना लें। तो जो चीजें हमारे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को कम करेंगी हमें चाहिए कि नहीं करें, और संतुलित आहार ही लेना होता है, इसमें कोई स्पेशल आपको न्यूट्रिशन खाने की जरूरत नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, मेरे मन में जहन में एक बार बार प्रश्न आ रहा है कि कहां हम सतर्क रहें कि कुत्ता या बिल्ली या जानवर हमें काटे ही ना, क्या हम कभी कभी गलत हो जाते हैं?
0: बिल्कुल, जैसे पेड़ होता है उसकी तरह आप खड़े हो जाएं, बिल्कुल मूव ना करें। अगर आप कुत्ते की वजह से या बिल्ली की वजह से गिर गए तो भी ये रहे कि आप उठने की कोशिश ना करें, आप बिल्कुल गिरे रहें। आप ये ध्यान रहें कि कभी भी कुत्ता या बिल्ली जब वो सो रहा हो या खा रहा हो आप बिल्कुल उसको ना टच करें, ये बहुत ही खतरनाक होता है कि वो उसी वक्त में ज्यादा अपने आप को इरिटेट समझता है और वो अटैक करता है। जो हमारे अपने पालतू कुत्ते भी हैं उसमें भी छोटे बच्चे हैं, उनको बिल्कुल अनसुपरवाइज ना छोड़ें, कोशिश ना करें कि उस पर ज्यादा आप प्यार उमड़े, बिकॉज वो जानवर है, जानवर डेफिनेटली वो हमसे भी डरता है, उसी डर में ही वो अपने आप को कोशिश करता है कि बचाने की वजह से वो काट लेता है।
1: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: जानवरों के काटने पर उपचार, अभी आप डॉक्टर जुगल किशोर, डायरेक्टर एवं प्रोफेसर, सामुदायिक चिकित्सा विभाग, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से ली गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रही थी नीलू सूरी। इसी के साथ हमारी आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यही समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन

के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम धरती आकाश।

0: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
1: साथियों, पर्यावरण में बदलाव आज केवल वैज्ञानिकों या पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता का ही विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा सीधा असर आम आदमी के जीवन पर भी दिखाई दे रहा है। बढ़ता तापमान, वायु जल प्रदूषण, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, जंगलों का कम होना, बदलती जीवन शैली, ये सभी हमारे स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, जल संसाधन और दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे समय में लोगों को जागरूक करने और सही जानकारी उपलब्ध कराने में मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जो सिटी है, जो शहर है और जो गांव है, कि उन दोनों जगहों पर अलग अलग असर होते हैं। इन सब का असर किस प्रकार होता है, मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, बदलते पर्यावरण को सुधारने के लिए उसको हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको अपने क्लाइमेट को अच्छी तरह से रख सकते हैं, बदलते पर्यावरण में हम अपने को किस प्रकार से सस्टेन कर सकते हैं, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में है क्लाइमेट एंड बिल्ट एनवायरमेंट एक्सपर्ट मीताक्षी सिरसी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: मीताक्षी जी। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि जो बदलते पर्यावरण है उसका आम आदमी के जीवन पर किस प्रकार का असर हो रहा है।
2: हमारे बदलते पर्यावरण का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है आम आदमी की जिंदगी में, वो है कि क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस है वो स्पेशली भारत में हीट और वाटर, पानी का बहुत ही इम्पैक्ट है। जो हीट जो हम बोल रहे हैं उसको हीट स्ट्रेस और हीट रिस्क बोलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज से जो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, तो हमारे टेम्परेचर जो तापमान जो है बढ़ रहे हैं, एंड उसके वजह से ह्यूमन हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है।
1: ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने लगा है, तो किस प्रकार का इम्पैक्ट होने लगा है?
2: सो हीट के वजह से हमारे बॉडीज को बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट होती है। जो अगर हम हीट के टेम्परेचर, जो हमारे तापमान होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर और दूसरा होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी में अपने आप को मैनेज करने की क्षमता है। तो अगर हम हॉट हो जाए तो हमारे पोर्स से पानी निकलता है और जो पानी है वो ड्राई होता है बिकॉज एयर है बाहर, और उससे हमारा बॉडी कूल होता है। जब हीट होता है एनवायरमेंट में और जब ज्यादा, जो मैं वेट बल्ब टेम्परेचर की बात कर रही थी, अगर वो होता है तो हमारे एयर में बहुत ज्यादा पानी होता है। जब पानी ज्यादा होता है तो हम, हमारी बॉडी की क्षमता जो है अपने आप को कूल करने की, वो कम हो जाती है और उससे हमारे ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। स्पेशली छोटे बच्चे जिनको कोई डिजीजेस या कोई प्रॉब्लम्स हो, और ओल्डर जनरेशन जो है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है जो ऑलरेडी जिनका रिस्क फैक्टर हो। और ऑल्सो ये भी है कि हमारे जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी इम्पैक्ट होती है।
1: जी मिताक्षी जी, जब भी हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, बदलते पर्यावरण की बात करते हैं, तो हम लोग हीट की बात करते हैं, और जब हीट की बात करते हैं तो हम शहर की ओर देखते हैं कि शहर में कुछ ज्यादा ही क्लाइमेट चेंज हो जाता है और उसका असर होता है। और जब हम शहर की जब बात करते हैं तो हमें दौड़ती भागती गाड़ियां नजर आती हैं ज्यादातर, और साथ साथ में कॉन्क्रीट के जंगल नजर आते हैं। आप इसमें भी एक्सपर्टाइज हैं और आपने बिल्डिंग क्लाइमेट चेंज के विषय में काफी स्टडी किया है, काफी अध्ययन किया है, तो ये आम जनजीवन यानी कि बिल्डिंग जो है किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करता है, ये बताएं।
2: सो बिल्डिंग्स का इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज पे वो टू फोल्ड होता है। वो एक चीज है कि हम जब बिल्डिंग बनाते हैं उसका इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरमेंट पे, और बिल्डिंग्स बनते हैं लोगों के लिए, तो बिल्डिंग का इम्पैक्ट होता है लोगों पे, तो वो इसीलिए मैं उसको टू फोल्ड बोलती हूँ। हम जब बिल्डिंग बनाते हैं, हम मटेरियल्स यूज करते हैं, हम जो जमीन है उस पे कॉन्क्रीट डालते हैं, वो इम्पैक्ट जो होता है अपने एनवायरमेंट पे वो है कि पानी सीप नहीं हो सकता है ग्राउंड के अंदर, या हम कॉन्क्रीट यूज करते हैं तो उसका कॉन्क्रीट बनाने में, सीमेंट बनाने में उसका कार्बन इम्पैक्ट होता है, या हम जो भी अपने बिल्डिंग्स में डालते हैं उन सब चीजों का एक इम्पैक्ट होता है जो ओवरऑल वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के टूवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है। दूसरी बात जो है, जो बिल्डिंग्स हमको, हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स के लिए नहीं बनाई जाती, बिल्डिंग्स लोगों के लिए बनाई जाती,
1: इंसान के लिए,
2: इंसान के लिए बनाई जाती है, तो इंसान को सपोर्ट करने की जरूरत होती है वो बिल्डिंग्स। तो वो जो एक चीज है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी चाहिए कि हमारी बिल्डिंग्स हम जो बना रहे हैं वो कैसे इंसानों को सपोर्ट कर रहे हैं।
1: ये तो बात हुई मैम कि इंसानों को किस प्रकार से बिल्डिंग सपोर्ट करे, तो बिल्डिंग को किस प्रकार से हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं।
2: बिल्डिंग को हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऐसे बनाएंगे कि जो हम बिल्डिंग एक जगह में डाल रहे हो, जो उसका पर्यावरण उसके अराउंड है और ओवरऑल वर्ल्ड पे जो इम्पैक्ट होता है उसको हम कैलकुलेट करके समझते हैं, और बहुत सारे ट्रेडिशनल विजडम भी है जिसके हिसाब से हम बिल्ड कर सकते हैं कि हमारा पानी, अगर बारिश पड़े तो हमारा पानी फ्लो ना हो जाए, हमारे वाटर टेबल के अंदर जाए, तो सोक करके वाटर टेबल के अंदर जाए, कि हमें पानी का लॉस ना हो। हम अगर जितना ज्यादा सीमेंट वगैरह डालते हैं उससे हीट बढ़ता है, क्योंकि हीट उसको सीमेंट और सर्टन टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं वो हीट को पकड़ के रखता है,
1: अच्छा अब्सॉर्ब कर लेता है,
2: अब्सॉर्ब कर लेता है। एंड उसको रिलीज करने पे जो हमारा नेचुरल साइकिल जो होते हैं कि दिन में हीट आता है और रात में हीट कम होता है, तो अब जब हमारे हीट वेव्स होते हैं तो जब दिन में हीट आता है वो हीट को अगर हमारी बिल्डिंग्स ने पकड़ के रखी हो, और रात में जब टाइम है कूलिंग का टाइम है नेचुरल साइकिल में, अगर हमारे बिल्डिंग्स और हमारी सिटीज हीट निकाले बाहर, तो कंटिन्यूअस हीट के हिसाब से वो ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। जो हमारी बिल्डिंग्स ना कूल हो तो हम भी कूल ना होंगे।
1: तो ये किस प्रकार से इम्पैक्ट हो सकता है, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं अपने हेल्थ पे?
2: बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट होते हैं, बट मेनली हीट स्ट्रेस जो है हमारे सारे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करती है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी को इम्पैक्ट करती है, हमारी काम करने की एबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर लोग ओपन एरिया में काम कर रहे हो, जो हीट जब बहुत ज्यादा हो जाता है, ट्रीज ना हो, पास में कोई ग्रीन एरिया ना हो, तो और बहुत सारा कॉन्क्रीट हो, रोड हो, सब कुछ हो, तो वो हीट हमें डायरेक्टली बॉडी पे इम्पैक्ट करती है और हमें डिजीजेस या हमें इल कर सकती है हमें।
1: तो हम ये देखते हैं कि जैसे अभी आपने बात की कि जो शहर है, जो अर्बन एरिया है, वहां पर बिल्डिंग्स की मात्रा, यानी कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, एक दूसरे से सटे हुए बिल्डिंग्स हैं, तो वहां पर एनवायरमेंट का असर ज्यादा हो सकता है। जबकि क्या हम कह सकते हैं कि क्योंकि गांव में जो बिल्डिंग्स हैं या तो फिर नहीं है या कम है या छोटे हैं, तो वहां पर असर कुछ अलग ही हो सकता है?
2: जी हाँ, तो एक चीज ये है कि हमारे गांव और एरियाज में जहां पे ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं बनी है, एक बात तो ये है कि ट्रेडिशनल हमारे जो बिल्डिंग मेथड्स थे वो बहुत कम यूज हो रहे हैं अभी। तो हमारे ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल्स में जैसे वो बड़ा वॉल हो या कोर्टयार्ड हो या विंडो के शेड्स हो या बहुत सारे पेड़ पौधे हो, तो वो अभी कम हो रहे हैं। वो जब वैसे डिजाइन होते थे तो अपने बिल्डिंग को कूल रखते थे।
1: यानी कि हम पुराने दौर में अगर लौट के जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि पुराने दौर में जो मिट्टी की दीवारें होती थी और ऊपर जो खपरेल होते थे, अब वो कुछ बदलने लगा है, जिसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज भी बहुत हुआ है।
2: जी, एक तरफ से क्लाइमेट चेंज है जो हीट बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ से हम ऐसे मटेरियल से बिल्डिंग्स बना रहे हैं हमारे गांव में भी जो वो इम्पैक्ट को कम नहीं कर पा रही है। जैसे हम मिट्टी के घर बनाए या खपरेल की रूफ बनाए,

0: तो हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, बट वो हम बना नहीं रहे हैं।
1: जी
0: और हमारा जो सोसाइटी है जो चेंज हुआ है, अभी ऐसा नहीं है कि हम सिटीज के अंदर भी मिट्टी के घर बना सकेंगे, मिट्टी
1: जी
0: के तो 20 फ्लोर के बिल्डिंग्स नहीं बन
1: नहीं बन
0: सकते।
1: सकते हैं।
0: तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या है जो टेक्नोलॉजी, जो डिजाइन की बातें हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, पहले वो अडॉप्ट करके हम उसको सिटीज में हो या रूरल एरिया में हो यूज करें। क्योंकि अभी हमारे जो रिस्क्स है, जो हमारे फ्लड्स हो रहे हैं, हमारे बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हमारे आ रहे हैं, जहाँ पे ग्लेशियर्स इंपैक्ट हो जाए या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे लैंड को बहुत डिस्टर्ब कर रहे
1: डिस्टर्ब कर
0: हैं।
1: रहे हैं जी।
0: जब ट्रेडिशनल वेज में हम बिल्ड करें तो लैंड डिस्टर्ब नहीं होता है उतना।
1: जी तो अक्सर शहरों में देखा जाता है कि हर घर में अब एसी लग गया है, एसी की वजह से हीट जनरेट होने लगा है, और साथ साथ में एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए हुए हैं, चाहे तो प्रदूषण की वजह से, यानी कि जल प्रदूषण की बात हो, चाहे तो वायु प्रदूषण की बात हो, चाहे तो मिट्टी प्रदूषण की बात ही क्यों ना हो, इससे काफी कुछ बदलाव हुआ है। तो इसको आप किस प्रकार से देखती हैं, इसमें इसको रिड्यूस करने के क्या उपाय हो सकते हैं?
0: हर घर में एसी इसीलिए लग रहे हैं आज क्योंकि हीट जो हमारी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बढ़ रही है, वो उसको हम 20 साल पहले बेयर कर सकते थे, अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बाहर का हीट और हमारा ह्यूमिडिटी, ये सब बहुत चेंजेस हो रहे हैं हमारे पर्यावरण में जो हमारे इमीडिएट कंट्रोल में नहीं है।
1: जी
0: दूसरी बात यह है कि एनर्जी जो यूज होती है बिल्डिंग्स में एसी वगैरह डालने के लिए, तो हमारा जो एनर्जी का डिमांड है इंडिया में, क्योंकि अभी इंडिया स्टिल बढ़ रहा है, अभी हम सिटीज बना रहे हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स और सिटीज बनाने की जरूरत भी है हमें। तो ये कहा जाता है कि जितने भी बिल्डिंग्स 2050 में रहेंगे इंडिया में, वो तो अभी बने ही नहीं है अभी। तो हम अगर सही दौर से शुरुआत करें बिल्डिंग्स बनाने में, कि जो इम्पैक्ट सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाएं और जो उनका क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कम हो, तो हम हीट को कम ट्रैप करेंगे। तो हम ऐसे डिजाइन बनाएं कि बिल्डिंग को जरूरत ही कम हो एसी यूज करने की। तो हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसे बिल्डिंग्स बनाएं कि बिना एसी के भी वो कूल रह सके, जब एसी की जरूरत हो तो एनर्जी जो एसी यूज करता है वो कम यूज करे, क्योंकि हम जो एनर्जी बनाते हैं वो हमारे हीट जनरेट कहीं और भी करता है और कार्बन जनरेट कहीं और भी करता है, जो
1: जी
0: इम्पैक्ट होता है उसका क्लाइमेट चेंज।
1: तो बिल्डिंग्स पे काफी ध्यान भी दे रहे हैं, हीट कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इसका असर आगे चल करके हो सकता है, इसके विषय में लोग काफी जागरूक हो भी गए हैं। तो आजकल देखा जा रहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए एक मीडिया की एक बड़ी भूमिका होती है, और इसमें मीडिया की बड़ी भूमिका में हम किस प्रकार से लोगों को जागरूक कर सकते हैं?
0: जब इंजीनियर, आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स और सिटीज बनाते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स साइंस है जो हम बहुत सालों के लिए पढ़ते हैं और समझ के उसको अप्लाई करते हैं
1: क्योंकि वहां
0: बनाने
1: पर जो जरूरत है, जो सुविधाएं हैं, उसी के अनुसार कोई बिल्डिंग बनाता है या फिर जो सुविधाएं लेता है, तो उसके अनुसार से तो हो नहीं सकता है हर चीज। अगर हम कहना चाहें कि सुविधा के अनुसार ही हम कर लें, या फिर सुविधा की जगह पर जो भी हमें फैसिलिटी मिल रही है उस फैसिलिटी का हम उपयोग कर रहे हैं, तो पता चलता है कि क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, क्या करना चाहिए?
0: सुविधा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, बट हमें उसकी वजह से हमें एनवायरमेंट को इम्पैक्ट ना करे वैसे स्टेप्स हमको लेने चाहिए।
1: जी।
0: तो पहली चीज तो है हमें अच्छे रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि बिल्डिंग्स कैसे डिजाइन होने चाहिए, कि कूलिंग एक्शन प्लान्स होती है सिटीज की, वो बनानी चाहिए सब सिटीज में। लोगों के जो चॉइसेस हैं उनको सिंपल चॉइसेस दे, कैसे वेंटिलेशन ज्यादा करना हो, कैसे हमारी बिल्डिंग्स को शेड करना हो, या हमारे रिफ्लेक्टिव पेंट्स होते हैं जो हीट को कम जाने देती हैं बिल्डिंग्स के अंदर, वो करना हो। वो ज्यादा एक्सपेंसिव या ऐसा कुछ नहीं होती है, वो करे तो हमारी एसी की भी यूज कम हो जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज हो जाए।
1: लेकिन मिताक्षी जी, यहाँ पर देखा गया है कि शहर में घर तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर एक दूसरे से ना जुड़े तो बिल्डिंग्स जो है दूर दूर बनेंगे, तो लोगों को कॉस्ट भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब यही बात अगर हम गाँव में करते हैं, तो गाँव में बिल्डिंग्स या घर जो है दूर दूर बने हुए हैं, वहां पर मटेरियल्स कुछ अलग टाइप के यूज कर रहे हैं, वहां की एनवायरमेंट अच्छी है, वहां की मिट्टी अच्छी है, वहां का जो पानी है वो अच्छा है, लेकिन शहर में ऐसी सुविधा नहीं है। सब चाहते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जगह में अपने बिल्डिंग्स बनाए, तो उस वहां पर वेंटिलेशन की जो सुविधा होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है।
0: तो वेंटिलेशन जो है वो हमारे एयर मूवमेंट के लिए होती है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी को भी कूल करने के
1: जी,
0: लिए
1: जी।
0: एयर को मूव कर रहे हैं, पर्यावरण में अगर कोई प्रदूषण हो उसको निकाल सकती है। यस, हमारे सिटी में प्रदूषण हो तो हमारे घर के अंदर भी आएगी,
1: जी।
0: तो इसीलिए हमारे विंडोज वगैरह बंद कर लेते हैं। तो वेंटिलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डिजाइन की।
1: हम देखते हैं कि घरों के बीच में, बिल्डिंग्स के बीच छोटी छोटी गलियां हैं जिसमें कि वेंटिलेशन यानी कि हवा का जो बहाव है, जो निकलना है या फिर आना है, वो नहीं हो पाता है।
0: अब मैं ऑनेस्टली बताऊं तो छोटी गलियां अच्छी होती है हीट में। हम डिजाइन अगर ऐसा करें कि तब बिल्डिंग्स अपने आप को शेड करती है, बट हमें छोटी गलियां अच्छी नहीं लगती क्योंकि हमें कार चलानी होती है।
1: जी।
0: तो सिटीज को हमें ऐसे हिसाब से डिजाइन करना होता है उसको, जैसे

0: अप्रोच करते हैं डिजाइन वो ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए। अभी हमारी सिटीज कार सेंट्रिक हो गई हैं, हमें ह्यूमन सेंट्रिक सिटीज बनानी चाहिए, ह्यूमंस को सपोर्ट करने के लिए सिटीज बनानी चाहिए। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जानी हो तो चलने के लिए जगह चाहिए, और चलना इम्पोर्टेंट है लोगों के हेल्थ के लिए। तो अगर हमारे पास चलने के लिए जगह नहीं हो और कार खरीदनी हो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए, तो सब लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बताती हूँ कि हमें ह्यूमन सेंट्रिक सिटीज के टूवर्ड्स जाना हो। बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और आइडियाज हैं जो साइंटिस्ट और थिंकर्स ने सोची है कि ऐसे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। वो सॉल्यूशंस को हमको इम्प्लीमेंट करना होता है, उसमें हमें रूल्स की जरूरत होती है, लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है, सबको साथ में आके डिसाइड करना होता है कि हम हमारे पर्यावरण को बेटर बनाएंगे।
1: मीताक्षी जी, मीडिया इसमें किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं, किस प्रकार का रोल अदा कर सकता है?
0: जो आम आदमी होते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो समझे कि क्या है जो सस्टेनेबल होता है और जो हम चॉइसेस कर रहे हैं जो ना ही तो बहुत सस्टेनेबल हो। जो कम्युनिटीज है उनका होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबको सपोर्ट करें, तो कूल सिटीज में कूल एरियाज करें, या हमारे लीडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि समझे कि किस कम्युनिटीज को कूल एरियाज की जरूरत हो, किसको इम्पैक्ट होता है। हमारे रूल बनाने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम समझे कि हमारे सिटीज में कैसे रूल्स होने चाहिए, बिल्डिंग के हिसाब से कितना ओपन स्पेस होना चाहिए, कितना ग्रीन स्पेस होना चाहिए। तो सबका एक डिफरेंट रोल होता है। साइंटिस्ट का ये रोल होता है कि समझे कैसे बेटर मटेरियल्स बनाए, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं उसको, जो हम मटेरियल्स जो रिसोर्सेस हमारी अर्थ में है उसको ना ज्यादा यूज करें, जितना कि अवेलेबल है जो हमारे अर्थ को सस्टेन करेगा उतना ही यूज करें।
1: तो साथियों, मीडिया यदि सही जानकारी को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचा दे तो पर्यावरण समस्याओं के साथ साथ उनके व्यवहारिक समाधान भी सामने रखे तो वो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी जन जागरूकता का माध्यम बन सकता है। मीताक्षी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतना कीमती वक्त दिया। आपने एक बिल्डिंग किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को प्रभावित कर सकता है, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है, इसके विषय में आपने बहुत सारी जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।
3: धरती आकाश, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

अते उन्हां दे रख रखा ते अरबा खरबा रुपए खर्च कर रहे ने। जेकर इस अन्यवा खर्चे नूं रोक के ए पैसा गरीबी, भुखमरी, सिख्या, सेहत सेवावां अते जलवायु परिवर्तन वर्गियां गंभीर समस्यावां नूं हल करन लई लगाया जावे तां साडी धरती सचमुच इक स्वर्ग बन सकदी ए। हथियारां दी बजाए मनुखी कल्याण ते निवेश करना समें दी मुख लोड़ ए। संयुक्त राष्ट्र अते कई अंतरराष्ट्रीय संस्थावां

0: कर रही ने। पर ए मुहिम ओदो तक सफल नहीं हो सकती जदो तक विश्व दे सारे परमाणु संपन्न देश अपनी जिम्मेवारी नू नहीं समझ दे अते एना परमाणु हथियारा नू त्यागन दी इच्छा शक्ति नहीं दिखाऊं दे। सिट्टे वजो परमाणु हथियारा दे मुकम्मल खात्मे लई अंतरराष्ट्रीय दिवस सानू शांति अहिंसा अते आपसी सहयोग दा मार्ग अपनाउन दा सुनेहा दिंदा है। ए दिन विश्व भर दे नागरिका नू एकजुट हो के परमाणु हथियारा दे खिलाफ आवाज बुलंद करन दी प्रेरणा दिंदा है। जेकर असी अपनी आउन वाली पीढ़ी नू एक सुरक्षित हरिया भरिया अते शांतिपूर्ण भविख देना चाहते हां तो सानू परमाणु हथियारा तो मुक्त संसार दी सृजना करनी पवेगी। इस चर्चा तो बाद श्रोतियो आओ हुण सुनदे हां वार्ता प्रवासी पंजाबी कविता दी अजोकी स्थिति। वार्ताकार ने डॉक्टर जसपाल कौर।
1: प्रवासी पंजाबी कविता दी वर्तमान स्थिति बारे विचार चर्चा छेड़न तो पहला हुण तक दी प्रवासी पंजाबी कविता दा सर्वेखण करना भी लाजमी जापदा है तां जो वर्तमान विच रचियां जा रही काव्य रचनावां दे नवीन रुझानां नूं तलाशिया जा सके। इस दे नाल नाल इस संबंधी जानकारी भी सहजे ही मिल जाएगी कि प्रवासी पंजाबी कविता अपने आगाज तो हुण तीक दा सफर तय कर दी किना काव सरोकारा नूं मुखातिब हुंदी है। प्रवासी पंजाबी कविता दा आगाज उंज तां गदर लहर दौरान ही बजदा है जदों गदरी बाबे हिंदुस्तान दी आजादी लई संघर्षशील हो आवाम नूं इस प्रति चेतन करदे इकजुटता दा पैगाम सिरजदे हन। पर इस सुनेहे दे नाल नाल ओ अपने प्रवासी अनुभवां नूं भी काव्यबद्ध करदे हन। नस्ली वितकरे दे शिकार ए भारती पंजाबी किवें नौकरी रिहायश लई औंकड़ां दा सामना करदे हन आदि इस मुढले दौर दी कविता दा मरकज बणदे हन। सही अर्थां विच प्रवासी पंजाबी कविता दा आगाज 1960 तों मगरों हुंदा है जदों बहुगिणती लोक पराइयां रहतलां ते जा वसदे हन। शुरू विच कमाई करके मुड़न दा सुफना लै के गए ए लोक हौली हौली उत्थे ही घर वसाउण दी सोच नाल जुड़न लगदे हन। नतीजन अपने बच्चियां नूं उत्थे ही सद के इन्हां उत्थे ही घर वसा लए। पर इस समें दौरान जिन्हां तलख हकीकतां नाल इन्हां दा वाह पैंदा है ओह इन्हां लई वंगारमई हो निबड़दा है। इस दौर दी कविता ज्यादा करके उदरेवा सभ्याचारक वित पीढ़ी वित आदि कारण पैदा होए भावां दी तर्जमानी करती है। नस्ली भेद कारण नौकरी रिहायश दा मसला ते घट पैसियां ते वध कम करना आदि इन्हां दीआं मूल समस्यावां बणदा है। यही कारण है कि इस दौर दे साहित जां काव्य नूं समस्या मूलक साहित दा ना दिता जांदा रहा है। प्रवासी पंजाबी कविता दे नवें सरोकारां बारे चर्चा करिए तां इह कहा जा सकदा है कि हुण इह अपने समस्या मूलक दौर तों अगां पुलांग पुटदी नवें काव्य सरोकारां नूं सिरजदी है जिथे विश्वीकरण दी स्पेस अंदर सूचना अते तकनोलॉजी दी क्रांति आउण नाल मानवी संबंधां उपर किहो जिहा प्रभाव पैंदा है नूं असीं रविंदर रवि दी कविता नवीं सदी दा नवां घर जां नवीं सदी दी नवीं ताश राहीं समझ सकदे हां। इस सदी दी नवीं पीढ़ी दे नवें लोक इक तों इक तक पहुंचदे विश्व हो गए हन। साइबर स्पेस विच सरपट दौड़दे होए भी अपने अंदर खलो गए हन। इंज कनेडा वासी रविंदर रवि वर्तमान विच तकनीकी विकास दी गल करदा अपने इस नज़म राही मानवी खड़ोत दी गल करदा तिखा व्यंग से रचदा है कि अज असी केहो जई तरक्की दे राह उपर नसे जा रहे हां जिथे मनुख मनुखता तो दूर अपनियां तो दूर रिश्तियां दा एक नवा नैटवर्क सिरज रहा है जो कि लोकाई नूं इकलता तनाव ते बेगानगी दे भाव नाल जोड़ रहा है। इंग्लैंड वासी दर्शन बुलंदवी अपने पुरखियां नाल संवाद रचाउंदा वर्तमान तक पहुंच करदा

0: ਇਹ ਸਨ ਨਰਿੰਦਰ ਚੰਚਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।
1: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 10 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इस सत्र का विषय विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने लाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को पुनर्जीवित करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने तथा शांति, गरिमा और समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना है। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमेरिकी कंपनियों

के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए H1B कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंक से पराजित किया है। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा। और जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक अपने नाम किया है। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यू से होगा। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर काबिज है। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। माय स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 10:10 और ठीक 20 सेकेंड, और अब वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद का। और श्रोताओं, मैं हूं आज आपके साथ अनुराधा। दोस्तों, संगीत सिर्फ सुरों का मेल नहीं होता, यह हमारी यादों, भावनाओं और रिश्तों से जुड़ा होता है। जी हाँ, तो भाई आप भी अपने फरमाइश के गीत हमें भेज सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पे। तो हमें रहेगा आपके मैसेजेस का इंतज़ार। और दोस्तों, कहते हैं ना कि कोई गीत हमें किसी खास इंसान की याद दिलाता है, तो कोई गीत बीते हुए खूबसूरत पलों को फिर से हमारे सामने ला देता है। जी हाँ, तो भाई ये पूरे 50 मिनट रहेगा पूरी तरह आपकी पसंद के नाम। जी हाँ, आपके पसंद के गीत सुनेंगे, आपकी फरमाइश और उन गीतों से जुड़ी कुछ प्यारी बातें। फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाएगा और दिल को भी छू जाएगा।

दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ गीत हम नहीं चुनते बल्कि कुछ गीत खुद हमें चुन लेते हैं। जैसे ही उनकी धुन कानों तक पहुंचती है, दिल कहता है अरे ये तो मेरा गीत है। चलिए फिलहाल देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन श्रोता जुड़ चुके हैं। जी हाँ, ये मैसेज आया है लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़।

जैसे कमलकांत मरावी, प्रमीला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज और ऋषभ का ये मैसेज आया है। जिला संभल ग्राम सिरसा से सचिन प्रजापति, कुश प्रजापति एवं पूरा प्रजापति परिवार हमारे कार्यक्रम को सुन रहा है। और अगला मैसेज है, शाहजी नगर देगलुरु जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और अगला मैसेज आया है, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय जी का, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये मैसेज आया है, लिखते हैं, होस्ट अनुराधा जी नमस्कार, किसी भी प्यारे से रोमांटिक गीत में मेरा मेल शामिल कर लीजिएगा, थैंक्स। तो भाई ये तो बिल्कुल, और ये गीत भी हमने जो आपको सुनवाया ताल फिल का, बहुत ही रोमांटिक सा गीत था। और ये भेजने वाले हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, नीना मस्कीन, डब्बू सम्राट चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये मैसेज है, लेवाई छत्तीसगढ़ से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, गुलाब दास मानिकपुरी जी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी। और अगला मैसेज आया है, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी का, ये लिखते हैं, प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन, सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए, खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच जिंदगी बिगाड़ देती है। वाह वाह वाह भाई, क्या अच्छी बात लिखकर भेजी है आपने। और अगला मैसेज आया है, पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश जी। चलिए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और सबकी फरमाइश पर सुनवाते हैं ये।

0: जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिप्पा, कपिल चिप्पा, ईशान और पूजा परिहार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ये मैसेज आया है स्टेशन रोड जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, इंजल भाटिया, सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया जी का। लिखते हैं अनुराधा जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ऑलवेज बी हैप्पी। अनुराधा जी, आप बहुत दिनों बाद आई हैं, आपका हार्दिक स्वागत जी। आपका भी हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और लिखते हैं पहला नगमा सुनकर दिल बाग बाग हो गया, शुक्रिया जी, शुक्रिया। और दोस्तों कहते हैं ना, जिंदगी में हर रिश्ते को बड़े बड़े तोहफों और ज़रूरत, मतलब तोहफों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी कोई पूछ ले, किसी का हाल चाल पूछ लेना या 2 मिनट बात कर लेना और बिना किसी वजह के मुस्कुरा देना ही रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। और जैसे हमारा और आपका रिश्ता, और देखिए इन्होंने लिखा भी है कि अनुराधा जी आप बहुत दिनों बाद आई हैं। तो भाई मैं आजकल थोड़ा मॉर्निंग के प्रोग्राम, गुड मॉर्निंग के गुड मॉर्निंग गीतों भरी जो है कार्यक्रम वो कर रही थी, तो कोई नहीं, मिलते रहेंगे कार्यक्रम में आगे आपके साथ। और अगला मैसेज आया है उत्तम नगर दिल्ली से, कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल का मैसेज आया है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले ये एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: ओह लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

और हमारे साथ अगले श्रोता जो जुड़े हुए हैं वो हैं सनावत से शेख मुसा मोहसिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव और SK पप्पी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम, बबीता, निखिल और तन्वी हमारे साथ कार्यक्रम सुन रही है। और 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। और व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। और भाई हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी जी, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से हमारे साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। वंडरफुल सॉन्ग सिलेक्शन अनुराधा जी, थैंक यू। अगला मैसेज आया है, आज हसर जयपुरी जी का जन्मदिन है, फिल्म सहरा अच्छा गीत सुनना चाह रहे हैं जी। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे। और ये भेजने वाले हैं मधु, किरण, पूनम अरोड़ा, भगवती सोलंकी, निशा जैन मेरठ से, अनारकली बाजार जगराओ पंजाब से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। और चलिए सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत।

हमारे साथ जुड़े हैं। ये मैसेज आया है हीरामन खिराड़े, सारिका खिराड़े, सोनाली, आदर्श, आर्यन और सभी खिराड़े परिवार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं महाराष्ट्र से। और अगला मैसेज है, प्रिंस परी इंद्रमोहन, मंजुला डोंगरे।

जी, दादाजी डिस्ट्रिक्ट शिवानी शिवनी मध्य प्रदेश से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरमान, इरफान और इसरार और नरगिस खातून हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और ये मैसेज आया है जीतू प्रसाद जी का, थाना रोड बक्सर से। जीत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता और आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता जी का ये मैसेज आया है। और ये इनका मैसेज हम ले चुके हैं। भाई मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगी कि कृपया करके बस एक ही बार मैसेज करें, बार बार मैसेज ना करें। और ये अगला मैसेज आया है, ये लिखते हैं, ये खैल बाजार पानीपत से नरेश कुमार, नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी जी हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं। चलिए सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, और जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।

जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। और मधु किरण, एक ओंकार सिंगल, रवि सिंह, रवि और रमेश चौहान का हमारे पास मैसेज आया है।

सप्तरंग श्रोता परिवार से कुभार गली श्रीरामपुर से अशोक दल्ले, सविता दल्ले, अनिकेत दल्ले, ऋषिकेश दल्ले, जीविका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने जी हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं।

0: और इस गीत के साथ ही आज का आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 11 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाओ पर हमले का उल्लेख कर रहे थे। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हुई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी उल्लेख किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थी। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमेरिकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल पेशेवरों की भर्ती के लिए H-1B कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं। इसके कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वरचंद विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। आज फाइनल में भारत ने मध्यांतर तक 22-16 की बढ़त बना ली थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। External Affairs Minister S. Jayashankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jayashankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. External Affairs Minister S. Jayashankar met his counterparts from Iran and Russia, discussing a range of bilateral issues and cooperation in the BRICS grouping and the Gulf conflict. Mr. Jayashankar said that he met Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York and discussed bilateral issues as well as a number of the ongoing issues. Mr. Jayashankar

इसी के साथ सबरस कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमंजरी। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत योगेश शंकर से शहनाई पर राग शुद्ध सारंग।

0: अभी आप सुन रहे थे योगेश शंकर से शहनाई पर राग शुद्ध सारंग। इसी के साथ ही यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही देर में यानी 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of 81st United Nations General Assembly in New York today. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of United Nations General Assembly in New York. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his counterparts from Iran and Russia, discussing a range of bilateral issues and cooperation in the BRICS grouping and the Gulf conflict. Mr. Jaishankar said that he met Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York and discussed bilateral issues as well as a number of ongoing issues. Mr. Jaishankar also met Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi on the margins of the high-level UN General Assembly session. They discussed the latest developments with regard to the Gulf conflict. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by AI, anticipate its consequences and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security, with an emphasis on maritime security, alongside Foreign Minister of Greece, George Garapatridis. During the event, Dr. Jaishankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India at the United Nations. He highlighted that the New Delhi Declaration emphasizes democratic access to AI resources, building secure and trustworthy systems, investing in human capabilities, and harnessing AI for economic growth and social good. Indian Railways has approved the introduction of a new tri-weekly Amrit Bharat Express between Bhuj in Gujarat and Baroni in Bihar. The new service will cover a distance of 2,532 kilometers, connecting important destinations across Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh and Bihar. The new service will have commercial stoppages at several important stations, including Samakhiali, Ahmedabad, Ratlam, Kota, Sawai Madhopur, Gangapur City, Bharatpur, Mathura, Hathras, Bareilly, Izzatnagar, Pilibhit, among others. Chief Justice of India, Justice Suryakant, will inaugurate the country's first Victim Rights Centre in Patna today. The first of its kind Victim Rights Centre in the country is established on the premises of the Bihar State Legal Service Authority. The centre will provide legal rights and essential assistance under one roof to victims of various crimes, including invisible victims. Prime Minister Narendra Modi today paid tribute to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Modi said Dr. Singh spent many years in public life and served the nation with dedication. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Keralam today. Mr. Shah will inaugurate women empowerment initiatives in the cooperative sector at Kundara at 2 p.m. Later, he will attend the Amrita Kirti Puraskar ceremony at Amritapuri. Union Home Minister Amit Shah today paid tribute to a great pillar of the Bengal Renaissance, Ishwar Chandra Vidyasagar, on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Shah said, "Vidyasagar made education a powerful medium of social change."

0: घर आंगन। नमस्कार, आज की घर आंगन कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त अमित कमाल।
1: और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजुला। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम एम 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर।
0: मंजुला, कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो गुजर तो जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा अमित। और कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कभी माँ का खाना, कभी पापा की डांट, कभी भाई बहन के साथ की गई शरारतें और कभी परिवार के साथ बिताई गई वो शामें जब किसी महंगे सामान का नहीं बस अपनों का साथ की जरूरत होती थी।
0: हाँ मंजुला, आज हम भले ही अपने काम में व्यस्त रहते हो, मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में खोए रहते हो, लेकिन दिल के किसी कोने में वो पुराने दिन आज भी जिंदा है। याद है जब घर में मेहमान आते थे तो पूरा घर जैसे खुशियों से भर जाता था। माँ रसोई में कुछ खास बनाने लगती थी और बच्चे इधर उधर भागते थे और बड़े बुजुर्ग अपनी पुरानी बातें सुनाते थे।
1: और सही कहा अमित, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी हम सभी को कभी कभी रुक कर उन छोटी छोटी खुशियों को याद करना चाहिए जो हमारे जीवन को खास बनाती। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे यादों की उसी खूबसूरत दुनिया में जहाँ खुशियां छोटी थी लेकिन दिल बहुत बड़ा था। तो अमित, आज का सवाल सेगमेंट में हम अपने श्रोताओं से क्या पूछने वाले हैं?
0: मंजुला, आज का सवाल है और शायद इसे सुनकर हमारे श्रोताओं को अपने घर की कोई पुरानी याद जरूर आ जाएगी। आज का सवाल है कि आपके अपने माता पिता से जुड़ी बचपन की कौन सी याद है जो आपको अभी तक याद है। हमें बताइए अपनी वो प्यारी सी याद, अपने संदेश भेजिए हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।
1: जी हाँ दोस्तों, हमें इंतजार रहेगा आपकी यादों का, आपके संदेशों का और उन खूबसूरत किस्सों का जिन्हें आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी छोटी सी याद किसी दूसरे श्रोता के चेहरे पर मुस्कान ले आए।

0: सुजाता फिल्म से ये गीत आपने सुना गीता दत्त और आशा जी की आवाज में। दोस्तों घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, और घर आंगन कार्यक्रम में हम आपके लिए एक सेगमेंट लेकर आते हैं डीज ऑफ द डे की, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन, जहां होती है आपके घर परिवार स्वास्थ्य और समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है विश्व गर्भ निरोध दिवस के बारे में, क्योंकि आज यही दिवस है।
1: बिल्कुल अमित, विश्व गर्भ निरोध दिवस हर वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य गर्भ निरोध और परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को अपने प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय लेने के लिए सही जानकारी उपलब्ध कराना है।
0: मंजुला, अनियोजित गर्भधारण को रोकने में सहायता मिलती है अगर व्यक्ति जागरूक हो जाते हैं, और इसकी सही जानकारी होने पर गर्भावस्था के बीच पर्याप्त अंतर रखने में महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार की तैयारी को ध्यान में रखा जा सकता है। और आज एक और डे है मंजुला, परमाणु हथियारों की पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
1: बिल्कुल, और जब हम परमाणु हथियारों की बात करते हैं तो दिल कांप जाता है। साल 1945 का वो अगस्त का महीना हिरोशिमा और नागासाकी पल भर में सब कुछ राख हो गया। आज का दिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को तोहफे में तबाही का डर देकर जाना चाहते हैं।
0: इस दिवस का जो उद्देश्य साफ है मंजुला, दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरे से बचाना। आज दुनिया भर में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। अगर कभी इनका इस्तेमाल हुआ तो विजेता कोई नहीं होगा, हार सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की होगी।
1: बिल्कुल सही कहा, हथियार कभी शांति नहीं ला सकते, वो सिर्फ अस्थायी डर पैदा करते हैं। वैसे भी अमित, हमारे देश की नीति ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित है।
0: और मंजुला, शांति तो भरोसे से आती है, बातचीत से आती है। सोचिए जो अरबों खरबों रुपए इन विनाशकारी हथियारों को बनाने और इन्हें संभालने में खर्च होते हैं, अगर वही पैसा दुनिया से गरीबी मिटाने, बच्चों को शिक्षा देने और बीमारियों के इलाज में लगाया जाए तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी।

0: अभी हम सुन रहे थे ये खूबसूरत सा गीत हरिहरन की आवाज में फिल्म लम्हे से। और सवाल एक बार फिर से बता दूं आज का कि आपकी अपने माता पिता से जुड़ी कौन सी याद है जो आपको अभी तक याद है। हमारा मेल आईडी fmgol@gmail.com।
1: तो दोस्तों हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। और जैसा कि मंजुला तुम जानती हो, घर आंगन कार्यक्रम में हम एक सफलता की कहानी लेकर आते हैं और आज हम एक ऐसी ही महिला की बात कर रहे हैं जिनके लिए कभी खेती परिवार के लिए सिर्फ पेट भरने का साधन थी। खेत में दिन रात मेहनत करने के बाद भी हाथ में उनके कुछ नहीं बचता था।
0: बिल्कुल अमित, आज हम बात कर रहे हैं कटिहार जिले के बरारी प्रखंड की सुजापुर पंचायत की रहने वाली रीना देवी की, जिन्होंने अपने काम से सभी को प्रेरणा दी है। पहले रीना देवी खेतों में दिन रात मेहनत करती पर सफलता ना मिलती, लेकिन आज वही रीना देवी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के साथ गाँव की दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने की राह दिखा रही है।
1: रीना देवी की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत सन 2014 में हुई। गांव में सीआरपी दीदी के माध्यम से उन्हें जीविका के बारे में जानकारी मिली। परिवार की शुरुआती तंगी के बावजूद उन्होंने माँ दुर्गा जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का फैसला किया। नियमित बैठकों में शामिल होकर उन्होंने बचत, ऋण और सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल की। समूह से जुड़ने के साथ उनके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, रीना देवी को जीविका समूह से जुड़ने के बाद बचत और ऋण की सुविधा मिली और अपने फैसले खुद लेने का हौसला आया और उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करने का मन बनाया। शुरुआत में उन्हें इस नई खेती करने का डर भी लगा, लेकिन आज उसी खेती ने उनकी जिंदगी बदल दी है।
1: मंजुला, शुरुआती दो सालों तक कोई आमदनी नहीं हुई। पौधों की देखभाल, मेहनत और इंतजार ही उनकी पूंजी थी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अगले साल तीसरे वर्ष में पहली बार करीब 4 क्विंटल ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन हुआ और बाजार में इसे बेचने पर अच्छी कीमत मिली। इसके बाद उनका जो

0: कॉन्फिडेंस था, भरोसा था, वो बढ़ने लगा। इससे उन्हें सालाना करीब 7 से 8 लाख रुपए की आमदनी हो रही है।
1: और अमित, नवंबर 2023 में उन्होंने समूह से 2 लाख रुपए ऋण लेकर 10 बीघा जमीन बटाई पर ली और मक्का की खेती भी शुरू की। क्या बात है, बेहतर तकनीक और मेहनत से करीब 400 क्विंटल मक्का का उत्पादन हुआ। ड्रैगन फ्रूट और मक्का से उनकी वार्षिक आय अब करीब 8 से 12 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है।
0: और दोस्तों, रीना देवी की सफलता हम सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है कि हमें नित नया कुछ करते रहना चाहिए, कभी न कभी सफलता जरूर मिलती है।

0: स्वतन फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में।
1: और दोस्तों, भारत को समझना हो तो सिर्फ उसके किले और महलों को मत देखिए, उसकी पुरानी बाजारों की गलियों में चलकर देखिए। वहाँ इतिहास आज भी सांस लेता है। त्योहारों का मौसम हो अमित और बाजारों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भारत के पुराने बाजार ये सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, ये हमारी सभ्यता के खुले हुए पन्ने हैं, जहाँ सदियों पुरानी कारीगरी, खान पान, पहनावा और त्योहारों की परंपराएं आज भी दिखाई देती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही खूबसूरत यात्रा पर निकलते हैं।
0: बिल्कुल चलते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के चांदनी चौक की। मुगल दौर में विकसित हुआ ये इलाका कभी व्यापार का बड़ा केंद्र था, आज भी इसकी गलियों में कपड़ों, आभूषणों, मसालों और मिठाइयों की दुनिया बसी है। त्योहारों के दिनों में इसकी रौनक जैसे कई पीढ़ियों की यादों को एक साथ रोशन कर देती है। अब चलते हैं वाराणसी। यहाँ की जो गलियां हैं मंजुला, अपने पुराने बाजार बनारसी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ठटेरी बाजार में पीतल और तांबे की बर्तनों की चमक हो या चौक की गलियों में साड़ियों और पारंपरिक सामान की दुनिया, यहाँ खरीदारी करते हुए लगता है जैसे शहर की संस्कृति को छू रहे हो।
1: क्या बात है। और राजस्थान की ओर बढ़ें तो जयपुर का जौहरी बाजार सामने आता है। गुलाबी शहर की पहचान बने इस बाजार में आभूषण, पारंपरिक वस्त्र और हस्तशिल्प की चमक दिखाई देती है। त्योहारों में सजी दुकानों के बीच चलना अपने आप में एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव। और फिर आता है अहमदाबाद का मानिक चौक। दिन में आभूषण और कपड़ों का व्यापार और रात में खाने पीने की चहल पहल। हैदराबाद का चार मीनार को हम कैसे भूल सकते हैं, वो भी बाजार कम दिलचस्प नहीं है। चार मीनार के पास जो ये बसा हुआ है ऐतिहासिक बाजार, अपनी रंगीन चूड़ियों और पारंपरिक आभूषणों के लिए जाना जाता है। त्योहारों और शादियों के मौसम में इसकी चमक देखते ही बनती है।
0: और चमक देखते ही बनती है दोस्तों। अब चलते हैं कोलकाता की ओर, और कोलकाता का बड़ा बाजार भी शहर के पुराने व्यापारिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण पहचान है। संकरी गलियां, लगातार चलती खरीद फरोख्त और अलग अलग समुदायों की व्यापारिक परंपराएं, ये इलाका आज भी महानगर की व्यवसायिक धड़कन का हिस्सा है। और मुंबई के
1: जो मार्केट्स
0: हैं, ये ऐतिहासिक बाजार कभी मुंबई के शुरुआती बड़े थोक और खुदरा बाजारों में शामिल थे। आज भी इसकी पुरानी इमारत और आसपास की चहल पहल शहर के बदलते इतिहास की कहानी कहती है मंजुला।
1: तो सोचिए दोस्तों, सदियां बदल गई, खरीदारी के तरीके बदल गए, अब हमारे पास ऑनलाइन बाजार है, घर बैठे सामान पहुंचता है। लेकिन इन पुराने बाजारों की खासियत ही कुछ और है। यहाँ सामान के साथ बातचीत मिलती है, दुकानों के साथ किस्से मिलते हैं, खुशबुओं के साथ यादें मिलती हैं, और हर त्योहार के साथ पुरानी परंपराएं फिर से जीवंत हो जाती। शायद इसलिए भारतीय बाजार कभी सिर्फ बाजार नहीं रहे, ये शहरों की याददाश्त है, कारीगरों की पहचान है और त्योहारों की वो रौनक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है।
0: तो इस फेस्टिव सीजन में जब भी किसी पुराने बाजार की गली से गुजरे, जरा ठहरिएगा, क्योंकि हो सकता है उस दुकान पर रखी कोई चीज, छोटी सी चीज, सिर्फ सामान ना हो, वो भारत की किसी पुरानी कहानी का एक टुकड़ा हो मंजुला।

0: मेरा साया फिल्म से ये गीत आपने सुना आशा जी की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं आप एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: और मेल्स आने शुरू हो गए हैं। नवीन भाटिया जी लिखते हैं, जो सवाल हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने लिखा है कि 10th क्लास में था तब मम्मी डैडी एग्जीबिशन में ले गए थे, आज भी याद है, काफी मजे आए थे। और दूसरा मेल कौन सा है?
0: दूसरा मेल हमारे पास आया है ख्याला से उमेश कुमार जी का। ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम जी, मुझे अपने पिताजी के वो दिन याद आते हैं जब वो हमारे लिए दशहरी आम लाते थे और माता जी किसी भी त्योहार पर कोई भी मीठी चीज बनाकर खिलाती थी।
1: और अंजना सफाया जी लिखती हैं, नमस्कार आप दोनों बहनों का, बचपन में मेरे पापा ये गीत गाकर हमें सुलाते थे, बहुत याद आती है जब ये गीत सुनती हूँ, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, बहुत ही खूबसूरत।
0: और हमारे पास आया है बल्ली मारान से नवाब अहमद भारती जी का मेल। ये लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तो परिवार एक जगह इकट्ठा रहता था और हमारे बड़े माता पिता हमें कहानियां सुनाया करते थे, ये इन्होंने लिखा है।
1: और डॉक्टर राजेश्वर राव जी ने लिखा है कि उनको याद आता है वो पल जब वो बाहर से लोग आते थे और उनकी मम्मा इनके लिए फूड प्रिपेयर कर रखती थी, और जो इन्होंने सिंगल बाइट के बारे में लिखा है कि शी वुड नॉट ईट अ सिंगल बाइट अंटिल वी हैव ऑल फिनिश्ड आवर मील, मतलब जब तक हम पूरा खाना नहीं खाते थे वो नहीं खाती थी। बहुत ही खूबसूरत मेल है आपका। और अगला
0: मेल हमारे पास सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी जी का आया है। इन्होंने सिर्फ लिखा है कि आदरणीय मंजुला जी और अमित जी, सादर प्रणाम, और ये शायद सवाल समझ नहीं पाए हैं तो बस इन्होंने ये लिखा है कि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके मेल्स का। आगे भी इसी तरह से अपने प्यार बरसाते रहिए और मेल्स लिखते रहिए।

0: कालिया फिल्म से ये गीत आपने सुना आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में, और आप क्या बात करने वाली हो मंजुला?
1: अमित, कभी सोचा है कि एक कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं होता है बल्कि पूरी कहानी कैसे बन सकता है? हमारी भारतीय कला परंपरा में कुछ ऐसी ही कहानी कहती है। कलमकारी, कपड़ों पर बनी बारीक आकृतियां, पेड़ पौधे फूल पशु पक्षी देवी देवताओं की कथाएं और हमारी संस्कृति से जुड़े प्रसंग, ये सब मिलकर कलमकारी को सिर्फ एक वस्त्र कला नहीं बल्कि चलते फिरते इतिहास का रूप दे देते हैं।
0: कहा जाता है मंजुला कि कलमकारी शब्द बना है कलम और कारी से, यानी कलम से की गई कारीगरी। इस कला में कपड़े पर चित्र और डिजाइन बनाने के लिए हाथ से काम किया जाता है और पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। कलमकारी की एक खास शैली है मछलीपट्टनम शैली, जिसका संबंध आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम से है। कभी ये इलाका समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। यहाँ तैयार किए गए खूबसूरत ब्लॉक प्रिंटेड कपड़े अपनी बारीक कारीगरी और सुंदर डिजाइनों के कारण दूर दूर तक पहचाने जाने लगे थे।
1: देखिए दोस्तों, अमित ने पूरी कहानी बता दी और सोचिए, सदियों पहले जब आज जैसी डिजिटल दुनिया नहीं थी, तब भारतीय कारीगरों के हाथों से बनी कला समुद्री रास्तों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही थी। और यही तो है हमारी हस्तकला की खूबसूरती। हमारी मिट्टी से निकली कला ने दुनिया को प्रभावित किया और भारतीय शिल्पकारों की मेहनत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। और आज भी कई कारीगर पारंपरिक तकनीकों, प्राकृतिक रंगों और पीढ़ियों से चली आ रही कला को संजोए हुए हैं। हर मोटिफ के पीछे एक कहानी और हर रंग के पीछे एक परंपरा।
0: हर रंग के पीछे एक परंपरा, लेकिन कलमकारी को समझने का सबसे खूबसूरत तरीका शायद यही है मंजुला, कि हम इसे सिर्फ संग्रहालयों यानी कि म्यूजियम्स या इतिहास की किताबों में ना देखें, इसे अपने घरों में जगह दें, अपने परिधानों में अपनाएं, अपने बच्चों को इसकी कहानियां सुनाएं
1: और कारीगरों के हाथों की इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। क्योंकि विरासत सिर्फ वो नहीं होती जिसे हम अतीत के रूप में याद करते हैं, विरासत वो होती है जिसे हम वर्तमान में जीते हैं। तो अगली बार जब किसी कलमकारी साड़ी, दुपट्टे, कुशन कवर या किसी खूबसूरत वस्त्र पर आपकी नजर पड़े, तो सिर्फ उसका रंग और डिजाइन मत देखिए, उसके पीछे जो छिपी है सदियों पुरानी कहानी को भी महसूस कीजिए।

0: दबाव की, जिसे शायद हम में से बहुत सी महिलाएं रोज महसूस करती है, परफेक्ट महिला बनने का दबाव। बचपन से ही हमें कई तरह के सांचे दिखाए जाते हैं, अच्छी लड़की ऐसी होती है, अच्छी पत्नी ऐसी होती है, अच्छी बहू को ऐसा करना चाहिए, अच्छी माँ को हर समय उपलब्ध रहना चाहिए, और अगर आप कामकाजी महिला हैं तो घर और दफ्तर दोनों जगह अपना 100% देना चाहिए, और अगर कभी आप थक जाएं तो लगता है जैसे हमने कुछ गलत कर दिया। सच तो ये है कि ऐसी कोई महिला है ही नहीं जो परफेक्ट है। हर महिला की अपनी परिस्थितियां हैं, अपने सपने हैं, अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी लड़ाइयां हैं। किसी दिन वो बेहद मजबूत होती है तो किसी दिन उसे किसी के कंधे की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल सही कहा मंजुला, किसी दिन उसे किसी के कंधे की जरूरत होती है, और कभी वह बहुत आत्मविश्वास से भरी होती है तो कभी खुद से ही सवाल करती है, और यही तो इंसान होना है। हमें महिलाओं को परफेक्ट बनने की नहीं, अपने फैसले लेने की आजादी चाहिए। उसे ये तय करना चाहिए कि उसके लिए सफलता का मतलब क्या है। हो सकता है किसी के लिए सफलता बड़ा पद हो, किसी के लिए अपना घर, किसी के लिए दुनिया घूमना, किसी के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, और किसी के लिए बस एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो खुद से खुश हो।
0: और याद रखिए, हर भूमिका निभाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और सबसे जरूरी, आप एक अच्छी इंसान हो सकती हैं बिना परफेक्ट हुए, क्योंकि आपकी जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हर किसी के दिए हुए पैमाने पर आपको पूरे अंक लाने हैं। और अमित, एक बात हमेशा याद रखिए, परफेक्ट बनने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी असली पहचान नहीं खो दें,
1: क्योंकि दुनिया को खुश करने के लिए जी गई जिंदगी शायद दुनिया को पसंद आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको भी पसंद आए। तो आज से खुद को एक नया वादा कीजिए, मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जीऊंगी, अपनी पसंद चुनूंगी, अपनी गलतियों से सीखूंगी और अपनी पहचान पर गर्व करूंगी।
0: थोड़ी अधूरी रहिए, थोड़ी अपनी रहिए, क्योंकि खूबसूरत वही जिंदगी है जिसमें किसी और की उम्मीदों से ज्यादा आपकी अपनी आवाज सुनाई दे।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म रजनीगंधा से।
1: दोस्तों अक्टूबर का महीना आने वाला है, उमस वाली गर्मी अब जाने वाली है और सुबह शाम की हल्की सी गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। ये मौसम इतना शानदार होता है कि चाय की चुस्की के साथ साथ दिल करता है कि घर की बालकनी या गार्डन में थोड़ा वक्त बिताया जाए। और सच कहूं मंजुला, मुझे तो अपने हाथों से मिट्टी को छूना और उसमें नए पौधे लगाना, इससे सुकून देने वाला एहसास कोई हो ही नहीं सकता।
0: अमित शायराना हो रही है और आज आपके इसी सुकून को थोड़ा और बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि अगले महीने यानी अक्टूबर के महीने में आपको अपने घर में कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए जो आने वाले हफ्तों में आपके घर को खुशबू और रंग दोनों से भर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फूलों के राजाओं की। अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आपका गार्डन किसी फूलों की नुमाइश जैसा दिखे, तो इस महीने में आप गेंदा यानी मैरीगोल्ड, पिटूनिया और गुलदाउदी के जो प्लांट्स हैं वो लगा सकते हैं। अक्टूबर इसकी नर्सरी तैयार करने या छोटे पौधे लगाने का सबसे परफेक्ट टाइम है।
1: दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि अमिता हमारे पास तो फूलों के लिए ज्यादा जगह नहीं है, तो कोई बात नहीं जनाब। अगर आपके पास सिर्फ एक छोटी सी बालकनी या खिड़की है तो आप इसमें इस आगामी महीने में फूलों के साथ साथ ताजी सब्जियां भी उगा सकते हैं। जी हाँ, अक्टूबर में बड़े गमलों के अंदर पालक, मेथी, धनिया और हरी मिर्च बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। सोचिए मंजुला, जब आपके खुद के लगाए पौधों से तोड़ी हुई ताजी मेथी के परांठे या धनिया की चटनी बनाएंगे तो स्वाद कितना बढ़ जाएगा।
0: तो दोस्तों फिर देर किस बात की, इस अक्टूबर अपने घर को दीजिए एक नया ग्रीन मेकओवर।

0: ये गीत आप सुन रहे हैं अमित कुमार की आवाज में, फिल्म है तेरी कसम, और स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है कि अब इजाजत लेने का वक्त हो चला है।
1: तो उम्मीद है आज की प्रस्तुति आप सबको पसंद आई होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मंजुला
0: अमित कमल को इजाजत।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरियों को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को फिर मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और शांति, गरिमा तथा समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्प विकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ओडिशा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी

0: कुछ नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में भी आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष कबड्डी के फाइनल में आज भारत और ईरान आमने सामने होंगे। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। भारतीय टीम ने 1763 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 1773 अंक लेकर खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक के साथ जीता, और जबकि कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea, and Black Sea. The minister said that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the UN General Assembly in New York. Dr. Jaishankar announced a new initiative by India and Liberia together to draw greater attention to the safety and security of ships and seafarers. He said these incidents could no longer be viewed as isolated cases, as commercial ships and sailors have faced a series of attacks across key waterways. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by artificial intelligence, anticipate its consequences, and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security, with an emphasis on maritime security, alongside Foreign Minister of Greece, George Yerapetridis. During the event, Dr. Jaishankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India. Foreign Secretary Vikram Misri has emphasized the urgency of UNSC reform to ensure greater voice and representation for developing countries. Delivering India's statement at the 50th annual meeting of foreign ministers on the Group of 77 at the 81st session of the UN General Assembly in New York, Mr. Misri called for collective efforts to enable the Global South to move from being rule takers to rule shapers. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Poorna Salila Srivastav, reaffirmed India's commitment to strengthening global pandemic preparedness and response at the UN high-level meeting in New York. Addressing the meeting, the Secretary outlined India's coordinated approach to pandemic prevention and response across government and society.

0: Rifle three positions team event at the Asian Games today. The trio of Tilotama Sen, Vidarsha Vinod and Ashi Choksey scored 1,763 points, finishing behind China, which secured gold with the Games record 1,773 points. Meanwhile, Indian squash players delivered a strong performance at the Asian Games, with teenager Anahat Singh reaching the women's singles final after a remarkable comeback against Japan's world number 6 Satoma Watanabe. With this, India stands on 12th position with a total of 27 medals, including 3 gold, 11 silver and 13 bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. श्रोताओ, इस वक्त दिन के 1:10 हुए हैं और आप प्रस्तुत है आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से. जी हाँ, इस कार्यक्रम में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. तो श्रोताओ, आज की जो हमारी फिल्म है वो है 1954 में महबूब खान द्वारा निर्मित और निर्देशित एक साहसी और क्लासिक हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे दिलीप कुमार, जो कि अमरनाथ के किरदार में थे, मधुबाला, अंजू रॉय के किरदार में, निम्मी, सोनिया के किरदार में और जयंत शंकर के किरदार में. इस फिल्म के गीत के गीतकार हैं शकीर बदायूनी और इस फिल्म के गीतों को शुरू से सजाया है नौशाद ने. तो आइए शुरुआत करते हैं इस फिल्म के गीतों को फिल्म से सुनवाती हुई. ये पहला गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में.

बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें वे इंटरेस्टिंग लगती है। अमर के पिता चाहते हैं कि वह शादी कर ले और उन्हें अंजू की फ़ोटो दिखाते हैं। अंजुन एक विदेशी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुकी होती है और वह इंसाफ और गरीबों की मदद करने में विश्वास करती है। वे और अमर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और जल्द ही उनकी सगाई हो जाती है।

श्रोताओं, अगर हम इस फिल्म की कथा की बात करें तो अमरनाथ एक जाने माने वकील अपने इंसाफ की समझ के लिए जाने जाते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात सोनिया से होती है। वह उनसे

श्रोताओं, आगे की जो कहानी है वह कुछ इस तरह है कि एक रात एक लोकल मेले में जाने के बाद सोनिया पर शंकर ने हमला किया। वे भागते भागते अमर के घर चली जाती है और तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। अकेले घर में जहां सोनिया शारीरिक उत्पीड़न का शिकार हो जाती है, बाद में अमर का जमीर उसे कचोटता है क्योंकि वह अपनी गलती छिपाने और अंजू से सगाई करने की कोशिश करता है। अंजू को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि बात क्या है।

जब अंजू को कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है, उसी बीच सोनिया को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। वह अपने बच्चे के पिता का नाम बताने से मना कर देती है और गांव वाले उसे गांव से निकाल देते हैं। शंकर किसी तरह ये पता लगा लेता है कि सोनिया के बच्चे का पिता कौन है और वह उससे बदला लेना चाहता है। आखिर में वह अपने ही हाथों मारा जाता है।

शंकर के मरने के बाद अमर पर उसकी हत्या का आरोप लगता है और उसके और सोनिया के बारे में सच्चाई सामने आ जाती है। गांव वाले आखिरकार सोनिया को मारना चाहते थे। अंजू उसका साथ देती है और उसकी रक्षा करती है। आखिर में वे ये पक्का करती है कि अमर ऑफिशियली सोनिया से शादी कर ले और अपना काम पूरा होने के बाद गांव छोड़ दे।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की जो फिल्म है वो है 1954 की फिल्म अमर। और इस कार्यक्रम में मैं आपकी होस्ट दीक्षा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं, और जो हमारे पास पहला संदेश है वो है सुदर्शन शाह का। इनके साथ हैं पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्रजी शाह। ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से। नितेश देवांगन हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्ण देवांगन छत्तीसगढ़ से। दिग्दर्शन कौर हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है कविता गौर। अगला जो संदेश है वो है पूनम गजनेजा का, जलालाबाद से, और इनके साथ है सुरेश गजनेजा। अजीत भावसर हमें लिखकर भेज रहे हैं, और जो अगला संदेश है वो है किशोर हिवराले का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं कल्याण मुंबई से, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले। गुरमीत सिंह हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ है मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से, अशोक कुमार सहगल। आर कुमार हमें लिखकर भेज रहे हैं मंडीखेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, फागुराम यादव हमें लिखकर भेज रहे हैं संबलपुर कांकेर से, इनके साथ हैं ज्योति यादव, उजस्वी यादव। अगला जो संदेश है वो है हरजिंदर शिंदा का, गांव नथाना पंजाब से, जसवीर जस्सी, सीता और गीता इनके साथ है। पिपरिया से हमें लिखकर भेज रहे हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता, शिप्रा गुप्ता। धर्मेंद्र छीपा में लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं कपिल छीपा, शान छीपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। संजय ढींगिया में लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक हमें लिखकर भेज रहे हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। सुर संगम रेडियो श्रोता संगम में लिखकर भेज रहे हैं गुजरात से अजीत भावसर, प्रेमिका भावसर, डोल राना हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नेहरू विहार दिल्ली से यशमीत, यशो हमें लिखकर भेजा निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। तो आइए श्रोताओं, इस फिल्म की अगली गीत की ओर बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोता, हमारे पास जो अगला संदेश है वो है देवशंकर तामुरिया का। इनके साथ है अजय देव, तुषार देव, डॉली बीबी, पूजा तामुरिया, राधिका, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं बालोद छत्तीसगढ़ से। अगला जो संदेश है वो है फारूक अली खान का है। मुकेश भट्टा हमें लिखकर भेज रहे हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से। रोजी डिकैस्ट्रो में लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है जोन डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो। और जो अगला संदेश है वो है भूषण खेरा का। इशक मोहम्मद हमें संदेश लिखकर भेजे, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, पानीपत से हमें लिखकर भेज रहे हैं, सोनीपत से हमें लिखकर भेज रहे हैं। रोहित वशिष्ठ, इनके साथ है प्रेम सागर, शुभलता, अमृतसर से हमें लिखकर भेज रहे हैं। तो श्रोताओं, आइए सुनवाती हूँ इस फिल्म का अगला गीत, और इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम भी यही समाप्त होगा।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे ठीक दिन के 1:10 पर। तब तक के लिए मुझे आनी दीक्षा को दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में यानी 1:40 पर आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला सुनो।

ब्रिटेन दीयां खास खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज न्यूयॉर्क च संयुक्त राष्ट्र महासभा दे 81वें उच्च पदरी सैशन नूं संबोधन करनगे। विदेश सकत्तर विक्रम मिसरी ने विकासशील देशां दी आवाज़ अते नुमाइंदगी नूं वधाउण लई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद च सुधार दी लोड़ ते जोर दित्ता। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय दे सकत्तर पुन्या सलीला श्रीवास्तव ने आलमी महामारी नाल नजिठण लई तैयारियां नूं मजबूत करन प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्याकांत अज पटना च देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन करनगे। एशियाई खेडों च भारत की महिला कबड्डी टीम ने ईरान नूं हरा के सोने का तमगा अपने नां कीता। हुण खबरां विस्थार दे नाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क विच 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा दे उच्च पदरी सैशन नूं संबोधन करनगे। इस सैशन दा विषय है विश्वास बहाल करना, तब्दीली दा प्रबंध, एक अजिहा संयुक्त राष्ट्र जो सारयां लई काम करे। महासभा विच संयुक्त राष्ट्र दे सारे 193 मैंबर देशां दे राष्ट्रपतियां, प्रधानमंत्रियां अते सीनियर नुमाइंदे शामिल ने जो अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दियां उत्ते अपने देशां दीयां तरजीहां अते नजरिए पेश करनगे। संयुक्त राष्ट्र मुताबक 81वां सैशन आलमी सहयोग नूं मुड़ सुरजीत करन, निरंतर विकास टीचियां नूं अगे वधाउण अते शांति, मान सम्मान ते समानता लई समूहक कार्रवाई नूं उत्साहित करन ते केंद्रित होवेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क च 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा तो अलावा रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव नाल मुलाकात की ते दुवल्ले मुद्दियां दे नाल नाल कई मौजूदा मुद्दियां ते चर्चा की। सैशन दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची नाल भी मुलाकात की। दोवां आगुआं ने खाड़ी संघर्ष नाल संबंधित ताजा घटनाक्रम उत्ते चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिसर, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, साउदी अरब, दक्षणी अफ्रीका ते संयुक्त अरब अमीरात रात वाले इस समूह का जिक्र करदे जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के आगुआ ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा भी की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई दीयां संभावनावां दा इस्तेमाल करन दे नाल नाल इस दे संभावी प्रभावां दा अनुमान लाउण अते जोखमां नूं घट करन दी लोड़ उत्ते जोर दित्ता है। ओह अज ग्रीस दे विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस दे नाल अंतरराष्ट्रीय शांति अते सुरक्षा दे संदर्भ च एआई खासकर समुद्री सुरक्षा विषय ते होए प्रोग्राम दी सह प्रधानगी कर रहे सन। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई अते समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र विच भारत दीयां अहम तरजीहां ने। उन्होंने कहा कि नवी दिल्ली ऐलाननामे विच एआई स्रोतां तक लोकतंत्रिक पहुंच, सुरक्षित अते भरोसेयोग प्रणालियां दे निर्माण, मनुखी समर्था च निवेश अते आर्थिक विकास ते समाजिक भलाई लई एआई दी वरतों ते जोर दित्ता गया है। विदेश सकत्तर विक्रम मिसरी ने विकासशील देशां दी आवाज़ अते नुमाइंदगी नूं वधाउण लई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद च सुधार दी लोड़ ते जोर दित्ता है। न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र महासभा दे 81वें सैशन दौरान G77 दे विदेश मंत्रियां दी 50वीं सालाना मीटिंग

0: तैयारियों नूं मजबूत करन लई भारत दी वचनबद्धता दोहराई है। उह न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र दी उच्च पदरी मीटिंग नूं संबोधन कर रहे सन। उन्हां कहा कि भारत ने महामारी ते होर सेहत एमरजेंसियां नाल निजिठण लई लैबोरेटरी नैटवर्क, एमरजेंसी तालमेल, सेहत कर्मियां, जरूरी दवाइयां ते मैडिकल सहूलतां दी समर्था वधाई है। उन्हां ने कोविड महामारी तों मिले तजर्बियां नूं लंबे समें दे निवेश, मजबूत संस्थागत समर्था ते लचकीले सेहत प्रबंधा विच बदलन ते जोर दिता। उन्हां दस्सिया कि कोविड महामारी दौरान भारत ने लगभग 30 करोड़ वैक्सीन दीआं खुराकां करीब 100 देशां अते संयुक्त राष्ट्र दीआं 2 संस्थावां नूं मुहैया करवाईआं। इस मौके विश्व सेहत संगठन दे महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस अदानोम घेब्रेयेसस ने विश्व महामारी नाल निजिठण दीआं तैयारियां नूं मजबूत करन लई फौरी कदम चुक्कण दा सद्दा दिता। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल @AIR RNU जलंधर, साडा फेसबुक पेज RNU-AIR जलंधर ते यूट्यूब ते साडा चैनल @AIR जलंधर। गृह मंत्री अमित शाह अज केरलम दा दौरा करनगे। श्री शाह अज दोपहर बाद कुंदरा च सहकारी खेतर दी महिला शक्तिकरण पहल कदमी दा उद्घाटन करनगे। ओह अमृतपुरी च अमृत कीर्ति पुरस्कार समारोह विच वी शामिल होणगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन वी भलके केरलम दा दौरा करनगे। भारत दे चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्या कांत अज पटना च देश दे पहले पीड़ित अधिकार केंद्र दा उद्घाटन करनगे। ओह इस मौके कई होर सहूलतां दी वी शुरुआत करनगे। पीड़ित अधिकार केंद्र वख-वख अपराधां दे पीड़तां नूं इक्को छत हेठां कानूनी अधिकार अते जरूरी सहायता प्रदान करेगा। इह पीड़तां नूं काउंसलिंग ते होर सहूलतां वी प्रदान करेगा। इह केंद्र पटना जिले च 1 साला अजमाइशी प्रोजैक्ट वजों शुरू कीता जा रहा है। पंजाब पुलिस ने अज फिरोजपुर च पुलिस नाके ते चैकिंग दौरान इंस्पैक्टर बलदेव सिंह नूं 3 किलो तो वध हैरोइन अते हथियारां समेत गिरफ्तार कीता है। फिरोजपुर दे SSP भुपिंदर सिंह ने मीडिया नूं दस्सिया कि पंजाब पुलिस दी काउंटर इंटैलीजेंस शाखा च तैनात इंस्पैक्टर नूं उस वलों लिजाई जा रही खेप बारे खुफिया सूत्रां तों मिली जानकारी दे आधार ते नाके ते रोकिया गया सी।
1: इंस्पेक्टर काउंटर इंटेलीजेंस बलदेव सिंह उन्हें गिरफ्तार किया तां उसके पासों तलाशी लैन ते उसकी गड्डी जिहड़ी i20 सी उहदे ते 3 किलो 350 ग्राम हैविन ते 6 पिस्टल समेत मैगजीन, 4 होर मैगजीन ते 17 जिंदा रौंद बरामद होए है। 1 i20 कार बरामद हुई है ते 6 मोबाइल फोन भी इत्थों बरामद होए है। सानू जिहड़ी इनफॉरमेशन मिली सी भी जिहड़ा इह मुलाजम हुंदे होए स्पैशली काउंटर इंटेलीजेंस हुंदे होए इह कर रहा ते साडी काउंटर इंटेलीजेंस भी ते साडीआं टीम्स जिहड़ीआं जिले दीआं टीम्स ने इस इमीजिएटली एक्ट करते हुए इस नूं काबू कीता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज साबका प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह नूं उन्हां दी जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट कीती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि डॉ सिंह ने अपने जनतक जीवन दौरान पूरी लगन नाल देश दी सेवा कीती। देश समाज सुधार लहर की एक महान शख्सियत ईश्वर चंद्र विद्यासागर नूं अज उन्हां दी 207वीं जन्म वरेगंढ ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। 26 सितंबर 1820 नूं पछमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले के बीर सिंघा च जन्मे विद्यासागर ने अपना जीवन सिक्ख्या ते समाजिक सुधार लई समर्पित कर दिता। ओह औरतां दी सिक्ख्या के मजबूत समर्थक सन अते हिंदू विधवा पुनर्विआह की मुहिम विच इतिहासक भूमिका निभाई, जिस कारण 1856 च हिंदू विधवा पुनर्विआह एक्ट लागू होया। उन्होंने बाल विआह ते बहु विआह के खिलाफ भी काम किया ते स्कूल स्थापित करन च मदद करके कुड़ियां दी सिक्ख्या नूं उत्साहित किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों च बारिश कारण जनजीवन प्रभावित होया है। भारी मीह की चेतावनी कारण कई जिलों च 12वीं जमात तक के स्कूल बंद किए गए ने। राज की राजधानी लखनऊ समेत कई जिले चक्रवर्ती हालात कारण पिछले 24 घंटों तो भारी मीह पै रहा है। उधर बिहार विच भी पिछले कुछ दिनों तो लगातार पै रही बारिश कारण जनजीवन प्रभावित होया है। मौसम विभाग ने अज बिहार के कई जिलों च भारी बारिश पैण की चेतावनी जारी की है। इसे दौरान मौसम विभाग ने अज अते भलके लई पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ के वख-वख हिस्सों च तेज हवावां चलण अते गरज चमक नाल भारी मीह पैण संबंधी येलो अलर्ट जारी किया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेडों च ईरान नूं हरा के सोने का तमगा जित लिया है। जापान च खेडे गए फाइनल मुकाबले च भारत ने ईरान नूं 37-34 नाल मात दित्ती। भारतीय टीम पूरे टूरनामेंट विच जेतू रही। एशियाई खेडा च भारत का तीजा सोने का तमगा है। इस तो पहला महिला क्रिकेट टीम अते 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम मुकाबले च सुरुचि सिंह अते कमलजीत सिंह दी जोड़ी ने सोने का तमगा जितया सी। भारत की मर्दा की कबड्डी टीम का अज फाइनल च

0: मुकाबला ईरान दे नाल होवेगा। मुख खबरां एक बार फिर सुन लो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र महासभा दे 81वें उच्च पदरी सैशन नूं संबोधन करनगे। विदेश सकत्तर विक्रम मिसरी ने विकासशील देशां दी आवाज़ अते नुमाइंदगी नूं वधाउण लई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच सुधार दी लोड़ ते जोर दित्ता है। सेहत अते परिवार भलाई मंत्रालय दे सकत्तर पुन्या सलीला श्रीवास्तव ने आलमी महामारी नाल निजिठण लई तैयारियां नूं मजबूत करन प्रति भारत दी वचनबद्धता दोहराई है। अते एशियाई खेडां च भारत दी महिला कबड्डी टीम ने ईरान नूं हरा के सोने दा तमगा अपने नां कीता। इस दे नाल ही साडा बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक खबरां दा बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीब रहमान। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मस्नूई ज़हानत के ज़रिए पैदा होने वाले इम्कानात तलाश करने की अपील की है। जनाब जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बैनुल अक़वामी अमन सलामती के पस मंज़र में मस्नूई ज़हानत के जोखिम से मुतालिक तकरीब की मुस्तरका सदारत की। जनाब जयशंकर आज दोपहर न्यूयॉर्क में 81वीं अक़वामी मुत्तहिदा जनरल असम्बली से ख़िताब करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने तरक्की पजीर मुल्कों के लिए ज्यादा नुमाइंदगी की वकालत करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में फौरी इस्लाहात की अपील की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। ईरान ने अमरीका की जानिब से शराइत मान लिए जाने की सूरत में 7 दिन के अंदर आबनाए हुरमुज दोबारा खोलने से मुतालिक तजवीज पेश की है। और एशियाई खेलों में खवातीन की भारतीय कबड्डी टीम ने ईरान को शिकस्त देते हुए सोने का तमगा जीता है। वहीं भारत ने खवातीन के निशानेबाजी और मर्दों के मैराथन में भी चांदी के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारिजा डॉक्टर जयशंकर ने मस्नूई जहानत AI से हासिल इम्कानात को बरूए कार लाने और उसके असरात का अंदाजा लगाने और खतरात को कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर मौसूफ ने एक प्रोग्राम के दौरान ये तबसरा किया। ये प्रोग्राम बहरी सलामती पर खसूसी तवज्जो के साथ बैनुल अक़वामी अमन सलामती के तनाजुर में AI के मौजू के तहत मुनाकिद किया गया, जिसकी सदारत वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर और यूनान के उनके हम मनसब जॉर्ज गेरा पेट्राइटस ने मुश्तरका तौर पर की। डॉक्टर जयशंकर ने अक़वामे मुत्तहिदा में इस बात का इयादा किया कि मस्नूई ज़हानत AI और बहरी सलामती भारत की अहम तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि नई दिल्ली एलामिये में इक्तसादी तरक्की और समाजी फलाह बहबूद के लिए AI के वसाइल की सभी के लिए दस्तियाबी, महफूज और काबिल एतमाद निज़ाम की तामीर, इंसानी सलाहियतों को परवान चढ़ाने और AI से इस्तफादा करने पर जोर दिया गया है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें आला सतही इजलास से खिताब करेंगे। यह इजलास एतमाद की बहाली, बदलाव का इंतजाम, सभी के लिए कार आमद अक़वामे मुत्तहिदा के तहत मुनाकिद किया जा रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली 193 रुकन ममालिक के सुदूर, उज़राए आज़म और सीनियर नुमाइंदों को यकजा करती है, जो अहम बैनुल अक़वामी मामलात पर अपनी तरजीहात और मौक़िफ़ वाज़ह करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके यौम पैदाइश के मौके पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि जनाब सिंह ने अवामी जिंदगी में बहुत साल गुजारे और मुल्क के लिए खुद को वक्फ करते हुए खिदमात अंजाम दी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज केरलम पहुंचेंगे। जनाब शाह आज दोपहर 2 बजे कुंद्रा में इमदाद बाहिमी के शोबे में खवातीन को बा इख्तियार बनाने वाली पहल का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद मरकजी वजीर दाखिला अमृता पुरी में अमृता कीर्ति पुरस्कार तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब सदर CP राधाकृष्णन कल केरलम का दौरा करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अजीम बंगाली समाजी मुसलह ईश्वर चंद विद्यासागर को आज उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। जनाब शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विद्यासागर ने तालीम को समाजी तब्दीली का ताकतवर जरिया बनाया। उन्होंने कहा कि बरना परिचय के जरिए विद्यासागर ने नए बंगाली हरूफ तहजी पेश किए और बेशुमार बच्चों के लिए तालीम

0: के दरवाजे खोले। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साइंसी और सनअती तहकीक की काउंसिल CSIR के 85वें योम तासीस के मौके पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और आसामी जबान में 5 नए मशहूर साइंसी जरीदों का आगाज किया है। इन जरीदों की अशात CSIR और साइंसी कम्युनिकेशन और पॉलिसी रिसर्च के भारतीय इदारे की जानिब से की गई है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात की फौरी जरूरत पर जोर दिया है ताकि इस इदारे में तरक्की पजीर मुल्कों की ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर G77 उजराए खारजा की 50वीं सालाना मीटिंग के मौके पर भारत की तरफ से बयान देते हुए जनाब मिस्री ने आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों में जाबतों पर अमलावरी करने वाले मुल्कों के बजाय जाबते तश्कील देने वाले मुल्क बनाने की खातिर मुश्तरका इकदामात पर जोर दिया है। उन्होंने अवाम पर मरकूज और तरक्की पर मबनी कसीर रुखी निजाम में G77 की मुसलसल अहमियत पर भी जोर दिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत में सेक्रेटरी पुनिया सलीला श्रीवास्तव ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की आला सतही मीटिंग में आलमी सतह पर वबा से निपटने की तैयारी और कार्रवाई के तई भारत के आजम का इरादा किया। मीटिंग से खताब करते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने हुकूमत और समाजी सतह पर वबाई बीमारियों की रोकथाम और कार्रवाई के तई भारत के मरबूत हिकमत अमली पर जोर दिया, जिसमें सेहत से मुतालिक मुमकिन तौर पर कई हंगामी हालात का इहाता किया गया है। उन्होंने सेहत से मुतालिक हंगामी सूरत हाल से मुअस्सर तौर पर निमटने के मकसद से निज़ाम को सहूलियात से आरस्ता करने की खातिर लेबोरेटरी नेटवर्क, हंगामी हालात में तालमेल, तिब्बी अफरादी कुव्वत और तिब्बी निगहदाश्त की सलाहियत के सिलसिले में भारत की तरफ से किए गए इकदामात के बारे में बताया। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं महकमे मौसमियात ने आज दिन में बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ मकामात पर दरमियानी दर्जे से शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। महकमे मौसमियात IMD ने आज कई जिलों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: बिहार के कई जिलों और पड़ोस में वाक़ नेपाल के कुछ इलाकों में 4 दिन से जारी बारिश के सबब रियासत के कोसी, गंडक और बागमती समेत कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। सुपौल में वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। ये कोसी दरिया में पानी की सतह में इजाफे के तनाजुर में एहतियाती इकदाम के तौर पर किया गया है। इस दौरान मगरबी चंपारण में गंडक दरिया में पानी की सतह में इजाफा होने से नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। गुज़श्ता 4 दिन के दौरान पटना और कई दीगर इलाकों में लगातार बारिश के सबब मामूलात जिंदगी भी मुतासिर हुए हैं। कई मकामात पर पानी भरने की इत्तला मिली है। पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए कौनैन हैदर।
0: छत्तीसगढ़ में बस्तर डिवीजन और वस्ती इलाकों समेत रियासत के कई अजला में 3 दिन से जारी शदीद बारिश के सबब दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। इंद्रावती दरिया खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर बह रहा है। धमतरी जिले में गंगरेल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। ईरान ने पेशकश की है कि अगर अमेरिका ईरान की बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दे, ईरान की तेल की फरोख्त पर से बंदिशें हटा ले और लेबनान समेत जंगबंदी पर अमल करे तो वो अबनाए हुर्मुस को दोबारा खोल देगा और 7 दिन के अंदर अंदर अपने न्यूक्लियाई प्रोग्राम पर बातचीत दोबारा शुरू कर देगा। जापान के नागोया में जारी एशियाई खेलों में कबड्डी में खवातीन की भारतीय टीम ने सनसनीखेज फाइनल मैच में आज ईरान को 34 के मुकाबले 37 से शिकस्त दी। इस तरह भारत ने अपना 3रा सोने का तमगा हासिल किया। इससे पहले भारतीय मैराथन खिलाड़ी सामन बारवाल ने मर्दों के मैराथन जुमरे में 44 बरस के वक्फे के बाद भारत के लिए चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की। भारत ने खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम मुकाबलों में आज चांदी का तमगा जीता। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की 3 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम ने 1763 पॉइंट के साथ ये कारनामा अंजाम दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल 2026 में मर्दों के मैराथन में चांदी का तमगा जीतने पर सावन बारवाल को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने स्क्वाश में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नौम्र भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने आलमी नंबर 6 जापान की सातोमी वातानाबा के खिलाफ मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए फाइनल में दाखिला हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मसनूई जहानत के जरिए पैदा होने वाले इम्कानात तलाश करने की अपील की है। जनाब जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी अमन सलामती के पस मंजर में मसनूई जहानत के जोखिम से मुतालिक तकरीब की मुश्तरक सदारत की। जनाब जयशंकर आज दोपहर न्यूयॉर्क में 81 में अक्वामी मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खताब करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने तरक्की पदीर मुल्कों के लिए ज्यादा नुमाइंदगी की वकालत करते हुए अक्वामी मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में फौरी इस्लाहात की अपील की है। भारतीय महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिड डे न्यूज। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jayashankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by AI, anticipate its consequences and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security with an emphasis on maritime security alongside Foreign Minister of Greece George Yerapetrates. During the event, Dr. Jayashankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India at the United Nations. He highlighted that the New Delhi Declaration emphasizes democratic access to AI resources, building secure and trustworthy systems, investing in human capabilities, and harnessing AI for economic growth and social good. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. Foreign Secretary Vikram Misri has emphasized the urgency of UNSC reform to ensure greater voice and representation for developing countries. Delivering India's statement at the 50th annual meeting of foreign ministers of the Group of 77 or G77 at the 81st session of the UN General Assembly in New York, Mr. Misri called for a collective effort to enable the Global South to move from being rule takers to rule shapers. He also underscored the continued relevance of the G77 in advancing people-centric and development-oriented multilateralism. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare Punya Salila Srivastava reaffirmed India's commitment to strengthening global pandemic preparedness and response at the UN high-level meeting in New York. Addressing the meeting, the Secretary outlined India's coordinated approach to pandemic prevention and response across government and society, which covers a wide range of potential health emergencies. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues today. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in this special series, Seva Sankalp Abhiyan, we bring you an instance of how this vision has been translated

0: wait for a podium finish in the discipline, clocking 2 hours, 11 minutes and 37 seconds. His performance marked a personal best and a new national record. In shooting, Tilottama Sen, Vidarsaki Vinod and Ashi Chokse secured silver in the women's 50-meter rifle 3-position team event, scoring 1,763 points. In mixed double squash, Joshna Chinnappa and Vilvan Senthil Kumar won bronze. With these 4 medals, India are currently placed 12th in the medal standings and its overall tally has reached 27 with 3 gold, 11 silver and 13 bronze. Kaumudi Parekh, Akashwani News, Delhi.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jaishankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर

0: देखते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
1: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुंच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जन स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी

0: हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के एक क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
3: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए। अमरीका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई।

भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, किसी अभिनेता को सदाबहार कहना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हिंदी सिनेमा में एक नाम ऐसा है जिसके साथ ये शब्द जैसे खुद ब खुद जुड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं देवानंद साहब की। एक ऐसा चेहरा जिसमें जवानी की चमक थी, एक ऐसा अंदाज जिसकी नकल कईयों ने की, और एक ऐसी आवाज जिसमें रफ्तार थी, एक ऐसा दिल जो हमेशा आने वाले कल के सपने देखता। आज एक ही कलाकार में सफर उस कलाकार की जिसने 6 दशकों से ज्यादा लंबे समय तक फिल्मी जीवन में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, अभिनेता के साथ निर्माता, निर्देशक, लेखक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। तो आइए देव साहब की जिंदगी को उनके गीतों के साथ याद करते हैं।

श्रोताओं, देवानंद साहब का सफर शुरू हुआ 1946 में। फिल्म थी हम एक हैं, लेकिन मंजिल इतनी आसान नहीं थी।

एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता देवानंद साहब की। श्रोताओं, 50 का दशक आया तो देवानंद साहब के नाम के साथ एक नया अंदाज जुड़ चुका था। टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, कालापानी, एक के बाद एक यादगार फिल्में। और देवानंद साहब सिर्फ अभिनय नहीं कर रहे थे, वो एक नया स्क्रीन परसोना भी गढ़ रहे थे। तेज संवाद, हल्की सी झुकी हुई चाल, गर्दन हिलाने का एक खास अंदाज और चेहरे पर हमेशा मौजूद वो आत्मविश्वास।

श्रोताओं, देवानंद साहब का रोमांटिक अंदाज दर्शकों के दिलों में जगह बना चुका था। लेकिन देव साहब की कहानी सिर्फ रोमांस की कहानी नहीं है, वो जोखिम लेने वाले कलाकार भी थे। 1949 में उन्होंने अपने भाई चेतन आनंद और विजय आनंद के साथ नवकेतन की स्थापना की और आगे चलकर यही बैनर उनके कई महत्वपूर्ण सिनेमाई कार्यक्रमों का यानी कि प्रयोगों का माध्यम बना। और फिर आया 1961।

श्रोताओं, फिल्म हम दोनों में देव साहब ने अभिनय के साथ निर्माण की जिम्मेदारियां भी संभाली। साधना के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी और वो भावुक प्रेम कहानी सबने मिलकर देव साहब की रोमांटिक छवि को और मजबूत किया। लेकिन देव साहब यहीं रुकने वाले नहीं थे, इसके लिए उन्होंने सिनेमा को एक नए अंदाज में देखना शुरू किया, हर बार कुछ नया। और इसी तलाश में 1965 की उस फिल्म तक वो पहुंचे जिसने उनके कैरियर को एक नई ऊंचाई थी। फिल्म का नाम था गाइड। तो आइए इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

दोस्तों, गाइड में देवानंद साहब ने राजू का किरदार निभाया था और ये वही देवानंद साहब थे जिनको दर्शकों ने रोमांटिक नायक के रूप में देखा। लेकिन राजू आसान किरदार नहीं था, इसमें प्रेम था, महत्वाकांक्षा थी, गलतियां थी और अंत में आत्मबोध भी। फिल्म देवानंद के लिए अभिनय की बड़ी उपलब्धि बनी और गाइड फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म ने और बहुत सारे पुरस्कार जीते और देवानंद साहब की अगर हम बात करें तो 60 का दशक खत्म होते होते देवानंद साहब सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे, वो एक स्टाइल बन चुके थे। और फिर आया 1970 जॉनी मेरा नाम। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्मों में शामिल रही। मैं इस फिल्म का एक गीत आपको सुनाते हैं।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: हमारे श्रोता सुन रहे कार्यक्रम में एक ही कलाकार, और आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता देवानंद साहब की। श्रोताओं, देवानंद साहब की खासियत ये थी कि वो अपने समय से बहुत आगे चलते और कभी कभी वो समय के साथ भी चलते। जहां एक तरफ वो रोमांटिक नायक की पहचान बना चुके थे, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक मुद्दों और नए विचारों को फिल्मों में जगह देने की उनकी इच्छा और सरोकार हमेशा आगे रहता। उनके सिनेमा में सामाजिक सरोकार में उन मुद्दों को जरूर शामिल किया जो लोगों की जिंदगी को छूते थे।

श्रोताओं, देवानंद साहब को पद्मभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 6 दशकों से ज्यादा लंबा सफर। लेकिन देवानंद साहब को शायद पुरस्कारों से ज्यादा पसंद था काम करते रहना। वो आखिरी वर्षों तक फिल्मों में काम करते रहे और उनकी अंतिम फिल्म चार्जशीट 2011 में आई। देवानंद साहब की पूरी जिंदगी को अगर एक गीत में समेटना हो तो इससे बेहतर पंक्ति मिलना मुश्किल है। जिंदगी जैसी मिली उसे स्वीकार किया, मुश्किलें आई तो आगे बढ़ते रहे, दौर बदला तो खुद को बदलते रहे और उम्र बढ़ी लेकिन उनके भीतर का कलाकार कभी बूढ़ा नहीं हुआ। इसलिए देवानंद साहब सिर्फ एवरग्रीन स्टार नहीं थे, वो हिंदी सिनेमा के उस दौर की याद हैं जब गीत कहानी का हिस्सा हुआ करते थे, जब नायक का अंदाज फैशन बन जाता था, जब एक अभिनेता अपने सपनों के साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी आगे ले जाने की कोशिश करता। ये थे देवानंद, हमारे आज के एक ही कलाकार के सितारे। श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त, अब मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे किसी और कलाकार की कहानी और उसके सदाबहार गीतों के साथ। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार थे देवानंद साहब। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान को श्रुति बुरी की
1: और वंदना की
0: राधे राधे। देखो वंदना, यह समय ब्रज में कितनी हरियाली हरितमा है और कितने ताल सरोवर पूरे भरे पड़े हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं यह समय।
1: हाँ जी जी, और देखो तोहरन की भी तो धूम मची हुई है अभी तलक।
0: हाँ अभी तो राधा अष्टमी है कह चुकी है, राधे रानी को प्राकट्य भयो, क्योंकि चातुर्मास चल रहे है तो यह समय ब्रज में आए हुए वारे जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु भावुक भक्त हैं, इतनी संख्या में वो हैं कि यह समय ब्रज में हर जगह जहाँ देखो एक खुशनुमा सा माहौल दिखे।
1: हाँ जी जी, जय मारे तो हमारो ब्रज हरितमा में भरो रहे और हरियाली सो रहे और ऐसी सुगंधी बिखेरे के मन माते हटे ही ना वहीं जावे को करे।
0: देखो ब्रज क्षेत्र में अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक ताल तलैया कुंड और सरोवर स्थित हैं और जो भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी की लीला से जुड़े भये हैं।
1: हाँ जी जी,
0: तुम्हें कछु याद आ रहे हो कोई बढ़िया सा सरोवर?
1: हाँ जी जी, प्रेम सरोवर याद आ रहा है मुझे, और मुझे और याद है, पर मैं आपको प्रेम सरोवर की बता दूं कि जी बरसाना में और नंदगांव के मार्ग पे स्थित है और जी वो पवित्र स्थान है जहाँ श्री राधा रानी और श्री कृष्ण को प्रथम मिलन भय हो।
0: यहाँ के अतिरिक्त आपको एक और सरोवर बताऊं बता ना?
1: हाँ बताओ।
0: मान
1: ना।
0: सरोवर है जहाँ पे राधे रानी ने मान किया हो, और जो पान सरोवर है वो नंदगांव में स्थित एक सुंदर और छोटा सा एक जलाशय है।
1: जी जी, मान सरोवर की बात तो समझ में आवे कि राधे रानी मान करती हैं और मान भी वो बही मारे करती कि कृष्ण बिनको मनामते। और जी बताओ पान सरोवर को कहा है?
0: जी एक पारंपरिक छोटा सा जलाशय है।
1: अच्छा
0: हाँ, और तुमने मुझे कुसुम सरोवर पूछी होती तो मैं बताती।
1: कुसुम सरोवर तो मैं बताऊंगी जी जी।
0: अच्छा तो तुम ही बताए दो।
1: हाँ देखो जी जी, जी गोवर्धन के पास आते है और जे प्रसिद्ध सरोवर सुंदर घाट और वास्तुकला से सुसज्जित है जहाँ श्री कृष्ण और श्री राधा जी की लीलाएं जुड़ी हुई हैं।
0: और यहाँ के अतिरिक्त वंदना शिवताल जाए शिवतालव भी कहवे हैं और हीरा ताल, ये वो जो है ब्रजमंडल की 84 ब्रज कोष की परिक्रमा की परिधि में आवे हैं। ऐसे कई हैं सरोवर और कुंड जो ब्रज की महिमा को बखान करे हैं, ब्रज की एक एक लीला को बखान करे हैं। पर वंदना,
1: हाँ जी
0: अब
1: जी,
0: हम अपने श्रोतान को कछु गीत लोकगीत सुनामेंगे कि ना सुनामेंगे?
1: हाँ जी जी, चलो अपने श्रोतान को एक प्यारा सा लोकगीत सुनवाए दें।
0: तो आप सुने हैं जी लोकगीत।

0: बहुत ही चोखो लोकगीत सुनवायो आपने जीजी। अब जी बताओ और कहा है हमारी श्रोताओं की काजे।
1: अरे बहुत सारी चीजें हैं, तुम कहो तो सही। हम तो पूरा पिटारो भर के लाए हैं, तुम कहो तो काव्य गोष्ठी सुनवाए दे।
0: तो देर मत करो, फिर सुनवाए दो।
1: तो ये तो बताए दो कौन कौन से कवि ने लेके आई हो आज।
0: हाँ जी, हमारी आज ब्रज काव्य गोष्ठी में दरियाब सिंह राजपूत ब्रजगण जी आए हुए हैं, और संग में कुलभूषण सोनी हैं, और बिनके संग में गोविंद सरन जी हैं।
1: तो आओ आनंद लियो या काव्य गोष्ठी को।
0: और जी, यह काव्य गोष्ठी को संचालन कर रहे हैं दरियाब सिंह राजपूत ब्रजगण।
2: राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी भैया हो, आज बड़ो ही शुभ अवसर है, और ये माह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जामे हमारे जगतपति नंदलाला को जन्मदिन भयो है, राधा रानी को हु जन्मदिन है। तो ऐसो अवसर सो अवसर कबू ना आ सके। और आज जाए स्टूडियो में जो कवि आए हुए हैं वो हैं कुलभूषण सोनी जी और श्री गोविंद शरण जी, और मैं दरियाव सिंह राजपूत ब्रजकरण। या गोष्ठी पे आपको ऐसो अद्भुत कछु सुनबे को मिलेगो। तो सर्वप्रथम मैं आवाज दे रहे हूँ, मैं स्वागत कर रहे हूँ गोविंद शरण जी को। वो अपनी रचना के माध्यम से ब्रज को सुशोभित करें अपने शब्द भावों से, और कृष्ण जी को नमन करते हुए जो भी इनको मन हो ऐसा पढ़ें, भावपूर्ण पढ़ें। राधे राधे।
3: स्वागत है।
4: जय श्री राधे।
3: जय
4: राधे
3: श्री
4: राधे जी,
3: कृष्ण।
4: यह महीना में भगवान कृष्ण को, राधा को, दोनों को जन्मदिन है। तो मैं भगवान कृष्ण से अपनी
2: वाह वाह,
4: मतलब शुरुआत करता
2: स्वागत है,
3: हूँ। स्वागत
4: एक
3: है,
4: छंद।
2: स्वागत है।
4: कि जसोदा को छैया, कि जसोदा को छैया, बल दाऊ जी को भैया श्याम,
3: वाह वाह,
4: रास को रचैया, गोप कान को
2: क्या बात
4: रिझैया
2: है, क्या
3: है।
2: बात
3: क्या
2: है,
3: बात है, क्या बात है।
4: माखन चोरैया, माखन चोरैया, मेरे ओरो में समैया, ग्वाल बालन को भैया ने कुछ छाछ पहने
2: वाह वाह
3: चुराया
2: वाह
3: है, क्या बात है, क्या बात।
4: बांसुरी बजैया है सजैया, मोर पंखन
2: जय
4: को,
2: जय जय जय
4: बांसुरी बजैया है सजैया, मोर पंखन को,
3: वाह,
4: और आठों याम राधे राधे नाम को
3: क्या
4: रटैया है,
3: कहने।
4: ब्रिज को बसैया, ब्रिज को बसैया, गिरिराज को उठैया, भैया नंद को नदैया, मेरी नाव को खेवैया है, नाव को
3: बहुत
4: खेवैया
3: सुंदर, बहुत
4: है,
3: सुंदर।
4: नाव को
2: जय
4: खेवैया
2: जय
4: है।
2: वाह गोविंद जी, वाह
4: और साहब जाई श्रृंखला में
3: जी।
4: भगवान कृष्ण के दो छंद और सुनो।
2: हाँ स्वागत है,
3: स्वागत
2: स्वागत
3: है
2: है
3: साहब,
2: सर।
3: स्वागत है।
4: जब छोटो सा बालक जन्म ले तो
3: हाँ
4: वाके सबरे अंगन को रंग लाल लाल दिखाई दे।
3: बिल्कुल
4: तो
3: सही,
4: भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है
2: वाह,
4: और उनके सबरे अंगन को रंग लाल लाल है।
2: जय जय जय जय,
4: देखो उस लाल रंग को प्रयोग मैंने कैसे करो।
2: स्वागत है सर।
4: कि छोटे पद पानी लाल, छोटी उंगुरी हूँ लाल, छोटे नख लाल, छोटी रेखा लाल
2: क्या
4: लाल
2: बात है,
3: है,
2: क्या बात है,
3: रेखा
2: क्या
3: भी
2: बात
3: लाल
2: है,
3: है,
2: वाह
3: क्या बात
4: छोटे पद पानी लाल, छोटी उंगुरी हूँ लाल, छोटे नख लाल, छोटी रेखा लाल लाल है,
3: बहुत बढ़िया,
4: अधर अमोल लाल, कलित कपोल लाल,
3: कपोल
4: लोचन
3: लाल है।
4: ललित लाल लाल
2: वाह वाह
4: मुकु
2: वाह वाह
4: लाल
2: वाह वाह
4: है,
2: वाह वाह, क्या
4: लाल
2: बढ़िया बात है,
4: लाल भूषण बसन सब लाल लाल,
2: लालावती वाह,
4: लाल लाल भूषण बसन सब लाल लाल, और ललन लला के सब साज भोन
2: जय
4: लाल
2: जय जय जय
3: है।
2: जय
3: बहुत
2: जय,
3: सुंदर,
4: लाल पाल नाम लाल, फूलन की सेज लाल,
3: क्या
4: और
3: बात
4: लाल
3: है,
4: ही खिलौना लेके झूले नंद लाल
2: वाह वाह
3: है,
2: वाह वाह वाह,
4: झूले
2: लाल
3: नंद
2: ही
3: लाल
2: खिलौना
3: है,
2: लेके झूले
3: झूले
2: नंद
3: नंद
2: लाल है,
3: लाल
2: वाह
3: है, क्या
2: गोविंद
3: बात है।
2: वाह।
4: अब यू लाल रंग को प्रयोग करे हो,
2: लाल
4: और
2: शब्द की
4: अब
2: आवृत्ति बार बार रह रही है,
4: हाँ जी
2: बहुत ही सुंदर।
4: और अब काले रंग को प्रयोग देखो,
2: स्वागत है सर,
4: काले रंग को
2: स्वागत,
4: प्रयोग,
2: हाँ
3: जी
2: स्वागत है।
3: स्वागत है।
4: काले रंग को प्रयोग कुछ ऐसा करे हो मैंने, कि कारे कजरारे नैन सैन, कारे कारे प्यारे
2: वाह वाह
4: नंद
2: वाह,
4: के दुलारे, भले हारे काम
2: जय
4: ताई
2: जय
4: है,
2: वाह,
4: लट घुंगुरारे, लट घुंगुरारे, सटकारे सारे कारे, मतवारे हम हारे, श्याम तेरी श्याम
2: वाह
3: ताई
2: वाह
3: है,
2: वाह
3: वाह
2: वाह,
4: बादर से फारे, तेने मोर के मुकट बारे, बादर से फारे तेने मोर के मुकट बारे, और बारे हम तेरे अधरों की अधराई पे, और पीत वस्त्र धारे, पीत वस्त्र धारे न्यारे, जड़े हैं सितारे भारे, मैंने चित्त हारे प्रभु तेरी प्रभुताई पे, तेरी प्रभुताई पे, तेरी प्रभुताई पे। और देखो जी, अब ये तीन छंद मैंने कन्हैया जी के सुनाए
3: जी।
4: अब भगवान कृष्ण के बिना हमारी राधिका जी अधूरी हैं, और राधा जी के बिना हमारे कन्हैया जी अधूरी
2: हैं।
4: हाँ जी, एक प्राण दो। अगला छंद जो मैं सुना रहा हूँ आप है वो राधिका जी के चरण की। कृष्ण प्राण प्यारी, कृष्ण प्राण प्यारी, पतितों की दुख हारी, श्यामा विश्व अवतारी, तेहू लोक उजियारी है, गौर रंग बारी, गौर रंग बारी, श्याम बाम अंग धारी, आठो याम हुई ए में गिरधारी ने उतारी है, गिरधारी ने उतारी है, चंद्रमुख बारी तो पैरी जे है बिहारी, सुख कारी सुकुमारी, प्यारी बरसाने बारी, कर रखवारी तो सो बिनती हमारी प्यारी, कीरत कुमारी ब्रिसवान की दुलारी है, कीरत कुमारी ब्रिसवान की दुलारी है।
2: तो भैया अभी आपने गोविंद शरण जी को सुनो, और अब यही श्रृंखला में हमारे आ रहे हैं वरिष्ठ कवि श्री कुलभूषण सोनी जी। कुलभूषण सोनी जी आपका स्वागत है।
3: पर जैसे गोविंद जी भारद्वाज जी ने कही है कि नीरज तिन्हें नन में सजनी सलोने सुट सावरे सवारे।
4: क्या बात है, क्या बात है।
3: और बांसुरी बजावट के बात के बनावट की, और माधुरी से मूरत तो मन मत लागे, आली अक्षिन अम्बुज अनोखे अटकाम ने,
2: सुंदर
3: और चंचल से चितवन चंचला चला चला गए, भूतन बनत ब्रसवान जाके भर तार, और द्रग दुख दामुनि की तुति दमका गए, और बांसुरी बजावत बे बात के बनावट की, माधुरी सी मूरत सम्मन मचला गए।
4: अति सुंदर, अति सुंदर।
3: तो कन्हैया की क्या हाल है?
4: बहुत बढ़िया।
2: तो भैया जी अभी आपने कुलभूषण सोनी जी को सुनो, और अब गोविंद शरण जी को सुनो। स्वागत है गोविंद शरण जी।
4: जैसे कि मैंने अभी छंद सुनाए, और अब मैं ब्रज वंदना,
2: वाह स्वागत
4: आपके सामने, भला मैं प्रस्तुत करूं ब्रज वंदना।
3: स्वागत है।

0: बारी। हमारे ब्रज में ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब जन्म लेवे के बड़ो तरस है।
1: वाह
0: जय ब्रज भूम धून जहां तपते ब्रह्मा
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: त्रिपुरारी।

0: क्या बात है, बहुत
1: जय
0: बढ़िया।
1: ब्रज राज रास रस जय जय जय ब्रज वसुधा में
0: वाह वाह, जा
1: तारी।
0: सरस वंदना को प्रस्तुत कर रहे गोविंद शरण जी। और अब मेरा निवेदन है,
1: जी
0: वरिष्ठ कवि कुलभूषण सोनी जी सो
1: क्या
0: आपका
1: बात,
0: स्वागत है, आपको
1: जय
0: कुछ
1: हो जय हो
0: सुनाओ।
1: जय हो
0: स्वागत है जी,
1: जय हो जय
0: स्वागत
1: हो।
0: है।
1: देखो,

0: भैया हमारी जो प्रतिभाषा है बड़ी मीठी लग रहा है, जाय कन्हैया ने हूँ अपने मुख से उच्चारित करके,
1: वाह
0: और बाकू विख्यात कर दियो या कवित्व में मैं आपके समय प्रस्तुत
1: स्वागत है गुरुभूषण जी
0: कर रहे हूँ।
1: जी स्वागत है।
0: वो कन्हैया को और मुरली को कैसा संबंध है, और
1: वाह
0: या
1: क्या
0: ब्रजभाषा से,
1: बात है, स्वागत है जी।
0: एक कान की सुरीली तान गोपिनी के ही है बसी, मीरा की सुबीना बनी रघु रघु में
1: वाह
0: पूरी,
1: वाह बात है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी
0: रस को बखान खान रस खान जूने करो, ब्रज वसुधा की मांग कवि यनु ने भरी,
1: वाह वाह
0: ब्रज
1: वाह
0: वसुधा की मांग कवि यनु ने भरी, के भूतन रे जाए दे बैन ब्रजवासिन के, ऐसो अब तंस भयो मोहन मधुपुरी।
1: वाह
0: बोली
1: बोली
0: में या में
1: मिठास।
0: कैसा मीठा रस
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: ते बोली को मिठास या में अपने
1: क्या
0: बनावे घर, और सब कुर जावे ऐसी ब्रज भाषा माधुरी,
1: बात,
0: रजावे ऐसी
1: ऐसी ब्रज
0: ब्रज
1: भाषा
0: भाषा
1: माधुरी,
0: माधुरी।
1: ऐसी रझावे ब्रज भाषा माधुरी। ब्रज भाषा को बड़ा मधुर चित्रण कियो कुलभूषण जी ने।
2: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब हम बुलाएंगे हमारी यह गोष्ठी को संचालन कर रहे हमारे बहुत ही वरिष्ठ कवि और हमारे ब्रज भाषा के धुरंधर पुरोधा हमारे दर्याब सिंह राजपूत जी ब्रजगढ़।
0: बहुत बहुत
2: आपका
0: स्वागत है
1: स्वागत है
0: आप,
1: सर। धन्यवाद
0: राजपूत जी का।
1: आपको, ब्रजवासी इनको राधे राधे करते हुए
0: जय श्री राधे,
1: गीत
0: राधे,
1: प्रस्तुत कर रहे हूँ। ठीक
2: स्वागत।
1: बारह बजे,
2: वाह
1: ठीक बारह बजे मन में सपने सजे,
0: बजे
1: ठीक बारह बजे
0: बजे
1: मन में सपने सजे, दर्द सो देव की छटपटाए वे
0: लगी।
1: लगी,
2: वाह वाह
1: ठीक
0: वाह वाह, क्या
1: बारह बजे पीर सहनाए
2: सहना
1: सकी,
0: सकी
1: कछु कहनाए सकी, पीर सहनाए सकी कछु कहनाए सकी, लाल को देख के।

0: लाल कैसे बचे, अजी लाल
1: लाल कैसे
0: कैसे बचे,
1: बचे,
0: शोरगुल ना मचे। लाल कैसे बचे,
1: कैसे
0: शोरगुल ना मचे, चिंता दोनों के मन को सताए लगी।
1: बचे,
0: ठीक 12 बजे, ठीक
1: मन को
0: 12 बजे, मन में सपने सजे, दर्द सो देव की छटपटाए वे लगी। ठीक 12 बजे,
1: वाह जी वाह, बहुत
0: कैसा
1: सुंदर,
0: सुंदर सुगड़ लाल ठन के हिया,
1: वाह क्या भाषा है
0: कैसा
1: जी, कुछ भाषा
0: सुंदर सुगड़ लाल ठन
1: ठन
0: के
1: के हिया।
0: हिया,
1: हाँ
0: कंस छोड़े नहीं जो तनक रोए
1: वाह वाह
0: दियो।
1: वाह।

0: जो अब खुलो खुले हो गए, बंद है द्वार जो अब खुले हो गए। सूप में ले उल्टा, अजी सूप
1: सूप
0: में
1: में
0: ले
1: ले
0: उल्टा,
1: उल्टा,
0: मन में ईश्वर बिठा। सूप में
1: मन
0: ले
1: में उल्टा,
0: उल्टा, मन
1: मन
0: में
1: में
0: ईश्वर
1: ईश्वर
0: बिठा।
1: बिठा।
0: लाल के प्राण मैया बचावे
1: बचावे क्या
0: लगी,
1: बात, बहुत सुंदर,
0: ठीक
1: क्या बात,
0: बारे बजे,
1: वाह जी वाह जी वाह।
0: ठीक बारे बजे, मन में सपने सजे, दर्द सो देव की
1: छटपटावे।
0: छटपटाए।

0: बहुत
1: क्रधारी
0: सुंदर,
1: न
0: बहुत
1: सगरो जे
0: सुंदर।
1: नाटक कियो, खेल सब है गयो, अजी खेल सब है गयो,
0: गयो।
1: फिर जगत सोए गयो।
0: हाँ
1: वाह,
0: बहुत सुंदर है।
1: खेल सब है गयो, फिर जगत सोए गयो, लाली आवत ही रोए बे प्याए बे लगी।
0: बहुत गजब,
1: खेल खेल
0: बहुत सुंदर।
1: सब है गयो, फिर जगत सोए गयो, योग माया हु रोए बे
0: फिर
1: प्याए बे
0: प्याए लगी। वाह वाह,
1: लगी।
0: बहुत सुंदर।
1: ठीक 12 बजे आवा,
0: वाह जी वाह,
1: आज ठीक
0: बहुत बहुत
1: 12 बजे
0: बहुत।
1: मन में सपने सजे, दर्द सो देव की चटपटाए वे
0: पटाने
1: लगी। ठीक 12 बजे
0: लगी।
1: अंतिम छंद है जी।
0: बहुत स्वागत है जी, स्वागत, बहुत सुंदर।

0: एक कन्या को खुद रह गयो है ठगो।
1: बिल्कुल ठग रहे हो।
0: सुन रुदन की खबर कंस आयो भगो, देख कन्या को खुद रह

0: भयो कंस को काल ब्रज में ये पैदा भयो,
1: वाह वाह,
0: कंस को काल ब्रज में ये पैदा भयो, क्रोध में भर गयो, अजी क्रोध में भर गयो, जीते जी मर गयो,
1: वाह
0: क्रोध में भर गयो,
1: वाह,
0: जीते जी मर गयो, जीते जी मर गयो, कंस को नाच कुमति नचावे लगी, ठीक बारह बजे, ठीक बारह बजे, ठीक बारह बजे, मन में सपने सजे, ठीक बारह बजे, मन में सपने सजे, दर्द सो देव की कराए वे लगी, ठीक 12 बजे। और आपने ये ब्रजभाषा कवि गोष्ठी सुनी, जहाँ कवि गोष्ठी में पधारे पैगाम मथुरा से गोविंद सरन जी रसिक, और कुलभूषण जी वरिष्ठ कवि ब्रजभाषा के कुलभूषण सोनी जी, और मैं आपको दरियाव सिंह राजपूत ब्रजकन वृंदावन सो, राधे राधे, जय श्री
1: जय श्री
0: कृष्ण,
1: राधे।
0: राधे राधे।
2: श्रोताओं, अभी आप ब्रज काव्य गोष्ठी सुन रहे हैं। यह में प्रतिभागी कवि है दर्याब सिंह राजपूत ब्रजकण, कुलभूषण सोनी और गोविंद सरन। या के संग ही आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है। मोए यानी श्रुति पुरी है
3: और मोए यानी के वंदना को कार्यक्रम को संपन्न करवे की अनुमति दियो।
2: नमस्कार। कार्यक्रम प्रस्तुत करता विवेक कुमार तोमर।
4: अभी हमारे श्रोता सुने थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम।
5: आइए सुनते हैं नाटक इंतजार। लेखिका आकांक्षा, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुनेंगे। हर फौजी की एक कहानी होती है, लेकिन हर कहानी में सिर्फ बॉर्डर नहीं होता, एक घर भी होता है जो उसका इंतजार करता है। ये कहानी है मेजर ऋषि सिंह की, जो जम्मू के एक छोटे से कस्बे से निकलकर भारतीय सेना की वर्दी पहन चुके हैं, और रिमझिम कश्यप की, जो दिल्ली की गलियों में पढ़ी लिखी अपने अल्फाजों से दुनिया से बात करने वाली एक लेखिका है।
6: दो अलग दुनिया, एक बॉर्डर पर ड्यूटी निभाता है, दूसरी कागज पर जिंदगी को समझती है। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। यह कहानी है उनके प्यार की, उनके इंतजार की, और उस ताकत की जो हर फौजी की पत्नी के अंदर चुपचाप पल रही होती है।
5: अब हमारे साथ है युवा लेखिका रिमझिम कश्यप, जो आज अपनी नई कविता शहर की सांसें आप सबके साथ साझा करेंगी। तालियों से उनका स्वागत कीजिए।
7: इस शहर की सांसों में बसी है हर कहानी अनकही, हर मोड़ पर बिछड़े हुए लोग और फिर भी चलते रहने की जिद।
8: माफ कीजिएगा, आपकी कविता सुनकर लगा जैसे इस शहर को आखिरकार अपनी आवाज मिल गई हो।
7: शुक्रिया, पर ये तो थोड़ी ज्यादा तारीफ हो गई सर।
8: नहीं, सच कह रहा हूं, मैं ऋषि हूं, मेजर ऋषि सिंह।
7: आर्मी तो वर्दी कहां छोड़ा है?
8: छुट्टी पर हूं अभी, तो आज के लिए सिविलियन हूं।
7: अच्छा, तो सिविलियन मेजर साहब, कविता समझ में आई या बस यूं ही चले आए?
8: नहीं नहीं, मतलब दोनों। ईमानदारी से बोलूं तो आपके शब्दों में बहुत सच्चाई है।
7: शायद इसलिए क्योंकि मैं उन्हीं चीजों के बारे में लिखती हूं जो मैंने खुद देखी और महसूस की हैं।
8: हम दोनों में ये बात कॉमन है, मैं भी वही करता हूं जो मैंने सीखा है। फर्क सिर्फ ये है कि मेरे हथियार कागज नहीं है। अगर पुराना लगे तो क्या हम कभी कॉफी पर मिल सकते हैं, बस एक दोस्त की तरह? आपकी लेखनी के बारे में और जानना चाहता हूँ।
7: ठीक है मेजर साहब, पर शर्त यह है कि अगली बार वर्दी में आना। मुझे यकीन करना है कि आप झूठ नहीं बोल रहे। की वो मुलाकात एक मामूली सी शुरुआत लगती थी, लेकिन कुछ दोस्तियां वक्त के साथ इतनी गहरी हो जाती हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाता है। अगले 3 साल ऋषि और रिमझिम एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त बन गए। फोन कॉल्स, लंबी बातें और एक अनकहा भरोसा।
6: एक कॉफी से शुरू हुई बात धीरे धीरे रोज की आदत बन गई। अगले 3 साल चाहे ऋषि ट्रेनिंग पर हो या रिमझिम किसी डेडलाइन में डूबी हो, दोनों के बीच एक धागा बना रहा जो वक्त के साथ और मजबूत होता गया।
8: क्या बात है रिमझिम, बहुत उदास लग रही हो।
1: ऋषि मेरा एडिटर मेरे आर्टिकल को 3 बार रिजेक्ट कर चुका है, लगता है मैं तो लिखना ही भूल गई हूँ।
8: या शायद तुम्हारा एडिटर अच्छी चीजों की कदर नहीं करता। भेजो मुझे, मैं पढ़ता हूँ। एक फौजी की राय भी कुछ मतलब रखती है।
1: तुम बस मेरा दिल रखने के लिए मेरी तारीफ करोगे?
8: नहीं, मैं सच बोलता हूँ, गलत होने पर वो भी बता दूंगा। दोस्त हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा।
1: अच्छा ठीक है
8: रिमझिम।
1: हाँ?
8: सुनो, मेरी अगले महीने एक फील्ड एक्सरसाइज है, शायद 2 हफ्ते कॉल नहीं कर पाऊंगा।
1: हाँ ठीक है, ख्याल रखना। और हाँ, वापस आकर सबसे पहले मुझे कॉल करना, समझे?
8: वायदा करता हूँ। तुम्हारी आवाज सुनने का इंतजार अब सिर्फ एक दोस्त वाला इंतजार नहीं लगता रिमझिम।
1: मुझे भी।
7: दोस्ती की उस डोर

0: वे कब प्यार की एक गांठ बंध गई दोनों को पता ही नहीं चला। ऋषि और रिमझिम जान चुके थे कि ये रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे निकल चुका है।
1: 3 साल की दोस्ती, समझ, हंसी, झगड़े और भरोसे का एक लंबा सफर, और फिर ये दोस्ती एक नए रिश्ते में बदल गई।

0: अरे देखो पंडित जी कहाँ है, देखो सही
1: बेटा ऋषि
2: जी माँ,
1: आज से रिमझिम भी हमारे घर की है
2: जी।
1: इसका ख्याल रखना समझे
2: जी माँ।
3: ऋषि बेटा, मेरी बेटी को मैंने हमेशा खुले आसमान की तरह जीने दिया है, उसे उड़ने देना बांधना नहीं।
2: पापा जी, ये मेरा वायदा है, रिमझिम जैसी है वैसी ही रहेगी, मैं तो बस उसके साथ चलूंगा, उसे रोकूंगा नहीं, आप चिंता ना कीजिए।
3: थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।
4: दिल्ली कैंट के एक छोटे से घर में उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। 3 साल की दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे को समझने का वक्त दे दिया था, पर शादी के बाद का हर दिन फिर भी एक नई खोज की तरह लगता था।
5: ऋषि, चाय बन गई, अगर पुशअप में ही लगे रहे ना तो ठंडी हो जाएगी।
2: मैडम, एक फौजी को फिट रहना पड़ता है। रख दो।
1: ऋषि, सच में ये 3 महीने कितनी जल्दी निकल गए ना, पता ही नहीं चला।
2: हाँ, पहली बार लगा कि घर का मतलब क्या होता है। बॉर्डर पर भी अब जब मैं सोचूंगा तो यही याद आएगा, सुबह की ये चाय, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी हंसी।
5: ये बॉर्डर की बातें मत करो अभी से, अभी तो हम साथ हैं।
2: हाँ, साथ हैं, और जब तक हैं हर पल को पूरा जीना है, यही तो फौजी की जिंदगी का असली सबक है।
4: उस फोन कॉल को ना ऋषि जानता था ना रिमझिम, कि वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया था।
1: ऋषि, तुमने कभी ठीक से नहीं बताया, जम्मू में तुम्हारा बचपन कैसा था?
2: जम्मू की पहाड़ियां, पापा फौज में थे तो हम भी बहुत घूमे, पर एक बात हमेशा याद रहती है, पापा कहते थे वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं है बेटा, ये एक जिम्मेदारी है जो उतरती नहीं।
1: तो तुमने भी उसी वर्दी को चुना उनकी तरह?
2: चुना नहीं, शायद वो मेरे खून में ही था। मां हमेशा डरती थी पर पापा को गर्व था। आज भी जब घर कॉल करता हूं, मां पहले पूछती है खाना खाया, और उसके बाद ही ड्यूटी कैसी चल रही है।
1: सच, मुझे अब समझ में आ रहा है कि फौजी की मां होना भी कितना मुश्किल होता है। मैं तो अभी पत्नी बनी हूं, उन्होंने तो सालों यही जिंदगी जी है।
2: इसीलिए कहता हूं, हमारी फैमिली की औरतें मर्दों से ज्यादा, कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं। वो सिखाती नहीं, बस जी कर दिखाती हैं। ये लीजिए आपकी चाय।
1: थैंक यू।
2: मैडम लेखिका, आज का आर्टिकल कैसा चल रहा है?
1: अटका हुआ है। दिल्ली में मेरे पापा मम्मी हमेशा कहते थे परमानेंट जॉब कर लो, और मैं हूं कि फ्रीलांसिंग में उलझी हुई हूँ।
2: तुम्हें भी तो यही पसंद था ना, अपनी मर्जी से लिखना, अपनी आवाज में।
1: हाँ, और सच कहूँ तो मेरे पापा को भी अब गर्व है, बस जाहिर कम करते हैं।
2: तुम और मैं दोनों ने मुश्किल रास्ता चुना है। मैं बॉर्डर पर लड़ता हूँ, तुम कागज पर अपनी जगह बनाती हो। दोनों को वक्त लगता है इज्जत बनाने में,
1: और दोनों को हौसले की जरूरत होती है, जो शुक्र है हमें एक दूसरे से मिल जाता है।
2: हेलो, हेलो जी सर, ठीक है सर, समझ गया, जय हिंद सर।
1: क्या हुआ ऋषि?
2: रिमझिम, मेरा पोस्टिंग ऑर्डर आ गया है लद्दाख।
1: लद्दाख? कब, कब जाना है?
2: 10 दिन में निकलना है।
1: दस दिन? ऋषि,

0: हमारी शादी को अभी 3 महीने ही हुए हैं।
1: मुझे पता है, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी ऑर्डर आ जाएगा, पर यही जिंदगी है रिमझिम, हमें इसके लिए तैयार रहना सीखना होगा।
0: 3 साल की दोस्ती, 3 महीने की शादी, और अब अचानक तुम कहीं इतनी दूर चले जाओगे जहां ना फोन चलेगा ना नेटवर्क। मुझे डर लग रहा है ऋषि।
1: रिमझिम, मुझे भी डर लगता है, हर बार लगता है, पर हम फौजी और उनकी फैमिली इस डर के साथ जीना सीख जाते हैं। बस मुझसे एक वादा करो, इन 10 दिनों में रोना नहीं, सिर्फ हम दोनों के लिए जीना है, वादा करो।
0: ठीक है, पर वादा तुम भी करो, हर रोज कॉल करोगे चाहे कुछ भी हो जाए।
1: ठीक है, करूंगा, वायदा है। माँ।
2: हाँ बेटा।
1: माँ, आपसे एक बात करनी थी।
2: हाँ हाँ बोलना।
1: माँ, मैं तुमसे कहना चाह रहा था, मेरी पोस्टिंग आ गई है, लद्दाख जाना है।
2: लद्दाख? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, हम दुआ करते रहेंगे।
1: माँ, रिमझिम पहली बार अकेली रहेगी दिल्ली में, आप लोग उसका ख्याल रखना। माँ,
2: ऋषि वो हमारी बेटी है, हम उसका ख्याल रखेंगे।
1: जी,
2: तू बस अपनी ड्यूटी पर ध्यान दे।
1: ठीक है माँ।
3: रिमझिम ने तय कर लिया था, चाहे दिल कितना भी भारी हो, ये 10 दिन वो ऋषि के साथ हंसते मुस्कुराते बिताएगी, ना आंसू ना शिकायत, बस यादें जो आने वाले महीनों का सहारा बनेंगी।
0: ऋषि, उस वाली दुकान से चाट खाएंगे, फिर पुरानी दिल्ली वाली सैर पर चलेंगे, जैसे पहली बार हम डेट पर गए थे।
1: मैडम, 10 दिन में पूरी दिल्ली घूमने का प्लान है क्या?
0: हाँ, क्योंकि अगले 6 महीने या फिर उससे ज्यादा मुझे इन्हीं यादों को याद करके जीना है।
1: रिमझिम, जब भी लद्दाख में आसमान देखूंगा, यही सोचूंगा कि शायद तुम भी उसी पल यही आसमान देख रही होगी।
0: तो हर रात इस आसमान को देखकर मुझे भी तुम्हारी याद आएगी, और इस तरह हम दूर होकर भी पास रहेंगे, है ना?
1: यही तो असली प्यार है रिमझिम, दूरियों को पास होने का एक नया तरीका ढूंढना।
0: ऋषि, ये देखो, ये इंडिया सेंटर वाली शाम। कितने नर्वस लग रहे थे तुम उससे बात करते हुए।
1: नर्वस नहीं था, बस सोच रहा था कैसे तुम्हारा नंबर मांगू बिना बेइज्जत हुए।
3: दस दिन बाजार की सैर, घर की रसोई में साथ खाना बनाना, पुरानी तस्वीरें देखना और रात भर बातें करना, हर लम्हा एक खजाने की तरह जमा हो रहा था, पर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता।
0: ऋषि सच बताओ, तुम वापस कब आओगे? 6 महीने 7 महीने मुझे ठीक ठीक बताओ।
1: रिमझिम, ये पोस्टिंग है, कोई ट्रेन टाइम टेबल नहीं कि मैं तुम्हें एग्जैक्ट डेट बता सकूं। छुट्टी मिलेगी तो आऊंगा।
0: अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ठीक हो?
1: अरे मैडम, पहले जाने तो दो। बैठो बैठो रिमझिम। सुनो, तुम एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हो, मैं चाहे तुम्हारे पास हूं या पोस्टिंग पर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूं।
0: ऋषि,
1: रोना बंद करो यार, बस।

0: तुम्हें स्ट्रांग रहना है, क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसे ही होती है, समझी?
1: हाँ, मुझे पता है कि एक दिन होना ही था, पर जब आंखों के सामने होता है तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है।
0: प्रेम जी, आंसू पोंछो, हर फौजी की पत्नी इसी लम्हे से गुजरती है, तुम भी गुजर जाओगी और मैं देखूंगा तुम मुझसे भी ज्यादा मजबूत निकलोगी।
1: ठीक है, अच्छा वादा करो लद्दाख से रोज कॉल करोगे, चाहे नेटवर्क हो या ना हो।
0: कोशिश का वायदा है, नेटवर्क का नहीं, वहां नेटवर्क भी फौजी डिसिप्लिन में चलता है, मन की नहीं सुनता।

0: अगली सुबह ऋषि का सामान बंध चुका था। 10 दिन जो कभी खत्म न होने जैसे लग रहे थे, अब बस कुछ घंटों में सिमट गए थे।
1: पापा,
2: बेटा, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। और रिमझिम, तू भी हिम्मत रखना, हम सब तेरे साथ हैं बेटा।
3: हाँ पापा, मैं ठीक रहूंगी। और आप सब हैं तो डर किस बात का।
2: वेरी गुड, वेरी गुड गर्ल।
0: उस रात दोनों परिवार साथ बैठे, हंसे, खाया और एक दूसरे को हौसला दिया। पर सबको पता था कल सुबह ये घर थोड़ा खाली हो जाएगा।
4: कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
1: ठीक है रिमझिम, अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखना अपना।
3: तुम भी, और हर रोज बताना ठीक हो या नहीं।
1: ठीक है, जब भी डर लगे याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कितने भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो।
3: जाओ, देश का इंतजार है और मेरा भी, पर मेरा थोड़ा लंबा होगा।
1: चलता हूँ।
0: हाँ। उस दिन रिमझिम ने पहली बार समझा एक फौजी की पत्नी होने का मतलब क्या होता है। दरवाजे पर खड़े होकर अपने सबसे करीबी इंसान को जाते देखना और फिर भी मुस्कुराते रहना।
5: लद्दाख, बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं और एक ऐसी ड्यूटी जहां नेटवर्क भी मुश्किल से साथ देता है। हर कॉल किसी तोहफे की तरह लगती थी।
6: हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है?
7: हेलो
6: रिमझिम, हेलो।
7: हाँ, सुनाई दे रहा है। कैसे हो, खाना खाया?
6: हाँ, खा लिया, यहाँ सब ठीक है।
7: हाँ।
6: बस ठंड बहुत है। तुम बताओ, लिखना वगैरह चल रहा है?
7: हाँ, एक नया आर्टिकल लिख रही हूँ, एक फौजी की पत्नी के इंतजार पर।
6: अच्छा, तो मैं उसका इंस्पिरेशन हूँ?
7: तुम और तुम्हारी ये दोरिया, दोनों। ऋषि,
3: हेलो, हेलो ऋषि। फिर कट गया।
5: ऐसे ही दिन बीतते गए, कभी कॉल पूरी होती, कभी बीच में कट जाती, पर हर बार रिमझिम फिर से फोन के पास इंतजार करती अगली घंटी के लिए। 6 महीने बीत गए और दोनों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, छुट्टी कब मिलेगी।
0: ऋषि, सच बता, घर की याद आती है या नहीं?
6: हर पल आती है दोस्त, पर तू बता, शादी को तेरे भी तो ज्यादा साल नहीं हुए, श्रुति को कैसे संभालता है इतनी दूर से?
0: वो मुझसे भी ज्यादा मजबूत है भाई। और तेरी रिमझिम भी तो वैसी ही लग रही थी जब आखिरी बार मिला था।
6: हाँ, वो डरती बहुत है पर हिम्मत भी बहुत रखती है। बस उसे अभी समय लग रहा है ये सब समझने में।
0: अरे समझ जाएगी दोस्त, हम सब समझ जाते हैं, बस वक्त लगता है। चल, छुट्टी मिले तो साथ ही चलते हैं।
6: पक्का यश, तू मेरा सबसे भरोसेमंद दोस्त है। इस पोस्ट पर तेरे बिना ये ठंड और भी मुश्किल होती।
0: और नहीं तो क्या। चल एक और चाय पीते हैं।
6: चल।
5: उस बंजर बर्फीली जमीन पर ऋषि और यश की दोस्ती एक नई गहराई पा रही थी, एक ऐसा रिश्ता जो आगे आने वाले तूफान में दोनों परिवारों को एक दूसरे के करीब ला देगा। रिमझिम, सच बताऊं, यश के जाने के बाद घर बहुत सूना लगता है, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या?
3: हर रोज श्रुति, पर तुमसे बात करके थोड़ा हल्का लगता है। लगता है कोई तो है जो ये सब समझता है।
5: हम फौजी पत्नियां ना शायद इसीलिए एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं, क्योंकि कोई और इतनी आसानी से नहीं समझ सकता ये इंतजार।
3: सच कहा। चलो एक वादा करते हैं, जब तक यश और ऋषि दोनों वापस नहीं आते, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे।
5: पक्का वादा।

0: उस दिन से श्रुति और रिमझिम की दोस्ती सिर्फ एक रिश्तेदारी नहीं रही, वो एक दूसरे का सहारा बन गई उस इंतजार में जो दोनों एक साथ काट रही थी।
1: हर फौजी की पत्नी एक अलग किस्म की जिंदगी जीती है, जहां प्यार चिट्ठियों में, कॉल की घंटियों में और कभी कभी सिर्फ खामोशियों में महसूस होता है। ऋषि, तुमने कहा था ना, जब आसमान देखूं तो तुम्हें याद कर लूं। आज भी देख रही हूं और लग रहा है तुम कहीं उतनी दूर नहीं हो जितना नक्शे पे दिखता है।

0: हेलो,
1: आवाज आ रही है
0: ऋषि? आज आवाज साफ आ रही है, गुड साइन है।
1: आवाज आ रही है?
0: हाँ,
1: आज नेटवर्क मेहरबान है। कैसी हो?
0: ठीक हो? बस तुम्हारा इंतजार है। छुट्टी का कुछ पता चला?
1: अभी कुछ पता नहीं मैडम। और सुनो, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना सीखना पड़ेगा, थोड़ी और स्ट्रांग हो जाओ। अगर मैं वापस नहीं आया तो?
0: ऋषि,
1: तब भी तो तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना है ना।
0: ये किस तरह का मजाक है ऋषि?
1: अरे अरे, मैं तो बस मतलब मैं मजाक कर रहा था रिमझिम। अब रोना मत शुरू कर देना।
0: मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसी बातें मजाक में कैसी लगती हैं। तुम नहीं समझते ऋषि, हर बार जब फोन की घंटी नहीं बजती ना, तो मेरा दिल कितनी बार रुकता है। और तुम ये कह रहे हो?
1: रिमझिम, सॉरी, मुझे एहसास नहीं था ये इतना गहरा लगेगा। मैं बस तुम्हें मजबूत देखना चाहता था, इसीलिए।
0: मुझे मजबूत करने के लिए तुम्हें ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है ऋषि। बस सही सलामत वापस आ जाओ, यही काफी है।
1: अच्छा सुनो सुनो रिमझिम, गुड न्यूज है, मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है। अगले हफ्ते वापिस आ रहा हूँ।
0: सच? सच में? ऋषि ऋषि, ये तो सबसे अच्छी खबर है।
1: हाँ, बस अब कुछ दिन और।
0: मैं अभी से प्लान बनाना शुरू करती हूँ। वही वो पुरानी दिल्ली वाली चाट, छत पर रात की चाय, और हाँ, इस बार मैं तुम्हारी पसंद के राजमा चावल भी बनाऊंगी।

0: मैडम इतनी प्लानिंग में तो छुट्टी कम पड़ जाएगी।
1: हाँ तो ठीक है ना, अगली बार ज्यादा छुट्टियों की मांग करना मेजर साहब।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक इंतजार। लेखिका थी आकांक्षा। भाग लेने वाले कलाकार थे अतुल जस्सी, काजल सूरी, शोभा जस्सी, ऋषि उनियाल, श्वेता शर्मा, मीनू शर्मा और संजय वर्मा। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे नाटक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब आपको कुछ कार्यक्रम संबंधी सूचना दे दें। शाम 4:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज परिक्रमा। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 4:30। शाम 5:10 पर हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे कार्यक्रम लोक रंजनी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा विश्व गर्व निरोधक दिवस। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगे सत्येंद्र यादव, ऋषिपाल चौहान और वंशाराम चौहान और जयप्रकाश शर्मा। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 5:30 पर। शाम 6:10 पर श्रोताओं, शाम 6:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चहल पहल। ग्राम संसार कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। इस कार्यक्रम में होगी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार और उन्मूलन दिवस। लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार।

ग्राम संसार कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। इस कार्यक्रम में होगी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार और उन्मूलन दिवस, लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार।

इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे खाद्य पदार्थों में मूल्यवर्धन द्वारा अधिक आय। शाम 7:35 पर हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे गजल और कवाली। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है।

0: डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरोपेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त

कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बिहार में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आश

कोई भी सूचना प्राप्त हो तो वे थाना परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ में संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी प्राप्त हुई है थाना टीपी नगर मेरठ से। खोए हुए व्यक्ति का नाम है राजीव। अंतिम बार इन्हें 25 जुलाई 2026 को देखा गया। इनकी आयु 42 वर्ष है। कद 5 फीट 8 इंच है। रंग गोरा है और शरीर की बनावट पतला है। किसी को भी इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो या इन्हें कहीं देखा गया हो तो वे थाना टीपी नगर मेरठ में संपर्क कर सकते हैं। अगली जानकारी जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है थाना लाल कुर्ती जनपद मेरठ से। गुमशुदा व्यक्ति का नाम है राजेंद्र उर्फ कलवा। अंतिम बार इन्हें 7 अगस्त 2026 को देखा गया। इनकी आयु 52 वर्ष है। कद 5 फीट 3 इंच है। मानसिक स्थिति सामान्य है। अंतिम बार इन्होंने

रमग्राम संसार आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर, 7 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाड़ी, 7:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गजल, 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार। तो श्रोताओं, ये थी प्रसारित कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: idai.gov.in. IRCON Renewable Power Limited, in my applications for two posts on contract basis at fixed monthly remunerations. The vacancies are 1. Finance Assistant requiring BCom or MCom with at least 55% marks or CA or CMA intermediate qualifications with a minimum of 3 years post-qualification experience and maximum age of 35 years carrying 45,000 rupees per month, and 1. Company Secretary requiring associate membership of the Institute of Company Secretaries of India with at least 2 years experience and maximum age limit being 30 years. Salary of 55,000 rupees per month. The last date for receipt of applications is 28th September 2026 at the IRPL Registered Office, New Delhi. Details and the prescribed application forms available on the website, that is at www.ircon.org. Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi, invites applications for the post of Professor, 9 posts, Associate Professor, 7, and Assistant Professor, 43, in the Academic and Research Departments. The posts carry Academic Level 14, 13A and 10, respectively. Eligible candidates may apply online within 30 days from publication of this advertisement in the Employment News. Hard copies of applications will be accepted up to 3 days after the last date for online submission. Details regarding qualifications, experience, fee and application procedure is available on the website, that is at www.chts.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन में डिप्लोमा प्रशिक्षु के पद के लिए एसटी बैकलॉग रिक्तियां भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान के तहत डिप्लोमा प्रशिक्षु का एक पद भरा जाना है और इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी देखिए वेबसाइट पर। वेबसाइट का पता है careers.ntpc.co.in/recruitment। मुख्यालय तटरक्षक क्षेत्र पश्चिम में विभिन्न सिविलियन पदों पर प्रत्यक्ष आधार पर भर्ती की जा रही है। पद नाम है स्टोर कीपर ग्रेड 2, इंजन ड्राइवर लश्कर, CMTD, MTS और MTS वॉचमैन। रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। नियुक्ति के तहत भारत के किसी भी हिस्से में सेवा करने की बाध्यता है। विस्तृत जानकारी आप हासिल कर सकते हैं 19 से 25 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र में, अथवा आप देख सकते हैं भारतीय तटरक्षक बल की वेबसाइट www.indiancoastguard.gov.in। आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ में श्रम कल्याण अधिकारी का एक पद भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आयु न्यूनतम 27 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष हो सकती है। नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट ddpdoo.gov.in। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में सहायक अधिकारी सचिवीय के 10 पद रिक्त हैं। इनमें से 6 पद अनारक्षित हैं, 1 पद एससी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1 तथा पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित है। शैक्षणिक योग्यता, नियम, शर्तों, अन्य मापदंडों, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की वेबसाइट पर। और इसके अतिरिक्त आप 19 से 25 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी आवश्यक जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट है www.rcfltd.com www.rcfltd.com। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कार्यालय में वरिष्ठ प्रशिक्षक पर्वतारोहण का एक पद रिक्त है। इस पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल की वेबसाइट www.recruitment.ssb.gov.in अथवा SSB की मुख्य वेबसाइट www.ssb.gov.in पर भी आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: अब से कुछ ही देर में यानी 4:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम परिक्रमा।
4: समाचार विभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
5: नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुज्तबा। हेलो सायरा।
6: हेलो जया, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, एज ऑलवेज वी ब्रिंग यू एन अमलगमेशन ऑफ नॉट जस्ट न्यूज बट ऑल्सो सिंस द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो वील डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री। यस, वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव इन स्टोर for you all this over the next 30 minutes, but first let's start with the headlines. Jaya,
5: bilkul, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने AI से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में AI विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की।
6: Mr. Jayshankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon.
5: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया।
6: Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh.
5: ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया।
6: एंड इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम क्लिंचेस गोल्ड बीटिंग ईरान एट एशियन गेम्स, विंस 2 सिल्वर मेडल्स इन वुमेन्स शूटिंग एंड मेन्स मैराथन। And Jaya, as always, we begin our show with our special segment, Dateline India. And today we're going to talk about 12 years of Make in India and of course, International Day for Total Elimination of Nuclear Weapons.
5: बिल्कुल। और कभी किसी भारतीय कारखाने की मशीनों की आवाज को अगर ध्यान से सुनिए तो उसमें सिर्फ धातु की खनक नहीं, भारत के बदलते आत्मविश्वास की धड़कन भी सुनाई देती है। पिछले 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ने निर्माण को एक विचार से आगे बढ़कर एक जन आकांक्षा का रूप दिया है। भारतीय हाथों ने उत्पाद बनाए, भारतीय प्रतिभा ने तकनीक गढ़ी और भारतीय सपनों ने नई ऊंचाइयों को छुआ।

0: Yes, today as the world turns its gaze towards Santa, it is not merely the numbers that stand behind this transformation, but the strength of millions of hardworking hands, the energy of our youth, and the confidence of an entire nation. This is the story of 12 years of Make in India.
1: और साल 2014 में 25 सितंबर को शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य बहुत बड़ा था, भारत को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाना।
0: That's right, Jaya. But 12 years on, what does Make in India actually look like today? Well, is it simply about putting an Indian label on a product, or is it something much bigger taking shape? Well, let's look around.
1: बिल्कुल, तो अगर हम श्रोताओं से बात कर रहे हैं तो श्रोताओं, अभी आपके हाथ में एक फ़ोन ज़रूर मौजूद होगा, तो अपने हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन को देखें। ये एक शानदार कहानी कहता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2014-15 में 1,90,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13,11,000 करोड़ रुपए हो गया है, यानी 12 सालों में इसमें लगभग 7 गुना बढ़ोतरी हुई है।
0: Wow, that's quite a staggering statistic, Jaya. And mobile phone production alone has risen about 32 times, reaching around 6.3 lakh crore rupees. So from being a market for mobile phones, India has now become the world's second largest mobile phone manufacturer by volume.
1: और कहानी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही सीमित नहीं है। भारत ने 2024-25 में 3 करोड़ 10 लाख से अधिक गाड़ियां बनाई, और जहाँ तक बात दवाओं की है, भारत दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। दवा उत्पादन के मामले में मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरे स्थान पर है।
0: Well, so how far has this manufacturing journey traveled? Take steel, for example. Production here has risen from 81.7 million tons to 170 million tons in these 12 years.
1: और अगर मैं रेलवे की बात करूं तो सिर्फ एक दशक में भारतीय रेलवे ने 54,800 से ज्यादा कोच बनाए।
0: And Jaya, there is one more transformation worth noticing. That is, of course, in defense manufacturing. India's indigenous defense production has risen dramatically from 46,429 crore rupees to a record 1.78 lakh crore rupees in just 12 years.
1: लेकिन यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प होती है सायरा, क्योंकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग कहानी सिर्फ उन चीजों को असेंबल करने से कहीं ज्यादा है जिन्हें पहले से कहीं और डिजाइन किया जा चुका है।
0: Absolutely, Jaya. It is about developing the components, materials, machinery, and technologies that lie at the heart of modern manufacturing. And that is where India's manufacturing journey takes a fascinating turn.

0: इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: And solar manufacturing has also seen a remarkable expansion. Module manufacturing capacity has risen from 2.3 gigawatts to 192 gigawatts in this journey of 12 years.
0: जैसा कि मशहूर अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने भी कहा था कि एक साथ आना शुरुआत है, साथ बने रहना तरक्की है और साथ मिलकर काम करना सफलता है। एक इकोसिस्टम बनाने की वही भावना यहाँ भी दिखाई देती है।
1: Absolutely. And now, well, the production-linked incentive schemes or PLI schemes, they have become another catalyst in this journey, giving industries an incentive to manufacture more in India and compete more strongly in the global market.
0: अब PLI स्कीमों की बात हो रही है तो बताएं कि इसमें 14 सेक्टर शामिल हैं। इस साल जून तक इनमें से 2,60,000 करोड़ रुपए का निवेश आया और 23,80,000 करोड़ रुपए का निर्माण और विक्रय हुआ है।
1: And this scheme also supports more than 15.5 lakh crore rupees in exports and contributed to 14.6 lakh jobs.
2: आज जब मैं मेक इन इंडिया की बात लेकर के आया हूँ तो हमने भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार के बदलाव लाना है, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले ताकि गरीब से गरीब परिवार गरीबी से मिडिल क्लास की ओर बढ़े और उसका परचेजिंग पावर बढ़े तो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उस चक्र को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम आज ये शेर का कदम है, ये लायन का स्टेप, मेक इन इंडिया।

0: Childhood, his quest for knowledge was so intense that he used to study under a street light, as it was not possible for his family to afford a gas lamp at home. He cleared all the examinations with excellence and in quick succession.
1: In 1839, Ishwar Chandra Vidyasagar cleared the Sanskrit law examination and joined Fort William College of Kolkata as head of the Sanskrit department. Later, he became principal of the same college. He excelled so well in his undergraduate studies of Sanskrit and philosophy that his college gave him the honorific title Vidyasagar, Ocean of Knowledge.
0: Vidyasagar championed the upliftment of the status of women, especially widows in Bengal. He was particularly moved by the plight of child widows who were often ill-treated and tortured. Vidyasagar also fought against the system of polygamy. Despite strong opposition of the then society, he ran a revolutionary agitation for women's education and rights to remarriage for leading a normal life.
2: आज स्वतंत्र भारत के महानतम योद्धाओं में से एक सूबेदार जोगिंदर सिंह जी की भी जयंती है। 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मेगा में जन्मे जोगिंदर सिंह जी ने साल 1936 में भारतीय सेना की फर्स्ट सिख रेजिमेंट में शामिल होकर देश सेवा का संकल्प लिया था। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के बूम ला पास पर गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने महज 20 जवानों के साथ चीनी सेना के 200 से ज्यादा सैनिकों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था। उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।

0: Today we are of course remembering an actor who refused to age, Jaya. Yes, India's very own Gregory Peck. We are talking about Dev Anand, whose birth anniversary is today.
1: बिल्कुल. और जब बात होती है पहले पर्दे के इस जादूगर की, तो इनके नाम के बिना महफिल अधूरी होती है.

0: तो देवानंद साहब ऐसे एवरग्रीन स्टार है हमारे, जिनकी झुकी हुई गर्दन, अनोखा हेयर स्टाइल और आंखों पर चश्मा और तेज तेज बात करने का अंदाज आज भी सिनेमा प्रेमियों को दीवाना बना देता है। आज उनकी जयंती है। 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शकरगढ़ में एक मध्यम वर्गीय वकील परिवार में जन्मे धर्मदेव पिशोरीमल आनंद ने जब मुंबई का रुख किया तो उन्होंने रोमांटिक अभिनय की एक नई परिभाषा गढ़ दी।
1: That's right. Considered as one of the greatest and most successful actors in the history of Indian cinema, through a career that spanned over 6 decades, he worked in more than 100 films. And Jaya, मजे की बात ये है कि usually देखा जाता है कि जो actors उम्र के जब उम्र की ढलान पे होते हैं तो वो लोग थोड़ा सा method acting करने लगते हैं या थोड़े serious किरदार निभाते हैं, but देव आनंद का record है, उन्होंने कभी भी बाप का किरदार निभाया ही नहीं। He always was the hero of his films, even when he was, you know, not so young, you can say, but he was always young at heart. और किसी ने एक अरे अच्छे से इंटरव्यू में उनसे पूछा था, if you have to sum up your life, then what would be that line? तो he actually remembered that song के मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
0: बिल्कुल। और कहते हैं ना कि देवानंद साहब केवल एक अभिनेता नहीं थे, वे जिंदगी को जिंदा दिल से जीने का एक खूबसूरत फलसफा थे। उन्होंने हमेशा सिखाया कि मुश्किलें कैसी भी हो मुस्कुराते रहना चाहिए, जैसा कि अभी आपने इस गाने में भी बताया। तो आइए सुनते हैं उनकी इसी एवरग्रीन मुस्कान को नमन करते हुए उन्हीं की फिल्म हम दोनों का यह कालजयी गीत, जो उनके पूरे जीवन के दर्शन को बयां करते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।

0: देवानंद साहब के इसी अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2001 में देश के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण और साल 2002 में सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया था।
1: And now, before we move on to the next personality, सबसे पहले उनकी आवाज सुनते हैं और फिर उनका जो है नाम लेंगे, right?
0: बिल्कुल।

तो ये मखमली और दर्द भरी आवाज किसी और की नहीं बल्कि हिंदी और बांग्ला सिनेमा के दिग्गज गायक और संगीतकार हेमंत कुमार यानी हमारे प्यारे हेमंत मुखर्जी जी की है और आज उनकी पुण्यतिथि है। 26 सितंबर 1989 को इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हेमंता का जन्म पवित्र नगरी वाराणसी में हुआ था और उनका लालन पालन कोलकाता के एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने साहित्य की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी ताकि अपना पूरा जीवन संगीत के चरणों में अर्पित कर सके। हेमंता केवल एक बेजोड़ गायक नहीं बल्कि एक युग प्रवर्तक संगीतकार भी थे। फिल्म नागिन के कालजयी संगीत और उनकी अमर बीन धुन के लिए उन्हें साल 1956 में प्रतिष्ठित फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार से नवाजा गया था।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के संग को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए मुझे यानी जया और सायरा को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी।

0: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। पंजाब पुलिस ने आज फिरोजपुर में पुलिस नाके पर चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर बलदेव सिंह को 3 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन और हथियार गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। फिरोजपुर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भूपिंदर सिंह ने मीडिया को बताया कि पंजाब पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें एक चेकिंग प्वाइंट पर रोका गया था। मामले की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंचे लहरें उठने की आशंका के कारण आज से 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के नागरिकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
1: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदिशा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी कृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Chief Justice of India, Justice Suryakant, today inaugurated the country's first victim rights center in Patna. The first of its kind victim rights center in the country has been established on the premises of the Bihar State Legal Services Authority. The center will provide legal rights and essential assistance under one roof to victims of various crimes, including invisible victims.
3: Addresses one important barrier by helping a person navigate entitlements that already exist. But there is another barrier that arises even earlier. A person may not even know where to run, where to turn, or the justice system may simply not reach them. The initiative we have launched today seek to address that wider gap. We take justice closer to people who too often struggle to access to it.
2: The center will provide psychological support to victims along with counseling and other facilities. It is being launched in Patna district as a 1-year pilot project. The Finance Ministry has announced that all public sector banks and regional rural banks will remain open tomorrow, that is Sunday, for the convenience of customers. The ministry said this step has been taken in view of the proposed 3-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions from the 28th to the 30th of this month, coinciding with the preceding weekend holidays today and tomorrow. It said the Reserve Bank of India has granted approval for all bank branches, offices, ATM link branches and currency chests to remain fully operational on Sunday. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 138th

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हासे ने अपने श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम लोक रंजनी लेकर के, और श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं आज 26 सितंबर है और आज के दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। श्रोताओं, इस विशेष दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच के अटूट संबंध के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक स्वस्थ मानव जीवन के लिए हमारे चारों ओर के पर्यावरण यानी कि स्वच्छ हवा, साफ पानी और सुरक्षित भोजन का स्वस्थ होना कितना जरूरी है।
1: बिल्कुल शशि भाई, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत वर्ष 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ द्वारा इंडोनेशिया में की गई थी। तब से लेकर आज

0: तक हर साल पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है।
1: और अब नीलम बहन, बात आती है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का जो उद्देश्य है वो क्या है, महत्व क्या है, तो ये भी अपने श्रोताओं को बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज के विषय से जुड़ा हुआ एक उपदेश अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। कलाकार हैं सत्येंद्र यादव।

0: श्रोताओं, आप सब सुन रहे थे सत्येंद्र यादव से ये उपदेश।
1: और आज के कार्यक्रम लोक रंजनी में हम बात कर रहे हैं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की। अब बात करें इसके उद्देश्य और महत्व की, तो मानव के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि दूषित हवा, असुरक्षित पानी और खराब स्वच्छता के कारण दुनिया भर में हर

0: साल लाखों लोग बीमार होते हैं। ये दिन इन खतरों को कम करने पर जोर देता है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते शहरीकरण से होने वाले नुकसानों के प्रति समाज को सचेत करना है।
0: और साथ ही उन पर्यावरण स्वास्थ्य पेशेवरों और कार्यकर्ताओं के योगदान को सराहना जो हमारे समाज को सुरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और अब नीलम बहन, बात आती है कि जो हमारा पर्यावरण है उसको स्वस्थ रखने में हम किस तरह से योगदान दे सकते हैं, तो ये भी बातें अपने श्रोताओं को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और उपदेश अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। कलाकार हैं ऋषिपाल चौहान और मनीषा राम चौहान।

संस्कार से पहले भाई, संस्कार से पहले भाई होता संयोग जरूरी है। स्वस्थ शरीर की खातर होता करना योग जरूरी है। पेट भरन को

जाए और घर से दूर हरस जागा। आज नहीं कल करते बीत बरस जागा। जल की कीमत ना समझे ते निकल बा।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे ये उपदेश, और कलाकार थे ऋषिपाल चौहान और मनसाराम चौहान।
1: और अब बात आती है नीलम बहन के, हम अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखने में किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये काम करना पड़ेगा कि जो अधिकतर हम प्लास्टिक की चीज़ें हैं, खास करके जो हम पॉलीथिन इस्तेमाल करते हैं, उसको बंद कर देना चाहिए और उसके स्थान पर जूट या कपड़े के थैलों को अपनाना चाहिए।
0: बिल्कुल, और इसके अलावा पानी और बिजली की बचत करने की भी आदत हमें डालनी चाहिए।
1: साथ ही अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिल सके।
0: बिल्कुल, और कचरे का सही प्रबंधन हमें करना चाहिए, यानी कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए।
1: तो कहने का मतलब ये है श्रोताओं कि आपको अपने घर में भी साफ सफाई का ध्यान रखना है, अपने आसपास भी साफ सफाई का ध्यान रखना है, और जहां पर भी आप जाते हैं वहां पर भी स्वच्छता का, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो हमारा जो वातावरण है वो स्वस्थ बनता है और उसकी वजह से हम भी स्वस्थ रहते हैं। तो इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत। कलाकार हैं जयप्रकाश शर्मा।
2: ओ मथुरा जावल दे है जाएगी मोक।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे थे जयप्रकाश शर्मा से ये लोकगीत।
1: इसी लोकगीत के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं को राम।

0: नमस्कार श्रोताओं, खेल खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार शर्मा, मेरे साथ हैं
1: अभिषेक कपिल।
0: अभिषेक। आज शानदार दिन है एशियाई खेलों में। जापान में आईजी नगोया में चल रहे हैं, भारत के लिए दोहरी स्वर्णिम सौगात लेकर आया है। कबड्डी में भारतीय टीमों ने अपना दबदबा कायम रखा है। दोनों ही वर्गों में शानदार उपलब्धि है और इस शानदार स्वर्णिम सौगात के साथ हम शुरुआत करेंगे। और इसके अलावा भी निशानेबाजी में भी मेडल है और स्क्वैश में भारत के दो खिलाड़ी पुरुष एकल और महिला एकल के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसके अलावा मैराथन में भी पदक है।
1: और इसके साथ ही अगर हम बात करें एथलेटिक्स की, तो अनिमेश कुजूर हो गए हैं सेमीफाइनल से फाइनल में, उनको सफर तय किया है उन्होंने। भारत की उन्नति अय्यप्पा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कल कम्पीट करेंगे।
0: जी बिल्कुल। और ताज़ा अपडेट ये भी है कि डेकाथलॉन में भारत के तेजस्विन शंकर चार इवेंट के बाद पहले स्थान पर चल रहे हैं और यहाँ भी एक उम्मीद जगी है। और उम्मीद तो जगी है हॉकी में भी, जहाँ भारत ने 2-0 से जापान को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान तय कर लिया है। तो अभिषेक, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो आज कितना शानदार दिन रहा भारत के लिए और कल के लिए हमें क्या पदक की उम्मीद जगी है, ये भी आज कुछ तय हुआ है। तो बहरहाल पेश है आईजी नगोया एशियन गेम्स पर ये रिपोर्ट।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
0: जापान के आईजी नगोया में

0: चल रहे बीसवें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। शनिवार का दिन भारत के लिए दोहरी स्वर्णिम सफलता लेकर आया, जब कबड्डी में पुरुष और महिला दोनों ही टीम ने ईरान को हराकर गोल्डन डबल पूरा किया। इसके अलावा स्क्वैश में भी दोहरे स्वर्ण की आस जग गई है, क्योंकि अनहत सिंह और अभय सिंह ने अपने अपने वर्ग यानी महिला और पुरुष एकल के फाइनल में जगह बना ली है। निशानेबाजी में भी भारत ने अपनी ताकत का फिर से प्रदर्शन किया है। महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में तिलोत्मा आशी और विदर्शा ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। मैराथन में भी भारत को पदक मिला, तो बैडमिंटन में एकल और युगल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ अपनी दावेदारी मजबूत। पुरुष हॉकी टीम की जीत का सिलसिला भी जारी है। सबसे पहले बात कबड्डी में मिली दोहरी स्वर्णिम सफलता की।
1: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कबड्डी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। भारत की महिला और पुरुष दोनों कबड्डी टीमों ने फाइनल में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सबसे पहले महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान को 37-34 से हराया। मुकाबले का पहला हाफ भारत के नाम रहा। भारतीय टीम ने 22-16 की बढ़त के साथ हाफ टाइम किया। दूसरे हाफ में ईरान ने वापसी की कोशिश की और 18 अंक हासिल किए, लेकिन भारत की 6 अंकों की पहली हाफ बढ़त निर्णायक साबित हुई। पूरे मुकाबले में भारत ने 26 आउट पॉइंट, 6 बोनस पॉइंट, 2 ऑल आउट पॉइंट और 2 टेक्निकल पॉइंट हासिल किए। ईरान के खाते में 21 आउट, 8 बोनस, 2 ऑल आउट पॉइंट रहे। अंत में भारत ने 37-34 से मुकाबला जीतकर महिला कबड्डी का स्वर्ण अपने नाम किया। ये एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम का चौथा स्वर्ण है। इसके बाद पुरुष टीम ने भी वही कहानी दोहराई। फाइनल में भारत का सामना एक बार फिर ईरान से हुआ और भारतीय पुरुष टीम ने 40-34 से जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक हासिल किया। पहले हाफ में मुकाबला बेहद करीबी रहा। भारत 17-18 से 1 अंक पीछे था, लेकिन दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी करते हुए 23 अंक जुटाए, जबकि ईरान 16 अंक ही बना सका। भारत ने मुकाबले में कुल 30 आउट पॉइंट, 4 बोनस पॉइंट, 2 ऑल आउट पॉइंट, 1 टेक्निकल पॉइंट और 3 सुपर टैकल पॉइंट हासिल किए। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने भी एशियन गेम्स का स्वर्ण बरकरार रखा, यानी एक ही दिन एक ही प्रतिद्वंदी के खिलाफ 2 फाइनल और दोनों में भारत की जीत।
0: निशानेबाजी में भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आयशी चोकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। चीन को स्वर्ण और कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। तिलोत्तमा ने 590, विदर्शा ने 588 और आशा चोकसी ने 585 का स्कोर किया। तिलोत्तमा तीसरे और विदर्शा छठे स्थान पर रही। भारत ने कुल 1763 अंक लिए। चीन ने 1773 अंक लेकर गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आशी और तिलोत्तमा ने नीलिंग और प्रोन चरण में 395 का स्कोर किया, जिसमें आशी ने इनर 10 में 25 और तिलोत्तमा ने 23 निशाने लगाए। तिलोत्तमा स्टैंडिंग में बेहतर प्रदर्शन कर शीर्ष टीम में पहुंच गई। तिलोत्तमा और विदर्शा व्यक्तिगत फाइनल में भी पहुंचने में सफल रही, जहां तिलोत्तमा चौथे और विदर्शा पांचवें स्थान पर रही। व्यक्तिगत फाइनल में तिलोत्तमा ने अहम मौके पर 9.4 स्कोर किया, जिससे पदक हाथ से फिसल गया। तिलोत्तमा पहले 25 शॉट के बाद आगे चल रही थी। उनका स्कोर 337.3 रहा। विदर्शा 327.4 अंक लेकर पांचवें स्थान पर रही। चीन की चियाऊ हान ने 359.0 के एशियाई चैंपियनशिप रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। चीन की ल्यूझान 358.8 के स्कोर के साथ रजत और दक्षिण कोरिया की जियोन किम को कांस्य पदक मिला, जिन्होंने 348.4 का स्कोर किया। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में नीलिंग, प्रॉन और स्टैंडिंग पोजीशन में निशाने लगते हैं। स्क्वैश में 18 साल की युवा स्टार अनहत सिंह ने 2 सेट से पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए महिला एकल में जापान की विश्व में छठे नंबर की खिलाड़ी सतोमी वातानाबे को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर स्वर्णिम दस्तक दी है। इसी तरह पुरुष एकल में अभय सिंह ने पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर स्वर्ण पदक की आस जगाई है। महिला एकल में अनहत ने जापान की सतोमी वातानाबे के खिलाफ पहले 2 सेट 9-11, 11-3 से गंवा दिए थे, लेकिन अपने से ऊंची रैंकिंग के खिलाड़ी के खिलाफ पिछड़ने के बाद उन्होंने हौसला नहीं खोया और अगले 2 सेट 12-10, 11-6 से जीतकर वापसी की और निर्णायक सेट में शुरुआत से बढ़त बनाकर 11-3 से सेट और सेमीफाइनल मैच जीत लिया। पुरुष एकल के सेमीफाइनल में अभय ने पाकिस्तान के इरफान को 11-3, 12-10, 11-6 से हराकर सीधे सेटों में जीत दर्ज कर 35 मिनट में मैच अपने नाम कर लिया। हालांकि मिश्रित युगल में जोशना चिनप्पा और वी सेंथिल कुमार को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य से संतोष करना पड़ा। जोशना सेंथिल को हांगकांग के तांग मिंगहांग और ली का यी से 10-11, 11-2, 10-11 से हार मिली। 10-11, 11-2, 10-11 से हार मिली। 40 साल की जोशना का यह एशियाई खेलों में छठा पदक है। इससे पहले उनके नाम 2 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। बैडमिंटन से अच्छी खबर यह है कि पीवी सिंधु महिला एकल के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। वहीं उन्नति हुड्डा और आयुष शेट्टी ने भी अपना अभियान प्री क्वार्टर तक पहुंचा दिया है। पीवी सिंधु ने चीन ताइपाई की चियू पिंचियान को 21-14 से हराकर महिला एकल के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। इसके अलावा उन्नति हुड्डा और आयुष शेट्टी भी जीतने में सफल रहे। आयुष ने पुरुष एकल में कजाकिस्तान के मकसूद ताजी बुल्लायेव को 21-7 से 21 मिनट

0: निशाकी कुसुमा पुत्रा वरदानी से होगा, जबकि आयुष प्री क्वार्टर में चीन ताइपे के टीएन चैन से भिड़ेंगे। महिला युगल में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का भी शानदार प्रदर्शन जारी है और उन्होंने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय महिला जोड़ी ने जापान की दुनिया की तीसरे नंबर की जोड़ी मायू मातुसुमोतो और युकी फुकुशिमो को 24-22 21-8 से हराया। दूसरे गेम में एक समय त्रिशा गायत्री पिछड़ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने 15-15 से बराबरी की और अंततः मैच अपने कब्जे में कर लिया। अब त्रिशा गायत्री पदक से महज एक जीत दूर है। ड्रैगनफील्ड से भारत के लिए पदकों की फुहार थी। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट में कांस्य गुलबीर का 10,000 मीटर में रजत और पोलवाल्ट में बार्निका एलन गोविन ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इससे पहले कभी एशियाई खेलों में भारत को पोलवाल्ट में पदक नहीं मिला था। भारत के लिए आज दिन की शुरुआत मैराथन में सावन बरवाल के सिल्वर मेडल से हुई। सावन बरवाल ने नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाते हुए 2 घंटे 11.37 सेकंड का समय निकाला। मैराथन में ये 44 साल बाद एशियाई खेलों में मिला पहला मेडल है। इससे पहले भारत की मेजबानी में 1922 में नई दिल्ली में हुए खेलों में हुसूर कुकुप्पा सिमरन ने कांस्य पदक जीता था। तलवारबाजी में भारत की महिला फाइल और पुरुषों की साबरी टीम क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई। महिला फाइनल टीम में जय अथिता स्टेलन राज, मीना देवी नाउरेम, कनुप्रिया चावला और सोनिया देवी वाइकहोम ने इंडोनेशिया को 45-24 से हराया। पुरुषों की साबरी टीम में शामिल विशाल थापर, किशोर निधि, कुमार सेन, पद्मा, करण सिंह और लक्ष्य बाड़ेसर ने फिलीपींस को 45-27 से पराजित किया। कोरिया ने पुरुष साबरी टीम को 45-25 और जापान ने फाइल स्पर्धा में भारत को 45-14 से हराया। कैनोइंग में खाली हाथ लौटना पड़ेगा, जबकि हांगजोंग खेलों में भारत को एक कांस्य पदक मिला था। पुरुषों के कयाक एकल 500 मीटर में भारत के हर्षवर्धन सिंह शक्तावत अपने सेमीफाइनल में 1:50.543 सेकंड का समय निकालकर चौथे स्थान पर रहे। फाइनल बी में 3 प्रतियोगिताओं में शीर्ष पर रहे। मिश्रित कैनो युगल 500 मीटर में राजू रावत और नेहा देवी फाइनल ए में 9 जोड़ियों में 8वें स्थान पर रहे। मिश्रित कयाक युगल 500 मीटर में पार्वती गीता और प्रसन्ना फाइनल ए में 9वें स्थान पर रहे। तो ये तो थी एशियाई खेलों पर रिपोर्ट और इससे अभी और अपडेट करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हॉकी की, जहां भारत ने जापान को 2-0 से हराकर अपना शानदार अभियान जारी रखा है। तो क्या कहना चाहेंगे?
1: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जापान को 2-0 से हरा दिया है। इस जीत के साथ सबसे अहम बात यह कि भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ओर से अभिषेक और कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल किए। इस जीत के साथ भारतीय टीम के मुकाबले में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और जापान को पूरे मैच में गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। भारत को मैच में कुल 12 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जबकि जापान को 6 पेनल्टी कॉर्नर मिले। भारत के लिए अभिषेक ने एक फील्ड गोल किया, जबकि हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए एक गोल दागा। वहीं अगर हम मैच को देखें तो भारत इससे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन खैर जीत भारत के पाले में आई। डिफेंस में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित दास, जर्मनप्रीत सिंह, सुमित और जुगराज सिंह समेत भारतीय डिफेंस ने जापान के हमलों को लगातार रोके रखा। गोलकीपिंग में मोहित, शशि कुमार और सूरज करकरे ने भी टीम की जिम्मेदारी संभाली। आंकड़ों की बात करें तो भारत ने जापान के मुकाबले ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया और पेनल्टी कॉर्नर के मामले में भी स्पष्ट बढ़त बनाई। आखिरकार भारत ने जापान को 2-0 से हराकर मुकाबला अपने नाम किया।
0: हमने खास को आज जो एशियाई खेलों में जो भारत का प्रदर्शन रहा, चाहे वो कबड्डी की दो गोल्ड हो या उसके अलावा शूटिंग की बात हो, बात स्क्वैश की हो, तमाम जो आज जो गतिविधियां रही, भारत का शानदार प्रदर्शन रहा, उस पर हमने बात की जी राजा रमन से, जो कि जाने माने खेल पत्रकार हैं, और हमने महिला कबड्डी की जो स्वर्ण पदक के बाद ये बात की थी। तो आइए जानते हैं उन्होंने इस प्रदर्शन पर उनकी क्या राय।
2: गोल्ड जीतना शायद जरूरी था,
3: लेकिन सर जिस तरह ईरान टक्कर दे रहा है तो उससे पता लग रहा है, और तो लगता है कि कहीं जो हमारी मोनोपोली और जो वर्चस्व है उसके लिए हमें अपना कायम रखने के लिए लगातार मेहनत करने की और जरूरत है। इसी तरह
2: दो चीजें हैं, एक तो भारत अगर जीतता जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे देश जब कबड्डी खेलने लगेंगे आशा है कि ओलंपिक गेम्स में भी कबड्डी शामिल हो सकती है। जब हम देख रहे हैं कि ईरान जैसा देश काफी सालों से बहुत अच्छा कबड्डी खेलते हैं, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो और भी देश है, जापान जैसा देश, वहां पे कबड्डी काफी पॉपुलर है, ऐसे देश जब खेलने लगेंगे और फिर हमको टक्कर देंगे, खेल का बढ़ावा हो रहा है और ये शायद बहुत जरूरी है कबड्डी जैसे खेल के लिए, जो हमारा अपना खेल है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट है हमारा, लेकिन अगर विश्व स्तर पर कुछ करना है तो बाकी देशों को अच्छा खेलना होगा। कहीं ना कहीं खुशी होती है कि ईरान जैसा देश कबड्डी को अपनाया है और फिर हमसे मुकाबला काफी संघर्षपूर्ण हो जाता है हमारे साथ जब खेलते हैं।
3: हम तो कबड्डी बाकी देशों को भी सिखा रहे हैं और
2: कबड्डी का जो दबदबा है

0: में जो गेम की जो खूबी है ये कईयों को अभी समझ में आ रहा है। ये बहुत ही एथलेटिक और टफ खेल है और काफी कॉम्पिटिटिव है, चोट लगने का चांस कम होता है, हालांकि काफी फिजिकल खेल है, लोगों को लगता है कुश्ती जैसे है, जिम्नास्टिक्स भी शामिल है इसमें, आपको एथलेटिक होना होता है तो, और आपका दिमाग काफी तेज होना है। ऐसा खेल छोटे से एरिया में मैट के ऊपर बहुत आसानी से खेला जा सकता है और दुनिया में जब ये खेल फैल रहा है तो हम इससे ज्यादा खुश कभी हो नहीं सकते।
1: खुशखबरी तो इन शूटिंग रेंज से भी है, और तिलोत्मा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसई की तिकड़ी ने महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री में रजत पदक दिला दिया।
0: अच्छा प्रदर्शन रहा, टीम इवेंट में भारत के टीम्स पदक लाई है, लेकिन थोड़ा सा निराशा जरूर हमको सामना करना पड़ा उसका, क्योंकि तिलोत्तमा सेन के पास एक मौका था कम से कम रजत पदक जीतने का इंडिविजुअल इवेंट में, लेकिन कुछ छोटे अंक से रह गई, फोर्थ फिनिश की है, विदर्शा भी फिफ्थ फिनिश करके बाहर चली गई थी, लेकिन उम्मीदें यह है कि थ्री पोजीशन टीम से इंडिविजुअल में मेडल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि तिलोत्तमा का शूटिंग काफी शानदार रहा था, लेकिन टीम परफॉर्मेंस तीनों मिलके अच्छा नतीजा लाए हैं भारत के लिए और सिल्वर इज अ वेरी गुड मेडल डेफिनेटली।
1: क्वेश्चन में तो लगातार शानदार प्रदर्शन है, और हालांकि मिक्स में जोशना जो कि अनुभवी हैं और सेंथिल कुमार ब्रॉन्ज ले सके, सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद जो स्वर्णिम दस्तक दी है अनाथा और अभय ने।
0: इनके पास मौका है ओलंपिक को क्वालिफाई करने का, यहाँ पे अगर गोल्ड मेडल जीत जाते हैं तो लॉस एंजलिस ओलंपिक का सीट पक्का हो जाता है और ये अच्छी बात है, स्क्वाश जैसे खेल के लिए काफी सालों से मेहनत करते आए थे स्क्वाश के अधिकारी, अब जाके वो शामिल हुआ है ओलंपिक में और ये डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है, अगर यहाँ पे जीत जाते हैं हमारे बच्चे, दोनों बहुत ही शानदार खेल खेले हैं। अनाथ की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि 0-2 से डाउन थी और वहां से उठ के आना और फिर 3-2 जीतना, अनाथ ने दिखाया कि बहुत ही जबरदस्त चैंपियन मटेरियल है, विश्व जूनियर चैंपियन रही है
1: जी
0: और उसी का कॉन्फिडेंस लेकर यहाँ पे आई है, लेकिन हार का सामना करते हुए भी वो जीत की ओर बढ़ते गई है और ये बहुत शानदार है। अगर कोई कभी किताब लिखेगा कि कोई भारतीय खिलाड़ी पिछड़ते हुए भी हौसला नहीं हारते और फिर आगे चल के मैच जीता हो, ये बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला मैचों में से एक है।
1: जी बिल्कुल। और मैराथन की बात करें तो लंबे अरसे के बाद हमें एशियाई खेलों में पदक मिला है। सावन बरवाल ने सुबह जिस तरह शुरुआत दिलाई है और एक अच्छी खबर मिली उनके पदक से।
0: दिल खुश हो गया है सुबह सुबह जब आप जगते हैं और पता चलता है कि सावन बरवाल लीडर्स में है, आधा रेस हुआ था जब मैं रेस स्टार्ट किया था, लास्ट के 21 किलोमीटर काफी तक लीड भी कर रहे थे लेकिन उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा थे और सावन बरवाल ने समझदारी के साथ ये रेस दौड़ाए, जापानी खिलाड़ी को गोल्ड हासिल हो गया, लेकिन सावन बरवाल की जितनी तारीफ की जाए कम, हिमाचल से आते हैं, बहुत कम दौड़े हैं मैराथन, लेकिन 1982 के बाद जब दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे तब जाके एक ब्रॉन्ज मेडल आया था, लेकिन ये सिल्वर बहुत ही शानदार प्रदर्शन सावन बरवाल का।
1: सर बैडमिंटन से भी एकल में बहुत अच्छा चल रहा है, और सिंधु भी जीती, उन्नति हुड्डा भी जीती और आयुष ने भी जीत हासिल की है।
0: इन्हीं पे रह गई अभी पूरी उम्मीदें, लेकिन उन्नति के ऊपर थोड़ा सा दबाव रहेगा, काफी मुश्किल मैच जीत कर आई है लेकिन कुछ घंटों बाद उन्हें दूसरा मैच खेलना होगा, उनके सामने एक चुनौती रहेगी कि वो रिकवरी किस तरीके से करके कैसे कितना फ्रेश वो दोबारा कोर्ट में आती है, ये चैलेंज हो जाता है, लेकिन ये चैलेंज सबके लिए एक जैसे है, चुनौतियों का सामना करना ही तो खेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
1: मुक्केबाजी भी ऐसा इवेंट है जहां हम अब ज्यादा पदकों की उम्मीद करते हैं, और कपिल पोखरिया क्वार्टर फाइनल पहुंच गए हैं।
0: आगे रास्ता मुश्किल होता जाएगा, मुक्केबाजों के लिए एक या दो अगर गोल्ड आ जाते हैं अच्छी बात हो जाती है, लेकिन अगर 3 या 4 वहां से पदक मिल जाते हैं, जैसे हमारे पहलवानों से भी ऐसी उम्मीद होती है कि 1 या 2 गोल्ड ला दें और फिर 4 या 5 एथलीट को ब्रॉन्ज या सिल्वर भी हासिल हो जाए तो भारत के पदक तालिका में आगे बढ़ने की उम्मीदें बढ़ जाती है।
1: जी बिल्कुल। अगर कई इवेंट ऐसे हैं जहां पदक तो नहीं मिले अभी, जैसे तलवारबाजी की बात करें, घुड़सवारी की बात करें, क्या देखते हैं कि प्रदर्शन एक उम्मीद जगाता है?
0: भारत सरकार ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था फेंसिंग जैसे टीम को, उनसे उम्मीदें ये रहती है कि कम से कम सेमीफाइनल पहुंचे, लेकिन उम्मीद ये है कि अगर लगातार इसी तरीके से सरकार सपोर्ट करते रहेगी, कुछ और लड़के सामने आएंगे जो हमारे फेंसिंग टीम को आगे ले जा सकते हैं।

0: की अगर बात करें तो वो हमारे राइडर हॉर्स कॉम्बिनेशन कल फाइनल खेलेंगे और उनसे उम्मीद है कि उनमें से कम पदक लेकर आएगा। काफी चुनौतीपूर्ण होगा उनके सामने, बहुत अच्छे घुड़सवार खेल रहे हैं। 15 लोगों के फाइनल में सबको ये यकीन करना होगा कि हम भी मेडल जीत सकते हैं। हृदय छेड़ा से मेरी पूरी उम्मीद है कि वो कुछ कर दिखाएंगे।
1: जी बिल्कुल, उम्मीद सब प्रयासों की जननी है और इसी उम्मीद का दामन थामे भारतीय खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: जी बिल्कुल, मुक्केबाजी में बात करें तो कपिल पोखरिया जैसे हमने बताया क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जबकि जादू मनी सिंह हार कर बाहर हो गए हैं। और एशियाई खेलों में 100 मीटर भाला दौड़ की पिछली बार की रजत पदक विजेता ज्योति ग्यारा जी वार्म अप के दौरान दर्द होने के कारण इवेंट से हट गई हैं।
1: वहीं भारत के अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 20.81 सेकंड का समय दर्ज किया और फाइनल में जगह बनाई। भारत की उन्नति अयप्पा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही हरिता बद्रा ने भी फाइनल में प्रवेश किया।
0: सेकेंड फील्ड में जिस तरह अभिषेक शानदार प्रदर्शन हो रहा, गुलबीर ने जिस तरह पिछली बार कांस्य जीता था और इस बार शानदार प्रदर्शन किया और आपने पदक का रंग बदला है, इस पर हमने भारत के जाने माने कोच कैप्टन अमरीश अडाना से बात की, तो क्या कहा उन्होंने गुलबीर के प्रदर्शन पर, आइए जानते हैं।
2: जो आया है एक नौजवानों में एक मोटिवेशन आएगा इससे, जो पहले हम देखते थे हमारे लॉन्ग डिस्टेंस में खासकर 5,000, 10,000 और 3,000 में इनमें मेडल कम आते थे, लेकिन अभी 10,000 में जो हम टक्कर दे रहे हैं, जो पहले इनके खिलाड़ी बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से गुलवीर ने टक्कर दी और देश की झोली में सिल्वर मेडल डाला, वो काबिले तारीफ है। ये उनके प्रदर्शन में लगातार निरंतरता है। सबसे पहली बात तो सेना में है, सेना में भी वो खिलाड़ी है जो विदाउट स्पोर्ट्स के भर्ती हुआ है, भूख लगातार उस मेडल की तरह जा रही है और देश के हित में है। ये ऐसा लड़का आप देख रहे हैं जो फुली कंटिन्यू ट्रेनिंग पे इसका फोकस है। आप कभी भी देखेंगे जब ये मेडल जीतता है, मेडल जीतने के बाद में ये कहीं बेचारा छुट्टी नहीं जाता, थोड़ा घना जाता है, लगातार अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखता है। एक ही बात है कि जब तक दम है और जब तक जान है अपना 100% दूं और जितने रिकॉर्ड बनाए जाएं भारत के नाम वो उतने बनाए जाएं, उसका परफॉर्मेंस निरंतर अच्छा रहा है।
3: और जिस तरह सर अब फैसिलिटी भी है, अब अपने प्रोग्राम है और शानदार जिस तरह सरकार प्रोत्साहन दे रही है लगातार खिलाड़ियों को, खुद गुलबीर ने कहा कि हमें जिस तरह साइज से और जो अन्य जो सुविधाएं मिल रही हैं वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। अब सुविधाएं बढ़ी हैं तो प्रदर्शन भी बेहतर हुआ है।
2: ये बात बिल्कुल सही है, अगर पहले के मुकाबले हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही है, हर चीज सारी डबल है, इंसेंटिव डबल है। पहले टॉप स्कीम नहीं हुआ, अगर आना जाना बाई एयर होता है, पहले ट्रेन में आया करते थे कि डेट में बाई एयर हमारे खिलाड़ी जाते हैं और एक बाई एयर खिलाड़ी जाते हैं तो उनका भी मोटिवेशन होता है। सरकार ने सारी फैसिलिटी जो दी है ये भी काबिल तारीफ है, हर क्षेत्र में, चाहे वो खिलाड़ी खेलो इंडिया का हो, चाहे खिलाड़ी टॉप स्कीम का हो, कई स्कीम जो सरकार ने दी है वो खिलाड़ियों के हित में है और इसी के लिए परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है।
3: सर आप तो सांभले के कोच रहे हैं, लगातार अच्छा बेहतर हो रहा है।
2: थोड़ा लेना चाहूंगा अविनाश सांभले की तरफ, जब ये सोचते थे 3,000 मीटर स्टीपल रेस में हमारा कोई स्कोप नहीं है और कि नहीं जितने भी किए खिलाड़ी हैं वो उनसे हम लोग डरते थे, उस डर को उस भय को हमने दूर किया। वही अविनाश सांभले था जो जमीन इस तरह से उठाया हमने, जो एबीसीडी नहीं जानता था स्टीपल रेस की, और उसको देख के आज एक मोटिवेशन आता। ठीक उसी तरह जैसे नीरज चोपड़ा का मेडल ओलंपिक में आया तो सब नौजवानों में एक मोटिवेशन आया, और आप देख रहे हैं पहले एक नीरज चोपड़ा 87+ होता था, आज की डेट में 85, 86 5-6 खिलाड़ी हैं। तो ये एक शानदार मोटिवेशन उन नौजवानों के लिए है जो ये सोचते थे कि हम मेडल नहीं ला सकते।
3: मिश्रित रिले टीम ने सिल्वर लिया है और उसके बाद सीमा कुमारी का 10,000 मीटर में मेडल है, इसके बाद लगातार अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। अब तो पोल वॉल्ट में पहली बार एशियाई खेलों में हमें पदक मिला।
2: बिल्कुल पोल वॉल्ट में तो ये काबिले तारीफ, उस लड़की ने काफी जोर लास्ट तक लगाया और ये भारत की झोली में पहला मेडल डाला है। पहले हम ऐसा सोचते थे, हमारे खिलाड़ी सोचते हैं कि पोल वॉल्ट में हमारा मेडल नहीं आएगा, लेकिन उस लड़की ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और जो मेडल दिया उससे अब जितनी भी लड़कियां पोल वॉल्ट की होंगी या लड़के भी होंगे उनमें एक शानदार मोटिवेशन आएगा और अगले जो भी कंपटीशन होगी बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस पोल वॉल्ट में आएगा।
3: तो बिल्कुल बारनिका ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और
2: शानदार प्रदर्शन किया।
3: महिला शॉटपुट की बात करें तो मनप्रीत कौर ने शॉटपुट में 17.17 मीटर के साथ मेडल जीता है और कॉमनवेल्थ गेम्स में वो चौथे स्थान पर रही थी, तो कहीं ना कहीं वापसी एक बड़ा एक चैलेंज रहता है। तो ये चैलेंज एक होता है, आप तो खुद जानते हैं एथलीटों के साथ रहे हैं, खुद एथलीट रहे हैं, तो सर ये कितना एक वापसी कितना एक चैलेंजेबल होता है और उसमें एक स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है, कहीं ना कहीं प्रेशर होता है आपके पास बेहतर करने का?
2: देखिए जो हम वापसी की बात करते हैं हम उस

0: पे जाने के लिए काफी परेशानी आती है, लेकिन जो खिलाड़ी कंटिन्यू ट्रेनिंग करते हैं उसका फोकस होता है कि मुझे ये करना है, वो कर देते हैं। और जो थोड़े से मोटिवेशन में थोड़ा डाउन होते हैं और सोचते हैं अब कैसे होगा या कल होगा, जो ऐसा सोचते हैं वो खड़े नहीं कर पाते। लेकिन ये जरूरी है कि इंजुरी एक खिलाड़ी की दोस्ती होती है, जब हम उसको दोस्त मानते हैं तो इंजुरी अपने आप चली जाती है। एग्जाम्पल ऐसे बहुत है, उस मौके को मेडल में बदली करूं तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ और हो नहीं सकता।
1: मनप्रीत जब अपना प्रदर्शन कर रही थी तो उनकी बेटी, 15 साल की बेटी वहां दर्शक दीर्घा में बैठी थी, तो फैमिली बैठी है आपकी, तो वो वहां भी एक इंस्पिरेशन बनती है कि नहीं मेरे को साबित करना है अपने आप को।
0: ये ज्यादा एक मोटिवेशन होता है उस खिलाड़ी के लिए, जब वो सामने अगर बच्चा बैठा हो उसके दिल में एक इच्छा होती है कि आज मुझे कुछ साबित करना है कि मेरा बच्चा जो सामने देख रहा है उस पर असर क्या पड़ेगा, कि मम्मी कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
1: जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार प्रदर्शन चल रहा है भारतीय टीम का। उम्मीद है इस बार भारतीय खिलाड़ी ट्रैक एंड फील्ड पर नया इतिहास रचने में सफल रहेंगे। और आकाशवाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बिल्कुल, और ये शानदार प्रदर्शन है। और एक ताजा अपडेट आपको दे दें, भारत के लिए अच्छी खबर है, सिल्वर मेडल आ गया है। तेजिंदर पाल सिंह टूर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को ये सिल्वर मेडल दिलाया है। पुरुष गोला फेंक स्पर्धा में उन्होंने अपने 5वें प्रयास में 20.64 मीटर का थ्रो फेंका, जो उनके लिए रजत पदक दिलाने के लिए काफी रहा। अभिषेक, अब बात शतरंज की जाए, और शतरंज की बिसात पर क्या खबर है आपके पास?
3: बिल्कुल, उज्बेकिस्तान के समरकंद में जारी 46वीं फिडे शतरंज ओलंपियाड में आज भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें राउंड 10 में खेल रही हैं। ये टूर्नामेंट का पेनल्टी मेट यानी 10वां राउंड है और भारतीय टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला है। पुरुष वर्ग में भारत का सामना उज्बेकिस्तान 2 से हो रहा है। राउंड 9 में जर्मनी को 2.5 के मुकाबले 1.5 से हराने के बाद भारत के खाते में 15 मैच पॉइंट हैं और टीम शीर्ष स्थान की दौड़ में बनी हुई है। आज भारत की ओर से आर प्रज्ञानंदा पहले बोर्ड पर जखोंगीर वाकिदो के खिलाफ खेल रहे हैं। दूसरे बोर्ड पर अर्जुन एरिगेसी का मुकाबला अबिदा मलिक से हो है। तीसरे बोर्ड पर निहाल सरीन की भिड़ंत मुहम्मद जोहिद सुयारोव से है, जबकि चौथे बोर्ड पर विश्व चैंपियन डी कुकेस के सामने ओर्टिक निगमाताओ है। गौर करने वाली बात यह है कि राउंड 9 में भारत की जीत के हीरो रहे गुकेश ने जर्मनी के अलेक्जेंडर डोनचेंको को हराकर टीम को जीत दिलाई थी। वहीं महिला वर्ग में भारत का मुकाबला चीन से चल रहा है। चीन इस समय 17 मैच पॉइंट के साथ शीर्ष पर है, जबकि भारत 15 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है। यानी ये मुकाबला पदक की दौड़ के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पहले बोर्ड पर कोनेरू हम्पी का सामना चीन की जू जिनर से हो रहा है। दूसरे बोर्ड पर दिव्या देशमुख खेल रही हैं। तीसरे बोर्ड पर वंतिका अग्रवाल, जबकि चौथे बोर्ड पर शानदार फॉर्म में चल रही सविता श्री भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
2: और बात अब क्रिकेट की करते हैं, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज होनी है और कल उसका मुकाबला खेला जाएगा दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में। और ये तिरुवनंतपुरम में जो ये मुकाबला खेला जाना है उसके लिए भारतीय टीम जीत की दावेदार नजर आ रही है। विराट कोहली और रोहित शर्मा फिर से वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे श्रृंखला में आकर्षण का केंद्र होंगे। सीरीज का पहला मुकाबला कल खेला जाएगा। भारतीय टीम 2027 में होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहेगी। विश्व कप से पहले भारत को 14 से 20 वनडे खेलने हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला अगर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होती है तो वनडे विश्व कप दरअसल ये अफ्रीकी महाद्वीप में ही होना है, तो ऐसे में ये एक तैयारी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है सभी वनडे मैचों में। तो भारत को यह भी तय करना होगा कि यशस्वी को 50 ओवरों के प्रारूप में मौके दिए जाएंगे या नहीं, क्योंकि कोहली के चोट होने पर यशस्वी को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच मिले थे खेलने को। इस वजह से कप्तान गिल तीसरे नंबर पर उतरे थे और अब ओपनिंग पर देखना है कि रोहित के साथ यशस्वी उतरेंगे या कप्तान गिल, ये भी तय करना है। रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉट में शतक जमाया था, ऐसे में उनकी जो बात की जा रही है कि उनको संन्यास की जो अटकलें चल रही हैं उनको उन्होंने काफ़ी हद तक विराम लगाया है। कोहली के पास नया रिकॉर्ड बनाने का मौका है, वह सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे में 51 रन दूर है 15,000 रन से। और युवा क्रिकेटरों में गुरनूर बार और आकिब नबी जैसे तेज गेंदबाज भी हैं जिनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है। हार्दिक चोटिल होने के कारण इस श्रृंखला से बाहर हैं, ऐसे में नीतीश कुमार रेड्डी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। बल्लेबाजी में तो नीतीश ने अच्छा किया है लेकिन गेंदबाजी में किसी भी मैच में 10 ओवर नहीं।

0: देखे हैं। विंडीज की बात करें तो उसे न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू वनडे श्रृंखला में करीबी अंतर से मिली हार को भूलकर उतरना होगा। विंडीज की कप्तानी शाई होप कर रहे हैं। तो बहरहाल अभिषेक, और अगर बात करें फुटबॉल की तो डियान विलियम्स के गोल से भारतीय फुटबॉल टीम ने दुनिया की 44वें नंबर की टीम पनामा को एक एक से मैत्री मैच में ड्रॉ पर रोका है।
1: बिल्कुल, बेंगलुरु के श्री कांति रवा स्टेडियम में कल भारत और 2026 फीफा वर्ल्ड कप खेल चुकी पनामा के बीच अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मुकाबला एक एक से ड्रॉ रहा। ये दोनों देशों की सीनियर राष्ट्रीय टीमों के बीच पहली भिड़ंत थी। पनामा फीफा रैंकिंग में 44वें और भारत 138वें पर है। भारतीय टीम ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। रयान विलियम्सन ने पहले हाफ में भारत के लिए कुछ अच्छे मौके बनाए और 41वें मिनट में आखिरकार टीम को बढ़त दिलाई। आकाश मिश्रा के थ्रो इन से शुरू हुए मूव में बिजॉय वर्गीज ने गेंद आगे बढ़ाई और विलियम्स ने डिफेंस को पीछे छोड़ते हुए बॉक्स में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने बाएं पैर से शानदार फिनिश कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में पनामा ने वापसी कर की तो कोशिश तेज कर दी। 68वें मिनट में ओमार वालेंसिया ने बॉक्स के बाहर से जोरदार लेफ्ट फुटेड शॉट लगाकर गेंद को भारतीय गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू की पहुंच से बाहर भेज दिया और स्कोर 1-1 कर दिया।
0: बिल्कुल, क्रिकेट की बात को जाए रखें तो कल मिनू मणि की 56 गेंदों में नाबाद 88 रन की पारी और निकी प्रसाद के अर्फन मौला खेल से भारत ने तीसरे अनधिकृत वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से पराजित कर दिया। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से भारत ने अपने नाम की है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 362 रन बनाए थे। भारत के लिए वैष्णवी शर्मा और निकी ने 4-4 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 49.2 ओवर में 6 विकेट पर 364 रन बनाकर जीत हासिल कर ली है। तो अभी घड़ी की सुइयां हमें ज़्यादा अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं। तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे यानी नवीन कुमार शर्मा को
1: और अभिषेक कपिल
0: को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विश्वनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरनूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन

ट्रेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरो पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रतिष्ठित लाल बाग चराजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि सहित कई गणपति प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु 21 घंटे से अधिक समय तक चले जुलूस में शामिल हुए। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चहल पहल।
1: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल। सिख धर्म के 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस के अवसर पर उनके त्याग, शौर्य और धर्म रक्षा की पावन गाथा को मंचित करने हेतु भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा भव्य नाट्य अमर बलिदान का मंचन किया गया। ये मंचन नई दिल्ली स्थित श्री राम कला एवं संस्कृति केंद्र सभागार में आयोजित किया गया था। इस नाट्य प्रस्तुति पर प्रकाश डालते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल बताते हैं,
2: ये पहला प्रयास है जिसके अंदर केवल हम गांधी जी के आदर्श और विचार की बात नहीं करते, हमारे देश में और भी जो महापुरुष हैं उनके निमित्त भी हमने कार्यक्रम करने आरंभ किए। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस के अवसर के ऊपर इस नाट्य का मंचन किया जा रहा है। निर्देशक है राज उपाध्याय। गुरु तेग बहादुर जी वो शख्स थे जो हमको हमारे महापुरुषों का बलिदान दिखाता है। जब कश्मीर के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था उस समय उन्होंने अपील की गुरु तेग बहादुर जी से कि आओ

0: को बचाओ। और गुरु तेग बहादुर जी तब उनके लिए लड़े और उन्होंने जिस तरह से शहादत दी उस सब के बारे में आपको पता है। गुरुओं के बारे में कहा जाता है कि उनका चित्रण सीधा नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए ये नाटक का नाम दिया गया है अमर बलिदान। अमर बलिदान में आपको गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा और विचार के बारे में पता चलेगा। मैं समझता हूँ आज का ये नाटक आपको पसंद आएगा।
1: गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक संजीत कुमार ने बताया,
2: संस्कृति मंत्रालय के अंदर गांधी स्मृति दर्शन समिति कार्य करती है और भारत सरकार जो है गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत वर्ष के अवसर पर कई तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कर रही है। आयोजन भी उसी का हिस्सा है। गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत वर्ष के अवसर पर गांधी स्मृति अमर बलिदान नाटक का आयोजन कर रही है दिल्ली के मंडी हाउस में। हम सब जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक कट्टरता के खिलाफ और मानवता के रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के समय में भी बहुत आवश्यक है कि जो उन्होंने शिक्षा दी अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का, अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से सच्चाई के रास्ते पे आगे चल के सर्वोच्च बलिदान एक व्यक्ति दे सकता है, तो हम सबके लिए भी एक बड़ी सीख है। और गुरु तेग बहादुर जी का जीवन जो है उनका बलिदान हमें जो है बहुत कुछ सिखाता है। उसी के लिए हम सब यहाँ पे दिल्ली के मंडी हाउस में लोग यहाँ पे कई भारी संख्या में यहाँ पे इस नाटक को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो नाटक जो है हमें मानवता की रक्षा के लिए भी संकल्प दिलाता है और धार्मिक कट्टरता किसी भी तरीके का ठीक नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी ने उन धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान दिया और वो बहुत ही उनको आदर के साथ उनका नाम भी लिया जाता है मानवता की रक्षा के लिए और सर्वोच्च बलिदान के लिए। ऐसे तो गुरु तेग बहादुर जी को हिंदी चादर के नाम से भी हम सब याद करते हैं। नाटक जो है अमर बलिदान है जिसके निर्देशक राज उपाध्याय हैं, उनके साथ तकरीबन 40 से 50 और भी कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। बहुत ही भव्य नाटक है, बहुत ही अच्छा नाटक है। तो नाटक बेसिकली जो है उसी बलिदान के ऊपर है और लोगों को एक सीख देगा कि मानवता की रक्षा के लिए हम सबको आगे आने की जरूरत है।
1: इस भव्य नाट्य प्रस्तुति के निदेशक राज उपाध्याय ने कहा,
3: मैं नाटक अमर बलिदान का राइटर हूं और निर्देशक हूं। ये नाटक गुरु तेग बहादुर जी के जीवनी से प्रभावित होकर के हमने तैयार किया था और उसमें पूरी इस बात की कोशिश थी और पूरा ध्यान लगा कर के कभी भी कि सिखिज्म के परंपराओं को गुरुओं को स्टेज पर न दिखाया जाए, इसलिए बहुत ही चैलेंजिंग था कि गुरु तेग बहादुर जी साहिब का जो योगदान है पूरे भारत में किस तरह से क्रूरता के शिकार हुए और अपने धर्म के रक्षा के लिए अपने और अपने शिष्यों के साथ शहादत दी, तो वो जो बलिदान दिया वो लोगों के समक्ष आए लेकिन गुरुजी को स्टेज पर ना दिखाया जाए, ऐसी बात थी। तो हमने उस सब मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए इस नाटक की रचना की और जो दर्शकों ने आज स्टैंडिंग ओवेशन दिया, खड़े होकर जो हमारी सराहना की है, उसके लिए मैं तहे दिल से सभी लोगों का, प्रत्येक व्यक्ति का, सभी दर्शकों का मैं आभारी हूँ। हमारे नाटक में जो कलाकार हैं तो उसमें से कुछ भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ से ट्रेंड हैं, कुछ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेंड हैं, कुछ मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं और कुछ कॉलेजेस के भी हैं, कुछ और थिएटर ग्रुप के हैं, मेरा खुद का ग्रुप, मेरे ग्रुप के भी एक्टर थे। तो सबको मिला जुला करके हम वर्कशॉप करते थे, उनको तैयार करते थे, उनको सारी बातें बताते थे और एक बहुत इंटेंसिव वर्कशॉप के थ्रू सबको मिला करके हम सीन को क्रिएट करते थे, क्योंकि कुछ बहुत एक्सपीरियंस थे, कुछ उतने एक्सपीरियंस नहीं थे, तो थोड़ा एक चैलेंजिंग तो था लेकिन सबके कोऑपरेशन से मिला करके रिहर्सल में, वर्कशॉप में, तरह तरह की एक्टिविटी के थ्रू इनको हमने तैयार किया और ये नाटक प्रस्तुत किया।
1: इस नाट्य प्रस्तुति को तैयार करने में अपने योगदान और अपने अनुभवों को साझा करते हुए टीम के अन्य सदस्यों ने कहा,
4: मेरा नाम राहुल सेन है और मैं मूलतः निवासी सागर मध्य प्रदेश का हूं। मुझे राज सर के साथ ये मौका मिला कि मैं उनका एसोसिएट डायरेक्टर बनकर रहूं और इस नाटक में बेसिकली हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क यही था कि हम गुरु श्री तेग बहादुर जी के, हम उनका किसी से पात्र अभिनय नहीं करा सकते थे, उनकी हम कुछ भी विजुअल्स भी नहीं दिखा सकते थे, हमें बस उनकी पिक्चर्स दिखाने के लिए आदेश था, क्योंकि जो सिख नियम के अनुसार गुरुओं को हम कोई और उनका पात्र अभिनय नहीं कर सकता, ये बड़ी सैद्धांतिक बात है और मैं इसका सम्मान भी करता हूँ। तो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि गुरु जी की महिमा को हम किस प्रकार दिखाएं, गुरु जी के ना होते हुए भी कोई उनका पात्र ना करे, हमें गुरु जी की महिमा को भी दिखाया जाए, उनके पूरे जीवन, उनकी पूरी जो टीचिंग्स है, उनके जो ज्ञान है, उनकी जो उनका पूरा जीवन है, वो हम कैसे हम लोगों तक पहुँचा सकें। तो फिर हमने इस पर बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी किताबें पढ़ी, इसके बाद हमें पता चला कि गुरु जी ने जो जो ज्ञान दिया है, जो जो और अन्य कार्य किए उनको हम किस प्रकार से पोर्ट्रे कर सकते हैं और उनको हम प्रकाश के रूप में या उनकी दिव्यता के रूप में हम उन्हें दर्शा सकते हैं। जिन्होंने ये रिलीजन नहीं पढ़ा होगा उनको आज सिख रिलीजन के बारे में बहुत कुछ सीखने और देखने मिला होगा, पूरे 10 गुरुओं के बारे में सीखने देखने मिला होगा। तो इस प्रकार मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने पहली बार गुरु तेग बहादुर जी या सिख रिलीजन पर मैंने काम किया। मुझे बहुत पसंद आया, व्यक्तिगत तौर पर मेरा मन था और मुझे मेरा काम आज मुझे ऐसा लगता है कि सफल हो गया।
5: मेरा नाम रमण कुमार है और मैं मूलतः बिहार से हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ एज अ लाइट डिजाइनर एंड सीनोग्राफर। मैं इस नाटक में प्रकाश परिकल्पना कर रहा था क्योंकि ये नाटक 1600 ईस्वी के समय की जो कहानी है उसके ऊपर आधारित थी। तो मुझे प्रकाश परिकल्पना करने में ये समझना पड़ा कि कलर्स को कैसे हम दिखा सकते हैं, क्योंकि हम गुरु तेग बहादुर जी को दिखा नहीं सकते स्टेज पे, उनकी कुछ किसी भी चीज को नहीं दिखा सकते। तो हमने लाइट से ही कुछ बैक से या कुछ रेज से हमने दिखाया कि जब किसी ईश्वर का हमारे प्रति अगर कोई आशीर्वाद होता है तो एक प्रकाश रूपी जो आशीर्वाद या विचार जो हमारे पास आता है तो उसको मैंने लाइट से दिखाने की कोशिश की है। और नाटक में बहुत सारे सीन है, जो असम में एक कामाख्या जो जगह है वहाँ तंत्र विद्या होता है, तो उसको हमने एक नदी के तरह कपड़े डाल के ऊपर से फिर हमने बहुत सारे कलर्स को यूज करके उस तरीके से किया। अच्छा अनुभव था मेरे लिए।
6: मेरा नाम अमित चटकारा है, मैंने माखन शाह का रोल प्ले किया था इन सिख वॉरियर का। अच्छा इंटरेस्टिंग प्ले है, पूरे बच्चों के साथ टीम वर्क में सिखिज्म का, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो क्राउड देखा हमने पूरा हाउसफुल था एंड सबने तारीफ करी काम की, सेट की, हर एक की परफॉर्मेंस की। तो टोटल 10 सीन का हमारा ये प्ले था। माखन शाह का जो मैंने पात्र निभाया उसमें उनको मिलते हैं नवम पातशाह, तो माखन शाह के डिस्कवरी थी, उन्होंने पहचाना था कि सच्चे गुरु आ चुके हैं इस धरती पे। तो वो किस्मत ही माखन शाह की जिनको दर्शन मिले थे नवम पातशाह के।
7: मेरा नाम देवांशी अरोरा है, मैंने इस नाटक में सूत्रधार की भूमिका निभाई थी। कहानी बताना और गाना मेरा काम था। रही बात गानों की, तो उन्हें कंपोज करने में मुझे कम से कम एक हफ्ता 4 पीसेस के लिए मुझे लगा, तो वो डेफिनेटली एक टास्क था क्योंकि इस बार मुझे पंजाबी शैली के गानों, जो फोक संगीत के गाने, मुझे इस तरह से इंस्पिरेशन लेके उनसे मुझे इन गानों को करना था। और मैंने इससे पहले सिर्फ क्लासिकल या वेस्टर्न ब्रॉडवे स्टाइल म्यूजिक पे ही काम किया है। मुझे अच्छा लगा कि लोगों को ये चीज़ पसंद आई।
8: मेरा नाम प्रांजल बंसल है और मैंने भी सूत्रधार की भूमिका निभाई थी इस नाटक में। मैंने पहली बार नाटक किया है और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ विजय गोयल जी का, जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी।
9: मेरा नाम अक्षय कुमार है और दो कैरेक्टर किए थे मैंने। पहला किया था मैंने, स्टार्टिंग का सीन किया था सिख का, जिसमें एक मैं योद्धा था, सेनापति था, पर उनका एक रिस्पेक्ट के लिए हमने उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया। और अगला मैंने किरदार किया था आखिरी में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के सेनापति का, जिसका नाम था इफ्तिखार खान। तो इन दोनों में बस कैरेक्टर में मुझे ये फर्क आया।
10: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यही संपन्न।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मन पसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आज शनिवार है, तो आपको सुनने को मिलेगा आप ही की पसंद का लोक संगीत पर आधारित फोन इन प्रोग्राम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज है 26 सितंबर, और आज के दिन मनाया जाता है विश्व गर्भ निरोधक दिवस और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। तो सबसे पहले बात करते हैं बहन भाइयों विश्व गर्भ निरोधक दिवस की, जो कि आज मनाया जा रहा है। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अनचाहे गर्भधारण को रोकना, साथ ही महिलाओं और युवाओं को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे सोच समझकर सही निर्णय ले सकें।
1: बिल्कुल सही भाई। और इस दिवस को पहली बार वर्ष 2007 में मनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में लाखों महिलाएं आज भी आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक साधनों से वंचित हैं।
0: बिल्कुल, गर्भ निरोधक न केवल अनचाहे गर्भ को रोकते हैं, बल्कि यौन संचारित रोगों और एचआईवी संक्रमण को फैलने से भी बचाते हैं।
1: बिल्कुल, परिवार नियोजन महिलाओं को उनकी शिक्षा, करियर और सेहत को बेहतर बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।
0: और साथ ही इस

0: दिवस का जो मुख्य संदेश है वो ये है कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जहां हर गर्भधारण एक सोची समझी योजना और इच्छा के अनुसार हो। तो बहन भाइयों, ये तो आपने जाना विश्व गर्भ निरोधक दिवस के बारे में। और बहन भाइयों, इसके अलावा आज परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है, जो हर साल आज ही के दिन 26 सितंबर को मनाया जाता है।
1: बिल्कुल शशि भाई, और इसका उद्देश्य मानवता के लिए परमाणु हथियारों से उत्पन्न खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता पर बल देना है।
0: बिल्कुल, ये दिन विश्व के नेताओं और देशों को परमाणु हथियारों के विनाशकारी परिणामों से अवगत कराने और वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। तो बहन भाइयों, ये तो बात रही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस की, और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन प्रोग्राम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो, नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिला से।
0: डॉक्टर साहब, किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: प्रेम को।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
2: सर जी,
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं गांव पनियार से जिला हिसार से विनोद बोल रहा हूँ जी।
0: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: शिवराम की सुना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: बच्चों के नाम जी, साहिल, रोहित, कविता, ममता, राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: सत्यदेव सागर, ग्राम सपन्ना, थाना जतारी, जनपद बुलंद शहर से बोल रहा हूँ सर।
0: सागर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: शिवराम जी की आवाज में कोई रागिनी भजन सुनवाइए सर, दो तीन नाम लेना चाहूंगा
0: जी।
3: पत्नी संतोष देवी, बेटा शिवदत्त सागर, सुधीर सागर, अंकित सागर। नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो शशि भैया, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं गांव चौधरी वास से राजू अग्रवाल।
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: शिवराम को सुना देना जी, बच्चे विवेक प्रयाग पर्यंत।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
5: नमस्कार शशि भाई।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: हरिंदर बोल रहा हूँ जी।
0: हरिंदर भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: शिवराम कलाकार को सुनवा दियो।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: दो नाम है जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
5: बड़े भाई साहब बजेंदर, छोटे हरिंदर। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
6: इंद्रवीर तेवतिया, गाँव लथुगड़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, कार्यक्रम में स्वागत है, बताइए आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: शिवराम की गाई हुई रागनी सुनवा दें। कुछ नाम लेने चाहूंगा
0: जी।
6: या प्रिंस, प्रश्न, निष्कर्ष, हमारी बुआ जी हैं, राजवीरी, गांव खुशालपुर से मास्टर शेर सिंह मोदी, पंडित रतनलाल, और गांव डालमपुर से हैं वीरपाल प्रधान जी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
7: हेलो सत्य भाई का नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
7: महेंद्र सिंह बोना, विकासपुरी, गांव बरहाना, जिला बुलंदशहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: शिवराम को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
7: और मेरे साथ यार से पार्टी साथ में मिसेज कविता देवी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
8: राम राम सर।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
8: हवलदार जय प्रकाश, ग्राम पाचौता, बुलंदशहर से बोल रहे हैं साहब।
0: हवलदार साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
8: शिवराम को सुना दीजिए सर।
0: जरूर सुनवाएंगे।
8: नाम नोट कर लो साहब
0: जी। कराएं।
8: करण, खुशी, नंदनी, राधिका, प्रतिज्ञा, राम राम साहब।
0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर शिवराम से ये उपदेश।

0: हेलो ग्राम संसार,
1: सर जी नमस्कार। सर
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी। ऋषिपाल
0: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: नागर को सुनवा देना सर जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: बच्चों के नाम है सर,
0: हाँ बोल दीजिए। नमस्ते
1: कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। नमस्ते जी।
0: जी। हेलो ग्राम संसार,
2: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं मांगेराम बोल रहा जी, खड़ा कुरतान डिस्ट्रिक्ट,
0: किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ऋषिपाल नागर जी को
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: दो के नाम लूंगा जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
2: हमारे चाचा हैं महावीर शर्मा जी और पोते हैं नितिन, अक्षय, लक्ष्य, आयुष, पीयूष।
0: हेलो ग्राम संसार,
3: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मैं जगदीश खिलाड़िया बोल रहा हूँ जी, डाणा नरसान जिला भिवाड़ी।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ऋषिपाल नागर को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: बच्चों के भी नाम है जी।
0: हाँ बोल दीजिए।
3: राजवीर चिंदाड़िया, सतीश चिंदाड़िया, ऋतिक चिंदाड़िया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं ब्रजपाल बोल रहा हूँ सर, गांव राम सावड़ा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ऋषिपाल नागर को सुना दियो जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: एक नाम लूंगा सर
0: जी,
4: हमारे बड़े भाई यार डेडी से बसे सर बटार, राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम संसार, सत्य भाई, राम राम।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
5: जितेंद्र सोलंकी, गांव कलपुरा, महाराजपुर, जिला बुलंदशहर से बोल रहे हैं जी।
0: जितेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: ऋषिपाल नागर को सुनना चाहेंगे जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: नाम बोलूंगा जी, लकी, संजना, अंशा, चिंतल, तन्नू, प्राची, वीर सोलंकी, माता।
0: हेलो ग्राम संसार।
6: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
6: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: ऋषिपाल नागर जी को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
6: कुछ नाम है जी, जयपाल सिंह, अध्यक्ष, जगदीश मोटा, बादलपुर, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, मास्टर चंदन सिंह, गर्ग गुजर और आरव भाटी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ऋषिपाल नागर से ये रागनी।

0: हेलो ग्राम संसार,
1: नमस्कार जी। सत श्री भाई,
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं गांव डोंगरा है, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से पंडित यादराम पटवारी बोल रहा हूँ जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे? जरूर
1: सुनीता पंचाल के आवाज बिल्कुल बढ़िया है,
0: सुनवाएंगे। कार्यक्रम
1: पोता पोती है जी, शिवानी शर्मा है जी, अभय शर्मा, यश शर्मा।
0: में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार,
1: नमस्कार, सुरेश
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: चौहान जी बोल रहे हैं नजफगढ़ से। भाई
0: सुरेश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे? जरूर
1: बहुत दिन हो गए सुनीता पांचाल की आवाज सुने हमें रेडियो पे। राम
0: सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार,
1: राम जी।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: विनोद कुमार प्रजापत, गांव दुदुगला, डिस्ट्रिक्ट तिरकी दादरी।
0: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे? जरूर
1: आज ये सुनीता पांताल की आवाज में सुनवा दो कोई अच्छा सा गीत।
0: सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार,
2: हेलो ग्राम संसार, शशि जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: हिसार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: सुनीता पंचाल को सुनना चाहूंगे, गामुड़ी से जी, बनवारी लाल यादव, शमशेर जी, द्वारका से राम राम जी।
0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर सुनीता पांचाल से ये लोकगीत।
3: ओ पीछे नौकरी जाइए देवर मेरी।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112347331 और दूसरा नंबर है 0112347332। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सरकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एनके प्रेमचंद्रन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को इसीनेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिसंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेनदेन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री S. जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा

0: के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुर्नूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तरजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चनप्पा और वेलावन संथल कुमार की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम किसान वाणी में आपसे साझा करते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हमारे कृषि जीवन को आसान करती हैं, जिसमें विशेषज्ञ वैज्ञानिक और डॉक्टर्स की सलाह होती है। कहीं ना कहीं कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि घर बैठे हमारे किसान भाई बहनों को समसामयिक जो भी खेती किसानी कर रहे हैं, यदि उसमें कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान उन्हें कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से मिल जाए।
4: बिल्कुल, और किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम रोचक जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही साथ मनोरंजन का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। और आपका समय की बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, तो समय का सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपने पशुओं का देखभाल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने परिवार के लिए और ज्यादा मदद कर सकते हैं और किस तरीके से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको मिल पाएगी किसान वाणी कार्यक्रम में।
3: बिल्कुल सीमा, और वहीं कार्यक्रम किसान वाणी में भाई किसी न किसी ऐसी योजना पर भी हम चर्चा करते हैं जो सीधे सीधे हमारे किसान भाई बहनों के लिए उपयोगी होती है। मित्रों, ऐसी ही एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
4: बिल्कुल अमित, आज हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए खास तौर पर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि हम KCC के नाम से भी इसे जानते हैं।
3: बिल्कुल,
4: और ये सरकार की पता है सबसे पुरानी और सबसे फायदेमंद योजना है।
3: जी, वहीं सरकार का मकसद है किसानों को साहूकार के महंगे कर्ज से बचाना। भाई, हमारे किसान भाई बहनों को जब कोई भी

0: करना है, कृषि करनी है, तो धन जरूरी होता है। और धन के लिए अब कितनी जरूरत है ये भी हमें देखना है। तो हम सीधे बैंक से ऋण ले सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से। और मित्रों, इसमें यह भी लाभ रहेगा कि जितनी हमारी जरूरत है, जितनी हमारी जमीन है, उसके हिसाब से हमें ऋण मिल जाएगा।
1: बिल्कुल। और इसमें साथ ही साथ हम सस्ते लोन के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ हम बात करेंगे बीज, खाद, ट्रैक्टर और इसके अलावा और भी जो यंत्र हैं, किस तरह से कि हम कम पैसों में ले सकते हैं और अब ये एटीएम कार्ड की तरह काम करता है अगर हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड की।
0: बिल्कुल सीमा, और वहीं पशुपालन, डेयरी, मछली पालन आदि के लिए भी ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सामान्य ब्याज दर 7% तक होती है, समय पर भुगतान करने वाले किसानों को इसमें छूट मिल जाती है, और यह लगभग 4% या उससे कम हो जाता है। तो हमारे किसान भाई बहन लाभ उठा सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना का।
1: और इसमें कौन कौन से किसान हैं
0: जी
1: जो इस योजना का फायदा ले सकते हैं? तो हम अपनी जमीन वाले किसान खास तौर पे हम बात करेंगे, या फिर बटाईदार जो होते हैं, किराए पर जो खेती करने वाले किसान होते हैं, या फिर हम बात करें मछली पालने वाले, मुर्गी पालन करने वाले, इस तरीके के जो किसान होते हैं और जिनकी उम्र 18 से 75 वर्ष के बीच होती है, वो इस योजना का फायदा लेने के लिए यहाँ पर उम्मीदवार हैं।
0: तो मित्रों, ये थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके माध्यम से सरकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है हमारे किसान भाइयों। हम जरूर कोई ना कोई ऐसी बातचीत, ऐसी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं जिसका लाभ हमारे सभी किसान भाई बहनों को, युवाओं को होता है। तो सीमा, आज हमारे कार्यक्रम किसान वाणी में एक ऐसी बातचीत जिससे आय किस प्रकार से हम बढ़ाएं, खाद्य पदार्थों में मूल्य संवर्धन द्वारा किस प्रकार अधिक लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर बिंदवी अरोड़ा, जो कि वैज्ञानिक हैं हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
2: धन्यवाद।
0: जैसा कि बातचीत का विषय है खाद्य पदार्थों में मूल्य संवर्धन, तो हम अपने श्रोताओं की ओर से आपसे जानना चाहते हैं कि मूल्य संवर्धन क्या है।
2: मूल्य संवर्धन, जिसे कि हम वैलोराइजेशन भी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रोडक्ट की कुछ ऐसा उसमें करें कि उसका मूल्य बढ़ जाए, उसका वैल्यू बढ़ जाए। और ये कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए हम उसमें न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों में अगर कुछ बढ़ोतरी कर दी है तो वो एक तरीके का मूल्य संवर्धन हो गया,
0: जी
2: या हमने उसे किसी इस तरीके से प्रसंस्कृत कर दिया है, प्रोसेस कर दिया है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, उसकी लघु अवधि बढ़ गई, अब उसे ज्यादा समय तक भंडारण करके रखा जा सकता है। अगर हम तीसरे तरीके से बात करें तो हमने कोई प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बना दिया, मानिए हमारे पास कोई फल है, कोई फूल है, हमने उसका कोई जूस, जैम, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना दिया जिसकी मार्केट में ज्यादा वैल्यू है, तो इससे भी उनकी आय का स्रोत बढ़ जाता है। ये सब अलग अलग कैटेगरी है जिसे हम खाने को या खाद्य पदार्थों को किसी तरीके से उसके नेटिव फॉर्म से उच्च कर देते हैं, कुछ बेनिफिट उसमें ऐड कर देते हैं ताकि उसका वैल्यू बढ़ाया जा सके। उसी वैल्यू बढ़ाने को हम मूल्य संवर्धन कहते हैं।
0: यानी कि अगर हम बात करें किसान भाइयों के लिए, तो जो कृषि उत्पाद हैं, जो किसान फसल बेच रहा है, यदि वो उस फसल से प्राप्त जो भी उत्पाद है उसके कई तरह के अलग अलग उत्पाद बना करके बाजार में बेचे तो उसे अच्छा मूल्य मिल सकता है। तो जब बात आती है कि उत्पादों की, तो सबसे पहले यही विचार करेगा कि ऐसे कौन कौन से उत्पाद हो सकते हैं जिनमें मूल्य संवर्धन किया जा सकता है।
2: ये मूल्य संवर्धन हर कृषि खेती से आए उत्पाद से किया जा सकता है। हम जनरली इसको दो भागों में बांटते हैं। अगर
0: जी
2: कृषि से जो उत्पाद आते हैं वो एक होता है बागवानी वाला, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हमारे हो गए, उनका जो मूल्य संवर्धन का मेजर गोल हमारा होता है कि उसे हम किस तरीके से ऐसे प्रिजर्व कर सकें कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, या फिर हम उसे किस तरीके से ऐसा प्रोसेस कर सकें कि हम उसमें न्यूट्रिटिव कंटेंट बढ़ा सकें। जैसे हम टमाटर की ही बात करते हैं तो टमाटर की एक लघु अवधि कमी होती है, घर में लाने के बाद उसे 8, 9, 10 दिन के अंदर अंदर हमें इस्तेमाल करना ही है, तो किसानों को उससे भी पहले उसे बेच देना है वरना उनका भी वहां पड़ा खराब हो जाएगा। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर सकें कि या तो हम उसका ड्राई करके पाउडर बना लें, अब वो पाउडर बहुत समय तक रखा जा सकता है और वो बहुत सारी इंडस्ट्री भी खरीदती हैं, जैसे टोमेटो सूप बनाने वाली कंपनी है वो जरूर आपसे पाउडर खरीदेगी। इसी तरीके से कोई और कंपनी, जो पल्प अगर आपने बना के रख लिया तो टोमेटो केचप बनाना है, टोमेटो पेस्ट बनाना है, ये सब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं टमाटर से, इतने सारे उत्पाद बनते हैं। अगर हम ये टमाटर बहुत जल्दी जल्दी आता है उसी समय कम दामों में बेचने की बजाय अगर हम उसे इस तरीके से प्रसंस्कृत करें और फिर उसके बेचने पर उसमें हम थोड़ा ध्यान लगाएं तो हमारी जो आय है उसकी जरूर वृद्धि हो सकती है। वहीं दूसरे तरीके के जो हमारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि सीरियल हो गए, पल्सेस हो गए, दाल, अनाज, ये उतना जल्दी खराब तो नहीं होता है। एक बार मिलिंग कर दिया तो इसे घर में भंडार करके किसान अपने स्टोर में बहुत समय तक रख सकता है। तो शेल्फ लाइफ बढ़ाना मेजर गोल नहीं है, लेकिन इसको बनाने का तरीका

0: जैसे दाल उबालना है, चावल बनाना है, इस सब में बनाने में आटे का रोटी बनता है, ये हमारे नेटिव स्टेपल फूड्स हैं, हम ये सब खाते हैं, पर ये बनाने में काफी घर में मेहनत भी लगती है और समय भी लगता है। तो इन तरीकों के जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो प्रसंस्करण है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि ये रेडी टू ईट फूड बन गया, जल्दी क्विक कुकिंग बन जाए। जैसे कि चावल अगर हम बाजार से खरीदते हैं, उसे बनाने में हमें 20 मिनट लगता है, अगर उसे इस तरीके से प्रोसेस किया जाए कि वो 5 मिनट उबल के तैयार हो रहा है, तो हमने उसमें एक तरीके का वैल्यू एडिशन कर दिया, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लगाया बट उसका वैल्यू बढ़ गया, तो अब लोग उसको ज्यादा मूल्य पर खरीदने के लिए तैयार हैं। तो यही अलग अलग तरीके हैं जिससे हम मूल्य संवर्धन कर सकते हैं।
1: तो यहाँ तक हमारे किसान भाई बहन समझ गए कि आखिर मूल्य संवर्धन क्या है और किस प्रकार हम इसे कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि हम जैसे टमाटर है उसका सूप बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, अन्य सभी हमारे कृषि उत्पादों में भी मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। अब किसान भाई बहन है या हम भी अपने मन में विचार करें कि हमें कुछ करना है, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है आधार चुनना, क्योंकि बिना मशीनरी के नहीं होगा, बिना श्रम के नहीं होगा, बिना लेबर के नहीं होगा। तो किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहनों के लिए, हमारे साथियों के लिए, माने कि इसको रोजगार की दृष्टि से वो शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें किस प्रकार अपना आधार मजबूत करना चाहिए कि वो इस काम से जुड़ सकें?
0: ये सबसे पहले तो अगर कोई ऐसा काम शुरू करना चाहता है या किसान भाई, उनको सबसे पहले तो ये सोचना है वो खुद क्या उगा रहे हैं। देखिए, रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास क्या चीज उपलब्ध है उसी को आप प्रोसेस करेंगे। या कोई ऐसा भी है जो किसान नहीं है तो उसको भी ये सोचना है कि उसके आसपास क्या चीज अवेलेबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा रॉ मटेरियल ही हम कहीं बहुत दूर से मंगा रहे हैं। एक बार जब हम वो सोच लेते हैं क्या अवेलेबल है और हमें उसमें इंटरेस्ट है, हम ये काम करना चाहते हैं, ये दो चीजें अगर है, तो उसके बाद हम सोच सकते हैं किस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हम अगर ऐसे बिजनेस में घुसना चाहते हैं तो हमें ये भी सोचना है सबसे ज्यादा जरूरी कि हमारा प्रोडक्ट बन तो जाएगा पर बनने के बाद कहाँ उसको बेचना है। तो मार्केट रिसर्च करना, ये समझना क्या मेरा मार्केट है, कहाँ उसे बेचा जाएगा, क्या कोई दूसरी इंडस्ट्री खरीदेगी, क्या मैं डायरेक्टली लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहता हूँ, क्या मेरा एंड प्रोडक्ट है, क्या मेरा एक मिड इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है, जैसे कि टोमेटो का पेस्ट एक मिड इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम टमाटो के केचप की बात करें तो वो तो एंड यूज प्रोडक्ट है, वो तो हम लोग डायरेक्टली खरीदते हैं। तो हमें सोचना है कि हम किस तरीके के लेवल के प्रसंस्करण तक जाना चाहते हैं, किस मार्केट को हम रीच करना चाहते हैं, क्या मेरा मार्केट इतना बड़ा हो सकता है कि मैं एंड कंज्यूमर तक पहुंच सकूं, या हमें कुछ आसपास की 5 इंडस्ट्री तक ही पहुंचना चाहता हूं। तो ये सब भी हमें सोचना होता है। साथ ही में इसके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप जो भी सोचते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ये हमारा आइडिया है, उसके लिए आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, इवन कृषि अनुसंधान संस्थान भी और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करते हो, कुछ समझ जाते हो कि हम ये करना चाहते हैं, तो उसको सीखने के लिए कैसे बनाना है, कहाँ उसकी मार्केट की जा सकती है, उस सब की मदद करने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग भी इंस्टीट्यूट्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं।
1: लेकिन बात आती है कि जब कोई भी हम काम करते हैं, विचार कर लिया कि कहां तक पहुंचना है, आवश्यकता होती है धन की, तो क्या सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं कि जिसके माध्यम से हमारे युवा साथी हैं या किसान हैं उनको कुछ अनुदान मिले, कुछ सब्सिडी मिले, और जिसके द्वारा वो कोई भी प्रसंस्कृत यूनिट यदि लगाना चाहते हैं तो उसको स्थापित कर सके?
0: जी हाँ, देखिए बहुत सारे सरकार की ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत सारी सरकारी मदद इसमें हमें मिलती है जो अलग अलग लेवल पे, जैसे कि बागवानी के लिए अलग है, सीरियल पल्सेस के लिए अलग, मशरूम के लिए आजकल सरकार बहुत मदद कर रही है। तो इसमें दो तरीके हैं इसको, या तो आप NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या नाबार्ड के थ्रू आप अपनी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल MSME के थ्रू आप अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए अलग अलग स्कीम का अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप किसान भाई बहन मिलकर एक FPO एस्टैब्लिश करते हैं या किसी FPO से जुड़ जाते हैं तो उनको बहुत सारे तरीके की मदद मिल जाती है। अगर आप FPO करते हैं तो आप एक तरीके से इंडस्ट्री ही हो गई आपकी, जिसमें 50-100 लोग मिलकर सेम गोल की तरफ काम कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत सब्सिडी प्रोवाइड करती है अलग अलग स्टेट के हिसाब से। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: वो बात चल रही है मूल्य संवर्धन के विषय में, लेकिन वहीं मैम कई बार होता है कि हमारे साथी हैं जो आज कार्यक्रम सुन रहे होंगे उनके मन में ये प्रश्न भी जरूर हो सकता है कि जो प्रसंस्करण की गई कोई भी उत्पाद की कोई भी वस्तु है, क्या उस पर पोषण के माध्यम से देखें तो उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा या उसका पोषण बढ़ेगा, किस प्रकार से इस पर विचार किया जाए?
0: ये भी मूल्य संवर्धन की ना दो अलग अलग तरीके हैं। पहला तो मैंने आप में कुछ पोषक तत्व ऐड भी कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर प्रसंस्करण से कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा, लेकिन हाँ अगर हम गर्म हीट यूज करते हैं प्रोसेसिंग में या कोई हाई एनर्जी वाला प्रोसेस यूज करते हैं तो कुछ हद तक कुछ विटामिन डिग्रेड होते हैं, उनकी क्वालिटी कम होती है, लेकिन अब फूड साइंस इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि उन्हीं प्रोडक्ट को कैसे हम प्रोसेस करें कि ये सारा जो लॉस जो हम कह रहे हैं नकारात्मक जो काम हो सकता है उसको किस तरीके से बिल्कुल ही न्यूनतम रखें और प्रोसेसिंग हमको बेनिफिट सबसे ज्यादा दे। बहुत सारे वैज्ञानिक लोग आजकल इसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि नकारात्मक को कम कर सकें, सकारात्मक को सबसे ज्यादा बढ़ा सकें, और ये काम हम सबसे कम मूल्य इन्वेस्टमेंट करके कर सकें ताकि हमारे किसानों को और रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम न्यूट्रिशन जो लॉस हो गया है प्रोसेसिंग प्रसंस्करण में, तो उसको किस तरीके से वापस भी मिलाया जा सके, तो वो भी

0: किया जाता है।
1: बात आती है कि हमने प्रसंस्करण यूनिट कोई तैयार की और हम किसी भी कृषि उत्पाद का या अन्य किसी भी वस्तु का प्रसंस्करण कर रहे हैं, लेकिन जब वो बाजार में जाएगा तो हमने देखा है कि कोई भी चीज हम जब खरीदेंगे तो किसी डिब्बे में मिलेगी, किसी पैकेट में मिलेगी, उस पर कुछ ना कुछ लिखा भी होगा, जो भी उपभोक्ता होगा वो पढ़कर खरीदेगा। तो इसमें विशेष जो ध्यान देना है, जहां तक हमारे साथी और हम भी समझ रहे हैं, कि वो पैकिंग और लेबलिंग का होता है, तो इस पर आप जरूर हमारे साथियों को बताएं।
0: क्योंकि अब हम प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेस प्रोडक्ट हो गया, और ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, ये जरूरी है। भारत सरकार FSSAI के थ्रू ये मैंडेटरी है, जरूरत है इसकी, के प्रोडक्ट पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए, जिसके बिना हम एक प्रोसेस प्रोडक्ट मार्केट में कंज्यूमर एंड यूजर को नहीं बेच सकते हैं। जिसके अंदर उस प्रोडक्ट का नाम, उसका उसमें कितना अमाउंट है, उसका वजन कितना है, और उसके साथ साथ क्या उसका न्यूट्रिशन है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना वसा है, कितना फैट है, ये सब चीजें लिखना जरूरी है। क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस किस रॉ मटेरियल से बनाया गया है। जैसे कि हम अगर मैं टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस की ही बात करूं, तो उसमें सिर्फ टमाटर तो नहीं है, उसमें कुछ चीनी भी मिला है तभी वो मीठा है, उसमें
1: बिल्कुल
0: थोड़ा एसिड भी मिला है ताकि उसमें अलग खटास आए। तो वो सब चीजें लिखना अनिवार्य है, ये इन्फॉर्मेशन रीडर के पास पहुंचना मैंडेटरी है। साथ ही साथ किस तारीख को बनाया गया था, किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया, क्या उसको यूज बाय डेट है, कब तक आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब चीजें लिखना इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत लंबी लिस्ट है जो FSSAI ने जारी करी है, कि ये सारी चीजें लेबल पे लिखना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ FSSAI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नंबर भी आपके पैकेट पे होना मैंडेटरी है।
1: यानी कि प्रसंस्करण यूनिट का हमें कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और
0: बिल्कुल
1: तब हम इसको बाजार में बेच सकते। अगर हम रोजगार की दृष्टि से देखें, मान लिया कि जैसे अभी आपने कहा कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो खेती कर रहे हैं, उनके पास रॉ मेटेरियल है, लेकिन कुछ ऐसे साथी हैं जिनके पास कृषि से संबंधित कोई उत्पाद नहीं है, जो सीधा उत्पाद लेंगे और बाद में इसको प्रसंस्कृत करेंगे, तो रोजगार की दृष्टि से इसको कैसे देखना चाहिए?
0: ये रोजगार की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और
1: जी
0: भारत में ये बढ़ता ही जा रहा है। प्रोसेस फूड का मार्केट, प्रसंस्करण, हेल्दी प्रसंस्करण का मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इस हिसाब से सोचते हैं, तो जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं भी है, उन लोगों को भी ये सोचना है कि उनके आसपास क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, रॉ मटेरियल कौन सा अवेलेबल है, ताकि वो उसे ले सके और अलग अलग अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोडक्ट को प्रोसेस करके अपनी निश मार्केट में बेचें। स्पेशलाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्ट के, आप जो बना रहे हैं वो मार्केट के अवेलेबल प्रोडक्ट से थोड़ा सा फर्क हो, उसमें कुछ ज्यादा बेटर हो, ताकि आप उस मार्केट को टैप कर सकें। और ये रोजगार का आज की डेट में एक बहुत ही मेजर, इंडिया में सपोर्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
1: यदि हम बात करते हैं रोजगार की दृष्टि से, अपने किसान भाई बहनों को या युवाओं को जो लाभ है वो निश्चित रूप से मूल्य संवर्धन से मिलेगा, लेकिन वहीं जब प्रसंस्कृत उत्पादों की बात आती है कि बेचने के लिए मार्केट कहाँ तैयार होगी, तो इसमें कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो हमें मार्केट के लिए देखने चाहिए हमारे साथियों को, तब हमें वो कार्य शुरू करना चाहिए कि इससे अच्छा लाभ हमारे साथी ले सकें?
0: देखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सीख तो लेंगे बनाना, बट प्रोडक्ट बनने के बाद उसको बेचना कहाँ है।
1: जी
0: अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही है ना कि हमारी आय वृद्धि हो।
1: बिल्कुल
0: तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो चीज बना रहे हैं उसकी मार्केट क्या है, हमको ये सोचना चाहिए, और किस मूल्य के उसका प्राइस होना चाहिए कि हम किस मार्केट में उसको बेचना चाहते हैं। क्या हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या हम देश से बाहर उसे भेजना चाहते हैं, क्या हम अपने ही देश में बेचना चाहते हैं, या हम अपनी रीजनल मार्केट में बेचना चाहते हैं। रॉ मटेरियल ले लिया, प्रोडक्ट प्रोसेस कर लिया, लेकिन किस कंपनी में जाएगा, क्या हम मिड सेगमेंट में बेच रहे हैं, किसी सेकेंडरी मार्केट में बेच रहे हैं, या हम एंड यूज प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अगर एंड यूज प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे, क्या हम मंडी में बेचेंगे, क्या हम दुकानों पे बेचेंगे। तो ये सब कुछ मार्केट का पूरा रिसर्च करना, प्रोसेसिंग में घुसने से पहले हमें ये पूरा चैनल सोच कर रखना चाहिए। सिर्फ बना लेना प्रोडक्ट एक पार्ट ही है, उसको बेचना मूल्य संवर्धन का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
1: यानी कि पहले से जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ इसको बेचा जा सकता है। तो कुछ ऐसे जो प्रगतिशील हमारे किसान भाई बहन होंगे या कोई ऐसे साथी होंगे, तो हमारे साथियों को यदि वो देखना चाहें पहले कि भाई ऐसा कौन कर रहा है और क्या क्या लाभ हो रहा है, जैसे प्रशिक्षण की बात आई या प्रशिक्षण की जानकारी वो वहां से लेना चाहें, तो उस पर आप क्या सलाह हमारे साथियों को देंगे?
0: देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, हर स्टेट में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, KVKs हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, वहां पर भी प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसी एरिया के क्रॉप के हिसाब से। तो जिस एरिया में वो KVK है, उसके आसपास क्या क्रॉप उगता है, उसी के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग प्लान की जाती है। अगर मैं दिल्ली क्षेत्र की करूँ, तो हमारे संस्थान में भी समय समय पर अलग अलग प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। उसी बेसिस पे अगर मैं एक इन्फॉर्मेशन दूं, तो 5 से 10 अक्टूबर की हमारे ही संस्थान में फूड प्रोसेसिंग की एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, और इसकी इन्फॉर्मेशन IRI की वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो जरूर कर सकता है।
1: जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन खेती कर रहे हैं और धान की फसल तैयार है, कटाई पे आ रही है, तो आप इन किसान भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे यदि ये प्रसंस्करण चुने धान के क्षेत्र में, तो कौन कौन से उत्पादों को लेकर ये बना सकते हैं?
0: धान के क्षेत्र में बहुत ही सारे तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम राइस प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम सोचते हैं तो राइस का पफ, राइस फ्लेक्स हो गए या फिर पोहा जिसे हम कहते हैं, ये

0: इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं। अदरवाइज राइस का आटा,
1: जी
0: राइस फ्लावर, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है, सूप में गाढ़ा करने में। तो बहुत सारी इंडस्ट्री राइस के आटा को लेना चाहती है। इस तरीके से हम प्रोडक्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये काम किया जा सकता है। कम कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में भी ये काम किया जा सकता है।
1: यदि हम बागवानी के किसानों को कुछ ना कुछ सलाह देना चाहें, चाहे वो आम है, सेब है, नाशपाती है, अन्य कोई भी उन्होंने जैसे कि संतरा है, तो ये किसान भाई बहन क्या कुछ प्रसंस्करण अपने उत्पादों का कर सकते हैं?
0: ये सबसे पहले तो हमारे जो बागवानी फ्रूट्स हैं, इनकी खुद की वैल्यू बहुत है।
1: जी
0: अगर ये फ्रेश कंज्यूमर तक पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा फॉर्म वही है। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल सबसे अच्छा है, लेकिन और उसकी मूल्य भी अच्छा मिलता है। लेकिन अगर हम प्रसंस्करण की तरफ जाने की बात सोचते हैं, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है,
1: जी
0: वो जल्दी खराब होता है, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। जूस एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया, आजकल तो बहुत अच्छे बिना प्रिजर्वेटिव वाले जूसेस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर हम उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो वो काम कर सकते हैं। जैम होता है एक प्रोडक्ट जिसे हम बना सकते हैं, कैंडी, इन सब चीजों का कैंडी भी बनाया जा सकता है। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से बनते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी रिटेन रहती है, तो हम वो बना सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं।
1: आलू के उत्पादन में हम प्रथम हैं और हमारा क्षेत्र भी आलू का बहुत अच्छा उत्पादक क्षेत्र है, तो
0: बिल्कुल
1: आलू के किसानों के लिए भी आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि आलू के तो बहुत सारे हमने देखा है कि परिवार में भी ऐसे उत्पाद होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और एक लंबे समय तक हमें परिवार में चाहिए, तो क्या आप सलाह हमारे किसान भाइयों को
0: आलू तो
1: देंगे?
0: हमारे देश का मेजर फूड है, मतलब
1: जी
0: हमेशा से रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमारे देश को हेल्दी बनाने में आलू का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो आलू के बहुत ही सारे प्रसंस्कृत उत्पाद बनाए जा सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है।
1: जी
0: आलू का पाउडर, आलू के आटा, आलू
1: जी
0: का चिप्स बनता है, आलू का पकौड़ा बनता है, तो ऐसे बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स हैं पोटेटो के जो बनाए जा सकते हैं। अगर हम वैल्यू प्रसंस्करण की बात करते हैं तो आलू के चिप्स हमारे देश में बहुत समय से बन रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन अब सोचिए उसको थोड़ा सा मूल्य संवर्धन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम आलू में, आलू का जब हम बैटर बना रहे हैं, दो तरीके के बनते हैं चिप्स, या तो काट के बन गए
1: जी
0: या फिर उसका पूरा मैश करके चूरा बना के फैला के बने। अगर मैश चूरा करके फैला के बनाए जा रहे हैं, तो हम आलू के साथ अगर हम उसमें कुछ और सब्जी भी मिला दें, मानिए बीटरूट मिला दिया या मोरिंगा मिला दिया, मोरिंगा बहुत आयरन का रिच सोर्स है, बीटरूट बहुत अच्छा का सोर्स है, उसका जब हमने चिप्स बनाए, तो हमारे चिप्स दिखने में भी अच्छे हैं क्योंकि वो थोड़े लाल रंग के हो गए,
1: जी
0: साथ ही साथ उसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ गया है। तो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा बनती है। मूल्य संवर्धन का मतलब ये है, एक तो प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाया, साथ ही साथ उसमें हम कुछ ऐसा इंटरवेंशन कर दें कि हमने उसको पहले से बेटर बना दिया है, तो उस तरीके के आलू के बहुत ही सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं।
1: चलते चलते हम अपने कार्यक्रम में बताना चाहें कि हम प्रसंस्करण को क्यों चुने, हमें चुन लेना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए, हमें इसके विषय में जागरूक रहना चाहिए, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या कहेंगे?
0: जी, मैं ये कहूंगी कि सच तो ये है कि फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश खाना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ जैसे हमारी दिनचर्या बढ़ रही है, जैसे हम लोगों कामकाजी होते जा रहे हैं, थोड़ा सा चैलेंज आता है। तो
1: जी
0: हमारा गोल ये है कि प्रसंस्कृत उत्पाद जो हमें थोड़ा सा कन्वीनियंस दे, वो इस तरीके से बनाया जाए कि वो बहुत न्यूट्रिटिव हो, उसमें कोई नकारात्मक चीज नहीं आए, उसकी मार्केट भी बढ़े और हम सबको उसमें मल्टी लेवल बेनिफिट हो। किसानों को बेनिफिट होना चाहिए कि उनकी आय की वृद्धि हो रही
1: जी
0: है, प्रोसेसर्स को बेनिफिट होना चाहिए कि उनको कामकाजी मिल रहा है, और कंज्यूमर उनको बेनिफिट होना चाहिए कि उनको न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट, अच्छी पोषक तत्वों वाला प्रोडक्ट आसानी से मिल रहा है। तो ये तीनों लेवल में हमें मदद करता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो आप जैसे देश के वैज्ञानिक कार्यक्रम में आते हैं, उनकी सलाह हमारे श्रोताओं तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं मन में रोमांच होता है, एक उत्साह उन्हें मिलता है कि इतनी अच्छी जानकारी के साथ हम अपनी आय में निश्चित रूप से वृद्धि करेंगे। डॉक्टर बिंदवी अरोड़ा, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुई, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खाद्य पदार्थों में मूल्य संवर्धन द्वारा अधिक आय, और हमारे बीच जानकारी दे रही थी डॉक्टर बिंदवी अरोड़ा, वैज्ञानिक, हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से।
1: मित्रों, कार्यक्रम किसान वाणी में बातचीत के बाद समय है मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं एक लोकगीत।

0: तो अभी आपने सुना एक बहुत ही सुंदर सा लोकगीत।
1: मित्रों, लोकगीत के बाद कार्यक्रम किसान वाणी में समय है मौसम का हाल, क्योंकि किसानों के लिए मौसम का पूर्वानुमान बहुत ही आवश्यक होता है। आगे आने वाले मौसम का हाल यदि हम जाने तो हम अपने फसलों का सही से ध्यान रख सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हल्की फुल्की धूप छाई रहेगी, वहीं कुछ बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। यदि हम बात करें अधिकतम तापमान की तो यह 31 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
0: और अमित, अब बात करते हैं कृषि सलाह की। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि मौसम में बदलाव के बीच किसानों को धान समेत दूसरी फसलों में रोग और कीटों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है
1: जी।
0: साथ ही इसमें धान की फसल की लगातार निगरानी करने के साथ अगेती मटर और गाजर की बुआई और सरसों की अगेती खेती की तैयारी करने की भी सलाह दी गई है। और इसके अलावा सब्जियों में कीट और रोग दिखाई देने पर समय नियंत्रण के उपाय अपनाने को भी कहा गया है।
1: वहीं यदि बात करें हम अपने सभी किसान भाइयों से कि भाई जो अगेती मटर की बुवाई करना चाहते हैं तो कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक वो बुवाई कर सकते हैं। इसके लिए पूसा प्रगति जैसी उन्नत किस्म का चुनाव किया जा सकता है और बुवाई से पहले बीजों को कवकनाशी कैप्टन या थायरम से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना बिल्कुल ना भूलें। और भाई जो आने वाले दिनों में सरसों की अगेती बुवाई करना चाहते हैं तो हमारे किसान भाई बहन अभी से बीज और खेत की तैयारी करें ताकि उनका उत्पादन अच्छा हो। इसके लिए भी किसान पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा तारक, पूसा महक जैसी किस्मों के बीजों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये थी कृषि सलाह।
0: तो कार्यक्रम किसान वाणी कैसा लगा आपको, ये आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं जरूर हम तक पहुंचाएं। और इसके लिए आप हमें सीधे ईमेल कर सकते हैं feedback@gmail.com पर।
1: आज के कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही। अनुमति दीजिए किसान वाणी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार।
2: हर जोखिम से निकल कर फसल

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में SIR दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए उद्यम संवाद का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को ISINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। सुनवाई केवल असाधारण परिस्थितियों में ही ऑनलाइन की जाएगी। यदि सुनवाई आवश्यक हो तो मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि SIR के दौरान जिनका नाम छूट गया है वे अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो वे संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नामांकन के लिए तत्काल विशेष अभियान शुरू करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी पर्याप्त संख्या में सहायता केंद्र स्थापित करेंगे और रात्रि आश्रयों में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों और बेघरों के लिए विशेष शिविर आयोजित करेंगे। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध के बाद आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुराड़ी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS का उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ATS वाहन फिटनेस जांच व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: बुराड़ी स्थित इस 5 लेन वाले ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की प्रतिवर्ष 1,00,000 वाहनों की फिटनेस जांच करने की क्षमता है। बुराड़ी ATS में 40,000 भारी मोटर वाहनों और 60,000 हल्के मोटर वाहनों की वार्षिक जांच की जा सकेगी। यहां वाहनों के फिटनेस का परीक्षण पूरी तरह स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसमें ब्रेक दक्षता, सस्पेंशन प्रदर्शन, हेडलाइट की स्थिति, साइड स्लिप, उत्सर्जन स्तर और वाहनों के निचले हिस्से की जाँच सहित विभिन्न मानकों का परीक्षण किया जाएगा। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह 5 लेन वाला आधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन वाहनों की फिटनेस जांच को वैज्ञानिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सही फिटनेस, सटीक जांच और बेहतर निगरानी से प्रदूषण के खिलाफ मजबूत प्रयास दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री और राजौरी गार्डन विधानसभा से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में पंजाब डेयरी मुखर्जी पार्क से संत नगर एक्सटेंशन तक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि सुभाष नगर नाले से होकर गुजरने वाली सड़क की स्थिति पिछले 10 से 15 सालों से बेहद बदहाल थी।
3: ये बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करी थी कि हमें सड़कों के ऊपर से तारों को भी हटाना है। ये तारों का जंजाल इस इलाके में फंसा हुआ था जिसके कारण सुभाष नगर ड्रेन के साथ साथ लोगों को चलने में दिक्कत आती थी, जगह जगह ट्रांसफार्मर थे, सड़क इतनी छोटी हो चुकी थी। अभी सारी की सारी जो आप तारें देख रहे हैं ओवरहेड, इन सबको खत्म किया जा रहा है। 300 करोड़ के यहाँ पे आज काम चल रहे हैं जिनके कारण इस इलाके के लोगों के पास साफ पानी, नई सीवेज की लाइनें, नई सड़कें, नई लाइटें और सारे कूड़ेदान को हटाने का काम किया गया।
0: श्री सिरसा ने कहा है कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से स्थानीय निवासियों और राहगीरों को जाम से मुक्ति मिलेगी तथा आवागमन पूरी तरह सुरक्षित और सुगम होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए आज दिल्ली सचिवालय में उद्यम संवाद 2026 का आयोजन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में MSME, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, उद्योग संघों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर सरकारी सहायता और विकास, नवाचार तथा व्यवसाय विस्तार के अवसरों पर विचार विमर्श किया।
4: इस कार्यक्रम का उद्घाटन दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया। मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जहां उद्यमी को केवल बिजनेस आइडिया और मॉडल तय करना हो और सरकार हर चरण में उसका सहयोग करे।
3: हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हम उनके लिए एक एसेट बने, हम उनकी सपोर्ट इस तरह से करें जैसे किसी प्राइवेट आदमी को उम्मीद होती है कि मैं अगर दरवाजा खड़काऊंगा मुझे सर्विस मिलेगी। दिल्ली सरकार अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर रही है। दिल्ली के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं, हम जगह जगह पे वहाँ पे बिजनेस सेंटर बना रहे हैं, वहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स लोग अपने रख पाए सामने एग्जीबिशन में और बाहर आकर देख पाए, ये कंसेप्ट ला रहे हैं।
4: एक दिवसीय उद्यम संवाद 2026 में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम तथा निर्यात संबंधी योजनाओं पर भी सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा स्टार्टअप योजनाओं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की योजनाओं पर भी सत्र आयोजित किए गए। सकलीन अख्तर के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: दिल्ली नगर निगम MCD का खतरनाक भवनों, अनाधिकृत निर्माण और भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ शहरव्यापी प्रवर्तन अभियान जारी है। निगम ने बताया कि आज चलाए गए अभियान में 15 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई, जबकि 6 संपत्तियों को भी सील किया गया। निगम के अनुसार भवन निर्माण संबंधी निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन मामले में 5 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। निगम ने कहा कि अनाधिकृत निर्माण और भवन निर्माण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। निगम के पूर्वी जोन ने आज राजधानी एनक्लेव पार्क क्षेत्र में मेगा स्वच्छता अभियान तथा गुजरात विहार से कड़करी मोड़ तक विशेष रोड डस्ट क्लीनिंग ड्राइव चलाया। निगम ने बताया कि इस मेगा अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों की सफाई, कचरे और मलबे के निस्तारण तथा सड़क किनारे जमा धूल को हटाने पर विशेष जोर दिया गया। निगम के अनुसार अभियान के तहत लगभग 8 टन मलबा, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और रोड डस्ट हटाया गया। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये समितियां संबंधित त्योहारों के लिए स्थानों की समीक्षा और अंतिम रूप देने के साथ साथ आयोजन स्थलों पर आवश्यक नागरिक सुविधाओं, सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, बिजली, चिकित्सा तथा अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
5: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि राजधानी में इन प्रमुख धार्मिक पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं और आयोजन समितियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पर्वों से लाखों लोगों की श्रद्धा और भावनाएं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा, भक्ति और आत्मीयता के साथ अपने पर्व मना सकें और उन्हें आयोजन पर किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है ताकि धार्मिक आयोजनों में सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और सौहार्द का वातावरण बना रहे। सकलैंड की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फिजियोथेरेपी एशिया वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वस्थ और अधिक सक्रिय जीवन के निर्माण में फिजियोथेरेपी के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में फिजियोथेरेपी केवल एक पेशा मात्र नहीं है बल्कि यह एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र के रूप में विकसित हुई है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि फिजियोथेरेपी सबसे महत्वपूर्ण उपचारात्मक इलाजों में से एक है।
6: कोई भी इंजर्ड स्पोर्ट्स पर्सन केयर के बाद एक बार फिर से एक्टिव हो पाता है। और फिटनेस सिर्फ सर्जरी नहीं मांगती, फिटनेस प्रिवेंटिव केयर मांगती, फिटनेस उन सभी थेरेपीज को चाहती है जिसके कारण से आप एक हेल्दी लाइफ जी सके। और आज की डेट में मैं मानती हूँ कि फिजियोथेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिसकी जरूरत मुझे, आपको, हम सबको अपने इस पूरा डे केयर में जरूरत पड़ती है।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि भारत और चिली भले ही दुनिया के दो अलग अलग छोर पर स्थित हों, लेकिन दोनों देशों की आत्मा लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं में गहरा जुड़ाव है। उन्होंने चिली की राजधानी सैंटियागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और चिली के बीच संबंधों की वास्तविक शक्ति दोनों देशों के लोगों के बीच बने विश्वास, आत्मीयता और मित्रता में निहित है। अपने संबोधन में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय समुदाय केवल भारत से जुड़े लोगों का समूह नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच एक जीवंत सेतु है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in को लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तर्जिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चन्नप्पा और वेलावलन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय मौसम साफ रहा, हालांकि शाम के समय कुछ इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी

0: चेष्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों से ही आवश्यक दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में SIR दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बोराड़ी में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और स्टार्टअप को मजबूत करने के लिए उद्यम संवाद का आयोजन किया। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ महापर्व की तैयारियों के लिए 3 विशेष समितियों का गठन किया। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है मुशायरा।
2: सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन, हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मुशायरा। शायर, शेर, इन दोनों से आप बखूबी वाकिफ हैं। शेर कहने वाला शायर होता है और शायर शेर कहता है, लेकिन हम कई बार ये सोचते हैं कि जो बात हम कह नहीं सकते, आम लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते, शायर उसे बड़ी नाजुकी के साथ उन लफ्ज़ों को मोती के माला में पिरोकर हमारे सामने ऐसे पेश कर देता है कि हमारे दिल की तर्जुमानी भी हो जाती है, और कई बार वो हमारी हिजो भी कर देता है, यानी हमारी शिकायत भी करता है, फिर भी हम वाह कर उठते हैं और आह कर उठते हैं। ये कमाल शायर का होता है। तो एहसास की और जज्बात की तर्जुमानी करने वाला इस दुनिया में कोई शख्स है तो वो है शायर। शायर अपने लफ्ज़ों से अपने दर्द को, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को इस तरह कशीद करता है कि सुनने वाला न चाहते हुए भी आह कर उठता है और वाह कर उठता है। और यही खूबी है शेर की कि वो शेर कामयाब होता है जो हमारे दिल को छू लेता है। और ये मुशायरा सिर्फ आह और वाह करने की चीज़ नहीं है, ये मुशायरा हमारे तहजीब की अमीन रही है और अमीन है, और मुस्तकबिल में भी ये हमारे तहजीब की अमीन साबित होगी। मुशायरा न सिर्फ एक तहजीब को बयान करती है, मुशायरा न सिर्फ हमें आदाब सिखाती है बोलने का, न सिर्फ एहसास को बयान करने का, अपने जज्बात को किसी के सामने पेश करने का अंदाज सिखाती है, बल्कि हमें लफ्ज़ों को बरतने का सलीका भी सिखाती है। तो सामईन, इसी के मद्देनज़र आज हमने स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सामने लंकेश गौतम हैं, दूसरे शायर मेहमान हमारे सफ़ीर सिद्दीकी साहब हैं, और कहा जाता है कि वजूद जन से है कायनात में रंग, कि अगर जन ना हो तो फिर कायनात बेरंगी हो जाती है। जो तीसरी मेहमान है रुमैसा रहमान, आप तीनों का इस महफिल में इस्तकबाल है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए अपने शेरी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले हम सफ़ीर सिद्दीकी के हुजूर चलते हैं और उनसे उन्हीं की ज़बान में उनका ही कलाम सुनते हैं। सफ़ीर सिद्दीकी साहब,
3: बहुत बहुत शुक्रिया। बगैर किसी तमहीद के गज़ल से कुछ अशार देखें।
2: अशार
3: मतलब है कि जीस्त एक खुशनुमा इजारा है,
2: जीस्त
3: एक खुशनुमा इजारा है, मौत ही इस मरज का चारा है।
2: क्या बात है।
3: जीस्त एक खुशनुमा इजारा है, मौत ही इस मरज का चारा है, जलता रहता है मर के भी सदियों।
2: आहा, जलता रहता है मर के भी सदियों,
3: जलता रहता है मर के भी सदियों, दिल भी दरअसल एक सितारा है।
2: क्या बात है, क्या बात, क्या बात,
3: बहुत शुक्रिया। जलता रहता है मर के भी सदियों, दिल भी दरअसल एक सितारा है, बेबसी इस्तराब और घुटन,
2: बेबसी इस्तराब और घुटन,
3: बेबसी इस्तराब और घुटन, मुख्तसर अपना गोशवारा है।
2: क्या बात है, बहुत खूब,
3: बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसर अपना गोशवारा है, और शेर देखें कि हम मरज हैं जनाब मीर के हम, हम मरज हैं जनाब मीर के हम, और तबीब अपना माह पारा है।
2: क्या बात है,
3: और तबीब अपना माह पारा है। बहुत शुक्रिया। ना खुदा मिल भी जाए इश्क में घर, ना खुदा मिल भी जाए इश्क में घर, ये समंदर तो बेकिनारा है।
2: क्या बात, बहुत,
3: ये समंदर तो बेकिनारा है, अब तो यूं है कि जो भी देखिए वो,

0: अब तो यूं है कि जो भी देखिए वो यहां से चल देने का इशारा है,
1: क्या बात है, बहुत खूब
0: यहां
1: बहुत खूब,
0: से चल देने
1: देने का
0: का
1: इशारा
0: इशारा
1: है।
0: है।
1: वाह,
0: बहुत शुक्रिया। और मक्ता देखें कि किसने हमको सफीरे गम न किया,
1: आहा,
0: किसने
1: क्या बात है,
0: हमको सफीरे
1: सफीरे
0: गम
1: गम
0: न
1: न किया,
0: किया, वक्त बस एक इस्तियारा है,
1: क्या बात,
0: वक्त
1: गम
0: बस
1: न
0: एक इस्तियारा है,
1: किया,
0: जीस्त एक खुशनुमा इजारा है, मौत
1: क्या
0: ही इस मरज का चारा है।
1: बात है,
0: वाह,
1: बहुत खूब,
0: बहुत शुक्रिया। और एक और गजल से कुछ अशार देखें। मतलब है कि बेकरारी ही बेकरारी है,
1: बेकरारी ही बेकरारी है,
0: बेकरारी ही बेकरारी है, रात अंधी है दिन ततारी है,
1: क्या बात है,
0: बेकरारी ही
1: अंधी ही
0: बेकरारी
1: बेकरारी
0: है,
1: है, रात
0: रात अंधी
1: अंधी है,
0: है दिन ततारी है, लड़खड़ाने लगे हैं जब्त के पांव,
1: लड़खड़ाने लगे हैं जब्त के पांव,
0: लड़खड़ाने लगे हैं जब्त के पांव,
1: क्या
0: बोझ है दिल पे और भारी है,
1: बात है,
0: बोझ
1: वाह,
0: है दिल
1: दिल
0: पे,
1: पे
0: बहुत
1: और
0: शुक्रिया, बोझ है दिल पे और भारी
1: भारी है।
0: है, हो गया सुर्ख रंगे आरिज़े हू,
1: क्या बात है,
0: हो गया सुर्ख रंगे
1: रंगे
0: आरिज़े
1: आरिज़े
0: हू,
1: हूँ,
0: हाय क्या चीख दिल ने मारी है।
1: क्या
0: हाय
1: बात
0: हाय
1: है,
0: हाय, बहुत
1: वाह
0: बहुत
1: वाह वाह
0: शुक्रिया।
1: वाह,
0: हाय क्या
1: क्या
0: चीख
1: चीख
0: दिल
1: दिल
0: ने
1: ने
0: मारी
1: मारी है,
0: है, हो गया सुर्ख रंगे आरिज़े हू, हाय क्या चीख
1: चीख दिल
0: दिल
1: ने
0: ने
1: मारी
0: मारी
1: है,
0: है एक आशुफ्ता सर जलाल में आज, है एक आशुफ्ता
1: आशुफ्ता सर
0: सर
1: जलाल
0: जलाल
1: में
0: में
1: आज,
0: आज, रात पर कपकपी सितारी है,
1: क्या बात है, क्या बात
0: रात
1: है,
0: पर
1: रात
0: कपकपी
1: कपकपी
0: सितारी
1: सितारी
0: है।
1: है,
0: और ये शेर देखें खास तौर पर कि तेज नाखून है
1: तेज नाखून है,
0: जिस्म है
1: आहा,
0: गम है,
1: क्या बात है,
0: तेज नाखून
1: नाखून
0: है
1: है,
0: जिस्म
1: जिस्म
0: है
1: है,
0: गम
1: गम
0: है,
1: है,
0: और अजब शौके लालाकारी है,
1: आए है, क्या
0: और
1: बात,
0: अजब
1: वाह वाह
0: शौके लालाकारी
1: वाह,
0: है। बहुत बहुत
1: वाह वाह,
0: शुक्रिया। और अजब शौके लालाकारी
1: लालाकारी है,
0: है, दिल के घुंघरू तो कब के टूट चुके,
1: दिल के
0: दिल के
1: घुंघरू
0: घुंघरू तो
1: तो कब के
0: कब
1: टूट,
0: के टूट चुके, रक्स धड़कन का फिर भी जारी है।
1: क्या बात है,
0: हाँ, फिर
1: बहुत
0: से
1: खूब,
0: कहिए। बहुत बहुत
1: मुकर्रर
0: शुक्रिया।
1: इशारा,
0: दिल के घुंघरू तो कब के टूट चुके, रक्स
1: वाह
0: धड़कन का फिर भी जारी है,
1: वाह,
0: अपने काबू में कब है जीस्त का खेल, अपने काबू
1: काबू
0: में
1: में
0: कब
1: कब
0: है
1: है
0: जीस्त
1: जीस्त
0: का
1: का
0: खेल,
1: खेल,
0: इसकी हर चाल इज़तिरारी है,
1: क्या बात, बहुत
0: इसकी
1: खूब,
0: हर चाल इज़तिरारी है।
1: बहुत
0: और
1: खूब,
0: गजल का
1: बहुत
0: मक्ता
1: खूब,
0: देखें कि हाँ यही मुस्कुराहटों का सफीर,
1: आहा,
0: हाँ
1: यही
0: यही
1: मुस्कुराहटों का
0: मुस्कुराहटों का
1: सफीर,
0: सफीर, शाहे इकली में सोगवारी है,
1: क्या बात है, बहुत खूब,
0: शाहे इकली
1: इकलीम
0: में
1: में
0: सोगवारी
1: सोगवारी,
0: है,
1: बहुत खूब,
0: बेकरारी ही बेकरारी है, रात अंधी है दिन ततारी है।
1: क्या बात
0: बहुत
1: है,
0: बहुत शुक्रिया। एक और छोटी बहर की गजल है, उससे भी चंद अशार
1: जी,
0: देखें।
1: निशा निशा,
0: मतलब है कि आने वाली है रात शाम हुई, आने
1: आने
0: वाली है
1: वाली
0: रात
1: रात और शाम
0: शाम
1: हुई,
0: हुई, रोशनी बस यहीं तमाम हुई,
1: क्या बात,
0: क्या
1: वाह
0: बात,
1: वाह,
0: आने वाली है रात शाम हुई, रोशनी बस यहीं तमाम
1: तमाम
0: हुई,
1: हुई,
0: किसको होना था मेरे नाम मगर,
1: किसको होना था मेरे नाम
0: किसको
1: मगर,
0: होना था मेरे नाम मगर, कैसी महरूमी मेरे नाम हुई,
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात,
1: है,
0: किसको होना था मेरे नाम मगर, कैसी महरूमी मेरे
1: मेरे
0: नाम
1: नाम हुई,
0: हुई, बेबसी ने लगा दी यास पे मोहर,
1: बेबसी
0: वाह,
1: ने लगा दी आस पे मोहर,
0: बेबसी ने लगा दी यास पे मोहर, हुज्जत उम्मीद की तमाम हुई,
1: क्या
0: क्या बात,
1: बात है, बहुत
0: हुज्जत
1: खूब,
0: उम्मीद की तमाम
1: वाह
0: हुई।
1: वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया। और शेर देखें कि एक बूढ़ी यकीन की दुनिया,
1: एक बूढ़ी यकीन की दुनिया,
0: एक बूढ़ी यकीन की दुनिया, एक पल में ख्याले खाम हुई,
1: क्या
0: क्या बात,
1: बात है,
0: एक
1: बहुत
0: पल
1: खूब,
0: में ख्याले खाम हुई। बहुत शुक्रिया। और शेर देखें कि छोड़ दी जब्त ने भी जख्म की बाग,
1: क्या बात है,
0: छोड़
1: ये
0: दी
1: जख्म ने
0: जब्त ने भी जख्म की
1: जी बाग,
0: बाग, पीस भी खुल के बेलगाम हुई,
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है,
0: है,
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: बात, पीस
1: वाह,
0: भी खुल के बेलगाम हुई, पीस भी खुल के बेलगाम हुई, मौज दर मौज सफ बसफ हुए गम,
1: मौज दर
0: मौज दर
1: मौज
0: मौज
1: सब
0: सफ बसफ
1: बसफ हुए
0: हुए
1: गम,
0: गम, मौज दर मौज सफ बसफ हुए गम, जिंदगी सबकी पेश इमाम हुई,
1: क्या बात है, बहुत
0: मौज
1: खूब,
0: दर मौज सफ बसफ हुए गम, जिंदगी सबकी पेश इमाम हुई, खुश हुआ खून जला के दिल भी सफीर,
1: क्या बात है, खुश हुआ
0: खुश हुआ खून जला
1: जला के
0: के
1: दिल
0: दिल
1: भी
0: भी
1: सफीर,
0: सफीर, चश्मे गिरिया भी शाद काम हुई,
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात,
1: है, बहुत,
0: चश्मे
1: वाह
0: गिरिया
1: वाह वाह
0: भी
1: वाह,
0: शाद काम हुई, आने वाली है रात शाम हुई, रोशनी बस यहीं तमाम हुई। आखिर में गजल से चार शेर और देखें। मतलब है कि अजीब
1: इरशाद,
0: बेहिसो बेजार होते जा रहे हैं,
1: अजीब बेहिशो
0: अजीब
1: बेजार
0: बेहिसो
1: होते,
0: बेजार होते जा रहे हैं, हम अपने अहद के सरदार।

0: होते जा रहे
1: क्या
0: हैं,
1: बात है, वाह
0: अजीब बेहिसो बेजार होते
1: होते
0: जा
1: जा
0: रहे
1: रहे हैं।
0: हैं, हम अपने अहद के सरदार होते जा रहे हैं। खबर ले आए मेरे शाहे सितम ज़रीफ़ खबर,
1: क्या बात है,
0: खबर ले आए
1: अरे
0: मेरे शाहे सितम
1: एकदम जरूर,
0: ज़रीफ़ खबर, तेरे ज़रीफ़ अज़ादार होते जा रहे
1: क्या
0: हैं।
1: बात है, क्या बात है,
0: बहुत बहुत
1: वाह।
0: शुक्रिया। तेरे ज़रीफ़ अज़ादार होते जा रहे हैं, है जारी आबलों का बनना फूटना पहम,
1: है आप
0: है
1: लोग
0: जारी बन आबलों का बनना फूटना पहम,
1: हम,
0: नमी से खार भी तलवार होते जा रहे
1: क्या बात
0: हैं।
1: है, बहुत
0: नमी
1: खूब,
0: से
1: बहुत
0: खार
1: खूब,
0: भी तलवार
1: बहुत
0: होते
1: बहुत
0: जा रहे
1: शुक्रिया।
0: हैं,
1: नमी से खार
0: नमी
1: भी
0: तलवार
1: तलवार
0: होते
1: होते
0: जा
1: जा
0: रहे हैं। और आखिरी शेर की, उठो कि हब्स की शिद्दत से कैद खाने के संग,
1: क्या बात है,
0: उठो कि हब्स की शिद्दत से कैद
1: कैद
0: खाने
1: खाने
0: के
1: के संग,
0: संग, चटख के रखने दीवार होते जा रहे
1: क्या
0: हैं,
1: बात है,
0: चटख के रखने
1: रखने
0: दीवार
1: दीवार
0: होते
1: होते
0: जा
1: जा
0: रहे
1: रहे
0: हैं,
1: जी,
0: अजीब बेहिसो बेजार होते जा रहे हैं,
1: क्या बात है,
0: हम
1: बहुत
0: अपने
1: खूब,
0: अहद के सरदार होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सफ़ीर सिद्दीकी साहब। और सामईन कराम, आप यकीनन इनके अशार से महजूज़ हुए होंगे और हम इनको वक्तन फ़ौक्तन बुलाते रहते हैं। आप इनको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर और उसके अलावा दीगर मजालिस में भी आप इनके अशार से रूबरू होते रहते हैं। और इनके अशार का ही ये कमाल है कि ये साहब दिखते तो नहीं हैं लेकिन हैं ये शायर। गालिब ने ही कहा था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो ये जो जज्बा था इनके शायरी में, ये जज्बा नज़र आ रहा था। सामईन कराम, आइए अपने शेरी सफ़र को अब आगे बढ़ाते हैं और ऐसी शायरा के हुजूर चलते हैं जो अपने कलाम के साथ साथ खुद अपने आप में भी खूबसूरत हैं। तो आइए उनके शेर से हम महसूस होते हैं और उनके हुजूर चलते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अशार सुनाएं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे इतनी तारीफ़ के मैं काबिल तो नहीं लेकिन आपकी ज़र्रा नवाजी है। गज़ल के कुछ अशार देखिए कि चांद को अब्र में छुपने का हुनर आया है,
1: चांद को अब्र में छुपने का हुनर आया है,
2: चांद को अब्र में छुपने का हुनर आया है, फिर वही जलवे जानाना नजर आया है,
1: क्या बात,
2: फिर वही जलवे जानाना नजर आया है,
1: क्या बात है,
2: हमने कंदील जलाई है मोहब्बत की सदा,
1: क्या बात है, हमने कंदील जलाई है मोहब्बत की सदा,
2: हमने कंदील जलाई है मोहब्बत की सदा, जब भी नफरत के अंधेरों का खतर आया है,
1: क्या बात है, बहुत खूब,
2: जब भी नफरत के अंधेरों का खतर आया है, दिल के औराक पे तेरा ही लिखा नाम फकत,
1: क्या बात है, दिल के औराक पे,
2: दिल के औराक पे तेरा ही लिखा नाम फकत, इश्क की है ये अदा जिसका असर आया है,
1: क्या बात है, क्या कहने,
2: इश्क की है ये अदा जिसका असर आया है, उसने किरदार को रुस्वा कभी होने न दिया,
1: उसने किरदार को कभी रुस्वा होने न दिया,
2: उसने किरदार को रुस्वा कभी होने न दिया, जिसमें हक बात को कहने का जिगर आया है,
1: क्या बात है, बहुत,
2: जिसमें हक बात को कहने का जिगर आया है, बहुत शुक्रिया। क्यों शिकायत है भला शम्मा से परवानों को,
1: क्या बात है,
2: क्यों शिकायत है भला शम्मा से परवानों को, नाम से जिसके है रोशन वो अगर आया है,
1: क्या बात,
2: नाम से जिसके है रोशन वो अगर आया है, बहुत शुक्रिया। उसने कांटों पे नवाजिश की निगाहें रखी,
1: उसने कांटों पे नवाजिश की निगाहें,
2: उसने कांटों पे नवाजिश की निगाहें रखी, और फूलों पे तासुब का शरर आया,
1: क्या बात है, क्या बात है,
2: और फूलों पे तासुब का शरर आया है। और शेर देखिए कि ख्वाब आंखों में रुमैसा ने बसाया जिसका,
1: क्या बात,
2: ख्वाब आंखों में रुमैसा ने बसाया जिसका, आज किस्मत से वो नायाब गौहर आया है,
1: क्या बात, क्या बात,
2: आज किस्मत से वो नायाब गौहर आया है। और दूसरी गजल से कुछ अशार देखिए कि अदब है विरसे में उसके वो बेमिसाल भी है,
1: क्या बात,
2: अदब है विरसे में उसके वो बेमिसाल भी है, वो हम सफर ही नहीं मेरा हम ख्याल भी है,
1: क्या बात,
2: बहुत शुक्रिया। वो हम सफर ही नहीं मेरा हम ख्याल भी है, गमों के आंसू हो आंखों में या खुशी चमके,
1: क्या बात,
2: गमों के आंसू हो आंखों में या खुशी चमके, वो दिल का हाल समझने में बाकमाल भी है, वो दिल का हाल समझने में बाकमाल भी है, अभी है मसनदें ऊंची तो शोहरतें भी नई, अभी है मसरदे ऊंची तो शोहरतें भी नहीं, मगर ये याद रहे एक दिन जवाल भी है।
3: क्या बात।

0: बहुत शुक्रिया शुक्रिया। मगर ये याद रहे एक दिन जवाल भी है, हो भाईचारे को नुकसान दुश्मनी फैले। हो भाईचारे को नुकसान दुश्मनी फैले, ये शर पसंदों की साजिश भी है और चाल भी है।
1: क्या बात है,
0: ये शर पसंदों की साजिश भी है और चाल भी है। और शेर बतौर खास देखिए, जो वालदैन की शफकत भरी दुआएं मिले।
1: क्या बात है,
0: जो वालदैन की शफकत भरी दुआएं मिले, वही है साया उल्फत, वही तो ढाल भी है।
1: क्या बात है,
0: वही है साया उल्फत, वही तो ढाल भी है। कभी ना दुनिया की चाहत में खुद को कैद करो, कभी ना दुनिया की चाहत में खुद को कैद करो, ये चंद रोज की खुशियों का एक जाल भी है। ये चंद रोज की खुशियों का एक जाल भी है। और मक्ता देखिए कि कशिश है ऐसी कि उससे न बच ही पाओगी। कशिश है ऐसी कि उससे न बच ही पाओगी, रुमैसा उसका है जो वो ही तेरा हाल भी है।
1: क्या बात है, क्या बात,
0: रुमैसा उसका है जो वो ही तेरा हाल भी है। और दूसरी गजल से देखिए कुछ अशार के, यही हुनर था,
1: यही हुनर था
0: वो खुद को नहीं सिखा पाए।
1: क्या बात,
0: यही हुनर था वो खुद को नहीं सिखा पाए, मोहब्बतों को कभी जो नहीं जता पाए।
1: क्या बात,
0: मोहब्बतों को कभी जो नहीं जता पाए। मेरी कशिश ही मेरे लहजे में है पोशीदा, मेरी कशिश ही मेरे लहजे में है पोशीदा, मेरी तरह न कोई और तुम बना पाए।
1: क्या बात,
0: बहुत शुक्रिया। मेरी तरह न कोई और तुम बना पाए, खुशी बहुत है कि घर चांदनी से चमका है।
1: क्या बात,
0: खुशी बहुत है कि घर चांदनी से चमका है, सितम ये क्या कि नहीं चांद को बुला पाए। सितम ये क्या कि नहीं चांद को बुला पाए, ये जिंदगी का सफर मंजिलों की चाहत है। ये जिंदगी का सफर मंजिलों की चाहत है, यही तो बात थी खुद को नहीं बता पाए। यही तो बात थी खुद को नहीं बता पाए, वो जानते थे गलत है दिखावा करना मगर, वो जानते थे गलत है दिखावा करना मगर, इबादतों का नहीं राज वो छुपा पाए। इबादतों का नहीं राज वो छुपा पाए, हजार जख्म भी खाकर ही मुस्कुराना है।
1: हजार जख्म
0: भी खाकर ही मुस्कुराना है, ये तीर बातों के मुझको नहीं रुला पाए।
1: क्या बात,
0: ये तीर बातों के मुझको नहीं रुला पाए। और आखिरी शेर देखिए कि हवा के नर्म से झोंकों में खुशबुएं जो घुली, हवा के नर्म से झोंकों में खुशबुएं जो घुली, ख्याल यार से खुद को नहीं बचा पाए। ख्याल यार से खुद को नहीं बचा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ और चंद अशआर हैं गजल से, जो हकीकत में इश्क वाले हैं, जो हकीकत में इश्क वाले हैं, फूल खुशबू की बात करते हैं। जो हकीकत में इश्क वाले हैं, फूल खुशबू की बात करते हैं। क्यों अंधेरे हैं चुपते आंखों में, क्यों अंधेरे हैं चुपते आंखों में, क्या उजालों से मेरे नाते हैं।
1: क्या बात है,
0: क्या उजालों से मेरे नाते हैं। एक नजर उनकी एक नेमत है।
1: क्या बात है,
0: एक नजर उनकी एक नेमत है, एक नजर के लिए ही जीते हैं।
1: क्या,
0: एक नजर के लिए ही जीते हैं। लफ्ज खो दें जहाँ पे वक्त हम, लफ्ज खो दें जहाँ पे वक्त हम, ऐसी महफिल में होंठ सीते हैं।
1: क्या बात,
0: बहुत शुक्रिया। ऐसी महफिल में होंठ सीते हैं। और शेर बतौर खास देखिए, क्या तहफ्फुज़ भी मिल सकेगा हुजूर,
1: क्या तहफ्फुज़ भी मिल सकेगा,
0: क्या तहफ्फुज़ भी मिल सकेगा हुजूर, जन को आजादियां तो देते हैं।
1: क्या बात,
0: जन को आजादियां तो देते हैं। उनके लहजे हैं किस कदर शीरी,
1: उनके
0: लहजे हैं किस कदर शीरी, तलखियों से भी लुत्फ लेते हैं।
1: क्या बात,
0: तलखियों से भी लुत्फ लेते हैं। दर्द तो बढ़ गए ख्यालों में, दर्द तो बढ़ गए ख्यालों में, लेके एहसास हम अकेले हैं।
1: क्या बात है,
0: लेके एहसास हम अकेले हैं। थक के बैठी हुई हैं उम्मीदें,
1: थक के बैठी हुई हैं उम्मीदें,
0: थक के बैठी हुई हैं उम्मीदें, हौसले हैं के साथ रहते हैं। हौसले हैं के साथ रहते हैं। और मक्ता देखिए, क्यों रुमैसा करूँ ना शुक्र खुदा,
1: क्या बात है,
0: क्यों रूम ऐसा करूँ ना शुक्र खुदा, सर पिसाए मेरे उसी के हैं, सर पिसाए मेरे उसी के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: उनके लहजे हैं किस कदर शीरी, उनके लहजे हैं किस कदर शीरी, तलखियों से भी लुत्फ लेते हैं। सामीन कराम, ये थी रुमैसा रहमान, आप उनकी गजलों से महसूस हो रहे थे। तो आइए हम अपने इस शेरी सफर को आगे बढ़ाते हैं और लंकेश गौतम के हुजूर चलते हैं और उनसे उनके अशार सुनते हैं। लंकेश गौतम,
2: बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल सा अशार देखें।
0: इरशाद,
2: कुछ नहीं तो इश्क ही कर जाइए।
1: कुछ नहीं तो इश्क ही कर जाइए।
2: कुछ नहीं तो इश्क ही कर जाइए, इश्क करिए और फिर डर जाइए।
3: क्या बात, इश्क करिए और फिर डर जाइए,
1: फिर डर जाइए।
2: कुछ नहीं तो इश्क ही कर जाइए, इश्क करिए और फिर डर जाइए। उनसे खाली हाथ मिलने जाएंगे, उनसे खाली हाथ मिलने जाएंगे, आंख ही अपनी जरा भर जाइए।
1: क्या बात, क्या बात, क्या बात।
2: सांस तोड़े जाइए बीमार की, सांस तोड़े जाइए बीमार की, जाइए सीने पे चल कर जाइए।
3: क्या बात, क्या कहने, वाह वाह,
1: जाइए
2: जाइए सीने पे चल कर जाइए। मैं कदा भी ठीक है वहशत में लेक, मैं कदा भी ठीक है वहशत में लेक, हो सके तो यार के घर जाइए।
3: क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। हो सके तो यार,
2: हो सके तो यार के घर जाइए।
3: क्या कहने,
2: कुछ तो हो जिसके सबब याद आए आप।
1: क्या बात है, कुछ तो हो जिसके,
2: कुछ तो हो जिसके सबब याद आए आप, एक दो इल्जाम ही धर जाइए।
1: क्या बात है, क्या बात,
2: एक दो इल्जाम ही धर जाइए। छोड़िए मैं आखिरी मंजिल पे हूँ, छोड़िए मैं आखिरी मंजिल पे हूँ, आइए और आप भी मर जाइए।
1: क्या बात है, क्या बात है,
3: बहुत उम्दा।
2: एक और गजल से शार देखें। किया है कैद कि जिंदान कर दिया है मुझे।
1: क्या बात,
3: किया है कैद कि जिंदान कर दिया,
2: किया है कैद कि जिंदान कर दिया है मुझे, तेरे बदन ने परेशान कर दिया है मुझे।
1: क्या बात,
2: तुम्हारे हिजर ने आंखें निचोड़ ली है मेरी,
1: तुम्हारे
2: हिजर ने आंखें निचोड़ ली है मेरी, रुला रुला के बयाबान कर दिया है मुझे। तुम्हारे हिजर ने आंखें निचोड़ ली है मेरी, रुला रुला के बयाबान कर दिया है मुझे। नकाब पोश बड़ा कुफ्र हो गया तुझसे।
1: क्या बात,
2: नकाब पोश बड़ा कुफ्र हो गया तुझसे, नजर उठा के मुसलमान कर दिया है मुझे।
1: क्या बात है, क्या बात है,
2: तमाम हुस्न है वैसे तो अपनी दुनिया में।
1: क्या बात है,
2: तमाम हुस्न है वैसे तो अपनी दुनिया में, पर एक शख्स ने हैरान कर दिया है।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या
3: बात,
2: तमाम हुस्न है वैसे तो अपनी दुनिया में,
3: एक शख्स ने हैरान कर दिया,
2: पर एक शख्स ने हैरान कर दिया है मुझे। उदास करना मुझे सहल तो नहीं यूं भी।
1: क्या बात है, उदास करना मुझे सहल तो नहीं,
2: उदास करना मुझे सहल तो नहीं यूं भी, फिर उसने वसल के दौरान कर दिया है।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात
3: है, बहुत उम्दा।
2: उदास करना मुझे सहल तो नहीं यूं भी, फिर उसने वसल के दौरान कर दिया है मुझे। किसी ने अपने बदन के जमाल से गौतम।
1: क्या बात,
3: किसी ने अपने बदन के जमाल से,
2: किसी ने अपने बदन के जमाल से गौतम, तलाश रूह से बेध्यान कर दिया है मुझे।
1: क्या बात है, क्या बात,
3: बहुत
1: शायद इसी ख्याल को गालिब ने भी कहा था कि आशिकों पे माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। उसी ख्याल को आपने बड़े खूबसूरती,
2: बहुत शुक्रिया
1: जी जी।
2: एक और गजल देखें।
1: इरशाद, इरशाद,
2: दाना है आप लोग समझाइए मुझे,
3: दाना है आप लोग
1: तो समझाइए मुझे,
2: दाना है आप लोग तो समझाइए मुझे, उसकी गली से खींच के ले आइए मुझे।
1: क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने,
2: दाना है आप लोग तो समझाइए मुझे,
3: क्या कहने,
2: उसकी गली से खींच के ले आइए मुझे, फिर देखना कि जिस्म से फूटेंगे कैसे शेर। फिर देखना कि जिस्म से फूटेंगे कैसे शेर, उसकी जमीन वसल में दफनाइए मुझे।
1: क्या बात है, क्या बात है,
2: मिट्टी अब उनके वसल की जरखेज है पर आप, मिट्टी अब उनके वसल की जरखेज है पर आप, कूजा गरे फिराक से बनवाइए मुझे।
1: क्या बात है,
3: बहुत,
2: अपने बदन की धूप नहीं दे सकेंगे आप, अपने बदन की धूप नहीं दे सकेंगे आप, तो फिर किसी के साए में छोड़ाइए मुझे।
1: क्या बात, क्या बात,
3: बहुत,
2: शोखी और इंतजार का है आशिकी में लुत्फ, शोखी और इंतजार का है आशिकी में लुत्फ, कुछ और हिचकिचाइए तड़पाइए मुझे।
1: क्या बात है, क्या बात है,
3: कुछ और हिचकी चाहिए
2: तड़पाइए मुझे,
1: इंतजार का लुत्फ लाजवाब,
2: शोखी और इंतजार का है आशिकी में लुत्फ, कुछ और हिचकिचाइए।

0: ये मुझे
1: वाह वाह बहुत मजा।
0: लंकेश मुझको लौटने में देर हो गई, अब हो गई है देर तो पछताई है मुझे।
2: क्या बात है, क्या कहने, अच्छा
1: बहुत हो गई है देर तो पछताई है मुझे।
0: एक और गजल देख लें। रहते हैं चश्मे वसल के सर पर सवार आप,
2: क्या बात है,
0: रहते हैं चश्मे वसल के सर पर सवार आप, कैसे सहेंगे हिज्र में गर्दो गुबार आप।
2: क्या बात है, क्या कहने,
1: बहुत।
0: लेकिन हुजूर जो मजा आवारगी में है,
1: लेकिन
0: हुजूर जो मजा आवारगी में है, रहिए शरीफ कीजिए नेकी हजार आप।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
0: करते हैं उसका जिक्र ही क्यों बात बात पर, करते हैं उसका जिक्र ही क्यों बात बात पर, लेते हैं उसका नाम ही क्यों बार बार आप।
2: क्या बात है, क्या बात है,
1: बहुत।
0: क्या आपको हुदूदे दो आलम नहीं पता, क्या आपको हुदूदे दो आलम नहीं पता, मरकद तक आ गए हैं गमे रोजगार आप।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
0: गौतम अगरचे आप भले आदमी नहीं, गौतम अगरचे आप भले आदमी नहीं, गजलें तो कह रहे हैं मगर शानदार आप।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत।
0: एक और गजल देखें। वसल का लम्हा हिजर का साल,
2: क्या बात है, वसल का लम्हा,
0: वसल का लम्हा हिजर का साल, सूखा पेड़ और एक गजाल।
2: क्या
1: कहने,
0: वसल का लम्हा हिजर का साल, सूखा पेड़ और एक गजाल, मजनू गौतम एक सहाल,
2: मजनू गौतम एक सहाल,
0: मजनू गौतम एक सहाल, खूब उदासी लंबे बाल।
2: क्या बात, क्या बात,
0: मजनू गौतम एक सहाल, खूब उदासी लंबे बाल, एक गजल में खत्म हुआ,
2: एक गजल में खत्म हुआ,
0: एक गजल में खत्म हुआ, शेर का सारा कच्चा माल।
2: क्या बात,
0: ओस पड़ी तो टूट गई,
2: ओस पड़ी तो टूट गई,
0: ओस पड़ी तो टूट गई, फूलों से लिपटी कच्ची डाल।
2: क्या बात है, क्या बात है,
0: ओढ़ रखी थी दोनों ने, ओढ़ रखी थी दोनों ने, सर्द हवा में वसल की शाल।
2: क्या बात है, क्या बात है,
3: सर्द हवा में वसल की शाल,
0: ओढ़ रखी थी दोनों ने, सर्द हवा में वसल की शाल। ठीक नहीं है गौतम जी,
2: ठीक नहीं है गौतम,
0: ठीक नहीं है गौतम जी, कम उम्र में इतने मलाल।
2: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत
3: शुक्रिया, बहुत खूबसूरत।
0: एक गजल देखें।
2: जी,
0: सब कुछ त्याग के चीवर धारा,
2: सब कुछ त्याग के जीवन धारा,
0: सब कुछ त्याग के चीवर धारा,
2: चीवर धारा,
0: नगर नगर से दान लिया।
1: क्या कहना,
0: सब कुछ त्याग के चीवर धारा, नगर नगर से दान लिया, एक पीपल की छाव में बैठे और गौतम से ज्ञान लिया।
1: क्या कहने, वाह वाह वाह,
3: क्या कहने,
1: क्या कहने,
0: उसके दर को खोल दिया
2: जी,
0: एक तेज हवा के झोंके ने
2: जी,
1: उसके दर को खोल दिया एक तेज हवा के,
0: उसके दर को खोल दिया एक तेज हवा के झोंके ने, मेरे दस्तक देने से पहले ही मुझे पहचान लिया।
1: क्या बात है, बहुत उम्दा।
0: घटा हुई तो खुशी खुशी में रम भी किया, बरखा न हुई।
2: क्या बात है,
0: घटा हुई तो खुशी खुशी में रम भी किया, बरखा न हुई, अपना तन बेकार ही हमने इस माटी में सान लिया।
2: क्या बात है,
1: बहुत उम्दा,
2: क्या बात है।
0: वो तो कब का चला गया, किसे ढूंढ रहे हो गौतम जी, हमने उसकी चाह में शहर का कोना कोना छान लिया।
1: क्या
2: बात है, क्या बात,
0: बहुत शुक्रिया।
3: फिर से पढ़िए, बहुत अच्छा।
0: वो तो कब का चला गया, किसे ढूंढ रहे हो गौतम जी, हमने उसकी चाह में शहर का कोना कोना छान लिया।
2: बहुत
0: शुक्रिया,
2: बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। किसी शायर ने कहा था कि नए उम्रों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए, नए उम्रों की खुद मुख्तारी को कौन समझाए, कहाँ से बचकर निकलना है और कहाँ जाना ज़रूरी है। तो ये थे लंकेश गौतम, और ये ज़िंदा हैं, नौजवान हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। इनके शेर को हमारे सामईन सुन रहे थे, महसूस हो रहे थे, और उनसे बहुत कुछ सीख भी रहे थे और समझ भी रहे थे। तो ये गौतम जी वही गौतम है या उस गौतम के राह पर चल रहे हैं, ये फ़ैसला आप करें। तो सामईन इकराम, ये आज की हमारी महफ़िल यहीं इख्तिताम को पहुँचती है। हम अपने तमाम शोरा का, जनाब सफ़ीर सिद्दीकी, रुमैसा रहमान साहिबा और लंकेश गौतम साहब, आप तीनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सामईन के लिए इतने अच्छे अशआर, इतनी अच्छी गज़लें पेश की। इसके लिए हम आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सामईन इकराम, आपने सुना कि आज اس مشاعرے کی محفل میں کس

0: नौयत के अशार हमारे शायरों ने, हमारे नौजवान शोरा ने पेश किए, और इन शायरों ने अपने जज्बात को या जो कुछ ये देखते हैं अपने समाज में, जिन चीज़ों को देख रहे हैं अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द जिन चीज़ों को देख रहे हैं, अपने एहसास को लफ्ज़ों का जामा पहनाकर किस तरह हमारे सामने पेश करते हैं, ये सब हमारे सामने आया था। तो इसी के साथ आज अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। इससे पहले ये भी बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था इंतज़ार सैफ़ी ने। तो सामीन, आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और शोरा के साथ किसी और महफिल में। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनिए क्षमावाणी महापर्व पर विशेष वार्ता। क्षमा तीन लोक की संपदा। वार्ताकार है डॉक्टर इंदु जैन।
3: जैन दर्शन में पर्युषण और दस लक्षण महापर्व आत्मशुद्धि, आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरण का अवसर है। इन दिनों मनुष्य कुछ समय के लिए संसार की व्यस्तताओं से हटकर अपने भीतर झांकता है और अपने राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, छल, लोभ तथा आसक्ति को पहचानने का प्रयास करता है। पर्युषण के दिनों में संयम, तप, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, पूजा और आत्मचिंतन के माध्यम से कर्म निर्जरा तथा आत्म कल्याण की भावना जागृत की जाती है। दस लक्षण महापर्व में उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक 10 गुण धर्मों को जीवन में उतारने की साधना की जाती है। ये 10 गुण केवल पूजा पाठ के विषय नहीं है, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले 10 व्यावहारिक मार्ग हैं। उत्तम क्षमा क्रोध को शांति में, उत्तम मार्दव अहंकार को विनम्रता में और उत्तम आर्जव कपट को सरलता एवं पारदर्शिता में बदलने की प्रेरणा देता है। उत्तम सत्य हमें सत्य निष्ठा, उत्तम शौच मन की निर्मलता, उत्तम संयम इंद्रियों पर नियंत्रण, उत्तम तप आत्मानुशासन, उत्तम त्याग परोपकार, उत्तम आकिंचन्य आसक्ति से मुक्ति और उत्तम ब्रह्मचर्य आत्मसंयम एवं पवित्रता का मार्ग दिखाता है। इस प्रकार पर्युषण और दस लक्षण महापर्व की पूरी साधना मनुष्य को भीतर से निर्मल बनाने की यात्रा है। इसी साधना की सुंदर परिणति क्षमावाणी महापर्व में होती है, जब हम अपने द्वारा जाने अनजाने किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं और दूसरों की भूलों को क्षमा करने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म में भाद्र माह के दस लक्षण महापर्व की अनंत चतुर्दशी के ठीक एक दिन बाद आश्विन कृष्ण एकम को विश्वमैत्री क्षमावाणी महापर्व मनाया जाता है। क्षमा पर्व में सभी जन समस्त सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों से वार्षिक प्रतिक्रमण करते हुए एवं आपस में एक दूसरे से उत्तम क्षमा, मिच्छा में दुक्कडम अर्थात मेरे सभी दुष्कृत्य मिथ्या हो जाएं, ऐसा कहकर प्रायश्चित करते हैं और मन को शुद्ध करते हैं। विश्व के लगभग सभी धर्मों में क्षमा गुण की सर्वाधिक प्रतिष्ठा है, इसलिए पूरे विश्व के सभी लोगों को क्षमावाणी महापर्व मनाना चाहिए, क्योंकि क्षमा से जीवन के सभी संघर्ष जीते जा सकते हैं। क्षमा हमारे खुद के लिए है। क्षमा भावना होने से हम अपने मन से अनगिनत बोझ को हटाकर मन को हल्का कर सकते हैं और स्वच्छ मन और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। क्षमा बने हर हृदय की भाषा, प्रेम बने आधार, मिट जाए मन के भेद सभी, मिट जाए तकरार, विश्व धरा पर क्षमा का पर्व हर मानव मिलकर मनाए, क्षमा अहिंसा प्रेम से ही विश्व शांति मुस्काए। पर्युषण दस लक्षण महापर्व जैन दर्शन का एक ऐसा सौभाग्यशाली पर्व है जिसके दोनों सिरों पर क्षमा उपस्थित है, पहली उत्तम क्षमा के रूप में, दूसरी क्षमावाणी के रूप में। पर्व हमारे जीवन में नई खुशियां, नई बहार लेकर आते हैं। क्षमावाणी एक ऐसा पर्व है जिसमें विश्व मैत्री की भावना समाहित है। यह संसार के समस्त जीवों के प्रति मैत्री की भावना से परिपूरित है। सौहार्द और सद्भाव का पर्व है। क्षमा ही हमारा जीवन है। आचार्य वट्टिकेहरी जी द्वारा रचित प्राकृत भाषा के ग्रंथ

मूलाचार में क्षमा के लिए एक बहुत सुंदर भावों की अभिव्यक्ति करती हुई एक प्रसिद्ध गाथा है। खम्मामि सव्वे जीवाणाम सव्वे जीवा खमन्तु मे, मिट्टी में सब भूदेशु वैरम मज्जम रक्केण वी, अर्थात मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, किसी के प्रति मेरा वैर भाव नहीं है। हमारी भी सदैव यही भावना होनी चाहिए। इन भावनाओं को अपने जीवन में उतारते हुए हमें स्वीकार करना होगा कि क्षमा ही हमारा जीवन है, धर्म है, प्राण है और आत्मा है। क्षमा केवल वाणी का विषय नहीं है, यह अंतःकरण की निधि है। क्षमा अमृत है, क्षमा प्रकाश है। ऐसे प्रकाश में जीने वाला व्यक्ति ही जीवन को प्रकाशित कर सकता है। कहा है कि क्षमा रूपी चिंतामणि रहती जिसके पास, तीन लोक की संपदा बनती है फिर दास। क्षमा पहले मन में आती है, फिर वाणी में आती है, फिर काय से परिणत होती है। इसीलिए क्षमा वाणी को नित्य जीवन में हर पल मनाते हुए क्षमा के एक विशेष मंत्र की बार बार अनुप्रेक्षा करनी चाहिए, ताकि हम प्रतिपल सजग रहे, गलती ना करें और अपने मन में मलिनता को ना आने दें। ओम ह्रीम नमः, सबसे क्षमा सबको क्षमा। इस मंत्र को यदि हम बार बार स्मरण करें तो हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि धर्म हमें क्षमा करना सिखाता है, क्रोध नहीं। क्षमा हमारा स्वभाव है, किंतु क्षमा वाणी पर्व हमसे कहता है कि जाने अनजाने क्रोध हो भी गया हो, किसी ने आपका दिल दुखाया हो या आपके द्वारा किसी को ठेस पहुंची हो, तो इस पर्व के दिन उससे आप क्षमा मांग लें और उसे क्षमा कर दें, मन की मलिनता दूर हो जाएगी। ऐसी कर तू साधना, अधिकार क्रोध पर हो तेरा, कितना किस पर कहां पर, कैसे विवेक पूर्ण हो विरोध तेरा। निश्चल मन से कर विचार तू, दया धर्म का कर ध्यान, सहज भाव से जी ले प्यारे, क्षमा बड़ी बलवान, क्षमा बड़ी बलवान। क्षमा कोई कार्य नहीं, एक प्रक्रिया है और इसमें समय भी लग सकता है। व्यावहारिक रूप में क्षमा भाव को समझने और प्रयोग करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। क्षमा वाणी महापर्व हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाता है, दूसरों को क्षमा करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है स्वयं को भी क्षमा करना। किसी ने हमें दुख दिया हो, कोई बात मन को चोट पहुंचा दी गई हो, तो उस पीड़ा को वर्षों तक अपने अंतर मन में संजो कर मत रखिए, उसे छोड़िए, क्षमा कीजिए और अपने मन को हल्का रखिए, क्योंकि मन में ईर्ष्या द्वेष और प्रतिशोध की गांठें बांधकर हम दूसरों को नहीं स्वयं को ही दुख देते हैं। कहते हैं रोग तन में जड़े मन में, इसलिए स्वस्थ शरीर शांत मन और आत्मिक सुख के लिए क्षमाशील होना जरूरी है। अपनी पुरानी भूलों के लिए स्वयं को जीवन भर दंडित मत कीजिए, गलती से सीखिए, सुधार कीजिए और आगे बढ़ जाइए। जब परिस्थितियां विपरीत हों, तब अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए और मन की उथल पुथल को शांत कीजिए। दूसरों की कमियां गिनाने से पहले एक बार अपने भीतर झांकिए, अपनी कमियों को पहचानिए, स्वीकारिए और उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। हर पल अपने व्यवहार पे नजर रखिए कि हमारे मन वचन और कर्म से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा। क्रोध आए तो उस पर अड़िए मत, कभी मुस्कुराकर उसे उड़ाना भी सीखिए। यदि हमसे गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में संकोच कैसा, सहृदयता, स्पष्टवादिता और मन वचन काय से ईमानदारी पूर्वक क्षमा मांगे। विश्वास मानिए, क्षमा मांगने के बाद मन को एक अद्भुत सुकून मिलता है। आराध्य का स्मरण कीजिए, ताकि क्रोध मान माया और लोभ की मन में जमी परतें धीरे धीरे उतरती जाए, क्योंकि क्षमा मांगना और क्षमा करना आसान नहीं, क्षमा वीरों का आभूषण है। रिश्तेदारों और परिचितों से अपेक्षाएं भी थोड़ी कम रखिए। अपने मन के भावों को डायरी में लिखिए, जिससे मनमुटाव है उसका नाम लिखकर बार बार लिखिए, हमने उसे क्षमा किया। और यदि संभव हो तो किसी तीसरे व्यक्ति से शिकायत करने की बजाय सीधे उसी व्यक्ति से बात कीजिए जिससे मनमुटाव है। विरोधियों को हराने का सबसे सुंदर तरीका है दुर्भावना छोड़ देना, क्षमा करना और स्वयं खुश रहना। नकारात्मक विचार रखने वालों के प्रति भी माध्यस्थ भाव रखिए। आइए क्षमा को केवल एक दिन का पर्व ना बनाकर अपने जीवन की विरासत बनाएं। जन जन को क्षमा का संस्कार दें,
ताकि हम बेहतर मनुष्य, अच्छे नागरिक बने और परिवार से लेकर समाज तथा पूरे विश्व में शांति की स्थापना

स्थापना में अपना योगदान दे सकें, क्योंकि जब क्षमा से मन भरता है तब जीवन शिकायतों से नहीं शांति से भर जाता है। इस प्रकार के चिंतन से हम अपने मन को निर्मल करते हुए स्वस्थ रह सकते हैं। क्षमा मन की औषधि है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि विरोधियों के प्रति द्वेष का स्मरण मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जबकि मध्यस्थ भाव

0: सृष्टि से आपके द्वारा जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना कीजिए और क्षमावाणी महापर्व पर अपना जीवन सार्थक कीजिए। क्षमावाणी की मंगल वेला भावों को निर्मल कर दे, मिटा कलुषता मन की सारी, भावों में शुचिता भर दे। मानव मन चंचल है किंतु संयम मन पर बांध लगाएं, क्षमावाणी पर आओ बंधो, क्षमा भाव मन में लाएं। आज के तनावपूर्ण सामाजिक जीवन में क्षमावाणी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, सामाजिक जीवन में प्रतिस्पर्धा, कार्य क्षेत्र में मतभेद और संवाद में बढ़ती कटुता मनुष्य को भीतर से अशांत करती है। यदि एक बार भी हम अपने संबंधों की धूल झाड़कर प्रेम और क्षमा का दीप जलाएं, तो अनेक टूटते संबंध पुनः जोड़ सकते हैं। क्षमा नहीं कमजोरी, यह आत्मबल की पहचान, वैर मिटाकर प्रेम बढ़ाना जैन धर्म का महान विधान। जिस हृदय में मैत्री जागे वह मंदिर बन जाता है, क्षमा धारण करने वाला स्वयं महान बन जाता है। हमने तो मांगी है मन्नत केवल क्षमा भाव की, बस यही बात लगती है मुझको बड़े काम की। क्षमावाणी आत्मा को हल्का करने का पर्व है। यह मैं सही और दूसरा गलत की भावना से ऊपर उठकर हम दोनों आत्मस्वरूप हैं की अनुभूति की ओर ले जाता है। जैन धर्म का संदेश है कि संसार में कोई भी जीव हमारा शत्रु नहीं, हमारे भीतर की कषाय ही वास्तविक शत्रु है। जब क्रोध शांत होता है, अहंकार झुकता है और वैर समाप्त होता है, तब आत्मा की निर्मलता प्रकट होने लगती है। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, मिच्छा में दुखड़म। मेरा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव हो और किसी भी जीव के प्रति मेरे मन में वैर ना हो, यही क्षमावाणी की सार्थकता है, यही आत्मशुद्धि का पथ है और यही जैन धर्म की अहिंसामय जीवन दृष्टि का सुंदर संदेश है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर इंदु जैन से क्षमावाणी महापर्व पर क्षमा तीन लोक की संपदा विषय पर विशेष वार्ता। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
3: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
3: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

0: सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरलम में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
3: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
4: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
2: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
5: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
2: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
5: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
6: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
5: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
6: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
7: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
6: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
9: चाइल्ड एनकाउंटर्स,
10: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
11: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
12: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
13: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्कॉश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। इंतखाबी कमीशन ने एक बार फिर कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए SIR का हुक्म उसकी इतफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। उसने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर SIR के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन वोट दहिंदगान को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। मरकजी वजीर अमित शाह ने केरलम में NCCF की कई स्कीमों का इफ्तिताह किया ताकि इमदाद बाहमी के इदारों में खवातीन की शराकत दारी को फरोग दिया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि बच्चों के माबैन मनशियात के इस्तेमाल को बच्चों की हिफाजत से मुतल्लिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। वजीर खारजा एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में अक्वाम मुत्तहदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। और एशियाई खेलों में भारत की खवातीन और मर्दों की कबड्डी टीमों ने जापान में सोने के तमगे जीते हैं। तेजेंद्र पाल सिंह तूर ने मर्दों की शॉर्ट पुट में चांदी का तमगा जीता। तमगों की फहरिस्त में भारत सोने के 4, चांदी के 12 और कांसे के 14 तमगों के साथ 30 तमगों तक पहुँच गया है। और अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि बूथ लेवल ऑफिसर BLOs इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी की मुहिम SIR के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। इसके बाद BLOs उन दस्तावेजात को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। नई दिल्ली में इंतखाबी कमीशन की मुनाकिदा एक मीटिंग के दौरान यह फैसला किया गया। कमीशन ने वजाहत की कि इस तरह के अफराद को इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जानिब से समात के लिए तलब नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि समात सिर्फ गैर मामूली हालात की सूरत में ही की जाएगी और वो भी तरजीहन ऑनलाइन होगी। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए SIR का हुक्म उसकी इतफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: बिहार और मगरबी बंगाल समेत 20 रियासतों मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नज़रसानी का काम मुकम्मल हो चुका है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि SIR के दौरान अगर किसी शख्स का नाम शामिल नहीं हो पाता और वो अपना नाम शामिल कराना चाहता है तो मुतल्लिका इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर को दरख्वास्त दे सकता है। चीफ इंतखाबी अफसर, ज़िला इंतखाबी अफसर, इंतखाबी रजिस्ट्रेशन अफसर इन वोटरों के इंदराज के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ करेंगे। दिल्ली के चीफ इंतखाबी अफसर की दरख्वास्त के पेश नज़र दावे और एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। नोटिसों, दावों और एतराज़ात को निपटाने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मोहम्मद आजम खान।
0: नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल बराए मीडिया आशीष गोयल ने कहा कि आज कमीशन की एक मीटिंग हुई जिसमें आला इंतखाबी कमिश्नर और इंतखाबी कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 24 जून को तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए जारी किया गया SIR का हुक्म कमीशन की इतफाक राय पर मबनी मंजूरी के साथ जारी किया गया था जिसका आगाज बिहार से हुआ। कमीशन ने यह वजाहत भी की कि काबीना सेक्रेटरी को भेजा गया खत इंतखाबी कमीशन के किसी पॉलिसी मैटर या उसके IT डिवीजन से मुतालिक नहीं था बल्कि यह खत इंतखाबी कमीशन में डिपुटेशन पर आए एक ऑफिसर के कामकाज से मुतालिक था। BJP ने अपोजिशन पार्टियों बिलखसूस कांग्रेस की जानिब से SIR के सिलसिले में इंतखाबी कमीशन पर आयद किए गए इल्जामात की मजम्मत की है और इसे इंतहाई अफसोसनाक करार दिया है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए BJP के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंतखाबी कमीशन प्रेस के लिए एक नोटिस जारी कर चुका है जिसमें उसने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी SIR से मुतालिक फैसले आला इंतखाबी कमिश्नर और दोनों इंतखाबी कमिश्नरों की रजामंदी से किए गए हैं। जनाब प्रसाद ने कहा कि केरलम कांग्रेस ने एतराफ किया है कि उसकी जीत की एक वजह SIR था क्योंकि इस अमल के सबब उन जाली वोटरों को हटा दिया गया जो गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड थे।
2: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले फेक वोटर और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलाआत और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नशर किया जाएगा। वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज केरलम के कोल्लम के नजदीक कुंद्रा में सारिफीन से मुतअल्लिक भारतीय कौमी इमदाद बाहमी फेडरेशन NCCF के तहत मुख्तलिफ तरक्याती इकदामात का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी के सिलसिले में केरलम के मुस्तकबिल की खातिर बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं और इमदाद बाहमी के शोबे को इसे बरूए कार लाना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आजादी के बाद से लोगों की हमेशा ये मांग रही है कि मरकज में इमदाद बाहमी से मुतअल्लिक एक अलहदा वजारत हो। नरेंद्र मोदी हुकूमत के इख्तदार संभालने के बाद इस सिलसिले में इकदाम किए गए।
3: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी की 73वीं सालगिरह तकरीबात के हिस्से के तौर पर मुनक़िदा एक दीगर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने खिदमत को एक मिशन में तब्दील करके एक मिसाल कायम की और लोगों की खिदमत के जज्बे को एक तहरीक में बदला जो दुनिया भर में लोगों तक पहुंची।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों के दरमियान मनशियात के इस्तेमाल को एक अवामी सेहत के मामले के तौर पर ही नहीं बल्कि बच्चों के तहफ्फुज के एक मामले के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। वो पटना में आज बचपन की बहाली, मनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम और देखभाल और तहफ्फुज के जरूरतमंद बच्चों को असर नव मरबूत करना के मौजू पर होने वाले सेमिनार से खिताब कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया कि मनशियात के इस्तेमाल से मुतासर बच्चों को तहफ्फुज, इलाज, काउंसलिंग, आजाबादकारी और तालीम नेज खानदानी जिंदगी के बहाली के मौके फराहम किए जाएं। जस्टिस सूर्यकांत ने तालीमी तसलसल, महफूज खानदानी माहौल और बाज आबादकारी के अमल में देखभाल की अहमियत को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने पटना में मुल्क का अव्वलीन मुतासरीन के हकूक के मरकज का भी इफ्तिताह किया। अपनी नौइयत का ये अव्वलीन मरकज बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की इमारत में कायम किया गया है। यह मरकज मुख्तलिफ जराइम के मुतासरीन को एक ही मकाम पर कानूनी हकूक और जरूरी तआवुन फराहम करेगा जिसमें वो मुतासरीन भी शामिल हैं जो नजर नहीं आते। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल के हमरा गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र सिंह पटेल ने आज कच्छ जिले में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में 150 टन योमिया सलाहियत वाले ई मेथनॉल प्लांट का संग बुनियाद रखा। इस्तेमाल से खिताब करते हुए जनाब सोनोवाल ने उजागर किया कि इस प्लांट के आगाज से मुल्क भर में रोजगार के मुतअद्दिद इम्कान पैदा होंगे।
4: हमारे कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, महाराष्ट्र की JNPA और बंगोपसागर में बचे हुए हमारे उड़ीसा के पारादीप पोर्ट, सार पोर्ट को आज मेगा पोर्ट का इस्तेदास मिला। इसका मतलब है एक

0: पोर्ट ने 150 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी करने में सफलता प्राप्त की है। जितना भी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, हमारा उपार्जन बढ़ेगा, उपार्जन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा।
1: वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में आज 81वीं अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के हाई लेवल इजलास से खिताब करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली का 81वां इजलास इस मौजू पर मुनक़िद किया जा रहा है, एतमाद की बहाली, काया पलट के लिए इंतजाम करना, ऐसा अक़वामे मुत्तहिदा जो सबके लिए हो। जनरल असेंबली में तमाम 193 अक़वामे मुत्तहिदा मेंबर मुल्कों के सदूर हजरात, वज़राए आज़म और सीनियर नुमाइंदगान यकजा हो रहे हैं, जो बड़े बैनुल अक़वामी मामलात पर अपनी तरजीहात और मौकिफ पेश करेंगे। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक इस इजलास में आलमगीर तआवुन को नई जिंदगी अता करने, पायदार तरक्याती अहदाफ में पेशरफ्त और अमन वक़ार और मसावात के लिए इज्तिमाई कार्रवाई को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज़ में हम इस बात का तस्करा करेंगे कि परीक्षा पे चर्चा पहल के ज़रिए इस नज़रिए को किस तरह बरूएकार लाया जा रहा है।
2: परीक्षा पे चर्चा सालाना बातचीत का एक प्रोग्राम है, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी इम्तिहानात के दबाव से निमटने और खुशी के साथ सीखने के अमल के बारे में तलबा, असातजा और वालदेन से बात करते हैं। एग्जाम वॉरियर्स तहरीक के तहत 2018 में इस मुल्कगीर मुहिम पहल का आगाज हुआ, जिसने नौजवानों को इम्तिहानात बगैर दबाव के साथ एतमाद से देने में मदद की। इस पहल ने इम्तिहानात को बोझ की बजाय मौके के तौर पर पेश किया। परीक्षा पे चर्चा पहल के तहत मुनक्किदा एक प्रोग्राम में तलबा से बातचीत में वजीर आजम ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो किसी भी तरह के दबाव से निमटने की खातिर खुद को मजबूत और बासलाहियत बनाएं।
3: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना पड़ता है।
2: इस प्रोग्राम ने करोड़ों भारतीय नौजवानों की सिर्फ कारकर्दगी से तवज्जो मजमूई तरक्की की जारी मुंतकिल की, जिससे इम्तिहान का दबाव कम हुआ और उनकी जहनी सेहत को अव्वलीन तरजीह दी गई। दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक सारिफिन की सहूलत के लिए कल इतवार के रोज खुले रहेंगे। वजारत ने कहा है कि यह कदम इस माह की 28 तारीख से 30 तारीख तक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनों की जानिब से 3 रोजा मुजवजा मुल्कगीर बैंक हड़ताल के तनाजुर में उठाया गया है। इस हड़ताल से कबल 26 और 27 सितंबर को हफ्तावार छुट्टियां थीं। उधर सरकारी सेक्टर के कई बैंकों ने 3 रोजा बैंक हड़ताल के दौरान एटीएम से किए जाने वाले लेन देन पर माहाना मुफ्त हद के बाद आयद होने वाले चार्जेस को खत्म करने का फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने कल उत्तराखंड में कुछ मकामात पर तेज से बहुत तेज बारिश और दूर दराज के मकामात पर इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड कलर वार्निंग जारी की है। महकमे मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश के दूर दराज के मकामात पर तेज से बहुत ज्यादा तेज बारिश की पेशगोई की है। भारत ने जापान में आइची नगोया एशियाई खेल 2026 में आज तमगों की फहरिस्त में अपना मजबूत मकाम बना लिया और उसने कबड्डी, खेलकूद और निशानेबाजी जैसे खेलों में 7 मजीद तमगे जीते हैं। भारत के मर्दों और खवातीन की कबड्डी टीमों ने आज सोने के तमगे जीते। मर्दों की कबड्डी टीम ने फाइनल में ईरान को 34 के मुकाबले 40 से हराकर सोने का तमगा जीता। खवातीन की टीम ने भी ईरान को एक सनसनी खेज फाइनल में 34 के मुकाबले 37 के फर्क से कामयाबी हासिल करके सोने का तमगा जीता। एथलीट्स में तजिंदर पाल सिंह तूर ने 20.64 मीटर की दूरी पर शॉर्ट पुट फेंक कर चांदी का तमगा जीता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने एशियाई खेल 2026 में जीत हासिल करने पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। इंतखाबी कमीशन ने एक बार फिर कहा है कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए SIR का हुक्म उसकी इत्तेफाक राय से तय पाई मंजूरी के बाद जारी किया गया। उसने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर SIR के दौरान उन घरों का दौरा करेंगे जिन वोट दहिंदगान को नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि दरकार दस्तावेजात जमा कर सकें। मरकजी वजीर अमित शाह ने केरलम में एनसीसीएफ की

कई स्कीमों का इफ्तिताह किया ताकि इमदाद बाहमी के इदारों में खवातीन की शराकत दारी को फरोग दिया जा सके। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि बच्चों के माबैन मनशियात के इस्तेमाल को बच्चों की हिफाजत से मुतल्लिक मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, विज्ञान भारती के इस अंक में मैं शिबा राकेश
1: और मैं सुरेंद्र राजेश्वरी
0: आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय, जिसका विषय है निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर प्रोफेसर उमेश वाघमारे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव से भेंटवार्ता।
0: ब्रह्मा मिशन लैब, अतीत से भविष्य का सफर विषय पर डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, अध्यक्ष ब्रह्मा मिशन, बीरबल सहानी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ से बातचीत।
1: CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से भेंटवार्ता, विषय होगा भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम।
0: स्वच्छ और स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक गांगेय डॉल्फिन विषय पर जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से भेंटवार्ता।
1: कुछ विज्ञान जगत की बातें, विज्ञान समाचार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की जयंती, निधन, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख दिवस।
0: आज हम विज्ञान भारती की शुरुआत निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत विषय से कर रहे हैं। निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से एक क्रांतिकारी अध्याय है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज स्वतंत्र, आधुनिक और बेहद आक्रामक निजी विजन के साथ वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए नीतिगत सुधारों और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के गठन ने वो ठोस धरातल तैयार किया जिस पर आज नए भारत के स्पेस प्रोनियर्स अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। आंकड़ों के झरोखे से देखें तो ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2014 तक मात्र एक पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप था, जिसकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़ा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत के युवाओं में अंतरिक्ष तकनीक को लेकर कितनी उत्सुकता और प्रतिभा है। इस नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन का परिणाम पृथ्वी से आकाश तक साफ दिख रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर इतिहास रचा, तो वहीं जुलाई 2026 में विक्रम एक की सफल उड़ान ने देश को लो अर्थ ऑर्बिट में निजी उपग्रह स्थापित करने की पूर्ण क्षमता दी है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित करना ये साबित करता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अत्याधुनिक नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड इस रफ्तार को और तेज करेगा। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी का आकार 8.4 से 9 बिलियन डॉलर के बीच आंका गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2-3% है। भारत सरकार का लक्ष्य इस अर्थव्यवस्था को वर्ष 2035 तक 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाएगी। स्पष्ट है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ अकादमिक शोध या सरकारी गौरव का विषय नहीं रह गया। ये एक आत्मनिर्भर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक उद्योग बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के उपग्रह भारत के निजी लॉन्च पैड से अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे।
1: जब हम वर्ष 2047 की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और विश्व पटल पर ज्ञान विज्ञान का नेतृत्व कर रहा हो। इस महासंकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार, और इसे साकार करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वाघमारे से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा?
3: द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वी आर वर्किंग इन वेरियस लेवल्स। इन वन प्रोग्राम वी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, उसके बाद में फैकल्टी मेंबर्स, सबको सपोर्ट किया जाता है। इसको इंस्पायर स्कीम कहते हैं। दूसरे एफर्ट में मिशन लेवल में काम चल रहा है, यानी एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू क्वांटम बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं, और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। और एक एफर्ट है क्वांटम सेंसिंग पर, कि जिसके थ्रू बहुत टाइनी चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेंसर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन बी यूज्ड इन डिफेंस, दे कैन बी यूज्ड इन ड्रोन्स, लॉट्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और एक मिशन है जो MIT का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा भी एफर्ट जारी है, जिसमें एक है कि हमारे देश का फाउंडेशनल मॉडल बनाने जा रहे हैं, यानी जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो आप टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में कन्वर्ट सकते हैं, मल्टी मॉडल में, वैसा मॉडल डेवलपमेंट जो करना है हमारी लैंग्वेजेस के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, तो जो है इंडिजिनस वो डेवलप हो रहे हैं।
2: और आए दिन सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चाएं होती रहती हैं, इसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है?
3: सो सेमीकंडक्टर इज अगेन अ मिशन, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें फोकस इंडस्ट्री पर, नॉट रिसर्च बट मोस्टली ऑन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी टू फैब्रिकेट चिप्स ऑन अ लार्ज स्केल। डिजाइनिंग वॉज ऑलरेडी डन इन इंडिया, इनफैक्ट मोस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन इज डन इन बाय आवर कलीग्स, बट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इज बीइंग डेवलप्ड नाउ बाय इन्वॉल्विंग इंडस्ट्री एंड ऑल्सो गवर्नमेंट फंडिंग फॉर नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन। क्रिटिकल मिनरल्स एक नया इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी काफी सारे हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं उस पर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ऐसे है ना कि एक होता है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम माइंस इज वन टाइप ऑफ थिंग, सेकंड इज रिसाइकलिंग, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है, बैटरीज होती है, बैटरीज में लिथियम होता है, उसका लिथियम एक बार बैटरी डाई हो गई तो कैसे एक्सट्रैक्ट करे, वो काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट हो जाए। इनोवेशन इंडेक्स अभी वो 39 जो था हमारा ना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ होस्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज RDIF, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, जिसमें 1,00,000 crore रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर 5 years, एंड ईच ईयर दे विल गिव 20,000 crores, एंड दिस इज यूज बाय सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स टू गिव अ लोन टू अ स्टार्टअप कंपनी और अ डीप टेक कंपनी। डीप टेक कंपनी ये होती है कि साइंस के प्रिंसिपल बहुत क्रूशियल करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, स्केलिंग अप करते हैं। टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 से ऊपर जाने के लिए ये फंडिंग है, खाली इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इंडस्ट्री को 50% फंडिंग खुद को लेके आना पड़ता है, और ये 50% हाँ, ये 50% बहुत लो इंटरेस्ट लोन होता है, लंबा पीरियड का लोन होता है
2: जी। और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
3: वो भी मिशन जैसा ही एफर्ट चल रहा है, जिसमें एक बड़ा एफर्ट है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, उसको कैप्चर करके स्टोर करना है और कन्वर्ट करना है कि जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि मिथेनॉल हो, मिथेनॉल इज अ फ्यूल यू कैन यूज इन कार्स, so it's also called as carbon recycling, you use solar energy to reduce carbon dioxide using hydrogen to generate methanol. Clean energy, एक आपने सुना होगा गवर्नमेंट में अभी न्यूक्लियर पॉलिसी रिलैक्स कर दी है, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, इफ यू लुक एट इट, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनर्जीज, और इसमें अगर माइक्रो साइज रिएक्टर्स सेट कर सकते हैं छोटे छोटे गांवों के लिए, ये बहुत इफिशियंट सॉल्यूशन होगा। दूसरा डेवलपमेंट है फ्यूजन बेस्ड एनर्जी भी आ रही है, बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, जो सोलार हो, वो ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिक हो गई है उसमें, और मैन्युफैक्चरिंग का ही काम बाकी है। हाइड्रोजन स्टिल एक्सपेंसिव, सी जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट लो कॉस्ट इज स्टिल अ चैलेंज।
2: और युवा श्रोताओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
3: वन इज

0: भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से दिलीप झा की बातचीत। भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम,
1: एक देश एक समय को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
2: हम भारत का माप विज्ञान केंद्र है, CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं, टाइम भी उनमें से एक है। तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से, 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है, जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं। तो कुछ नैनो सेकंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है। ये कार्य हम कर रहे हैं, जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं। अलग अलग तरह के माध्यम है, बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है, उसको नैनो सेकंड से चाहिए, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं, आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं। अभी जो अधिसूचना है, इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है, इसका एक रेफरेंस, सेंट्रल एक नेशनल रेफरेंस, वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था। कई देशों में ये बहुत टाइम से, पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जो वो समय को रखता है, उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है। तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है, ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हर पर्पस से, जैसा इसमें मेंशन किया गया है कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा। उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को, आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं, फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं, इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है, तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हो। अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे। अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं, ज्यादातर की जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, वो फ्रॉड कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे। तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन ऑफकोर्स हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पावर ग्रिड्स हैं, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी। तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है।
0: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनकी दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
3: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी और प्रकृति अपने गर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। प्राचीन जीवाश्म, पुरानी तलछट, पेड़ पौधों के सूक्ष्म अवशेष और बदलते मौसम के निशान, लेकिन ये केवल अतीत की धूल नहीं बल्कि हमारे भविष्य की कुंजी हैं। आज हम आपको ले चलते हैं लखनऊ स्थित ऐतिहासिक बीरबल

0: सहानी पुराविज्ञान संस्थान BSIP में, जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन रहस्यों का संगम हो रहा है एक बेहद महत्वाकांक्षी पहल में, जिसका नाम है ब्रह्मा मिशन। इस मिशन और प्रयोगशाला में क्या कुछ होगा और इससे कौन कौन से हमें लाभ होंगे, इसे जानने के लिए सुनते हैं ब्रह्मा मिशन के प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी से प्रवीण कुमार की बातचीत।
1: डॉक्टर त्रिवेदी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा मिशन है क्या और इसका नाम ब्रह्मा क्यों रखा गया है।
2: ब्रह्मा मिशन एक ऐसा मिशन है जो पहली बार भारतवर्ष में शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है बीरबल सहानी रिपोजिटरी फॉर AI एनेबल्ड फॉसिल हेरिटेज मॉडलिंग एंड आर्काइव। ऐसी वैज्ञानिक पहल है जिसमें हमारे पास उपलब्ध फॉसिल जैसे पॉलन, स्पोर्स, लीव्स, वुड, फ्रूट और अन्य जितने भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटली व्यवस्थित करना और संरक्षित करना है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक मॉडलिंग टेक्निक्स को भी जोड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी के अतीत को समझना, वर्तमान को बेहतर ढंग से देखना और भविष्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तैयार करना। पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इस इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राकृतिक अभिलेखों में सुरक्षित हैं। हमारे पास जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जैविक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रमाण फॉसिल, सेडिमेंट और पोलन एक्सेट्रा के रूप में रिकॉर्ड के रूप में मौजूद है। समस्या ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं वो अलग अलग कलेक्शंस और अलग अलग लेबोरेटरीज और रिसर्च प्रोजेक्ट में बिखरे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा मिशन का प्रयास है कि इन वैज्ञानिक अभिलेखों को डिजिटाइज स्टैंडर्डाइज किया जाए और भविष्य में रिसर्चर इनके प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ब्रह्मा मिशन की खास बात यही है कि इसे मल्टी प्रॉक्सी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के रूप में बनाया गया है। पोलन और स्पोर्स के साथ बाकी और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। इसके अलावा जियोकेमिकल रिकॉर्ड्स, पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड, सेडिमेंट्स और अन्य जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर प्रॉक्सी अपने अतीत के पर्यावरण का अलग अलग पहलू बताते। जब हम इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देखेंगे तो पेलियो एनवायरमेंट की इंटरप्रिटेशन अधिक मजबूत और वैज्ञानिक बन जाएगी।
1: अभी आपने जीवन उत्पत्ति की बात की, तो इतने छोटे छोटे फॉसिल्स यानी जीवाश्म जीवन की कहानी कैसे बताते हैं?
2: यह वास्तव में पेलियो साइंस की सबसे रोचक बात है। एक छोटा सा फॉसिल भी अपने समय में बहुत बड़ी कहानी बता सकता है। फॉसिल से हमें पता चलता है कि अतीत में कौन कौन से जीव और पौधे मौजूद थे, उनका विकास किस प्रकार हुआ और समय के साथ बायोडाइवर्सिटी में क्या परिवर्तन आया। जैसे पोलन और स्पोर्ट्स हमें अतीत की वेजिटेशन को समझा सकते हैं, इसी तरह अलग अलग रिकॉर्ड्स को हम एक साथ देखने पे जीवन के विकास, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट के साथ जीवों का क्या संबंध था वो हम ज्ञात कर सकते। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, लेकिन क्लाइमेट को समझने के लिए केवल वर्तमान के डेटा को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि अतीत में क्लाइमेट और एनवायरमेंट किस प्रकार बदलते रहे हैं। जो भी हमें मिलता है, जैसे पोलन है, पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सेडिमेंट्स हैं, जो भी हमें मिलता है वो हमें पास्ट एनवायरमेंट की जानकारी देते हैं। जब हम इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मॉडर्न रिकॉर्ड्स डेटा के साथ मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बहुत लंबी जानकारी मिल जाती है। इससे हम फ्यूचर रिसर्च और इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बता सकते हैं। आज रिसर्च तेजी से इंटरडिसिप्लिनरी हो रही है। एक युवा साइंटिस्ट केवल एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो एक युवा साइंटिस्ट के लिए ये जरूरी है कि उसको AI, पैलियोंटोलॉजी के साथ साथ डेटा साइंस, पैलिनोलॉजी और क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें AI की वजह से उसको मदद मिले। ब्रह्मा मिशन ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्लेटफॉर्म बन सकता है।
3: और अब कुछ विज्ञान समाचार।
0: देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन और महारत्न कंपनी ONGC ने ओडिशा तट के पास महानदी ऑफशोर बेसिन में एक गहरे पानी वाले कुएं में गैस की खोज की है। समुद्र मंथन पहल के तहत ये कुआं खोजा है। कोणार्क से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित ये कुआं इस अभियान के तहत ONGC द्वारा महानदी बेसिन में खोदा गया पहला कुआं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष सहयोग समझौते को 8 जनवरी 2032 तक बढ़ा दिया है। पुराने सहयोग के अलावा इस समझौते में कुछ नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जैसे मानव और रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष मौसम और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता। भारतीय वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के इर्द गिर्द समुद्री बर्फ में

0: हर बार दिखाई देने वाले खुले पानी के एक रहस्यमय इलाके के 250 वर्ष तक के इतिहास का पता लगाने में सफलता मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि अतीत में इस तरह की घटनाएं कई बार हुईं। इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं को देखा भी जा चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के शोधकर्ताओं की अगुवाई में ये अध्ययन किया गया है। इसमें डेनमार्क और नॉर्वे के विज्ञानी भी शामिल रहे। शोधकर्ताओं की टीम ने मॉड राइस पोलिना यानी समुद्री बर्फ से घिरे खुले समुद्र का एक बड़ा इलाका के इतिहास का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक आइस कोर का उपयोग किया। असम के मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को गुवाहाटी के पास चंद्रपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एडवांस्ड रडार रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत विकसित होने वाली ये सुविधा अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और कक्षीय मलबे की निगरानी तथा ट्रैकिंग में भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है, बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
1: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था। उन्होंने दूध और पेय पदार्थों को जीवाणु रहित रखने की पाश्चरीकरण विधि खोजी और रेबीज एंथ्रेक्स के जीवन रक्षक टीकों का आविष्कार किया। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को हुआ था। उनके द्वारा तैयार किए गए उच्च दक्षता आंतरिक दहन इंजन ने औद्योगिक उत्पादन, भारी परिवहन और समुद्री जहाजरानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
0: नदियों की अविरल धारा केवल पानी का बहाव नहीं, बल्कि जीवन का एक पूरा संसार अपने भीतर समेटे हुए है। और जब बात हमारी पावन गंगा, घाघरा, चंबल या ब्रह्मपुत्र जैसी सदा नीरा नदियों की हो, तो जल की गहराई में एक ऐसा अद्भुत जीव तैरता है जिसे प्रकृति ने दृष्टि तो सीमित दी, लेकिन संवेदनाएं और बुद्धिमत्ता अपार बख्शी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन यानी गैंजेटिक डॉल्फिन की। गांगेय डॉल्फिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से अल्पी कुमारी की ये बातचीत।
2: ये पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय प्राणी है जो हमारे गंगा में है, और गंगा में रहते हुए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को अपने ओर आकर्षित किया है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली रिवर सिस्टम में मिलता है, जिसमें इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। पूरे इसके जो भी वितरण क्षेत्र हैं, वो चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे मेघना हो, सभी जगहों पर इसकी हत्या बहुत ही तेजी से हो रही थी। और मछुआरों को पता नहीं था कि हमारे जल तंत्र में, हमारे जलीय जो सिस्टम है उसमें इसकी उपयोगिता क्या है। इसलिए हम लोगों ने जा करके लोगों को बताया और खास करके मछुआरों को बताया कि आप गंगा के डॉल्फिन को नहीं मारें, इनको बचाएं, इससे आपको मछली भी ज्यादा मिलेगा। और ये जो विचित्र प्राणी है जो हमारे गंगा के रिवर सिस्टम में मिलता है
3: जी,
2: ये और कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हेरिटेज एनिमल जैसा है। ये प्रस्ताव आया वैज्ञानिकों की तरफ से कि गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया जाए, तो इस पर विशेष संरक्षण का प्रभाव रहेगा और लोग इस पर ध्यान देंगे। जब गंगा के डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की 2020 में, तब से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाने लगा है। गंगा के डॉल्फिन को सोंस इसलिए बोलते हैं कि 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट के बीच में पानी के ऊपर आकर के इनको सांस लेना पड़ता है, तो ये बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं उस समय सूं की आवाज निकलती है, इसीलिए इसका नाम सूसू या सोंस बोलते हैं। गंगा की डॉल्फिन अगर नहीं रहेगी हमारे इकोसिस्टम में तो पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चैन है, वो समाप्त हो जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगे और वो पूरे रिवर तंत्र को प्रभावित करेगा। गंगा का डॉल्फिन और जो समुद्र का डॉल्फिन है, सभी का

0: फिजियोलॉजी एक ही है। डॉल्फिन रेस्क्यू वैन या गंगा रेस्क्यू वैन के नाम से आप एक एम्बुलेंस चलाइए और एम्बुलेंस बनाइए जिसमें 24 आवर्स ये सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए, जिसमें हम गंगा के डॉल्फिन को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू करें। ये बातें प्रधानमंत्री जी तक गया और पर्यावरण मंत्रालय में भी इसकी चर्चा हुई और आज ये कंसेप्ट आया कि हम एक गंगा रिवर डॉल्फिन एम्बुलेंस, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार की नदियों में लगभग 2220 डॉल्फिन हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 के आसपास डॉल्फिन हैं। गंगा के डॉल्फिन का असल गार्जियन मछुआरे ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा समय 24 घंटा में मछुआरे ही उसके साथ देते हैं और रहते हैं। तो अगर घाटों पर आप जाते हैं तो आप प्लास्टिक न ले जाएं, या वैसे वेस्ट, वैसे धातु या वैसे कोई भी प्लास्टिक या कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान ना ले जाएं जो गंगा में आप सीधे फेंकते हैं। बहुत लोगों की मान्यता ये है कि हम जो भी घर में पूजन सामग्री जब हम उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो शुरू से धारणाएं हैं कि गंगा में ले जाकर इसे प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन प्रवाहित करने से गंगा प्रदूषित होती है। इसलिए आप गंगा के तरफ ले जाएं, गंगा के हर एक घाटों पर एक जगह बनाया गया है, नियत जगह है, उन जगहों पर आप फेंकिए, आपकी आस्था बरकरार रहेगी कि गंगा की डॉल्फिन घड़ियाल और मगर नहीं है, ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, आपसे गंगा के डॉल्फिन प्यार करती है, गंगा के डॉल्फिन से आपको कोई खतरा नहीं है। गंगा के डॉल्फिन अगर आपको नहाते वक्त मिल जाए तो आप डरे नहीं, आप खूब आराम से स्नान करिए, क्योंकि आपको किसी तरह का कोई हार्म या कोई भी इससे खतरा नहीं पहुंचेगा।
1: और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में सितंबर महीने में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
2: 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया गया। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्र निर्माण में तकनीकी योगदान के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत के संरक्षण का संदेश देता है।
1: 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ने वाले और पर्यावरण अनुकूल बांस के सतत उपयोग कार्बन अवशोषण और हरित आजीविका को रेखांकित करता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। विश्व भर में गैंडों की सभी 5 प्रजातियों, विशेषकर भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक का संकल्प लिया गया।
2: तो ये थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे नए उत्साह और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

वाचन स्वर शिबा राकेश और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी पटना के सहयोग से तैयार किए गए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं लय विन्यासम। इसमें पहले सुनिए विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन का मृदंगम वादन। उसके पश्चात हम सुनवाएंगे विद्वान श्री चिन्न वेंकट सुब्बैया का डोलू वादन। संगीत परंपरा में जन्मे विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन के पिता श्री जाता कृष्णय्य भागवतर पारंपरिक भजन संप्रदाय के गायक थे। उन्होंने अपना प्रारंभिक संगीत प्रशिक्षण अपने दादा जी के रामस्वामी भागवतर से प्राप्त किया। आपने सेलम श्री के कृष्णमाचारी से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आगे विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन पुदुकोटे संगीत परंपरा के कलेमामणि तिरुची श्रीयार तायमानवन से गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन 1987 में आकाशवाणी तिरुचिरापल्ली में बी हाई ग्रेड कलाकार के रूप में जुड़े। आज आप टॉप ग्रेड कलाकार के रूप में सेवारत हैं। आप बाएं हाथ से मृदंगम बजाने वाले एक अनोखे और विशिष्ट कलाकार हैं। आपने देश विदेश के अनेक संगीत समारोह में सुप्रसिद्ध कलाकारों के साथ संगत की है। आप संगीत सीखने में रुचि रखने वाले छात्रों को न केवल मृदंगम अपितु गटम कंजीरा और मोसिंग जैसे वाद्यों का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन, संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि में भी अपनी प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को संगीत का रसपान करवाया है। विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। इनमें उल्लेखनीय है नादलय शिरोमणि, नाद द्वीप रत्नाकर, लय तिलकम आदि उपाधियां। आज के लय विन्यासम में आपके साथ संगत कर रहे हैं कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन और वायलिन पर धुन दे रहे हैं तिरुची डॉक्टर श्री आर गोविंदराजन। लीजिए सुनिए मिश्र जाति त्रिपुट तालम।
1: नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक विच फीचर्स लय विन्यासम। फर्स्ट अ मृदंगम रिसाइटल बाय विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन, फॉलोड बाय अ डोलू रिसाइटल बाय विद्वान श्री चिन्न वेंकट सुब्बैया। To begin with, listen to Mridangam rendition of Vidwan Selam Shri K. Srinivasan. Selam K. Srinivasan hails from a traditional family of musicians. His father, Shri Jata Krishnaya Bhagavatar, was a vocalist of the traditional Bhajan Sampradaya. He received initial training in music from his grandfather, Shri G. K. Ramaswamy Bhagavatar, and later from Mridangam Vidwan Selam Shri V. Krishnamachari. Further and advanced training was from Kalaimamani Tiruchi Shri R. Thayumanavan. A staff artist of Akashwani since the year 1990, Selam Shri K. Srinivasan is now a top grade artist of Akashwani Tiruchirappalli. Acclaimed for his unique Pudukkottai style of rendition, Shri K. Srinivasan has accompanied stalwarts of music in concerts and has imbibed and adopted various styles in his rendition. A distinctive left-handed mridangam artist, he has travelled extensively for his performances, especially for Akashwani Sangeet Sammelan, South Zone Hookups and National Programs of Music. He is the recipient of several awards and titles. Selam Shri K. Srinivasan also trains young artists in lyre intricacies in mridangam, ghatam, Kanjira and Morsing. In tonight's program, he is accompanied by Tenkasi Shri H. Paramasivam on the Kanjira, Andanallur Shri R. Ranganathan on the Ghatam. Violin refrain is by Tiruchi Dr. R. Govindarajan. Selam Shri K. Srinivasan will now play Mishra Jati Triputa Talam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे लय विन्यासम। कलाकार थे मृदंगम पर विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन। आपके साथ संगत कर रहे थे कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन, वायलिन पर धुन दे रहे थे तिरुची डॉक्टर श्री आर गोविंदराजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुचिरापल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया।
1: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक फीचरिंग लय विन्यासम, यू जस्ट हर्ड मृदंगम रिसाइटल बाय सेलम श्री के श्रीनिवासन। ही वॉज अकंपनीड बाय तेनकासी श्री एच परमशिवम ऑन द कंजीरा, अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन ऑन द घटम। Violin refrain was by Tiruchi Dr. R. Govindarajan. The program was recorded in the studios of Akashvani Tiruchirappalli.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया द्वारा तविल लय विन्यासम।
3: This is Akashvani. In tonight's national program of music, let us now listen to the Tavil Lay Vinyasam by Sri V. Chinnavenkata Subbaiya.
2: Sri V. Chinna Venkat Subbaiya Akashwani Hyderabad ke A grade tavil kalakar hain. Unki sangeet yatra ka prarambh varsh 1990 mein unke pratham guru Sri V. N. Lakshmi Narayan ke margdarshan mein hua. Baad mein unhone Sri Yalluru Sri Nivasulu tatha Sri Tirukadeyur T.G. Babu se prasikshan aur margdarshan prapt kiya. वर्ष 2018 में उन्हें तेलंगाना राज्य के श्रेष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 2000

0: 2019 में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तविल वादन के लिए उन्हें डोलू कला सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। वर्तमान में वे श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर यादागिरी गुट्टा में डोलू कलाकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें डीडी यादगिरी पर प्रसारित नाद स्वरम कार्यक्रमों में तविल पर संगति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश भर में अनेक संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपनी निरंतर साधना, समर्पण और गहन अनुभव के साथ श्री वी चन्ना वेंकट सुब्बैया पारंपरिक भारतीय संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ नाद स्वरम पर संगत करने वाले कलाकार हैं श्री लोडगु वासु।
1: श्री वी चन्ना वेंकट सुब्बैया इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद। His musical journey began in the year 1990 under the guidance of his first guru, Sri V.N. Lakshmi Narayanan. Later, he received training and guidance from Sri Yellur Srinivasulu and Sri Tirukkadayur T.G. Babu. In the year 2018, he was honored with the Eminent Citizen Award of Telangana State. And in 2019, he was conferred the title of Dolu Kala Samrat for his tavil playing in the field of Carnatic classical music. Currently, he is serving as a Dolu artist at the Lakshmi Narasimha Swami Temple in Yadadri. He has had the privilege of providing tavil accompaniment for the Nadaswaram programs broadcast on DD Yadagiri. He has participated in numerous music and cultural programs across the country. Through his continuous practice, dedication, and profound experience, Sri V. Chinna Venkata Subbaiya remains constantly committed to preserving and promoting the rich cultural heritage of traditional Indian music. In tonight's program, the artist accompanying our Nadaswaram is Sri Lodugu Vasu.
0: आइए अब सुनते हैं श्री वी चन्ना वेंकट सुब्बैया द्वारा तविल लय विन्यासम, जो चतुरश्र जाति त्रिपुट ताल में निबद्ध है।
1: Let us now listen to the तविल लय विन्यासम by Sri V. Chinna Venkata Subbaiya, set to Chaturasra Jati Tripudatalam.

0: इसी के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रसारित श्री वी चेन्ना वेंकट सुब्बया के तविल लय विन्यासम का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नाद स्वरम पर आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे श्री लोडगु वासु। यह संगीत कार्यक्रम राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the Tavil Lai Vinyasam by Sri V. Chennavenkata Subbaya in the broadcast of National Program of Music. He was supported on Nadaswaram by Sri Lodugu Vasu. This concert was recorded in the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and brought to you from the Delhi station of Akashwani.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य

0: देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by VC Pramod. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the commission was held today where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election

तनु को और इस गीत की फरमाइश की थी सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, ग्राम बगबुडवा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहू, राहुल साहू, चंपा साहू और तो इसी तरह से जो ये हमारे श्रोता इस गीत को सुनना चाह रहे थे। और कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है चौधरी का चांद और गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी।

0: रफ़ी साहब को, और बहुत ही खूबसूरत गीत ये अभी आप सुन पाए।
1: चल शंकर बिहारी के साथ बगीचे में कहाँ जाएंगे?
2: छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो?
1: बेबी कमान, शंकर बिहारी के साथ। अबे ओ बुड़बक, वो भी तो ऊ के साथ गाना गाना चाहे है।
3: आई लव सपना। आज के बाद सपना की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखना।
1: आई लव हर, आई लव हर, आई लव सपना, सपना, सपना, सपना।

दिलवाले फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। सुनना चाहते थे आप सभी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और इसके अलावा कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, गांव बिटौड़ा भोयर तहसील मंगरूल पीर जिला वाशिम पश्चिमी विदर्भ से योगीराज मस्के, श्रीहरि मस्के, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल कुशल, गोपाल श्याम गोविंद मस्के और इनके साथी, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कानेरा मोहल्ला पटियाला से रेगर मुकेश बटनील भट्टा भट्टारिका, हार्दिक वंश बत्ता। तो आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम का गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म थ्री इडियट्स से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल।

0: थ्री इडियट का जो फिल्म का जो गीत ये अभी आप सुन रहे थे, इसे फरमाइश की थी फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया नासिर, एयरपोर्ट रोड बंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे ललिता खर्चे गणेश खर्चे कार्तिक खर्चे संजना खर्चे स्वाति प्रियाग चौधरी कुमारी लड्डू देविका चौधरी ये एक श्रोता हैं जिन्होंने अपना जगह लिखी हुई है। शांति नगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी अनिता मुखी सिमरन मुखी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है वक्त और गायक कलाकार हैं मन्ना डे। गीत रचना है साहिल लुधियानवी की और संगीत दिया है रवि ने। 1965 प्रदर्शित ये बहुत ही अपने समय की मशहूर फिल्म रही है और बहुत ही खूबसूरत गीत अब आपके सामने हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं वक्त फिल्म का मन्ना डे की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: श्रोता भी वक्त फिल्म में सुन रहे थे मन्ना डे को और फरमाइश की थी आप सभी ने आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही मेरा जहां उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल भानु प्रकाश गीतिका खोरवाल और आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, सुहेल हवन हसन अब्बासी, अमन अनम यशफ अब्बासी और रसीद बारसी। आगे आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

फिल्म तीन देवियां में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और उनके साथियों को, और फरमाइश की थी इस गीत की शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकर, रज्जन रजक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यस और उनके मम्मी पापा।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म हिमालय की गोद से। जान सी महबूबा है मेरी, वाकई बहुत ही शानदार। सुनना चाहते हैं शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सकपाल, आशा सकपाल, सोनिया सकपाल, साई राज सकपाल और विशाल सकपाल। और इसी खूबसूरत गीत के साथ साथ हमारे एक और साथी हैं, और जी हाँ किशन सकपाल। अच्छा वापस दोबारा हो गए।

ठीक है, कोई बात नहीं। और साथियों, दरअसल क्या होता है कि बार बार रिपीटेशन होने की वजह से ना दिक्कतें हो जाती हैं, तो कम से कम एक बार ही काफ़ी होता है। आपने इतने सारे संदेश लिखे हैं, बार बार वो रिपीट हो रहा है, तो ये शोभा नहीं देती हैं ऐसी चीज़ें, है ना। तो एक बार हमने बोल दिया, बस समझ लिए आपके पास हमने भेज दिया आपके नाम के साथ, है ना। फिर से हम पढ़ देते हैं, किशन सकपाल, आशा सकपाल, सोनिया सकपाल और साई राज सकपाल, साथ में विशाल सकपाल। बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत रचना अभी आप सुन रहे थे। आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आ रही है बहुत ही शानदार अंदाज में।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मस्ती भरा, खूबसूरत, रोमांटिक, लाजवाब, बेहतरीन रचना अभी आप सुन रहे थे। आप हैं ग्राम गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, और साथ में हमारे और कई साथी हैं जो इसी गीत को सुनना चाह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आप हैं अस्तुपुरा मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। और इसी सुंदर खूबसूरत गीत के साथ, जी हाँ दोस्तों, और वाकई फिल्म जब जब फूल खिले से सुंदर बेहतरीन रचना, और

0: श्रोता दो बदन फिल्म में अभी सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को, और ये इस गीत की फरमाइश की थी पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुघ, अश्वनी चुघ, गोविंद, टोनी, लव, राधे और पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा ने। तो और
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: और इसी के साथ आपकी फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को हैं, इन मीटरों पर हमारे प्रसारण अब संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। EIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब समाचार होंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
4: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR से जुड़े हर फैसले को पूरे आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
5: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
3: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जारी संघर्षों के बीच संयम, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दराज के देशों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार बने खतरों से वैश्विक समुदाय को मिलकर निपटना होगा। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिम एशिया संकट का दो राष्ट्र समाधान स्थायी शांति ला सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का प्रमुख विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान का भी उल्लेख किया। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एशियाई खेलों में महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की टोमोका मियाजाकी को सीधे गेम में 21-9, 21-13 से हराया। इससे पहले सिंधु ने दूसरे दौर में चीनी ताइपे की चिउ पिन चियान को 21-19, 21-14 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rules issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the Commission was held where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs starting with Bihar was issued with the unanimous approval of the Commission. The Election Commission has said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision, SIR, to collect the required documents. The BLO will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by

0: आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 12:10 और ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, अनमोल, बेहतरीन कार्यक्रम का। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार, और मेरे साथ हैं
1: चेतन कुमार शर्मा।
0: जी हाँ दोस्तों, वाकई आज हम दोनों की जोड़ी है इस खूबसूरत कार्यक्रम में। जी हाँ, ये बेहतरीन, अनमोल, खूबसूरत रचनाओं के साथ आज का जो सुंदर कार्यक्रम होने वाला है, वाकई बहुत ही शानदार, बेहतरीन रचनाओं के साथ। जी हाँ, और क्या कहें हम, कहना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कविता कृष्णमूर्ति का जन्म, परिवार और बचपन, संगीत की शुरुआती शिक्षा और गायन की शुरुआत, और फिल्मों में प्रवेश और संघर्ष, लता मंगेशकर, आशा भोसले तथा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गजों से जुड़े शुरुआती अनुभव, और हिंदी के साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं में गायन, प्रमुख फिल्में, लोक

गीत वर्ष दशक अनुसार। संगीत यात्रा फिल्म फेयर, जी हाँ, सभी सभी प्रमुख पुरस्कारों का सम्मान, सभी कुछ समाहित होने वाला है इस सुंदर बेहतरीन कार्यक्रम में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है जब इतनी सुंदर जो हमारी आज की जो सिंगर हैं, जी हाँ, हम बात कर रहे थे अभी कविता कृष्णमूर्ति की, असली नाम और नाम बदलने की कहानी। शारदा से कविता, कविता कृष्णमूर्ति का जन्म दिल्ली के एक तमिल परिवार में हुआ था और उनका असली नाम शारदा कृष्णमूर्ति था। जब वह फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उस समय पहले से ही शारदा नाम की एक मशहूर गायिका मौजूद थी जिन्होंने तितली उड़ी गाना गाया। किसी भी भ्रम से बचने के लिए संगीतकार हेमंत कुमार ने उन्हें अपना नाम बदलकर कविता रखने की सलाह दी। तो फिलहाल ये थी संक्षिप्त जानकारी, लेकिन उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे गीत प्ले होंगे वैसे वैसे कुछ कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे हम। तो आज के कार्यक्रम की पहली सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचना से शुरुआत कर रहे हैं और ये रचना वाकई बहुत ही सुंदर है, बेहतरीन है, खूबसूरत है। और ये गीत आज के कार्यक्रम सुरों का सफर नामक का पहला सुंदर खूबसूरत गीत आ रहा है, मेरी दुनिया है फिल्म वास्तव से। सोनू निगम की बेहतरीन आवाज में शानदार रचना कविता कृष्णमूर्ति साथ में है और गीत समीर के हैं और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम सुरों के सफरनामा की बेहतरीन खूबसूरत रचना।

0: जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही मासूमियत भरा खूबसूरत गीत, एक दूसरे को समर्पित लाजवाब बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की आवाज में फिल्म वास्तव से शानदार रचना। साथियों आगे बढ़ते हैं। IFS यानी कि IFS अफसर बनने का था सपना। जी हाँ, वह बचपन से ही सिंगर नहीं बल्कि एक भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी बनना चाहती थी। वह पढ़ाई में भी काफी तेज थी और उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित सेंट जेवियर कॉलेज से इकोनॉमिक्स BA ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। शादी और निजी जिंदगी का अनोखा मोड़ भी देखा, आखिरकार क्या किया जाए। तो साईं बाबा की भविष्यवाणी कविता जी ने लंबे समय तक शादी न करने और सिंगल रहने का फैसला किया था, लेकिन एक बार आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साईं बाबा ने उनसे कहा था कि तुम संगीत के जरिए ही किसी से मिलोगी और उससे शादी भी करोगी, और शादी तय हो गई। जी हाँ दोस्तों, और बहुत सारी जानकारियां हैं, जानकारी का भंडार है, जिस प्रकार से इतने सुंदर सुंदर गीत लेकर आई हैं तो वाकई अच्छा भी लग रहा है हमें भी। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल, कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा। सुरों के सफरनामे में आज है पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति। आज एक बार फिर से बता रहे हैं कि आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार, और मेरे साथ हैं
1: चेतन कुमार शर्मा
0: जी। तो बढ़ते हैं आगे। ग्लोबल वायलिन, ग्लोबल वायलिन वादक से विवाह किया 11 नवंबर 1999 को। उन्होंने मशहूर वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से बेंगलुरु में शादी की। शादी के बाद उन्होंने उनके 4 बच्चे यानी कि जिगर, बिंदु, नारायण और अंबी को अपनाया और एक बेहतरीन मां की भूमिका निभाई। करियर के शुरुआती संघर्ष और जो पहला ब्रेक मिला था इनको, तो मात्र 14 वर्ष की उम्र में वह अपनी मौसी के साथ मुंबई आ गई थी। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात हेमंत कुमार की बेटी से हुई, और जिसके बाद उन्होंने लाइव शो में गाना गाने का मौका मिला, और इसके बाद दिग्गज गायक मन्ना डे जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें विज्ञापनों के लिए जिंगल गाने का काम दिया। तो एक और गीत आ रहा है हमारी नजरों में, और बड़ा ही प्यारा खूबसूरत गीत है, और ये गीत वाकई अपने आप में भी बेहतरीन है, लाजवाब है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो और भी इन्फॉर्मेशन जो है, जो भी जानकारियां हैं, तो हम आपके साझा करेंगे। और लेकिन बीच बीच में आपको गीत संगीत का आनंद भी तो लेना ही है ना। तू पागल प्रेमी आवारा फिल्म शोला और शबनम से बेहतरीन रचना शब्बीर कुमार की आवाज में और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, शानदार बेहतरीन खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं ये लाजवाब रचना।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, मस्ती भरा, खूबसूरत गीत, वाकई मैं पागल प्रेमी आवारा, फिल्म शोला और शबनम से बहुत ही शानदार रचना और संगीत और आवाज़ कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार की आवाज़ में शानदार रचना। बढ़ते हैं कुछ और जानकारियाँ की ओर। जी हाँ, लाइफ टाइम और वर्तमान गतिविधियाँ जिक्र कर रहे हैं। ग्लोबल म्यूजिक स्कूल, फिलहाल कविता कृष्णमूर्ति अपने पति के साथ बेंगलुरु में रहती हैं। दोनों मिलकर वहां सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि SAPA सपा नाम का एक संगीत स्थान चलाते हैं, जहां बच्चों की ग्लोबल और क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाता है। भाषाओं की महारत है, वे एक बेहद वर्सटाइल सिंगर हैं। जिन्होंने 45 से अधिक भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। इसके अलावा काफी समय कोलकाता में बिताने के कारण वह बेहद धारा प्रवाह बंगाली भी बोल लेती हैं। तो चलिए सुनवाते हैं, बहुत ही सुंदर लाजवाब गीत आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है फिल्म।

टाइटल है निंबोड़ा। जी हाँ, हम दिल दे चुके सनम फिल्म से शानदार बेहतरीन रचना है कविता कृष्णमूर्ति और करसन सरगथिया की आवाज में शानदार रचना है और संगीत महबूब का है और माफ कीजिएगा, गीत महबूब के हैं और संगीत से सजाया है इस्माइल दरबार ने। आई सुनते हैं ये एक और खूबसूरत बेहतरीन रचना।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही मस्ती भरा खूबसूरत लाजवाब बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे, निंबोड़ा निंबोड़ा। जी हाँ दोस्तों, और फिल्म हम दिल दे चुके सनम से शानदार रचना कविता कृष्णमूर्ति और करसन सरगथिया की आवाज में शानदार। और मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे साथी करसन सरगथिया को शायद नहीं पहचानते होंगे, लेकिन हाँ एक बहुत ही नामी इंसान है। 2004 प्रदर्शित फिल्म का यह शानदार गीत अभी आपने सुना। गीत महबूब के थे और संगीत से सजाया था इस्माइल दरबार ने। तो साथियों, थोड़ी सी जानकारी और हम बता रहे हैं, इस सक्रियता का जो समय था यानी कि करियर टाइमलाइन जो होता है, उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग करियर की शुरुआत 1971 में एक बंगाली फिल्म लता मंगेशकर के साथ सह गायिका के रूप में भी की थी। हिंदी सिनेमा में उन्होंने 1976 में फिल्म कादंबरी से डेब्यू किया और 1980 के दशक से मुख्य पार्श्व गायिका के रूप में स्थापित हुई। वह आज भी वर्तमान तक संगीत कार्यक्रमों में और चुनिंदा गानों के लिए पूरी तरह सक्रिय हैं। फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं, क्योंकि समय का बिल्कुल पता नहीं चल पाता है और जैसे देखते हैं या फिर कुछ जानकारी बताते हैं तो ऐसे लगता है अरे बहुत जल्दी हो गया है ना। ऐसा होता भी है जिंदगी में कभी कभी, लेकिन कविता कृष्णमूर्ति की आवाज, अंदाज और जो कर्मठता है उनके अंदर, बहुत ही कमाल, बहुत ही बेमिसाल है। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना।

0: जी हाँ दोस्तों, वाकई अच्छा लग रहा है हमें भी और शायद आपको भी। गीत जो हम प्ले कर रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और जो और भी जो पार्श्व गायक हैं उनकी खूबसूरत रचनाएं अभी आप सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है। कौन सा? अच्छा, ओके। सुरों का सफरनामा। जी हाँ, सुरों का सफरनामा एक बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम होता है। हर रोज ठीक प्रातः 12:10 पर आज हम हैं आपके साथ, ललित कुमार और
1: चेतन कुमार शर्मा
0: जी। और बढ़ते हैं कुछ और जानकारियों की ओर। मूल नाम उनका, असली नाम शारदा कृष्णमूर्ति। इंडस्ट्री में आने के बाद गायक हेमंत कुमार की सलाह पर उन्होंने अपना नाम बदलकर कविता रख लिया था। या दोस्तों, और फिलहाल हम एक और गीत सुनवा रहे हैं ताकि आप सभी साथी कम से कम गीत तो सुनेंगे ही, और क्योंकि अच्छा भी लगता है ना? तो क्योंकि अगर हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी पढ़ें बताएंगे तो शायद गीत हम कम प्ले करने होंगे हमें, लेकिन हमारी

कोशिश है कि गीत ज्यादा से ज्यादा उनकी जानकारियों के साथ सुनवाए जाएं। तो फिलहाल हम एक और खूबसूरत गीत सुनवा रहे हैं, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। जी दोस्तों, प्यार झुकता नहीं फिल्म से बहुत ही शानदार बेहतरीन रचना है, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में खूबसूरत गीत। गीत SH बिहारी के हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत रचना।

0: याद तो हमें भी आ रहा है क्योंकि 1 बजने वाला है और आज के कार्यक्रम की जानकारी के साथ और खूबसूरत गीत के साथ हम विदाई लेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि पुरस्कारों से भी काफी नवाजा गया है, पुरस्कार उन्हें 4 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार 1995 से 97 तक लगातार 3 साल सहित मिलाकर, और भारत सरकार ने उन्हें 2005 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया था। निजी जीवन, उन्होंने 11 नवंबर 1999 के मशहूर वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से विवाह किया। और यदि आप कविता कृष्णमूर्ति के अलावा किसी अन्य कृष्णमूर्ति उपनाम वाले गायक या किसी विशेष गाने या फिल्म के बारे में जानना चाहते होंगे तो कभी अगले प्रोग्राम में हम आपको जरूर बताएंगे कि आखिरकार कविता कृष्णमूर्ति के बारे में और भी डिटेल जानकारियां, क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। इसी वजह से हम आज के कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का अंतिम बहुत ही खूबसूरत लाजवाब गीत सुनवा रहे हैं और छोड़े जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बने हुए हैं, मैं आपका दोस्त ललित कुमार और मेरे साथ
1: चेतन कुमार शर्मा।
0: छोड़े जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, प्यार किया है प्यार करेंगे मोहब्बत फिल्म से शानदार रचना विनोद राठौड़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में बेहतरीन रचना।

0: श्रोताओं, 1 बजने को हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
3: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जारी संघर्षों के बीच संयम, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दराज के देशों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार बने खतरों से वैश्विक समुदाय को मिलकर निपटना होगा। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिम एशिया संकट का दो राष्ट्र समाधान स्थायी शांति ला सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का प्रमुख विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान का भी उल्लेख किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से संघर्ष विराम के लिए दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग से जुड़े क्षेत्रीय समझौते की शर्तों को खारिज किया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने गुरुवार को कहा था कि ईरान ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए 7 दिन की योजना पेश की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने एशियाई खेलों में महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की टोमोका मियाजाकी को सीधे गेम में 21-9, 21-13 से हराया। इससे पहले सिंधु ने दूसरे दौर में चीनी ताइपे की च्यू पिनचियान को 21-19, 21-14 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: We'll be right back. दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has called for restraint and de-escalation in ongoing conflicts. Speaking at the United Nations General Assembly in New York, Dr. Jaishankar remarked that hostilities continue to destabilize global security and development progress, leaving countries distant from battle zones exposed to their fallout. Emphasizing the broader global reverberations of armed conflict, Mr. Jaishankar stated that countries far from conflicts are being penalized for no fault of theirs. He also called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
5: We remain deeply concerned over continuing hostilities, the targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls

0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से

0: जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंद मई के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद से खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में मदद की है और आपदा तथा संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता भी पहुंचाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार AI मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल शेयर हिज थॉट्स विद द पीपल ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड इन हिज मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात ऑन आकाशवाणी एट 11 AM टुडे। इट विल बी द 138th एपिसोड। The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, TD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that India would exercise its right to defend itself against terrorism, accusing an unnamed country of misrepresenting facts at the UN General Assembly a day earlier. Speaking at the United Nations General Assembly in New York, Dr. Jayashankar called state-sponsored terrorism with a cross-border purpose a direct challenge to the global order. He said, governments engaged in such practices must be held accountable and the financing of terrorism must be exposed and countered.
3: A persistent threat to peace has been the scourge of terrorism. That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Its financial aspects, in particular, should be exposed and should be countered.
2: The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the Commission was held where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR

आज तुम्हें हम भी कुछ सीख सिखाएं।

0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। गीत बहार कार्यक्रम अब संपन्न हुआ, 3 बजने को हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार एआई मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के साथ अपनी साझेदारी में एआई को भी शामिल करेगा। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे तलत अजीज की खूबसूरत आवाज में शानदार रचना। या दोस्तों, एक और सुंदर मार्वलस खूबसूरत गजल आ रही है, जिंदगी तूने। जी हाँ, ये टाइटल लाइंस हैं और प्यार का पहला खत जगजीत सिंह साहब की आवाज में बहुत ही खूबसूरत रचना है। और इस गजल को संगीत से सवारा है जगजीत सिंह ने ही। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार बेहतरीन गजल।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गजल। या दोस्तों, आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर। यह गजल आ रही है आगे भी जाने ना तू, एल्बम वक्त से। बहुत ही शानदार एल्बम है, आशा भोसले की आवाज में शानदार गजल। यह गजल 1965 प्रदर्शित एल्बम की है और गीत साहिर के हैं और संगीत से संवारा है रवि ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन गजल।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गजल। गीत गजल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। साथियों, 4 बजने को हैं। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम अर्चना।
1: भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 4:20 और 15 सेकंड। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत सिक्किल माला चंद्रा शेखर का बांसुरी वादन।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सिक्किल माला चंद्र शेखर का बांसुरी वादन।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 सितंबर 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 47 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा भद्रासन और अश्वथासन। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे रेहाना चक्रवर्ती का गायन। राग होगा शिवमत भैरव।

संगीतिका कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे परवीन दुबे के भजन। 7:30 का समय रहेगा हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, और 8:45 पर कार्यक्रम होगा साहित्य की, जिसके अंतर्गत परिचर्चा का विषय रहेगा हिंदी गजल नई जमीन। ये कार्यक्रम दुष्यंत कुमार जयंती पर आधारित होगा, जिसमें प्रतिभागी होंगे डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा, श्री दीक्षित दनकौरी, श्री अनिल वर्मा मीत और श्री राजेंद्र निगम राज। साथ ही साहित्यिक गतिविधियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी।

सुबह 9:15 पर कार्यक्रम होगा हमारे अतिथि, जिसके अंतर्गत फोटोग्राफर सुश्री सर्वेश से भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। मिट्टी दी महक कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे भारत विच सैर सपाटा। ये होगा हमारी आज की बातचीत का विषय और प्रस्तुति होगी डॉक्टर विनय नीत कौर की। सुबह 10:10 पर कार्यक्रम होगा आपकी पसंद, हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम। आज हमारा विशेष कार्यक्रम सुनना न भूलें, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मन की बात का एपिसोड संख्या 138।

0: इसके तुरंत बाद इसका संस्कृत रूपांतरण भी सुना जा सकेगा। दोपहर 12:10 पर कार्यक्रम होगा महिला कार्यक्रम, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा विट्ठल भाई पटेल जयंती। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 5 बजने को हैं। अब आप पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया को शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर बल दिया। AI के क्षेत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार AI मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। युद्ध और संघर्ष पर वैश्विक समुदाय से संयम, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूरदराज के देशों को भी इसका नुकसान होता है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका को देखते हुए कल तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। खराब मौसम के कारण 4 धाम यात्रा भी आज तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि अनुकूल मौसम होने पर यात्रा फिर शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र, उड़ीसा और तेलंगाना में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच शुरू होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जाएगी। एक दिवसीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं। वहीं T20 श्रृंखला में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, एनसी सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी भारत को आज पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the commission was held yesterday where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on 24th of June last year for all the states and UTs starting with Bihar was issued with unanimous approval of the commission. The Election Commission has said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision, SIR, to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECINET platform. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by Electoral Registration Officer. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that India would exercise its right to defend itself against terrorism, accusing an unnamed country of misrepresenting facts at the UN General Assembly a day earlier. Speaking at the United Nations General Assembly in New York, Dr. Jaishankar called state-sponsored terrorism with a cross-border purpose a direct challenge to the global order. He said, governments engaged in such practices must be held accountable and the financing of terrorism must be exposed and countered.
3: A persistent threat to peace has been the scourge of terrorism. That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Its financial aspects, in particular, should be exposed and should be countered.
2: The Finance Ministry has announced that all public sector banks and regional rural banks will remain open today for the convenience of customers. The Ministry said that this step has been taken in view of the proposed three-day nationwide bank strike called by the United Forum of Bank Unions from 28th to 30th of this month, coinciding with the preceding weekend holidays of 26th and 27th September. The Chardham Yatra in Uttarakhand has been suspended today in view of adverse weather conditions. Disaster Management Secretary Vinod Kumar Suman said the decision has been taken in the interest of pilgrims' safety. Pilgrims have been advised to keep track of weather conditions and follow the guidelines issued by the administration. The pilgrimage will resume only after the weather conditions improve. World Tourism Day is being celebrated across the globe today. The day highlights the importance of tourism in connecting people, fostering cultural exchange and supporting economic development. The theme for this year is Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. In men's cricket, first one international of the three-match series between India

0: West Indies will be played today at the Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram. The match will start at 2 p.m. Indian Standard Time. In badminton, India's ace shuttler P.V. Sindhu advanced to the women's singles quarterfinals at the Asian Games after defeating Japan's Tomoka Miyazaki 21-19, 21-13 in the round of 16 at the Ichinomiya City Municipal Gymnasium in Ichinomiya. And that is the end of this news bulletin.
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 5:10 और 17 सेकंड। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा भद्रासन और अश्वथासन। प्रस्तुत करता है योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी श्योखन।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक ले। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ ले। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आए। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव, यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति। इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय था भद्रासन और अश्वथासन। प्रस्तुतकर्ता थी योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी श्योखन।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 5:20 और 15 सेकंड। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अभी आपने सुना जय जय जन हे आकाशवाणी के बृंद गान कलाकारों का ये समूह देशभक्ति गीत। आइए सुनते हैं एक और देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 5:30:17। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत रेहाना चक्रवर्ती का गायन। राग है शिव मत भैरव।
1: नमस्कार, मैं रेहाना चक्रवर्ती, मैं सुबह का राग प्रस्तुत करने जा रही हूँ आपका समक्ष। ये शिव मत भैरव है, ये थोड़ा भैरव और भैरवी का थोड़ा सा मिश्रण है।